0: मिलती है। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना प्राणायाम।
1: सुप्रभात दोस्तों, योगशाला में आप सभी का स्वागत करते हैं। योग जो मस्तिष्क को लेकर के हमारे पूरे शरीर की देखभाल करता है। योग का अर्थ यही होता है कि शरीर को मस्तिष्क से जोड़ना, और उसके लिए जरूरी है हम अपने मस्तिष्क को सर्वप्रथम एकाग्र रख सके। और मस्तिष्क को एकाग्र रखने के लिए ध्यान योग बहुत जरूरी है। तो आइए योग की शुरुआत एक उच्चारण से करते हैं।

सुप्रभात दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, जब हम कोई भी स्थिति में होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, जब हम बहुत मायूस होते हैं, तो हम हमेशा से अपने अंतर्मुखी बातों को सोचने और समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम सभी मिलकर के आज ध्यान करने जा रहे हैं। ध्यान उस प्रभु का, अपनी अंतर आत्मा को जानने के लिए हमें अपने अंतर्मुख में जानना जरूरी होता है। तो आइए हम सब मिलकर करते हैं ध्यान। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो आइए दोस्तों, आज का दिन यानी कि हमारे शिविर का अंतिम दिन, 30वां दिन, तो सबसे पहले तो हमें आप सभी मिलकर के एक बार ये बताएं कि 30 दिवसीय योग शिविर में नए नए आसन, नए नए प्राणायामों को हमने एक नए शब्दावली के साथ में किया। हर दिन एक नए शब्द की उत्पत्ति के साथ में हमने हर रोज कुछ न कुछ नया ही सीखा है। तो 30 दिवसीय योग शिविर में आप

0: ने आकर के क्या क्या सीखा और क्या क्या प्राणायाम आसन किए, यह सभी आप हमें जरूर से बताएंगे। तो सभी का तहे दिल से स्वागत करती है योगिनी समता। तो आइए आज 30वां दिन योग शिविर का हम करेंगे जागरव। जागरव कोई भी आसन, कोई भी प्राणायाम, कोई भी कसरत नहीं है। जागरव का मतलब होता है बहुत ही आसान तरीके से हम किसी भी चीज को जानते हैं। चेतावनी, जाग, सतर्क, सूर्य के लिए एक नाम, मतलब होने का जागरव बहुत ही सुंदर बन जाता है। शास्त्रों में जागरव नाम को काफी अच्छा माना जाता है और इसका मतलब यानी चेतावनी, सतर्क होना होता है। जागरव अपने आप में इसीलिए नाम से ही जाना जाता है क्योंकि अगर हम किसी चीज की चेतावनी करते हैं तो हम जान जाते हैं कि यह जागरव ही है। जागना, सचेत हो जाना। आज के अंतिम दिन यानी कि योग शिविर के अंतिम दिन में जागरव का नाम इसीलिए रखा गया क्योंकि हम आपको किसी महत्वपूर्ण मुद्दों पर, महत्वपूर्ण आसनों पर, महत्वपूर्ण प्राणायामों पर कुछ चेतावनी भी करने वाले हैं। जागरव, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हर एक प्राणायाम, हर एक आसन के साथ यह शब्द जुड़ा होना चाहिए। हम कोई भी आसन करेंगे, कोई भी प्राणायाम करते हैं तो हमें अपने आप में जागरव होना चाहिए, चाहे वो अनुलोम विलोम हो, चाहे वो कपालभाति हो, चाहे वह कोई भी आसन क्यों ना हो। आसनों की श्रृंखला में अगर हम बात करें तो मंडूक आसन है, सौंदर्य आसन है, चक्रासन है, और भी बहुत सारे ऐसे आसन हैं जो कि हम जब हम करते हैं तो हम उसकी सावधानियों को चेतावनी समझ करके अपना लेते हैं। परंतु प्राणायाम जब हम करते हैं तो श्वास से निर्मित होना चाहिए, सांसों से जुड़ा हुआ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह एक अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। श्वास से निर्मित कोई भी आसन, कोई भी प्राणायाम होता है तो हमें अपने आप में एक जागरव की स्थिति बना देता है, एक जागरव को उत्पन्न कर देता है। एक जागरव की स्थिति इस तरीके से पनपने लगती है जब हम पूर्ण रूप से उसमें लिप्त हो जाते हैं, जान जाते हैं कि यह हमारे लिए कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्राणायामों की श्रृंखला में जब हम आते हैं तो अनुलोम विलोम, कपाल भाति, उद्गीत और भ्रामरी, भस्तिका, बहुत सारे ऐसे प्रणव प्राणायाम, सारे प्राणायामों का जो मिश्रण होता है वह जागरव में सम्मिलित हो जाता है। यानी कि हम कोई भी अगर आसन प्राणायाम करते हैं तो हमें उसके प्रति चेतावनी जरूर से होनी चाहिए, इसीलिए क्योंकि हर किसी की व्यक्तित्व, हर किसी का शरीर, हर किसी के शरीर के ऑर्गन्स जो काम करने की शक्ति पर निर्भर करते हैं वह अलग अलग होते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस तरीके से हर एक मनुष्य का रूपरेखा, चलन, बोलने का ढंग, उठने बैठने का तरीका, खान पान से सभी कुछ अलग होता है, हम यह कैसे मान लेते हैं कि हर एक व्यक्ति का व्यक्तित्व एक जैसा होता है? एक जैसा नहीं होता है। तो ठीक उसी प्रकार हर एक आसन, हर एक प्राणायाम हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग ही होता है। कोई आसन, कोई प्राणायाम हमें उतना अंदर से प्रभावी नहीं बना रहा है या प्रभाव से परिपूर्ण है तो हम जान जाते हैं कि यह आसन हमारे लिए उतना लाभकारी नहीं है। ठीक उसी प्रकार जब हम जान जाते हैं कि यह हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है तब हम मान लेते हैं कि यह हमारे लिए उतना ही ज्यादा पर्याप्त भी है। तो जागरूक का मतलब यही हुआ कि हम किसी भी आसन प्राणायाम को करें तो हमें उसके प्रति पूर्ण चेतावनी रहे साथ में ही काम करना चाहिए। तो आइए हमें आपसे सबसे एक और महत्वपूर्ण बात करनी है क्योंकि आज शिविर का अंतिम दिन है। आप सभी ने 30 दिन तक बहुत ही प्यार सम्मान हमें हर एक आसन प्राणायाम के साथ दिया। नित सवेरे 6 से 7 योग की योग पाठशाला में आकर के आपने नित्य सवेरे योग को अपनाया, आसन किए और उसके बारे में जानकारियां ली। इसी तरीके से आगे भी आप हमसे जुड़े रहेंगे योग योगशाला में आकर के नित प्रतिदिन इसी तरीके से आप आसन प्राणायाम करते रहेंगे। हम एक नई सीरीज के साथ फिर से आएंगे, एक नए योग शिविर के साथ हम फिर से जल्दी आएंगे। तब तक के लिए हमसे अब अगर कोई त्रुटि हो गई हो किसी भी आसन को लेकर के, किसी भी प्राणायाम को लेकर के, तो आप हमें बिल्कुल क्षमा कर दीजिएगा। और आगे एक नई प्रेरणा के साथ में हम फिर से, एक नए उत्साह के साथ में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि योग हमारे जीवन के लिए, हमारे शरीर के लिए कितना फायदेमंद है, ठीक वैसे ही हम सभी के लिए योग से जुड़े रहना एक प्राकृतिक उपचार भी है। आइए उस प्राकृतिक उपचार को और अच्छे से जानने के लिए आज हम एक औषधि की ओर चलते हैं, और वो औषधि जो हमारे शरीर के साथ साथ हमारी मानसिक स्थिति को भी ठीक करती है। सबसे पहले उस औषधि का नाम जान लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, उस औषधि का नाम है योग। योग की प्रक्रियाएं, योग की वैसे तो बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, और हमने कई सीरीज में योगा की कई ऐसे तमाम प्राणायाम आसन को करते हुए, बताते हुए हमने आप सभी के साथ साझा किया है। आज हम एक ऐसी बीमारी की ओर चलते हैं जो कि हम सभी के लिए बहुत खतरनाक है। कहते हैं स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर एक बहुत बड़ा धन होता है, और उसी धन को हम ता उम्र संचित करने के लिए इधर उधर भागते रहते हैं। आज हम योग के माध्यम से जानेंगे कि ये महत्वपूर्ण धन को संचित करने का उपाय क्या है। सबसे पहले हम उस डिजीज के बारे में जान लेते हैं जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। अमूमन हमने देखा है कि आजकल बढ़ती हुई भागम भागी और इतनी सारी चिंताओं के बीच में लोग अपने आप को भूलते जा रहे हैं। अपने आप को भूलने का कारण ये नहीं है कि वो अपने लिए नहीं सोच रहे हैं, अपने लिए सोचने का महत्वपूर्ण कारण यह है कि वह अपने लिए थोड़ा समय निकालें। और उसी बीच हमें फिर कुछ ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जिसका हमें बाद में पता चलता है, जिसमें से एक महत्वपूर्ण बीमारी है शुगर, यानी कि डायबिटिक। डायबिटीज किसी को भी हो जा रही है तो हमें ये जान लीजिए कि हमारी आंतरिक सभी जितने भी ऑर्गन्स हैं वो धीरे धीरे खराब होने लगते हैं। योग के माध्यम से आज हम जानेंगे कि यह इसका कारण क्या है। शरीर में शुगर लेवल बढ़ने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं जो डायबिटीज होने के कारण बन सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे कि शरीर में शुगर लेवल बढ़ने के कारण क्या हो सकते हैं। धीरे धीरे हमारी उम्र बढ़ती है, ये हम सभी को पता है कि उम्र बढ़ना भी हमें, हमारी शरीर में इंसुलिन के कारण से हमें डायबिटिक हो सकती है, और या तो हम जेनेटिक हो सकते हैं जिसमें हमारा पारिवारिक इतिहास हो सकता है, यानी कि हमें हमारे परिवार में किसी न किसी को अगर होती है तो ये एक पारिवारिक कारण भी डायबिटिक का होना कहलाता है। शारीरिक गतिविधि न करना, जो कि आजकल सभी के लिए यह महत्वपूर्ण लोग नहीं मानते हैं, कई घंटों तक एक ही जगह पर बैठे काम करना, लैपटॉप पे या फिर कई जगह पर ऐसा तो माना गया है कि 12-12 घंटे बैठ करके आज के टीनेजर्स हों या फिर बड़ी उम्र के लोग भी एक साथ बैठ करके काम करते हैं, जिससे शारीरिक गतिविधि नहीं हो पाती है। अगला कारण हो सकता है मोटापा, जो कि हमारा शरीर में ये सारी चीजों को एक साथ इकट्ठा कर देता है। फैट सबसे बड़ा कारण है हमारे शरीर में किसी बीमारी को आमंत्रित करना। इसीलिए तो कहा गया है कि थोड़ा सा अपने आप को नियंत्रित करना है, बाहर की चीजों को नहीं खाना है, और अगर खाना है तो उसे संतुलित रूप से, यानी कि हमें हफ्ते में किसी एक दिन अगर आपका बहुत मन कर रहा है तो थोड़ा संतुलित होकर के। साथ ही साथ खराब आहार, मैंने अभी बताया कि बहुत सारे बच्चों की आदत हो गई है जैसे बाहर की चीजों में, पिज्जा बर्गर ये सारी चीजें खराब नहीं है, लेकिन हम यदि इसको संतुलित रूप से अगर लेंगे तो हमें यह नुकसान नहीं करेगा। महत्वपूर्ण कारण की ओर चलते हैं जो कि है तनाव। स्ट्रेस एक ऐसा कारण है जो कि हमें शुगर लेवल को बढ़ाने में एकमात्र साधन बनता जा रहा है। तनाव जो कि आज छोटे से बड़े बच्चे भी छोटी छोटी बातों पर तनाव लेना शुरू कर देते हैं, जिससे भी हम डायबिटिक हो सकते हैं। आजकल खानपान की वजह से, स्ट्रेस के कारण से, या फिर छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आना, छोटी छोटी बातों पर हम अग्रेसिव हो जाते हैं, हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, तो हमारा हार्मोन असंतुलन हो जाता है। उक्त रक्तचाप का होना, बीपी की प्रॉब्लम्स जिन्हें ज्यादा होती है, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, यह भी कारण बताता है आगे चल करके डायबिटिक होने का। साथ ही साथ हम यह बता दें कि शुगर लेवल तेजी से क्यों बढ़ता है। मिठाई, केक, पेस्ट्री और शुगरी ड्रिंक यानी कि जिसमें शुगर की मात्रा ज्यादा होती है, अन्य मीठे पदार्थ जिसको हम अगर लगातार लेते रहते हैं तो हमारे शरीर में शुगर लेवल बढ़ जाता है। सेकंड पॉइंट आता है मैदा और रिफाइंड या आटे से बनी चीजें। मैदे से बनी चीजें भी हमारे शरीर को बहुत ज्यादा असंतुलित करती हैं। सुबह जल्दी उठना या इंसुलिन शेड्यूल, खुराक सही रूप से न लेना। जो लोग डायबिटिक पेशेंट हैं, अगर वो इंसुलिन की खुराक ठीक से नहीं लेते हैं तो भी वह आगे चल करके ज्यादा डायबिटिक हो जाते हैं। समय पर नाश्ता न करना, ये सबसे बड़ा कारण आजकल छोटे छोटे बच्चों को, कम एज के बच्चों को भी सुनने में आता है कि वह डायबिटिक हो गए हैं। सुबह उठ कर के सर्वप्रथम हमें अपने लिए अपने संपूर्ण आहार वाला नाश्ता लेना चाहिए। कहा जाता है कि नाश्ता हमें राजाओं की तरह करना चाहिए। दोपहर का जो नाश्ता होता है, दोपहर का खाना हम साधारण रूप से कर सकते हैं, लेकिन हमें रात का भोजन बिल्कुल हल्का लेना चाहिए। इसीलिए हम कभी भी अगर बीमार पड़ते हैं तो हमें सबसे ज्यादा दिक्कत सवेरे ही होती है, क्योंकि जब हमारा पेट खाली होता है तो हमें चक्कर आना, हमें कमजोरी महसूस होना, ये सारे लक्षण हो सकते हैं डायबिटिक होने के। आइए अब हम आपको बताने जा रहे हैं शरीर में शुगर लेवल बढ़ने से कुछ जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण बातें। शुगर लेवल बढ़ने की वजह से शरीर ऊर्जा के लिए ग्लूकोज का इस्तेमाल नहीं कर पाता है, जिसके कारण से हम दिन ब दिन धीरे धीरे ज्यादा हाई लेवल पर शुगर या फिर डायबिटिक होने लगते हैं। शुगर लेवल बढ़ने से टाइप 2 डायबिटीज जैसी बीमारियां भी होने लगती हैं। शरीर में शुगर लेवल को कंट्रोल रखने के लिए आप रात को जल्दी खाना खाएं, नियमित व्यायाम करें और साथ ही साथ अपने डॉक्टर की सलाह भी लेते रहें। आइए अब हम आपको बताने जा रहे हैं मधुमेह यानी डायबिटिक के बारे में और उनके लक्षण। डायबिटिक एक ऐसी बीमारी है जो एक बार अगर हो जाती है तो आजीवन बनी रहती है, जिसको हम कभी भी आजीवन में इसका उपचार तो करते रहते हैं लेकिन ये पूर्ण रूप से खत्म नहीं होती है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि डायबिटिक और मधुमेह है क्या। मधुमेह एक मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर है जिसे शुगर डायबिटीज के नाम से भी जानते हैं। यह बीमारी तब होती है जब आपके शरीर में पर्याप्त इंसुलिन नहीं बन पाता है और इसके कारण ब्लड में मौजूद ग्लूकोज या शुगर का लेवल बढ़ जाता है। साथ ही साथ हमने आपको इसके कारण तो बता ही दिए हैं, आइए अब हम आपको योग के माध्यम से इसे औषधि की ओर कैसे ले जाते हैं इस पर बात कर लेते हैं। शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए सर्वप्रथम अभी हमने बताया कि सवेरे उठ करके आपको नित्य क्रिया करने के बाद में एकांत चित कहीं स्थान पर बैठ जाना है और आपको 3 प्राणायाम मुख्य रूप से शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए करना है। सबसे पहला प्राणायाम है प्राणायाम। प्राणायाम इसलिए क्योंकि अभी हमने लक्षणों के बीच में एक बात बताई थी कि तनाव और खराब खानपान, तो तनाव के कारण हम अपने आप को असंतुलित कर पाते हैं, यानी कि असंतुलित हम हो जाते हैं। तनाव को कम करने के लिए प्राणायाम एकमात्र ऐसा साधन है, एक ऐसी औषधि है जिसे करने के बाद में हम तनाव से मुक्त हो पाते हैं। और साथ ही साथ जब हम एकांतचित होकर के इस योग मुद्रा में बैठते हैं तो हमें अपने आप को भी एक शांति और एक सुदृढ़ होने की कला मिलती है। दूसरा प्राणायाम अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम वैसे तो श्वास से निर्मित प्राणायाम है। आती जाती श्वास को किस तरीके से नियंत्रित करना है अनुलोम विलोम में बेहतर बताया जाता है। साथ ही साथ अनुलोम विलोम करने से हमें पेट के साथ साथ मानसिक स्थिति को भी ठीक करने के लिए कई ऐसे उपचार और लक्षण भी बनते हैं। अनुलोम विलोम को करने के बाद में हम तीसरा प्राणायाम और मुख्य प्राणायाम करते हैं अग्निसार। वो इसलिए क्योंकि शुगर लेवल जब हमारा बहुत ज्यादा बढ़ा होता है तो हमारी पेट की अग्नि भी उस समय हाई लेवल पर बढ़ी रहती है। सवेरे जब आप उठें और नित्य क्रिया करने के बाद में ये तीसरा प्राणायाम लगातार 1 से 1.5 महीने आप करते रहें तो आपका शुगर लेवल धीरे धीरे कंट्रोल होने लगेगा। हम ये तो नहीं कह रहे कि आपकी दवाइयां बंद हो जाएंगी या आपका शुगर ठीक हो जाएगा पूर्ण रूप से, पर आपको आने वाली छोटी छोटी तकलीफें जो शुगर से संबंधित होती हैं, डायबिटिक से संबंधित होती हैं, वह आपके रोजमर्रा के जीवन में नहीं होंगी। मैंने कई सीरीज में प्रणो प्राणायाम, अनुलोम विलोम और अग्निसार बारी बारी कई बार इसकी प्रक्रियाओं को बताया है, लेकिन हम फिर से आज हम जब डायबिटिक पेशेंट को लेकर के बात कर रहे हैं तो हम तीनों का एक संक्षिप्त परिचय भी देते जा रहे हैं। सबसे पहला प्रणो प्राणायाम, जो कि आती जाती श्वास को महसूस करना है और बिल्कुल शांत चित होकर के बैठ जाना है। यह हमारा पहला प्राणायाम जो कि प्रणो प्राणायाम। इससे हमारा मानसिक तनाव और हमारी आंतरिक सभी शक्तियों को शांत कर देता है। दूसरा अनुलोम विलोम। दाईं नासिका को बंद करके बाईं नासिका से सांस छोड़ना और बाईं नासिका से सांस लेते हुए दाहिनी नासिका से सांस को छोड़ना अनुलोम विलोम कहलाता है। इसमें हमें श्वासों की गति को नियंत्रित करते हुए अपने आप को एकाग्रचित होकर के श्वास की तरफ ध्यान देते हुए पेट की गतिविधियों को भी मध्यम गति से चलाते रहना है। तीसरा प्राणायाम जो कि बहुत मुख्य है वो है अग्निसार। अभी अभी हमने बताया कि अग्निसार यानी कि पेट की अग्नि को शाना। आपने देखा होगा या आपने महसूस किया होगा कि जब हमें तेजी से भूख लगती है तो हमारे पेट के अंदर कई प्रकार की क्रियाएं होने लगती हैं। हमें ये महसूस होता है कि इस समय हमें जो भी मिले हम उसे खा लें। इसका साफ साफ कारण ये होता है कि उस समय हमारी पेट की अग्नि जो है वह ज्वलनशील होकर के तेजी से हो जाती है, जिसके कारण से हमारा शुगर लेवल भी उस समय बढ़ जाता है। जैसे जैसे हम कुछ न कुछ खाने लगते हैं, पानी पीने लगते हैं, धीरे धीरे हमारी जो पेट की अग्नि है वह शांत होने लगती है। सवेरे उठ करके अग्निसार करने से यह अग्नि पूर्ण रूप से इतनी तीव्र गति से कभी भी आपको परेशान नहीं करेगी। भूख जो कि समय पे लगती है, समय पर भूख लगने के बाद में आप आराम से खाना खाएंगे और फिर आपको इतनी ज्यादा बेचैनी उलझन नहीं होगी। अग्निसार कैसे करना है आइए अब हम बताते हैं। शांत चित होकर के हाथों की मुद्रा को बनाते हुए हम श्वास को एक साथ यानी कि तीव्र गति से श्वास को लेते हुए श्वास को रोक लेंगे और उसके बाद पेट को अंदर बाहर चलाते हुए इस गति को 1 से 1.5 मिनट तक करते रहेंगे। यह है अग्निसार। अग्निसार प्रक्रिया को हम 1 से 1.5 मिनट तक प्रारंभिक अवस्था में करेंगे और धीरे धीरे हम इसकी गति को बढ़ाते जाएंगे। तो ये था दोस्तों, आज शुगर लेवल को अगर बढ़ जाती है तो उसे कंट्रोल करने के 3 औषधि रूप में प्राणायाम। अगर हम इसे नियमित रूप से करते रहेंगे तो हम देखेंगे कि हमें जो बेचैनी और बहुत ज्यादा जो उलझन होती है वह सब धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी और हमारा जो दैनिक दिनचर्या है वह सामान्य रूप से होने लगेगी। तो आइए दोस्तों फिर से हम मिलेंगे एक नई औषधि के साथ में। तब तक करें योग, रहे निरोग।
1: सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय गर्मियाँ प्रचंड रूप में आ गई हैं। कहा जाता है इस गर्मियों में हम अगर अपनी सुरक्षा नहीं करेंगे तो अपने आप को किस तरीके से हम महफूज कर पाएंगे। साथ ही साथ ये भी मानना जरूरी है कि अगर हम इन गर्मियों में अपनी और अपने सभी की सुरक्षा करना भी बहुत ज्यादा उपयोगी है। पानी का त्वचा के लिए कई तरह से उपयोग किया जाता है। नियमित रूप से पानी पीना त्वचा को हाइड्रेट रखने में मदद करता है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं आपकी स्किन के बारे में। हमारी त्वचा एक पतली सी झिल्ली की तरह होती है, जो कि जैसे कहते हैं ना कि अगर एक फूल को हम यूं ही तोड़ करके रख देते हैं तो वो अमूमन 1 से 2 दिन सही सलामत रहता है, लेकिन उसके बाद वो मुरझाने लगता है। उसकी पत्तियां अलग अलग होने लगती हैं, पत्तियों में सिलवट सी आने लगती है। कई बार ऐसा होता है कि अंकुरित बीज भी बिना पानी के यूं ही खराब हो जाते हैं। ठीक वैसे ही हमारी स्किन की जो पतली झिल्ली होती है वो भी पानी से निर्मित बनी होती है। पानी हमारी स्किन के लिए इतना उपयोगी होता है जैसे एक मछली जल में रहती है और अगर उसे बाहर निकाल दिया जाए तो वह मर जाती है। पानी हमारे शरीर के लिए ही नहीं जबकि हमारी स्किन के लिए, हमारी कोशिकाओं के लिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम एक दिन पानी ना पिए और उसके बाद अगर हम पानी को उपयोग करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी स्किन में एक कालापन सा आने लगा है, एक मुरझाहट सी आने लगी है। त्वचा में एक निखार जो हमारा एक दिन पहले बना होता है ठीक बिल्कुल वैसे ही जर से नीचे हो जाता है। उसका कारण आपको पता है? क्योंकि पानी हमारे लिए स्किन में हाइड्रेट का काम करता है। जैसे पौधों में पत्तियों में एक पानी की अगर हम छिनकार भी कर देते हैं तो फिर से वो जीवित हो उठते हैं, ठीक वैसे ही हमारी स्किन में पानी प्रचुर मात्रा में होना चाहिए। आपने कभी देखा है कि जब हम पानी से अपना मुंह धुलते हैं तो हमारा चेहरा पहले से खिल उठता है, ठीक वैसे ही एक अगर पौधे की हम जांच पर रख करें तो मैं आपको परीक्षण बताती हूँ। अगर आपने एक पौधा यानी कि एक फूल आप कहीं से लेकर के आए हैं और आपको चाहिए कि यह सुबह तक मुरझाए नहीं, आपने एक गिलास लिया जिसमें वो डंठल सहित उस गिलास में डाल के आपने रखा। बचपन में ये परीक्षण हम लोगों ने बहुत किया है लेकिन आज इस परीक्षण को हम अपनी त्वचा से तुलना करके बताते हैं। और दूसरे ग्लास में सिर्फ और सिर्फ आपने वो फूल रख दिया है, सुबह उठते ही आपने यह परीक्षण देखा कि जिसमें जो डंडी पानी में पूरी रात थी वह ऊपर ही ऊपर उसका फूल खिला हुआ मिलता है, लेकिन जिस ग्लास में पानी नहीं था वह फूल बिल्कुल मुरझाया हुआ रहता है। ठीक वैसे ही हमारी स्किन में यदि पानी की मात्रा प्रचुर मात्रा में नहीं होता है तो हमारी स्किन की सभी कोशिकाएं मृत होती जाती हैं। फिर हम उसके बाद जितनी भी कॉस्मेटिक की क्रीम लगा लें, महंगी महंगी फेशियल या कई चीजों का उपयोग क्यों ना कर लें, पानी हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। आप सोच रहे होंगे कि आज योगिनी समता ने ये टॉपिक क्यों उठाया है, तो मैं आपको बता दूं कि अमूमन सभी को इसकी जरूरत पड़ती है। हम कहीं ना कहीं छुट्टियों में बाहर घूमने जाते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक दिन के लिए मैं कहीं बाहर गई और पानी की कमी को महसूस किया। शाम होते होते मेरी स्किन पे वो कमी दिखने लगी। पानी, क्योंकि हम इधर उधर दौड़ धूप में घूमने फिरने में पानी की मात्रा हमने कम कर दी। शाम तक देखे तो हमारा चेहरा मुरझाया हुआ लग रहा था। फिर हमने पानी पीना शुरू किया और उसके बाद में दूसरे दिन सुबह हमारा जैसा चेहरा था वैसा ही हो गया। फिर मैंने ये परीक्षण किया कि आपने देखा कि एक दिन आ

अंधेरों से उजालों की ओर, भटकाव से सत्य की ओर और भ्रम से ज्ञान की ओर ले जाने वाली ये है पहली किरण। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजी आकांक्षा। और आज की इस पावन सुबह में हम बात करेंगे उस संत की जिसने शब्दों से नहीं बल्कि सच्चाई से दुनिया को आईना दिखाया, जिनकी वाणी में सरलता थी पर अर्थ गहरे, जिनके दोहों में जीवन का सार छुपा है। जी हाँ, आज की पहली किरण समर्पित है संत कबीरदास जी को। कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। ये कहते हैं कबीरदास जी। तो दोस्तों, आज की सुबह हम खुद से मिलने की कोशिश करेंगे, कबीर की नज़र से दुनिया को समझेंगे और अपने भीतर छुपे सत्य को पहचानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये सिर्फ एक शो नहीं, ये है आत्मा जो जगाने वाली है आपकी, हमारी, हम सबके भीतर की वो किरण जो कहलाती है पहली किरण।

संत कबीरदास जी का जन्म 1398 में हुआ और इनकी मृत्यु मानी जाती है 1518 में, यानी कि 15वीं सदी के एक महान भारतीय कवि, रहस्यवादी और समाज सुधारक थे हमारे कबीरदास जी। इन्होंने निर्गुण राम की भक्ति पर जोर दिया और जाति

अंधविश्वास व आडंबरों का कड़ा विरोध किया। उनकी रचनाएं साखी, सबद और रमैनी, जो कि एक पुस्तक का जब उसको रूप दिया गया और नाम रखा गया बीजक, मुख्य रूप से सधुक्कड़ी भाषा में है, जो हिंदी साहित्य के भक्ति काल की ज्ञान मार्गी शाखा का हिस्सा है। इनके जन्म की बात की जाए तो माना जाता है 1398 में काशी के वाराणसी में इनका जन्म हुआ, लहर तारा तालाब के पास। जुलाहा दाम्पत्य नीरू और नीमा द्वारा इनका पालन पोषण किया गया। स्वामी रामानंद इनके गुरु थे और मगहर में 1518 के आसपास इनकी मृत्यु हुई। और अगर इनके भाषा शैली की बात करें तो मुख्य रूप से इन्होंने सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है अपनी रचनाओं के लिए, और साथ ही साथ अवधी, पंचमेल, खिचड़ी, बोलचाल की भाषा को इन्होंने अपनाया है। चलिए इनके बारे में और भी बहुत कुछ जानेंगे, लेकिन उससे पहले इन्हीं के द्वारा रचित एक निर्गुण सुनते हैं।

जी हाँ श्रोताओं, आप सुन रहे हैं पहली किरण भोरे भोरे की सुबह की, और उसमें आज हम बात कर रहे हैं संत कबीरदास जी की। तो इनकी अगर सिद्धांत और शिक्षाओं की बात करें तो ये निराकार ईश्वर को मानते थे, यानी निर्गुण भक्ति करते थे। कबीर ईश्वर को निर्गुण मानते थे जो हर कण में व्याप्त है, ना कि केवल मंदिर या मस्जिद में। और इसके साथ में उन्होंने जाति प्रथा, मूर्ति पूजा और धर्म के नाम पर पाखंड का कड़ा विरोध किया। कबीर ने प्रेम, भाईचारे और सादगीपूर्ण जीवन पर जोर दिया। कबीर ने गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा स्थान दिया। कबीर जी के कुछ प्रसिद्ध दोहे हैं जिनके अलग अलग रूप हैं। अगर मैं ज्ञान की महत्ता की बात करूं तो इनकी एक रचना है, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। यानी सज्जन की जाति नहीं उसका ज्ञान देखना चाहिए, तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं। इसी प्रकार इन्होंने जब प्रेम पर अपनी पंक्ति दी तो वो कुछ इस प्रकार थी, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया ना कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। किताबें पढ़कर कोई ज्ञानी नहीं बनता, जो प्रेम के ढाई अक्षर पढ़ ले वही सच्चा ज्ञानी है। और सच में अगर आपकी जीवन में, आपकी लाइफ में प्रेम है ना, तो उससे आप सब कुछ सरल बना सकते हैं। इसके अलावा कुछ और ज्ञान इनकी पिटारी से ज़रूर लेंगे, लेकिन उससे पहले ये निर्गुण।

जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कबीर दास जी की। तो कबीर दास जी ने ज्ञान प्रेम के अतिरिक्त और भी कई सारे विषयों पर अपनी बातें कही हैं। उनमें से एक और है, जी हाँ, हम सभी इंसान हैं ना, और इंसानों में सबसे बड़ी कमी पाई जाती है आचरण को लेके। तो आचरण के बारे में कबीर दास जी का क्या कहना है, आइए आपको बताते हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिला कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। जब मैंने दूसरों में बुराई खोजी तो कोई नहीं मिली, लेकिन जब मैं खुद के अंदर झांकने को चला तो मुझसे बुरा कोई नहीं दिखा। और ये बिल्कुल सत्य है। कहते हैं ना कि जब हम किसी के ऊपर उंगली उठाते हैं तो उससे पहले चार उंगली हम पे खुद पे उठती है। तो बिल्कुल सही कहा हमारे कबीर दास जी ने। और किसी को कुछ भी कहने से पहले हमें खुद के अंदर झांक के जरूर देखना चाहिए। इसके अतिरिक्त इन्होंने सादगी का महत्व बताया है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ऐसे बड़े होने का कोई फायदा नहीं जिससे किसी का भला ना हो सके। बिल्कुल, अगर आप बड़े हैं और अगर आप बड़े बनते हैं तो सच में बड़ा वही होता है जिसका हृदय विशाल हो, जिसकी सोच विशाल हो, जो दूसरों का भला करना जानता हो। चलिए फिलहाल के लिए एक निर्गुण सुन लेते हैं, इसी से जुड़ा हुआ

जी हाँ श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं कबीर दास जी की, और इनका कहना है कि धर्म हमें जोड़ने के लिए बना है, लेकिन जब वही धर्म हमें बांटने लगे तो समझ लेना चाहिए कि हम धर्म नहीं अहंकार निभा रहे हैं। कबीर दास जी कहते हैं, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोए, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगा तोहे, यानी अंत में सब एक ही मिट्टी में मिल जाना है, फिर ये ऊंचा नीचा हिंदू मुस्लिम का भेदभाव किस बात का, सोचने की बात है। तो आप सोचिए, तब तक हम सुन के आते हैं प्यारा सा निर्गुण।

जी हाँ दोस्तों, आप शो सुन रहे हैं पहली किरण। आपने ट्यून करके रखा हुआ है रेडियो ज्ञानसली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। और आज हम जिसकी बात कर रहे हैं, जी हाँ, आपके अपने भक्तिमय कार्यक्रम में, वो हैं कबीर दास जी। और कबीर दास जी की अगर मैं बात करूं तो उनके हर एक पहलू पे जिंदगी के बड़े ही चर्चे हुए हैं। और जो सबसे ज़्यादा चर्चित विषय और मुद्दा रहा है इनके जीवन का, वो थी इनकी मृत्यु। वो क्या थी, चलिए एक कहानी के माध्यम से आपको बताते हैं। और ये कहानी कोई कहानी नहीं है, सत्य घटना पर आधारित कहानी है। जी हाँ दोस्तों, संत कबीर दास जी ने पूरी जिंदगी एक ही बात सिखाई, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत का। लेकिन जब उनके अपने जीवन का अंतिम समय आया तो वही समाज जिसे उन्होंने जोड़ा था दो हिस्सों में बट गया। कहानी कुछ यूं है कि जब कबीर जी ने अपने प्राण त्यागे तो हिंदू अनुयायी बोले, हम उनका अंतिम संस्कार करेंगे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार। और मुसलमान अनुयायी कहने लगे, नहीं, उन्हें दफनाया जाएगा इस्लामी तरीके से। बहस बढ़ने लगी, विवाद गहरा होने लगा। और वो संत जिसने जीवन भर भेद मिटाने की कोशिश की, उसके जाने के बाद भी भेद सामने खड़ा था। तभी एक चमत्कार हुआ। चमत्कार, वो चमत्कार आप विश्वास भी नहीं करेंगे। चलिए बताते हैं क्या हुआ। जब चादर हटाई गई तो वहां शरीर था ही नहीं, सिर्फ फूल का ढेर था। दोनों पक्ष शांत हो गए और समझ गए कि कबीर का अंतिम संदेश क्या था। फिर क्या हुआ, आधे फूल हिंदुओं ने लिए और आधे मुसलमान भाइयों ने, और दोनों ने अपने अपने तरीके से उन्हें विदाई दी। दोस्तों, कबीर जी ने जाते जाते भी यही सिखाया कि हम चाहे किसी भी धर्म से जन्म लें, लेकिन अंत में हम सब एक ही सच्चाई के हिस्से हैं। वो शरीर नहीं, विचार बनकर जीना चाहते थे, और शायद इसलिए वो फूल बनकर खुशबू बन गए।

दोस्तों, कबीर अंधविश्वास, व्यक्ति पूजा, पाखंड और ढोंग के विरोध में हमेशा आपको दिख जाएंगे। उन्होंने भारतीय समाज में जाति और धर्मों के बंधनों को गिराने का काम किया। वह हिंदी साहित्य के भक्ति काल के निर्गुण शाखा के ज्ञान मार्गी उपशाखा के महान कवि थे। इनकी रचनाओं ने उत्तर और मध्य भारत के भक्ति आंदोलन को गहरे स्तर तक प्रभावित किया। उनकी रचनाएं सिखों के गुरु ग्रंथ आदि ग्रंथ के भीतर पाई गईं। वे एक सर्वोच्च ईश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों, कर्मकांड, अंधविश्वास की निंदा की और सामाजिक बुराई की कड़ी आलोचना की। उनके जीवन काल के दौरान हिंदू और मुसलमान दोनों में उनका अनुसरण पाया जाता है। कबीर पंथ नामक संप्रदाय इनकी शिक्षाओं के अनुयायी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इन्हें मस्त मौला कहा। क्षिति मोहन सेन जी ने कबीर साहिब द्वारा लिखित मुख्य रूप से 6 ग्रंथ बताए हैं। पहला, कबीर साखी। इस ग्रंथ में कबीर साहिब जी साखियों के माध्यम से सुरता यानी आत्म को, यानी आत्मा को और परमात्मा को समझाने का प्रयास किया है। कबीर बीजक, कबीर की वाणी का संग्रह। उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नामक से सन 1464 में किया। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से सन 1464 में किया। इस ग्रंथ में मुख्य रूप से पद्य भाग है। बीजक के 3 भाग हैं, जो कि है रमायणी यानी रामायण, चौपाई और दोहे का पद जो कि लिखित है ब्रज भाषा और पूर्वी बोली में, सबद ये गेय पद है जो कि ब्रज भाषा और पूर्वी बोली में ही रचित है, साखी यानी साक्षी पद जो कि दोहों में रचित है और इसकी भाषा की अगर बात करें तो राजस्थानी, पंजाबी, मिली खड़ी बोली। इसके अतिरिक्त कबीर शब्दावली। इस ग्रंथ में मुख्य रूप से कबीर साहिब जी ने आत्मा को अपने अनमोल शब्दों के माध्यम से परमात्मा की जानकारी बताई है। अगला है कबीर दोहावली। इस ग्रंथ में मुख्य तौर पर कबीर साहिब जी के दोहे सम्मिलित हैं। कबीर ग्रंथावली। इस ग्रंथ में कबीर साहिब जी के पद व दोहे दोनों सम्मिलित हैं। कबीर सागर ये सूक्ष्म वेद है जिसमें परमात्मा की विस्तृत जानकारी है। दोस्तों, कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उनके दोहों को उनके शिष्यों द्वारा ही लिखित किया गया यानी संग्रहित किया गया। उनके दो शिष्यों भागोदास और धर्मदास ने उनकी साहित्यिक विरासत को संजोया। कबीर के छंदों को सिख धर्म के ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब में सम्मिलित किया गया है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में संत कबीर के 226 दोहे शामिल हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल सभी भक्तों और संतों में संत कबीर के ही सबसे अधिक दोहे दर्ज किए गए हैं। क्षिति मोहन सेन ने कबीर के दोहों को काशी सहित देश के अन्य भागों के संतों से एकत्र किया था। रविंद्रनाथ ठाकुर ने इनका अंग्रेजी में अनुवाद किया और कबीर की वाणी को विश्व पटल पर ले गए। हिंदी में बाबू श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी सहित अनेक विद्वानों ने कबीर और उनकी साहित्यिक साधना पर ग्रंथ लिखे हैं। वाकई बहुत महान हस्ती थी कबीर साहब। आइए चलते हैं इन्हीं के एक और निर्गुण की ओर।

जी हाँ दोस्तों, कबीर साहिब जी के यहाँ साधु संतों का जमावड़ा रहता था। कबीर साहिब जी ने कलयुग में पढ़े लिखे ना होने की लीला की, परंतु वास्तव में वे स्वयं विद्वान हैं। इनका अंदाज और इस बात का अंदाज़ा अगर आपको लगाना है तो उनके दोहों से आपको साफ साफ लग सकता है। जैसे मसी कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, उन्होंने स्वयं ग्रंथ न लिखने की भी लीला तथा अपने मुख कमल से वाणी बोलकर शिष्यों से उन्हें लिखवाया। और कई दफ़ा तो बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि कहीं ना कहीं ये ईश्वर के अवतार थे। आप इस बात का अनुमान इनकी मृत्यु की कहानी से बेशक लगा सकते हैं। अगर चमत्कार है नहीं, अगर वो ईश्वर थे नहीं, तो फिर इतना बड़ा चमत्कार हुआ कैसे? आपके समस्त विचारों में राम नाम यानी पूर्ण परमात्मा का वास्तविक नाम देखा जाता है और इसकी महिमा प्रतिध्वनित होती है। कबीर परमेश्वर एक ही ईश्वर को मानते थे और कर्म कांड के घोर विरोधी थे। मूर्ति पूजा, रोजा, ईद, मस्जिद, मंदिर, उनका विचार था कि इन क्रियाओं से आपका मोक्ष संभव नहीं। वे कहते हैं, हरि मोर पियो मैं राम की बहुरिया, तो कभी कहते हैं हरी जननी मैं बालक तोरा, और कभी बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। उस समय हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म के लोग ही कबीर साहिब जी को अपना दुश्मन मानते थे, क्योंकि वे अपना एक तारा लेकर दोनों धर्मों को परमात्मा की जानकारी दिया करते थे। वे समझाते थे कि हम सब एक ही परमात्मा के बच्चे हैं। उन्होंने अपनी भाषा सरल और सुबोध रखी ताकि वे आम आदमी तक पहुंच सके। कबीर साहिब जी को शांतिमय जीवन प्रिय था और वे अहिंसा, सत्य, सदाचार आदि गुणों के प्रशंसक थे। अपनी सरलता, साधु स्वभाव और संत प्रवृत्ति के कारण आज विदेशों में भी उनका समादर हो रहा है। कबीर साहिब जी सिर्फ मानव धर्म में विश्वास रखते थे। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजो पहार, वाते तो चाकी भली पीसी खाए संसार, माया पापड़ी सब जग तो फांधे पड़िया गया कबीरा काटी। कबीर दास जी कहते हैं कि ये जो पापिनी माया फंदा लेकर बाजार में आ बैठी है ना, इसने बहुत लोगों पर फंदा डाल दिया है, पर कबीर उसे काटकर साफ बाहर निकल आए हैं। हरि भक्ति पर फंदा डालने वाला खुद ही फंस जाता है, ऐसा इनका मानना है। चलिए फिर एक और निर्गुण की ओर आगे बढ़ते हैं।

जी हाँ श्रोताओं, आप शो सुन रहे हैं भोरी भोरी का भक्तिमय कार्यक्रम पहली किरण, और अब बारी है उन प्रसिद्ध दोहों की जिससे चलते चलते हम कुछ ज्ञान लेके चलेंगे। वाकई बहुत कुछ है जो हम अपने जीवन में अगर कबीर दास जी के जीवन से उतार लें तो हमारा जीवन बहुत ही सरल और वाकई जीने लायक हो जाएगा। चलिए चलते हैं उन दोहों की ओर जो आज भी उतना ही जीवंत है जब ये लिखित हुआ था। कबीर हार चाम लहू न मेरे, जाने कोई सतनाम उपासी, तारन तरन अभय पद दाता, मैं हूँ कबीर अविनाशी। कबीर दास जी कहते हैं कि मेरा शरीर हड्डी और मांस का बना नहीं है, जिसको मेरे द्वारा दिया गया सतनाम और सार नाम प्राप्त है वो मेरे इस भेद को जानता है। मैं ही सबका मोक्षदायक हूँ तथा मैं ही अविनाशी परमात्मा हूँ। क्या मांगू कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई, एक लख पूत सवा लख नाती, उस रावण घर दिया न बाती। यदि एक मनुष्य अपने एक पुत्र से वंश की बेल को सदा बनाए रखना चाहता है तो ये उसकी बहुत बड़ी भूल है। जैसे लंका के राजा रावण के 1,00,000 पुत्र और 1,25,000 नाती थे, वर्तमान में उसके कुल वंश यानी उसके वंशजों की अगर बात करें तो उसमें कोई भी उसके घर में इस वक्त दीप जलाने के लिए भी नहीं है, सब नष्ट हो गए। इसलिए हे मानव, परमात्मा से तू ये क्या मांगता है जो स्थाई है ही नहीं। है ना कितनी गहरी और सच्ची बात।

कबीरदास जी कहते हैं, माला फेरत जुग भया, फेरा ना मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। यहाँ पर कबीरदास जी अपनी उपरोक्त वाणी के माध्यम से उन लोगों पर कटाक्ष कर रहे हैं जो लंबे समय तक हाथ में माला तो लेकर घूमते हैं पर उनके मन का भाव कभी नहीं बदलता, उनके मन की हलचल शांत नहीं होती। कबीर जी ऐसे व्यक्ति को कहते हैं कि हाथ की इस माला को फेर कर कि हाथ की इस माला को फेरना छोड़कर मन को सांसारिक आडंबरों से हटाकर भक्ति में लगाओ ताकि जीवन सरल हो सके। इसके अतिरिक्त मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे, बहुरी न लागे डारी। परमात्मा कबीर जी हिंदू और मुस्लिम दोनों को मनुष्य जीवन का महत्व समझाते हुए कहते हैं कि मानव जन्म पाना बहुत कठिन है, ये शरीर बार बार नहीं मिलता, जो फल वृक्ष से नीचे गिर पड़ता है वह पुनः उसकी डाल पर नहीं लगता। इसी तरह मानव शरीर छूट जाने पर दोबारा मनुष्य जन्म आसानी से नहीं प्राप्त होता और पछताने के अलावा फिर कोई चारा नहीं होगा। इसलिए आप जब तक हैं सत्कर्म करें, लोगों का भला करें और अपने जीवन के साथ साथ सभी के जीवन में आनंद भरें। इसके अतिरिक्त इनका एक और दोहा है कि पानी केरा बुदबुदा, असमानस की जात, एक दिना छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। कबीर साहिब लोगों को नेकी करने की सलाह देते हुए इस क्षणभंगुर मानव शरीर की सच्चाई लोगों को बता रहे हैं कि पानी के बुलबुले की तरह मनुष्य का शरीर क्षणभंगुर है, जैसे प्रभात होते ही तारे छिप जाते हैं वैसे ही ये देह भी एक दिन नष्ट हो जाएगा। तो जब तक आप जीवित हैं सदाचार करें, सदाचरण अपनाएं और अपने जीवन को सुखद और सरल बनाएं और इस समाज में कुछ तो नेकी करके जाएं।

दोस्तों, आज की सुहानी सुबह में हमने संत कबीर दास जी के शब्दों में छुपे जीवन की सच्चाई और उसके अर्थ को महसूस किया। कबीर कहते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। यानी जो करना है अभी करना है, खुद को बदलना है तो आज से ही शुरू करना है। जिंदगी की इस दौड़ में, इस भागा दौड़ी भरी जीवन में थोड़ा ठहर कर अपने भीतर झांकना है, क्योंकि असली शांति हमारे खुद के भीतर है, बाहर नहीं, आपके अंदर ही। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे आकांक्षा, और अब लेती हूं आपसे विदा। लेकिन याद रखिए, हर नई सुबह अपने साथ एक नई उम्मीद जरूर लेकर आती है। फिर मिलेंगे एक नई सोच के साथ, एक नई उम्मीद के साथ और एक नई रोशनी के साथ आपके अपने शो पहली किरण में। तब तक मुस्कुराते रहिए, जागते रहिए और सुनते रहिए रेडियो ज्ञानश्री 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। और हाँ, राधे राधे, जय जिनेंद्र, रब राखा तो सब राखा, खुदा हाफिज़।

आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे। जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9 9 6 0 9 8 1 9 7 6। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9816 9819 1976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी। अरे सुना
2: क्या,
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा 500 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ,
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583346।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतरौला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
3: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
2: यहां होती है BA MA और BCOM की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
3: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
2: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज गोंडा।
1: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
4: मतलब
1: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगर बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346। छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेख बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
3: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
2: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
3: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
2: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज गोंडा।
0: भाई जिंदगी में यूँ तो बड़ी परेशानियाँ हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।

0: क्या बात है, जबरदस्त सॉन्ग के साथ जबरदस्त सुबह की शुरुआत। और आज सेकेंड डे है जब रक्षाबंधन हम सेलिब्रेट कर चुके हैं, और फाइनली अब वक्त जो है वो फैमिली में रुके, कुछ खास हमारे फैमिली के मेंबर्स के लिए आज बड़ा अहम दिन है, क्योंकि जो लोग आए थे वो सैटरडे की छुट्टी लेकर ज़्यादातर लोग आए हुए हैं और रुके हुए हैं आज फैमिली के साथ में सेलिब्रेट करने के लिए, टाइम स्पेंड करने के लिए। और ये त्योहारों के अगल बगल के जो दिन होते हैं ना, ये बड़े इम्पॉर्टेंट होते हैं। जब फेस्टिवल्स हम सेलिब्रेट कर चुके होते हैं तो फिर उसके बाद ऐसा लगता है कि हाँ भाई अब बताओ अब कहाँ चलना है, क्या करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम इस चीज़ को समझ रहे होते हैं कि हाँ सच में हम जो है वो अब जो एक साथ मिलकर के कहीं चलने वाले हैं, कहीं कुछ करने वाले हैं। और इस तरह से ये ज़रूर चला करता है। बहरहाल आपने भी ये फील किया होगा और आप भी हो सकता है इस वक्त आए हुए हों और इस बात को कहीं ना कहीं मान रहे हो कि हाँ यार सच में ये टाइम 3-4 दिन इतना अच्छा होता है कि सब आ जाते हैं, रौनक बढ़ जाती है फैमिली की, और उसके बाद फिर जा करके धीरे धीरे करके अपने काम को लेकर के निकलना शुरू कर देते। फिलहाल अभी वक्त है आपको आज के थॉट ऑफ द डे की तरफ तो ले जाने का, और साथ ही बताने का कि भाई आज का मॉर्निंग यानी सैटरडे मॉर्निंग स्पेशल थॉट क्या है जो आपके लिए ख़ास आया है। ख़ास क्यों? क्योंकि आज है वीकेंड वाली मॉर्निंग, और वीकेंड की मॉर्निंग तो अपने आप में ही ख़ास होती है, अपने आप में ही स्पेशल होती है, तो इसको और स्पेशल कौन बनाता है? थॉट्स, ऑफ कोर्स थॉट्स बनाते हैं, क्योंकि अगर थॉट हम सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए ये हो जाता है कि भाई हाँ थॉट सुन लिया है, अब इस थॉट को इम्प्लीमेंट करना है, इस थॉट को समझना है और अपने संग ले जाना है। ऐसे ही तो रहता है ऑफ कोर्स। तो चलिए भाई देखते हैं कि आज का स्पेशल थॉट ऑफ द डे क्या है जो सैटरडे को और भी ज़्यादा स्पेशल बनाने वाला है आपके अपने मॉर्निंग वाले शो गुड मॉर्निंग गुंडा में विद योर मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान, सिर्फ और सिर्फ रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम पर, क्योंकि यही तो है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन। सो लेट्स गो टू नो व्हाट इज टुडेज थॉट ऑफ द डे।
1: नाउ यू लिसनिंग गुड मॉर्निंग गोंडा विद योर फेवरेट आरजे अदनान।

भाई साहब, आज का थॉट ऑफ द डे सच में बहुत प्यारा है। आप जैसे सुनेंगे आप कहेंगे हाँ, क्या लाजवाब, क्या गजब का थॉट है। तो क्या कह रहा है आज का थॉट? दरअसल आज का थॉट बड़ी स्पेशल सी बात कह रहा है। थॉट कह रहा है कि जिंदगी में अक्सर में देखिए हम उसके सीक्रेट को समझने की कोशिश करते हैं और हम सोचते हैं कि जिंदगी का सीक्रेट क्या है और इसको जानने समझने के लिए निकल पड़ते हैं। फिलहाल जिंदगी का जो सीक्रेट है, जो रहस्य है, वो ये है कि आप अपना वक्त अपनी पसंद के तरीकों में बिताएं। जी हाँ, जिंदगी का ये सीक्रेट है कि आप अपना वक्त अपनी पसंद के तरीकों के साथ में गुजारें। क्योंकि ये जो सीक्रेट हम लाइफ टाइम ढूंढते रहते हैं ना कि लाइफ का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या है, एट द एंड जो लोगों को बाद में रियलाइज हुआ या जो आपको जिस भी लम्हे रियलाइज होता है कि यार अपनी लाइफ को, अपने वक्त को अपनी पसंद के तरीकों से गुजारना, जैसी आपको लाइफ पसंद है, जो चीज़ें करना पसंद है, जैसे रहना है, यही तो आपकी लाइफ का सीक्रेट है। और इसको ढूंढने में पूरी पूरी ज़िंदगी निकल जाती है, कई कई साल निकल जाते हैं, कितने वक्त निकल जाते हैं, पर कभी कभी ये एक लम्हे में रियलाइज़ हो जाता है कि भाई यार जीवन तो ऐसा ही है। यानी आपकी जो पसंद है उस तरीक़ों में आपकी ज़िंदगी गुजरे, कटे, व्यतीत हो, यही तो लाइफ है और यही लाइफ का सीक्रेट है। आई होप कि आपको आज आपकी लाइफ का सीक्रेट मिल गया है और आप भी समझ गए हैं कि भैया ये लाइफ का सीक्रेट होता क्या है और कैसे हम इसको समझ सकते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि भाई जिस लाइफ को आप इतना ज़्यादा सोच रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, उन सभी में लाइफ का सीक्रेट सिंपल सा है कि भाई आप जो है अपना वक्त, यानी अपना वक्त अपनी पसंद के तरीकों में बिताएं। और इससे बड़ा कोई फ़िलहाल लाइफ का सीक्रेट नहीं मिल पाया है। सो कैसा लगा आज का थॉट ऑफ द डे हमको कमेंट करके आप बता सकते हैं, क्योंकि आज है सैटरडे मॉर्निंग स्पेशल शो गुड मॉर्निंग हुड्डा विद यू मॉर्निंग चौक आरजे अदनान। एंड यस, इसी में अब हम चलते हैं, सॉन्ग को मुकम्मल सुनते हैं। लेकिन आज का ये जो लाइफ का आप सीक्रेट मैं बता दिया हूँ, इसको जाने के बाद आप क्या सोच रहे हैं, आपके क्या ख्यालात हैं, आप बता सकते हैं।

0: हाँ जी, और इसी में चलिए अब वक्त हो गया है, चूंकि आपने मैसेजेस भेजे हैं। कैसे मैसेजेस? चैट बॉक्स पर आपकी मॉर्निंग विशेस का, और साथ ही साथ अगर आपको लगा हो कि थॉट आपको टच कर गया है तो उसके बारे में। चूंकि आप हमको ट्यून करते हैं फ्रीक्वेंसी से, रेडियो गार्डन से, और साथ ही साथ रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम के एप्लीकेशन से, और उसी एप्लीकेशन पे अगर आप सुन रहे होते हैं तो आपको एक टूल मिलता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है जिस पर आप जो कुछ टाइप करते हैं लाइव आपके गुंडा एफएम के आरजेस तक पहुंच जाता है, यानी कि चैट पर। उसी चैट पर लिखी कुछ बातें आपकी तरफ से मुझ तक पहुंच गई हैं, तो चलिए हम पढ़ करके बता देते हैं कि किसने क्या मैसेज लिखा है चैट बॉक्स पर।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite Ajay Khan.

भाई सबसे पहला जो मैसेज आ रहा है गुड मॉर्निंग गुंडा शो में, वो सुनील मौर्य जी का भूलनपुर खीरी से आ रहा है। गुड मॉर्निंग लिखा है, गुड मॉर्निंग आपको सुनील मौर्य जी भूलनपुर खीरी से। इसके बाद सुनील यादव जी हैं, गुड मॉर्निंग ऑल गुंडा वासियों, आपको भी सुनील यादव जी गुड मॉर्निंग। और मैं उत्तर प्रदेश से लाइव सुन रहा हूँ, अच्छा इटावा उत्तर प्रदेश से, थैंक यू सो मच। धर्मेश त्रिपाठी आप भी आ गए हैं मॉर्निंग वाले शो में, आपका भी स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल शो में गुड मॉर्निंग गोंडा में। सविता दुबे जी का मैसेज है, सुप्रभात सुप्रभात आपको। साथ ही आपने लिखा है कि आज का सुविचार बहुत प्यारा है, मैं अपना जीवन अपनी तरह बिताना चाहती हूँ, ये बहुत अच्छी बात है एंड ये लाइफ का सीक्रेट भी है, यही तो रहस्य है जीवन का, है ना। हमारी गीता श्रीवास्तव जी हैं, गुड मॉर्निंग आरजू सर, गुड मॉर्निंग टू यू, आपको स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल शो में। एंड रवि मौजूद हैं, लिखा है गुड मॉर्निंग सर कैसे आप, गुड मॉर्निंग टू यू, मैं बहुत बेहतरीन हूँ, बहुत अच्छा हूँ, आई होप कि आप भी ज़रूर अच्छे होंगे। एंड यस यस यस यस यस, कितना ज़्यादा हम परेशान रहते हैं लाइफ को समझने के लिए, लेकिन लाइफ सिंपली कहती है यार कि जो चीज़ें तुम्हें पसंद आ रही है वही तो लाइफ है, क्योंकि आपका अपना वक्त कैसे बीत रहा है सिर्फ सोचने में या किसी और के कहे हुए अनुसार बिताने में या फिर लास्ट में अपने हिसाब से कि भैया अच्छा है बुरा है जो है वो हम जान रहे हैं, हमारे इच्छा से हो रहा है, हाँ जो कुछ हो रहा है हमारी ज़िंदगी में तो वो उसकी जिम्मेदारी लेना एक अलग बात होती है। एंड आई होप कि भाई इस सीक्रेट को जानने के बाद अब हम कोशिश करने वाले हो कि भाई हर कोई अपनी लाइफ के सीक्रेट को जब जान ले तो अपना वक्त अपनी मनपसंद चीज़ों के साथ कामों के साथ बिताए, ये बहुत ज़रूरी है। आई होप कि ये बातें कहीं ना कहीं थोड़ी सी लग सकती है कि यार ये कैसे पॉसिबल है। देखिए कोई भी चीज़ अचानक से पलट नहीं जाती है, ना ही कोई भी चीज़ ऐसे स्विच की जाती है, बस इतना सा है कि जहाँ जो भी मौका मिले जब आप अपने हिसाब से करें, यानी जब दो ऑप्शन हो कि आपको ऐसे भी करना है वैसे भी कर सकते हैं, तो आप बस ये देखिए कि आपके अकॉर्डिंग क्या रह रहा है, आपको क्या तरीका पसंद आने वाला, आप किस तरीके में ज़्यादा खुश हैं, आप किस तरीके में अपने ज़्यादा एफर्ट्स लगा सकते हैं, बस उसी तरीके को पिक कर लीजिए, उसी तरह से करिए। अगर आपको लगता है फ्री वक्त है तो आप अपने लिए बिता सकते हैं, आपको लगता है आपके फ्रेंड्स के पास जाना चाहिए तो उनके साथ, आपको लगता है बुक्स के साथ, आपको लगता है गार्डनिंग करने में, आपको लगता है कहीं घूम के आने में, आपको लगता है कुछ कुकिंग करने में, कुछ भी है ऐसा जो भी चीज़ें आपको खुश रखती हैं आप उसमें ज़रूर लगा सकते हैं। और ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा ही कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा होने के बाद में आप जो रियलाइज़ करते हैं आपको यही होता है यार कि वक्त ही है एक लाइफ, यानी लाइफ जो है वो वक्त ही है और कैसे गुज़र रहा है अगर हमारे अकॉर्डिंगली हम जो चाहते हैं उस हिसाब से कोशिशें करते हैं तो हमको खुशी होती है, और अगर हमारे हिसाब से चीज़ें नहीं होती है, होना ना होना एक अलग चीज़ है लेकिन करना ना करना ये हमारे हाथ में है ना। तो चलिए भाई जब हमारे हाथ में है करना ना करना तो क्यों ना करके ही देखा जाए, उसके बाद रियलाइज़ किया जाए कि क्या है क्या नहीं है, राइट। चलिए फिलहाल अगले सॉन्ग की तरफ आपको ले चलते हैं, अगला सॉन्ग ज़बरदस्त है और आप सुनने वाले हैं अपने 9.6 FM के मॉर्निंग वाले शो गुड मॉर्निंग गोंडा में विद योर मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान, स्टे ट्यून्ड।

क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन, या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर, तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी। भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM, और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।

जादू तो हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर क्या होता है जादू। जब हम पुरानी इमारतों में जाते हैं तो हमको आखिर डर क्यों महसूस होता है? अक्सर देखा ना, कोई रास्ते से गुजर रहे हों आप और देख रहे हों पुरानी इमारत, तो एक अजीब सा डर होता है। या तो किसी बहुत पुरानी इमारत के अंदर आप जाते हैं तो एक डर सा लगता है। तो आखिर ये डर क्या होता है और क्यों होता है? आपको इसके पीछे की वजह पता है? अब ये ना कहिएगा कि भाई पुराने ज़माने वाले भूत रहते हैं, दादा बाबा के ज़माने के। खैर, जो भी आपको लगता हो आप चैट बॉक्स पर बता सकते हैं कि आखिर हमें पुराने घरों में जाते हुए आखिर क्यों डर लगता है, क्यों हम पुराने घरों से इतना ज़्यादा खौफ खाते हैं। अगर हम किसी पुरानी जगह पर जाते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई तो साया है, कुछ तो ऐसा है, कुछ तो अलग सी वाइब आ रही है यहाँ पर। तो ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे कुछ रीज़न्स होते हैं। वो रीज़न्स क्या होते हैं वो तो हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप ख़ुद कोई रीज़न बताना चाहें कि इसके पीछे ये रीज़न होता है, तो आप डेफिनेटली बता सकते हैं कि हाँ भाई ये वजह होती है। फिलहाल हमने जो थॉट ऑफ द डे पर चर्चा की थी उस पर गीता श्रीवास्तव जी ने बड़ा ही अच्छा पॉइंट रखा है कि आज का थॉट एकदम रियल है। मुझे अपनी लाइफ का सीक्रेट बहुत पहले ही मिल गया था, इसीलिए कभी भी किसी से शिकायत नहीं होती, खुशी से जीती हूँ, मस्त रहती हूँ। क्या बात है! देखिए मैंने क्या कहा था कि जिस भी उम्र के पड़ाव में आपको आपकी लाइफ का सीक्रेट मिल जाए, उसी लम्हे के बाद आप उस तरह से जीना शुरू कर दें जैसा आपको सीक्रेट ने बताया है। और सीक्रेट ने तो आज ओपन कर दिया है कि आखिर व्हाट इज सीक्रेट आर लाइफ। तो हमारी ज़िंदगियों का जो सीक्रेट है वो यही है कि अपने वक्त को अपनी मनपसंद चीज़ों के साथ गुजारा जाए। रेखा कुशवाहा जी आपका भी स्वागत है, वेलकम है। एंड अरविंद जी आपका भी मनकापुर से स्वागत करते हैं, आरजे अदनान। और आप रिक्वेस्ट ज़रूर कर सकते हैं दोपहर 3 से 4 क्वालिटी गोंडा में, या फिर रात पे 8:45 से 9:30 फरमाइश आपके नाम से। मैं सनी पांडे आपका भी स्वागत है, गुड मॉर्निंग आपको भी। और साथ ही साथ चलिए, सवाल बड़ा ही सिंपल सा है। सवाल मैंने ये पूछा है कि आखिर जो पुरानी इमारतें होती हैं, पुराने घर होते हैं, हवेलियां होती हैं, उसमें जाने के बाद हमको डर अजीब सा क्यों लगता है, ऐसा क्यों लगता है कि इसमें कोई साया है? अगर आप कुछ पौराणिक कथाएं जानते हैं तो भी आप मेंशन कर सकते हैं। अगर आपका जहन जा रहा है कि इसके पीछे इसकी वजह ये हो सकती है, तो वो भी बता सकते हैं। और हम आकर के बताते हैं कि इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण क्या है, आखिर क्यों पुरानी इमारतों में डर लगता है। जी हाँ, डर लगता है आखिर क्यों पुरानी इमारतों में, ये तो हम आकर आपको बताने वाले हैं।

0: चलिए, फिलहाल आपने कह दिया है, क्योंकि मैंने पूछा था कि आखिर पुरानी इमारतों में जाने के वक्त या उन इमारतों में हमको आखिर डर क्यों लगता है, इसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं, जिसमें आप लोगों ने अपने अपने एंड से बताया है कि भाई क्या रीज़न हो सकते हैं कि पुरानी इमारतों में हमको डर लगता है। चलिए, इसके पीछे की वैज्ञानिक कारण तो हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपके रेस्पॉन्सेस बता दें कि आप लोगों ने क्या लिख भेजा है।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

सबसे पहला जो रिस्पांस आया है वो हमारी गीता श्रीवास्तव जी की तरफ से आया, और आपने लिखा है क्योंकि पहले की मूवीज में पुरानी बिल्डिंग्स या हवेली में ही भूतों का डेरा होता था, तो कहीं ना कहीं वही डर मन में रहता है। और राइट, चलिए बहुत अच्छी बात है। एंड सनी लिखते हैं कि मानसिक और भावनात्मक के कारण भय लगता है। अगर ये हम सोच ले कि डर के आगे जीत है तो कोई भय नहीं लगेगा। मन की जीते जीत है, मन के हारे हार। मन में कभी ये ना आने दे कि इस हवेली में भूत है तो डर नहीं लगेगा। ऑल राइट, चलिए भाई, सनी ने सॉल्यूशन भी बता दिया है। एंड गीता जी लिखती हैं, जब छोटे थे तो रात में पेड़ को देखकर भी डर लगता था कोई है। हाँ बिल्कुल, बेशक सही फरमाया आपने। हिलते पर्दे को देखकर लगता था, लंबे चौड़े आदमी को आते हुए देखकर लगता था, और तब तो कुछ ज़्यादा ही दहशत होती थी जब कोई सच में सफ़ेद साड़ी में कोई महिला आ रही हो क्योंकि अक्सर जो है, पता है ना आपको किस तरह से बोला जाता था जी। तो चलिए भाई, आप लोगों ने बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज दिए, थैंक यू सो मच गीता श्रीवास्तव जी एंड थैंक्स टू सनी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम बताने वाले हैं कि वैज्ञानिक कारण क्या है कि आखिर पुरानी इमारतों में डर क्यों महसूस होता है। वैज्ञानिकों ने इसको बताया है, जिसका जवाब काफ़ी ज़्यादा आपको भी दिलचस्प लगने वाला है। जी हाँ, आप सोचेंगे भाई ऐसा क्या है, तो हम चलिए बताते हैं कि ऐसा इसमें क्या है। दरअसल कनाडा की मैकईवान यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने इंफ्रासाउंड के इफ़ेक्ट को समझने के लिए 36 अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को इस पर इनका प्रयोग किया है। सो कैंडिडेट्स को 4 ग्रुप्स में बांटा गया, फिर कुछ को शांत वाद्य संगीत, कुछ को डरावना माहौल बनाने वाला हॉरर स्टाइल ऑडियो सुनाया गया। उसी दौरान करीब 18 हर्ट्ज की इंफ्रासाउंड तरंगे 75 से 78 डेसिबल के लेवल पर चलाई गई या बंद रखी गई। ये जो कंपन था, ये छिपे हुए बड़े सब वूफर स्पीकर्स से पैदा किया गया था। इसके 20 मिनट बाद सभी स्टूडेंट्स की लार के नमूने लिए गए और उनमें कार्टिसोल के

लेवल को जांचा गया। साथ ही कैंडिडेट्स से उनके मूड और उनके एक्सपीरियंस के बारे में पूछा गया। सो फिर हुआ क्या? हुआ ये कि स्टडी में पाया गया यही इंफ्रासाउंड किसी भी डरावनी जगह को देखने के बाद बॉडी और मूड को प्रभावित करती है। भले ही इंसान उसे सुन नहीं पाते, लेकिन स्टडी के हिसाब से जिन कैंडिडेट्स के आसपास ये तरंगें मौजूद थीं, उनमें कार्टिसोल का लेवल बढ़ा और उन्होंने ज़्यादा चिड़चिड़ापन, कम इंटरेस्ट और संगीत को ज़्यादा उदास महसूस करने की बात कही। अब भाई, स्टडी करने वालों के हिसाब से किसी भी पुरानी इमारत के में महसूस होने वाले जो अजीब सी बेचैनी है, उसके पीछे कभी कभी मशीनों, पाइपों या बाकी स्रोतों से पैदा होने वाले अनसुने कंपन होते हैं, जिसको आप सुन नहीं पाते लेकिन महसूस ज़रूर करते हैं। और यही वजह है कि ये कंपन ही आपको कहीं ना कहीं हॉरिबल सा फील कराते हैं, हॉरर फीलिंग देते हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा ऑफकोर्स वैज्ञानिक रिसर्च करके बता रहे हैं और लगातार स्टडी चलती चली आ रही है। एंड ये जैसा कि बताया गया कि भाई कनाडा की मैकईवान यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने ये फ़िलहाल स्टडी किया हुआ है। सो पुरानी और सुनसान इमारतों में कदम रखते ही कई बार देखिए दिल जो है वो घबराने लगता है, बिना किसी साफ वजह के बेचैनी, डर, अजीब सी सिहरन महसूस होने लगती है। सो कभी आपने सोचा था कि आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या सच में इन जगहों पर कुछ रहस्य मौजूद हैं? लेकिन फ़िलहाल वैज्ञानिकों ने जो दिलचस्प तरीका बताया है, उससे तो यही लगता है कि भाई अच्छा, ये सब जो हैं ये कार्य करते हैं पीछे आपको डराने के लिए। तो अब आज के बाद से अगर कोई कहेगा कि इस पुरानी बिल्डिंग में जाकर दिखाओ, तो आप जाके दिखा दीजिएगा। फ़िलहाल ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर कुछ होती है दिक्कत तो हम जिम्मेदार नहीं है। और राइट, सो कैसा लगा आपको ये रिस्पॉन्स और ये स्टडी जो वैज्ञानिकों ने की, इसको लेकर कमेंट ज़रूर करिए।

0: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
2: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9216-9976-9216-981-976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
2: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
3: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
4: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
3: यहां होती है BA MA और BCOM की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
4: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
3: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज गोंडा।

सो भाई इसी परिवार के जो हिस्से हैं ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा लोग उनको जानते हैं, हमारे ऑफ कोर्स कमल नयन जी, उनके साहबजादे यानी विकास का आज बर्थडे है। और कमल नयन जी ने फोन करके बता दिया है कि आज विकास का बर्थडे है। सो विकास, अगर आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग गोंडा शो, तो आरजे अदनान और सुनने वाले सभी श्रोताओं की तरफ से आपको हैप्पी हैप्पी वाला बर्थडे, बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत सारी खुशियां आपकी ज़िंदगी में हो और आपके मनपसंद गिफ्ट्स आप तक हमेशा पहुँचते रहें। और साथ ही साथ आप जो कुछ लाइफ में करना चाहें उसको ज़रूर कर ले जाए। फिलहाल पापा ने तो बता दिया है कि भाई आपका बर्थडे है, तो चलिए अब आप भी खुश हो लीजिए, क्योंकि पापा की तरफ से एक सॉन्ग भी आपको डेडिकेटेड है और वो ये है। तो हम बाकी सब लोग भी भाई फटाफट से विकास को विशेस भेज दीजिए।

एक छोटा सा प्रैंक भाई, अगले महीने ना, अगले महीने दरअसल नहीं है, आज ही बर्थडे है। सो कहीं ना कहीं इसलिए बहुत बहुत एक बार वापस से मुबारकबाद आपको आपके बर्थडे की विकास। और दरअसल ये गाना जो है अब मैं आपको सुनाने वाला हूँ, जो डेडिकेटेड है आपको, बड़ा ही प्यारा सा है, बिल्कुल आपकी तरह।

0: Happy birthday to you.
1: Happy yes. birthday to you.
0: Happy birthday to you, Vikas. यस हैप्पी बर्थडे टू यू डियर विकास, आपको आपके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयां। और देखिए बहुत सारे विशेष भी आ गई हैं। हमारी गीता श्रीवास्तव जी ने बोला है जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और आशीर्वाद विकास बेटा। और आशु मिश्र जी ने भी केक्स भेजे हैं और बहुत सारी डेकोरेशन के साथ आपको ब्लेसिंग्स भेजी है। हमारी प्रीति जी बहराइच से आपको विशेस भेजती हैं, थैंक यू सो मच। सविता दुबे जी की तरफ से भी बहुत सारे गिफ्ट्स, केक्स और बहुत सारी दुआएं विकास आपको मिल चुकी है। हमारे कई सारे लिसनर्स ने इस शो को सुनते सुनते दिल ही दिल आपको बहुत सारा आशीर्वाद दिया है। आप बहुत ज़्यादा खुश रहें, बहुत ज़्यादा गुनगुनाते रहें और जिन राहों पे आप चलना चाहें अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से आप ज़रूर चलें। फ़िलहाल हम सब लोग मिलकर के सेलिब्रेट कर रहे हैं विकास का बर्थडे।

अरे ये सुना आपने कि नहीं भैया, रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक इंस्टाग्राम और फेसबुक अब होने जा रहा है बंद। मेटा ने शुरू कर दिया है ट्रायल। नहीं ये कोई मजाक नहीं है, ये सच है कि रात के 12 बजे से सुबह 6 बजे तक जो है वो इंस्टाग्राम और फेसबुक अब बंद करने की कवायद मेटा ने शुरू कर दिया है। पर दरअसल पूरी बात क्या है, क्या ये सभी के लिए है या कुछ लोगों के लिए है या किसी खास जगह के लिए है या कुछ और है, ये सब कुछ बताएंगे इस म्यूजिकल ब्रेक के उस पार कि आखिर मेटा ने इंस्टाग्राम और फेसबुक क्यों बंद करने की बात कही रात के 12 से सुबह 6 बजे तक। आइए आपको बताते हैं।

0: ऑल राइट, सो भाई हम बताने वाले थे कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है कि रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक इंस्टाग्राम और फेसबुक जो है वो बंद होने वाला है। इवन मेटा ने ट्रायल भी शुरू कर दिया है। इसको लेकर के मैंने कहा था ना कि वापस आकर के आपको जानकारी देते हैं, तो चलिए भाई क्या जानकारी है ये आपको हम बताते हैं आपके मॉर्निंग वाले शो में।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

और बच्चों और टीनेजर्स के चूंकि बढ़ते सोशल मीडिया यूजर्स और स्क्रीन टाइम को कम करने के लिए मेटा ने इंस्टाग्राम और फेसबुक पर नए सेफ्टी फीचर्स का ट्रायल शुरू किया है। अब ये जो नए सेफ्टी फीचर्स है इसमें क्या होने वाला है, दरअसल रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक डिजिटल बेड टाइम लागू करने की जो है ये योजना बनाई जा रही है। साथ ही रात को और स्कूल के वक्त नोटिफिकेशन कम किए जाएंगे। सो जो नाबालिग हैं के पोस्ट पर लाइक और रिएक्शन का जो संख्या है वो छिपाने, कॉस्मेटिक सर्जरी फिल्टर पर रोक, मजबूत एज वेरिफिकेशन और पैरेंटल कंट्रोल जैसे कदम भी शामिल हैं। सो टीनेजर्स को नॉन पर्सनलाइज्ड फीड का विकल्प देने और इन्फिनिटी स्क्रॉल को सीमित करने की भी तैयारी है। हालांकि ये ट्रायल है अभी, यूजर्स के लिए लागू स्थायी नियम नहीं है, यानी इस पे अभी ट्रायल ही चल रहा है ताकि टीन एजर्स यानी जो एट बिलो 18 है उनके लिए बेड टाइम हो सके, जो स्क्रॉल टाइमिंग है, जो स्क्रीन टाइमिंग है उसकी वजह से इनकी ज़िंदगियां ही सीधे सीधे बर्बाद हो रही है। ऑब्वियस सी बात है कि जिस वक्त में उनको प्रॉपर नींद चाहिए हो, प्रॉपर मेंटल पीस चाहिए हो, वो न जाने किस किस तरह के कैसे कैसे थॉट्स में हैं, न जाने कितना उनका वक्त इसी में ज़ाया हो रहा है। और ये सिर्फ ज़ाया नहीं हो रहा बल्कि ये बाकी चीज़ों को भी डिस्ट्रॉय कर रहा है, ये बड़ी प्रॉब्लम है। सो फिलहाल इसी को लेकर के हमारी गीता जी ने बोला है, सर 18 साल के बच्चों के लिए बंद होगा, हम आपको टेंशन नहीं लेने का, लेकिन रिंकी बहना को दिक्कत हो सकती है, वो अभी बच्ची है, छोटी बच्ची है ना। ऑलराइट, सो हमारी रिंकी जी सुन रही हैं तो इसका जवाब वो दे सकती है कि भैया अगर आपका फेसबुक और इंस्टाग्राम रात की 12 से सुबह 6 बजे तक बंद कर दिया जाएगा तो फिर आप क्या करने वाली हैं, चलिए बताइए रिंकी जी, कमेंट करिए। एंड यस, तो आशु जी ने बताया कल आपके बेटे आदित्य का भी बर्थडे था, वक्त पर ना पहुंच पाने के कारण बता नहीं पाए थे। कोई बात नहीं, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे डियर आदित्य, आपको आपके बर्थडे की बहुत बहुत मुबारकबाद। 28 अगस्त को आपका बर्थडे पड़ता है, मम्मा ने बता दिया है। एंड यस, आपको बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी विशेस रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम की तरफ से। एंड आप जो कुछ सपने देखे हैं वो मुकम्मल हो ऐसी हम दुआ करते हैं, और बहुत सारा सुकून ये लाइफ आपको ज़रूर दे, और साथ ही आप हमेशा हेल्दी वेल्दी एडवाइस रहें। जी हाँ, हेल्दी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारी दुआएं आपके लिए है, एंड आई होप कि आपने भी कल काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया होगा और साथ ही साथ आपने मनाया होगा रक्षाबंधन का त्यौहार।

0: बेटा रिजल्ट आया है क्या?
1: जी पापा। पापा एक बैड न्यूज है और एक गुड न्यूज है।
0: अच्छा पहले गुड न्यूज सुनाओ।
1: गुड न्यूज ये है कि मैं पास हो गया।
0: वाह। और बैड न्यूज?
1: बैड न्यूज क्योंकि ये गुड न्यूज गलत है।
2: ओह नो।

0: सुबह किसी ने किसी से पूछा कि आखिर आज़ादी चाहिए, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा जवाब उसमें आया। जवाब ऐसा कि आप सोचेंगे अच्छा आज़ादी के मायने ये भी होते हैं क्या। मैं खुद सोचने पर मजबूर हो गया, क्यों आज़ादी इसमें भी होती है। चलिए मैं बताता हूँ कि क्या पूछा और क्या जवाब मिला।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

सो किसी ने पूछा किसी से कि आजादी चाहिए, तो सामने वाले ने कहा हाँ लेकिन थोड़ा अलग वाली। सो ये थोड़ा अलग वाली में क्या

आजादी है चाहे लोग कुछ भी कहें, हर वक्त स्ट्रांग दिखना जरूरी नहीं, ये भी आजादी है। दूसरों की टाइमलाइन देखकर अपनी लाइफ को लेट समझना छोड़ देना भी आजादी है। किसी और जैसा बनने की जरूरत ना होना भी आजादी है। तो जरा सोचिए, क्या आपकी लाइफ में और मेरी लाइफ में ये चीजें नहीं है? है, हर बात पर हाँ कह देने का एक कोशिश होती है, हर किसी को खुश रखने की कोशिश। अपना रास्ता चुनने में भी संकोच होता है कि लोग क्या कहेंगे, हर वक्त जानबूझ के स्ट्रांग दिखना पड़ता है। दूसरों की टाइमलाइन देखकर कभी कभी लगता है लाइफ में हम कितना लेट हो गए। फलाने को देखो, इसने कितनी जल्दी चीजों को अचीव कर लिया। तो दूसरों की टाइमलाइन को देख करके अपनी लाइफ को लेट समझना छोड़ देना भी एक चुकी आज़ादी है। किसी और के जैसे बनने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है, इससे भी आज़ादी ही चाहिए होती है। सो बड़ी ही खूबसूरत सी बात निकल के आई कि आज़ादी के मायने अलग भी होते हैं और कुछ इस कदर भी होते हैं। देखिए ना, कितनी अलहदा है, कितना अलग है। और यही अलगपन तो सच में हर किसी की लाइफ में है। यानी हर किसी को अगर इन सारी चीज़ों से आज़ादी मिल जाए तो मुझे लगता है बहुत बहुत सुकून की लाइफ आपकी गुजरने वाली है। कहना आसान हो सकता है, लेकिन सच बताया तो इनमें से कहीं ना कहीं हम जकड़े हुए हैं। कई बार कंपेयर कर रहे हैं, कई बार एक्सपेक्ट किया जा रहा है हमसे और हम उसमें पूरी कोशिश लगाए हुए हैं। कई बार कुछ तो कई बार कुछ, बहुत कुछ है जो इस ज़िंदगी में चल रहा है। बट आई होप कि ये जो थोड़ी सी अलग वाली आज़ादी थी, इसको समझ लेना और उसके बाद इन चीज़ों को अपनी लाइफ में करने की कोशिश करना हमें लेकर तो जाएगा, कहीं कहीं तो पहुंचाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। आई होप कि आपको ये थोड़ी सी अलग वाली आज़ादी के मायने ज़रूर समझ में आए होंगे और आप भी मान रहे होंगे कि ये थोड़ी सी अलग वाली आज़ादी आपके लिए भी कितनी ज़्यादा मायने रखती है, कितनी ज़्यादा ज़रूरी है ना? हाँ, शायद ये थोड़ी सी अलग वाली आज़ादी हमारे हाथ में, और मुझे लगता है कि हमको अब इसको देखने की ज़रूरत है कि हम इन चीज़ों से भी आज़ाद हो जाएं।

जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: जब आप बच्चों के आसपास धूम्रपान करते हैं तो उन्हें हजारों ऐसे केमिकल से प्रभावित करते हैं जिनसे उनके जीवन को खतरा है। बीड़ी सिगरेट के धुएं में साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे कई जहरीले तत्व होते हैं जो स्वास्थ्य की गंभीर समस्याओं को जन्म देते हैं, जैसे कानों में दर्दनाक संक्रमण, गंभीर अस्थमा और जानलेवा निमोनिया। बच्चों का जन्म के समय कम वजन बीड़ी सिगरेट के धुएं की वजह से भी होता है और ये अचानक होने वाली शिशु मृत्यु के जोखिम को दुगना कर देता है। इसीलिए आज ही बीड़ी सिगरेट पीना छोड़ें।
1: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी
2: निर्देश। आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।

0: हाँ जी, कुछ मैसेजेस भी आ गए हैं। और ऑफ कोर्स आजकल हम बच्चों के बारे में काफ़ी ज़्यादा बातें करते हैं, क्योंकि भाई जिन घर में बच्चे हैं उनकी पेरेंटिंग को लेकर के हमको समझना ही होगा। एक बड़ी प्रॉब्लम अगर हम आज की दूर होती जनरेशन से महसूस कर रहे हैं तो इसलिए कि शायद हम भी कोऑर्डिनेट उस तरह कर नहीं पाए। सो किस तरह से क्या पेरेंटिंग है और किन किन बातों का ध्यान अगर दिया जाए तो हम अपनी आने वाली पीढ़ी को वैसा ही क्रिएटिव बना सकते हैं। फिलहाल आज कुछ बातें बच्चों के क्रिएटिविटी को लेकर के, जो कि बहुत जरूरी है। क्या है, आइए बताते हैं।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite Aajya Khan.

सो भाई आदित्य को भी उनके बर्थडे की बहुत सारी मुबारकबाद सबने भेजी है, और ऑफ कोर्स कई लोगों ने विशेस दे दी है। थैंक यू सो मच। सैनी ने भी विश किया है, सविता दुबे जी ने भी विश किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड सबलू सावंत जी सांता क्रूज मुंबई से, गुड मॉर्निंग टू यू, स्वागत है, वेलकम है। धर्मेंद्र मोहन जी फ्रॉम आवास विकास अदनान से, गुड मॉर्निंग टू यू, बेस्ट ऑफ लक, मैं भले ही दूर हूँ लेकिन दिल तो आपके पास है, क्या बात है, हमेशा थोड़ा सा हिस्सा तो खैर हम रखते ही हैं, है ना, थैंक यू। महेंद्र देपन फ्रॉम राजस्थान, अ वेरी वार्म वेलकम इन मॉर्निंग वाला शो, गुड मॉर्निंग गोंडा। एंड यस, फिलहाल अब चलते हैं आपको बताने के लिए बच्चों के बारे में कुछ बातें। देखिए अक्सर हमें लगता है कि बच्चे बोर हो रहे हैं उनके लिए कुछ किया जाए, लेकिन हमको ये जानना होगा कि ये जो बोरिंगनेस है इसी से बच्चों की या हमारी क्रिएटिविटी किसी ज़माने में आई है। अगर बोर नहीं होंगे तो कुछ नया करने के लिए हम कैसे कदम बढ़ाएंगे और कैसे कुछ नया करने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि ये जो सोचना है ये भी एक प्रैक्टिस है। सो आज लगभग हर बच्चे के हाथ में स्मार्टफोन है, और पहले की अगर हम तुलना करें तो आज बच्चे ज़्यादा बिजी हैं। ये सिचुएशन सोचने पर मजबूर करती है, क्या बच्चों की ज़िंदगी में वो वक्त गायब हो गया है जहाँ क्रिएटिविटी जन्म लेती थी। सो अगर मनोवैज्ञानिक की माने तो उनके हिसाब से बोरियत जो है वो नकारात्मक नहीं बल्कि मन का शांत एक मोमेंट है। स्क्रीन, खिलौने या जो फिक्स्ड एक्टिविटी है उससे दूर रहने पर बच्चे का मन नए रास्ते खोजता है, और ये प्रोसेस उसकी जो कल्पनाशीलता है, उसकी जो इमेजिनेशन है, उसके डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। दबाव का क्या होता है? देखिए आजकल ज़्यादातर बच्चों का दिन जो है पहले से तय होता है कि सुबह स्कूल है, फिर ट्यूशन है, उसके बाद खेलने हैं, फिर कोचिंग है, फिर बचा हुआ वक्त मोबाइल या टीवी पर जाएगा। सो हर पल किसी न किसी एक्टिविटी से अक्सर भरा हुआ होता है। ऐसे में बच्चे के पास अपने मन से सोचने और कुछ नया करने का मौका ही नहीं बचता है। सो मनोवैज्ञानिक भी मानते हैं कि जो क्रिएटिव सोच है तब डेवलप होती है जब मन किसी दबाव या किसी डायरेक्शन से जो है वो आज़ाद होता है। असल में जब मन को भटकने की आज़ादी मिलती है तो वो नए रिश्ते जोड़ता है और नई जो संभावनाएं हैं वो खोजता है। खाली वक्त जो है मन को बोर नहीं करता बल्कि नए विचार लाता है। सो बोरियत का मतलब ये नहीं कि आलस है, हाँ पूरे दिन बिना किसी मतलब के समय बिताना भी जो है वो फ़ायदेमंद तो नहीं है, मगर हर मोमेंट में किसी न किसी काम का कर लेना भी नुकसानदायक साबित होता है। ज़िंदगी में बैलेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो बच्चों में कुछ ऐसा ही वक्त ज़रूर मिलना चाहिए जिसमें वो अपनी पसंद से कुछ करें या ना करें, यही आज़ादी उन्हें आत्मनिर्भर सोच की तरफ ले जाती है। अगर बच्चा खिड़की से बाहर देख रहा है, बादलों को निहार रहा है या चुपचाप अकेले बैठा है तो मुमकिन है कि उसका मन किसी नई कल्पना में खोया है। ऐसे में पलों में उसे तुरंत किसी काम में लगाने की बजाय अपनी सोच के साथ कुछ वक्त बिताने का आपको मौका देना ही चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जो हम नंबर्स का खेल खेलते हैं, सो स्कूल्स में भी बच्चों को सिर्फ एग्ज़ाम्स और उनके नंबर्स तक ही मौजूद नहीं रखना चाहिए। बच्चों को कोई भी आर्ट है, कोई भी स्टोरी राइटिंग है, या कोई नाटक है, प्ले है, बागवानी है, या कोई ऐसे ओपन डिस्कशंस है, ये सब जब होता है तो इसके मौके मिलने चाहिए। और साथ ही कुछ वक्त ऐसा भी होना चाहिए जहां वो बिना किसी तयशुदा वक्त के अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सोच और सीख सके। सो ये जो पढ़ाई का मतलब है, ये सोचने की क्षमता को विकसित करना भी है। सो कल्पनाओं में बहने देने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। जी हाँ, परिवारों में बातचीत का जो वक्त है वो कम होता जा रहा है। पेरेंट्स हर रोज़ बच्चों से बातचीत करें, उनके सवाल को सुनें, उनकी कल्पनाएं जो व्यक्त करने का मौका है उन्हें दें, उनकी जो क्रिएटिविटी है वो मजबूत इससे हो सकती है। आपको हमेशा याद रखना है कि क्रिएटिविटी महंगे रिसोर्सेज की मोहताज नहीं बल्कि एक आज़ाद सोच, पेशेंस और थोड़ा सा खाली वक्त जो है वो चाहता है। खाली वक्त बच्चों को जो है कॉन्फिडेंट और कहीं ना कहीं संवेदनशील और उनको बहुत ही ज़मीन से जुड़ा हुआ बनाता है। इसलिए बच्चों को हर वक्त बिज़ी रखने के बजाय उन्हें कुछ सोचने, सपने देखने और इमेजिन करने की जो है आज़ादी दें। बोरियत महसूस होना कोई प्रॉब्लम नहीं बल्कि एक क्रिएटिविटी की पहली सीढ़ी है। जी हाँ, सो यूनिसेफ के हिसाब से अगर हम एक आंकड़ा आपको बताएं, दुनिया भर में 2 से 4 साल के बच्चे अपनी देखभाल करने वालों के साथ जो है
वो रेगुलरली नहीं खेलते हैं और ये बहुत ही भयावह आंकड़ा है। फिलहाल सुनने में बहुत छोटी सी बात लग सकती है, लेकिन एक बच्चे के लिए, मैंने आपसे बताया ना, एक पूरी ज़िंदगी, एक पूरी दुनिया होती है। आई होप कि हम इस बात को समझ रहे हैं, और आज के बाद से अगर हमारे घर में कोई छोटा बच्चा है, वक्त चाह रहा है, तो हमें वक्त देना होगा सोचने का, कल्पना करने का और कुछ कर लेने का, जैसा कि हमने अपनी ज़िंदगी खुद गुजारी है। आज का प्रोग्राम कैसा लगा हमको बताइएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच, और बने रहिए गोंडा FM पर।

0: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन, या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर, तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी। आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
2: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
1: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
2: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
1: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज गोंडा।
3: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
0: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
3: अनुभवी डॉक्टर एस सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
0: आज ही कॉल करें 9286-9976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
3: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
0: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: आप सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आपकी दोस्त एंड होस्ट समता गांव की गूंज के नए एपिसोड की अपार सफलता के बाद सभी श्रोताओं के लिए फिर से एक नया एपिसोड हम सभी मिलकर ला रहे हैं, जिसमें हमारी मुख्य गायिका श्रीमती किरण पांडे जी के मधुर मधुर आवाज में सभी गीतों की माला फिर से पिरोई गई है और जिनका साथ देने आ रहे हैं अदनान जी, श्वेता जी, जिमी जी और संतोष जी।
1: अरे वाह वाह, आओ आओ, स्वागत है सभी मित्रों का। कहाँ थे आप सभी इतने दिनों तक?
2: क्या बताएं श्वेता, बस इधर उधर जहाँ देखो शादियों का ही सीजन चल रहा है।
0: क्या बातें हो रही हैं दोनों सहेलियों में।
1: अरे आओ आओ।
2: अरे आओ समता, क्या हाल चाल है?
0: मैं तो बिल्कुल चंगी हूँ, तुम दोनों अपना बताओ।
3: अरे हम सभी तो ठीक है।
0: अच्छा ये बताओ, हमारे अदनान कहाँ रह गए आज?
2: अरे अभी तो यहीं थे।
1: और हाँ, उनका बैग भी तो आ गया है।
4: अरे भाई मैं तो यहीं हूँ, आप सबको तो मैं दिख ही नहीं रहा हूँ, ये लीजिए मैं आ गया।
0: आइए आइए,
2: वेलकम वेलकम। कहाँ थे, किसकी शादी में मसरूफ थे?
4: अरे पूछो मत, बस शादियों का सीजन तो चल पड़ा है।
1: सीजन तो चल ही रहा है और गांव की महिलाएं गीत भी तो गा रही हैं।
0: हाँ श्वेता, सही कहा तुमने, वो देखो जिम्मी के घर से गानों की आवाज भी आ रही है, तो चलो भाई सब सुन लेते हैं।
4: अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं।

0: क्या ये किरंती की आवाज थी?
1: जी हाँ जिमी, ये हमारी गोंडा की स्वर कोकिला किरंदी की ही आवाज थी।
2: वाह वाह, कितना मधुर गीत है।
3: हाँ बिल्कुल, सभी ठीक कह रहे हो। बड़ा आनंद आया ये शादी का गीत सुनकर।
0: भाई विवाह का जो असली मजा है ना, वो तो गीतों को सुनकर ही आता है।
4: हाँ हाँ, ये तो है।
2: तो क्यों ना एक और विवाह गीत किरण दीदी की आवाज में और सुन लिया जाए।
0: बिल्कुल,

0: क्या बात है, सच्ची कहा है सभी ने। किरण जी की आवाज में तो जादू है जादू।
1: अच्छा जिम्मी, ये तो बताओ कि आप लोगों ने शहर के ये बड़े बड़े होटल्स और रिसॉर्ट्स को छोड़कर ये गांव में ही क्यों अपने भाई की शादी के लिए सोचा?
0: हाँ पता है, मैं भी यही सोच रहा था। खामखा फ्लाइट का खर्चा बढ़ा दिया जिम्मी ने।
1: हाँ हाँ, ये तो सच है।
2: अच्छा मैं बताऊँ ऐसा क्यों हुआ?
1: नहीं नहीं नहीं, पहले मैं बताऊंगी।
2: अरे कोई मुझसे भी तो पूछे।
0: हाँ जिम्मी, ये बताओ कि तुमने मेरा खर्चा क्यों बढ़वा दिया?
2: तो सुनिए, हुआ ये कि आजकल सभी अपने रिश्तेदारों से किसी काम की वजह से दूर दराज बैठे हैं, जैसे हमारे अदनान। अब सभी अपने अपने कामों में बिजी हो गए थे, इसलिए हमारी प्यारी सहेली जिम्मी ने सोचा कि क्यों ना सभी अपनों को और अपने सभी मित्रों को फिर से एक साथ बैठने का मौका दिया जाए। क्यों जिम्मी?
1: एकदम 100% राइट का है। वाकई बड़ा अच्छा सोचा जिम्मी। भाई की शादी के साथ साथ सभी एक साथ मिल भी लेंगे और कई सालों की जो दूरियां थी इसी तरह वो खत्म भी हो जाएंगी।
0: तो चलिए इसी खुशी को दोगुना करके एक गीत और सुन लेते हैं। क्यों भाई?
3: हाँ हाँ, क्यों नहीं।

0: वाह वाह, मजा आ गया ये प्यारा सा गीत सुनकर, क्यों दोस्तों?
1: हाँ हाँ बिल्कुल।
2: अरे जिमी भाई, अपने भाई से नहीं मिलवाओगे क्या, जिनकी शादी में हम सभी एक साथ मिले हैं?
3: हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी लीजिए। संतोष भैया, संतोष भैया।
4: हाँ जिमी, क्या हुआ?
3: भैया ये हमारे दोस्त हैं जो आपकी शादी में आए हैं और आपसे मिलना चाहते थे।
4: हाँ हाँ क्यों नहीं।
2: भैया नमस्ते।
5: नमस्ते भैया।
0: नमस्ते भैया।
4: नमस्ते नमस्ते। अरे जिम्मी, अपने दोस्तों को चाय नाश्ता तो करवाओ।
3: हाँ हाँ भैया, बस वही कराने जा रही थी।
4: जिम्मी जाओ, सभी को अपना गांव तो घुमा लाओ।
3: जी जी भैया बिल्कुल।
2: ये बाहर से कैसे गीत की आवाज आ रही है जिम्मी?
3: ये तेल पूजन हो रहा है समता, जिसमें गीत गाया जाता है।
5: तो चलो हम सब भी वही चाय के साथ साथ इस गीत का लुत्फ उठाते हैं।

0: ये जो गीत गाया गया उसको सुनने में तो बड़ा आनंद आया, पर इसका हिंदी उच्चारण बता सकती हो क्या?
1: सच्ची में मैं भी अभी अभी यही कहने वाली थी कि सुनने में तो बड़ा मजा आया, पर क्या इसका अर्थ होगा ये जिमी बता दो प्लीज।
2: अरे मैं बता देती हूँ, इसके लिए जिमी को क्यों परेशान करना।
3: अरे अरे बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता।
2: हाँ सुनो सभी, जो सभी ने अभी अभी ये गीत सुना है उसमें पहली बात तो अवधि की खुशबू आई, वो इसलिए क्योंकि आज भी कई गांवों में शुद्ध अवधि ही बोली जाती है, जिसके कारण भी आप सभी को ये सुनकर बड़ा आनंद आया होगा।
1: जिमी चलो अब तुम थोड़ा अवधि में कुछ बोल के सुना दो जरा।
3: मैं सुनाऊं?
4: अच्छा चलो आओ, शादी का सबका एक गीत और सुनवाई दी थे।
5: वाह वाह।

0: बड़ा मजा आ रहा है।
1: अच्छा अच्छा चलो अब हल्दी होने जा रही है। अरे तुम सब अभी सो ही रहे हो, उठो भाई, सब सबको तैयार भी तो होना है।
2: अच्छा जिब्बी ये क्या होता है और कैसे होता है तेल पूजन और हल्दी रसम?
1: बताती हूँ, पहले सभी तैयार तो हो जाओ।
3: हाँ भाई, जल्दी जल्दी सभी तैयार हो जाओ ताकि हम सभी भी तेल पूजन में शामिल हो सकें। क्यों समता?
0: मैं तो ये सोच रही हूँ कि मैं पहनूं क्या।
1: अरे क्यों भाई, वो पीली वाली ड्रेस पहनो सभी, श्वेता तुम भी, ठीक है? और अदनान कहाँ गए?
2: हाँ जी,
1: क्या पहन रहे हैं आप?
2: मैं भी सोच रहा हूँ जैसा कि सभी लोग कह रहे हो पीला कपड़ा पहनने को, तो मैं भी पीला कुर्ता लाया हूँ भाई।
3: अरे वाह, तो बस यही पहन लूँ?
0: अच्छा सभी को तो बता के गई कि ये पहनो वो पहनो, लेकिन जिम्मी खुद कहाँ गई?
1: मैं अभी आती हूँ क्योंकि बाहर भैया का तेल पूजन शुरू हो गया है और आप सभी जल्दी जल्दी आ जाओ। लो गीत और तेल पूजन भी शुरू हो गया है बाहर।
4: जिम्मी, ओ जिम्मी,
1: आई आई।

0: वाह, मतलब हर रस्म पे जो गीतों की माला चल रही है ना, सुन के बड़ा मजा आ रहा है। चलो भाई, तेल पूजन और हल्दी रस्म तो हो गई।
1: अरे आप सब यहाँ बात कर रहे हैं, वहाँ बाहर भैया की मेहंदी शुरू हो गई है।
2: मुझे भी लगवानी है मेहंदी।
3: हाँ हाँ, क्यों नहीं, बाहर सभी तो मेहंदी लगवा रही हैं। आप लोग भी जाओ।
1: ओहो, जाओ का क्या मतलब, अदनान आपको भी लगवानी पड़ेगी।
3: अरे नहीं नहीं, मैं कहाँ।
0: अरे क्यों नहीं, आजकल तो सभी लगाते हैं।
3: अच्छा चलो जिम्मी, मैं भी लगवा ही लेता हूँ, पर थोड़ी सी। हाँ
2: अच्छा, देखो भैया के हाथों में कितनी अच्छी लग रही है मेहंदी, है ना।
0: हाँ श्वेता, बिल्कुल सही कह रही हो। काश अभी इस पर, यानी मेहंदी पे भी कोई प्यारा सा गीत हो जाता तो कितना अच्छा होता।
3: मतलब मेहंदी पर भी गीत होंगे अब। वाह भाई वाह।
1: हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं।
3: तो चलो भाई, सुन लेते हैं मेहंदी गीत।

0: अरे भाई कहाँ गई ये श्वेता और समता, मेहंदी तो लगवा ली, ये लो अब नींबू पानी का घोल भी लगवा लो।
1: इससे क्या होगा?
2: इससे मेहंदी में रंग अच्छा होता है श्वेता।
1: ओह तुम मुझे भी दे दो अब।
3: अच्छा अब आप सभी का हो गया हो तो सब लोग घूमने चलोगे कि नहीं?
0: हाँ हाँ चलो सभी जल्दी जल्दी चलते हैं और सभी को गांव घुमा के आते हैं, ठीक है? तो चलो सभी।
3: अरे रुको रुको, ये देखो ये क्या है, शायद ये ट्यूबवेल है। चलो इसमें सभी लोग अपने हाथ पैर धुल लेते हैं।
1: हाँ हाँ क्यों नहीं, कितना मजा आ गया ना, बहुत आनंद आया।
2: सच में जो गांव की बात है ना, जो उसकी सादगी की बात है ना, वो भाग दौड़ की लाइफ में कहाँ।
0: अच्छा चलो सभी जल्दी, भैया की बारात निकलने का समय भी हो रहा है।
4: हाँ हाँ चलो चलो, चलो।

0: कितना मजा आ गया ना, बहुत आनंद आया।
1: चलो सभी, वहाँ रस्म शुरू हो गई है। और श्वेता, मेरा झुमका नहीं मिल रहा है यार।
2: अरे आप सभी लोग रेडी हो गए क्या? अरे मैं भी हो ही गया हूँ, बस मेरे जूते नहीं मिल रहे हैं। किसी ने देखे हैं क्या?
3: लो भाई, वहाँ जूते चुराने की रस्म शुरू हो गई है और यहाँ अदनान के जूते चोरी हो गए।
2: अरे नहीं भाई, मैं दूल्हा नहीं हूँ, मेरे जूते दे दो जिसने भी लिए हैं।
0: अरे यही तो थे, कहाँ जाएंगे?
1: तुम सब भी ढूंढ ही नहीं पाते हो।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9816 9216। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
2: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
2: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

वेलकम वेलकम वेलकम और वार्म वेलकम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आपका अपना बेहद ही प्यारा सा शो कि जिसका की नाम है ज्ञान स्थली लाइव और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। तो भाई कैसे हैं आप सब और फटाफट से आइए और बताइए कि क्या हाल है। मस्त है, ज़बरदस्त है, क्योंकि दिन जो है वो तो बहुत ही प्यारा, बहुत ही मस्त और बहुत ही ज़बरदस्त है। बस इतना जानना है कि आप सभी कैसे हैं और आप सभी का वेलकम वेलकम वेलकम और वार्म वेलकम है आपके अपने वाले शो में, उनका भी जो कि हमें फ्रीक्वेंसी से सुन रहे हैं, उनका भी जो हमें रेडियो गार्डन से सुन रहे हैं और उनका भी जो हमें चैट बॉक्स से सुन रहे हैं। सो लिसनर्स, कैसे हैं आप सब और कैसा रहा आप सभी का कल का दिन? कल का दिन यानी कि भाई कल था रक्षाबंधन, तो कैसा रहा रक्षाबंधन आप सभी का? कितने मज़े किए और कितनी सारी भाई मिठाइयों की अगर बात करें तो मिठाइयाँ तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया बढ़िया सी जो है सब जगह पे मिल रही थी। तो आप सभी ने कितनी मिठाइयाँ खाई, कितनी मस्ती की, कैसे राखी बंधवाई, सब कुछ बताएँ और बताएँ कि कैसा था आपका कल का दिन। और इसी के साथ चलिए करते हैं शुरुआत अपनी प्यारी प्यारी बातों के साथ आपके अपने प्यारे वाले शो की, जो कि है ज्ञानस्थली लाइव। तो आज ज्ञानस्थली लाइव की शुरुआत में ही हमारे पास कुछ ऐसा है जो आप सभी को एनर्जी से भर देगा। बिल्कुल सही सुना आपने, क्योंकि आज दिन ही है एनर्जी वाला। अब आप सोच रहे होंगे कि आज ऐसा क्या है जो दिन एनर्जी वाला है। भाई आप सभी ने एक कहावत तो सुनी होगी, कभी ना कभी तो आपकी मम्मी ने आपको ये कहा ही होगा कि क्या दिन भर खेलते रहते हो, चलो चल के बैठ के पढ़ो। कहते हैं ना, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। लेकिन अब इसकी जो डेफिनेशन है ना, वो पूरी तरीके से बदल चुकी है कि अगर आप खेलेंगे कूदेंगे तो भी आप महान और पढ़ेंगे लिखेंगे तो भी महान। बिल्कुल पहले ये चीज़ कही जाती थी कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, बट अब इसकी डेफिनेशन जो है वो पूरी तरीके से चेंज है। हर सिचुएशन में हमें नवाब ही बनना है, चाहे हम खेलें कूदें या फिर पढ़े लिखें, क्योंकि दोनों में ही करियर अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो बिल्कुल सेम हो गई हैं और कहीं ना कहीं बहुत अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी है। अगर आप कोई भी स्पोर्ट्स अच्छा खेल लेते हैं, क्रिकेट हो गया, बास्केटबॉल हो गया, बैडमिंटन हो गया, तो इन सभी में कहीं ना कहीं आप अपनी एक अच्छी सी लाइफ बना सकते हैं। इसीलिए हमेशा कहा जाता है ना कि कभी ऐसा नहीं कहना चाहिए कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। खेल कूद हो या पढ़ाई लिखाई, दोनों की इम्पोर्टेंस अपनी अपनी जगह पर सेम ही होती है। बस हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ को लेते हैं। सो कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस तो बिल्कुल एक है, जैसे कि हमने कहा कि इम्पोर्टेंस हमेशा एक ही होती है, बस हमारे समझने पे डिपेंड करता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि भाई आज ये क्या बातें हो रही हैं, आज आरजे अंशिका जी ये क्या बातें कर रही हैं? तो बता देती हूँ कि आज हम ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। आज ऐसी बातें इसलिए क्योंकि आज है जो दिन स्पेशल सा, वो मैं आपको कुछ लाइन्स के थ्रू बताऊँगी। लेकिन आज का जो दिन है वो जुड़ा तो कुछ खेल से ही हुआ है, इसलिए हमने आते ही बात की कि खेल कैसा होना चाहिए और खेल से जो ये एक लाइन जुड़ी हुई है ये भी हमने आपको बताई। आज का दिन भी कुछ खास है, तो चलिए सस्पेंस ना क्रिएट करते हुए बता देते हैं कि आज के दिन में खास क्या है, लेकिन कुछ लाइंस के थ्रू। तो चलिए वो लाइंस हैं, पढ़ती हूँ और आप भी सोचने की कोशिश कीजिए कि आज आखिर ऐसा है क्या। मैदान की मिट्टी चूम कर जो आगे बढ़ जाते हैं, मैदान की मिट्टी चूम कर जो आगे बढ़ जाते हैं, हार जीत से परे हटकर जो खेल की साख बचाते हैं, मेजर ध्यानचंद के जादू से इतिहास यहाँ रचा गया, हॉकी की उस जादूगरी से हर भारतीय का दिल सच्चा हुआ। चलो उठो और कदम बढ़ाओ, चलो उठो और कदम बढ़ाओ, आलस को दूर भगाना है, हर घर में एक खिलाड़ी निकले ये संकल्प निभाना है। नसों में दौड़ता खून गर्म हो जब तिरंगा लहराता है, नसों में दौड़ता खून गर्म हो जब तिरंगा लहराता है, हर खेल के मैदान में भारत का गौरव बढ़ जाता है। खेल सिर्फ खेल नहीं, यह जीवन जीना सिखाता है, अनुशासन और भाईचारे का यह पावन पाठ पढ़ाता है। आज राष्ट्रीय खेल दिवस पर हम सब मिलकर हाथ बढ़ाएं, खेलें कूदें स्वस्थ रहें और भारत का मान बढ़ाएं। आज राष्ट्रीय खेल दिवस पर हम सब मिलकर हाथ बढ़ाएं, खेलें कूदें स्वस्थ रहें और भारत का मान बढ़ाएं। बिल्कुल भारत का मान बढ़ाएं। और आज है राष्ट्रीय खेल दिवस यानी कि नेशनल स्पोर्ट्स डे।
आज के दिन यानी कि 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो बता दूँ दोस्तों कि मेजर ध्यानचंद जो कि लेजेंड थे, जिन्होंने कि हॉकी स्टिक से गेंद ऐसे चिपकती थी कि भाई अपोजिट टीम वाले जो होते थे ना वो बिल्कुल कुछ समझ ही नहीं पाते थे। उनकी स्टिक से तो ऐसे चिपकती थी बॉल जैसे कि चुंबक से चिपकी हुई हो। बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद, जिनका कि बर्थडे होता है आज के दिन, और उन्हीं के बर्थडे को सेलिब्रेट करते हुए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल स्पोर्ट्स डे यानी कि राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में। मैं बता दूं कि भारत में महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद ने ओलंपिक खेलों में लगातार 3 बार स्वर्ण पदक जीते थे। इस दिन देश के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को राष्ट्रपति भवन में खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार जैसे राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों से सम्मानित भी किया जाता है। आज का ये दिन स्पोर्ट्स के लिए यानी कि खेल जगत में बहुत ही बड़ा माना जाता है। सो आज नेशनल स्पोर्ट्स डे के दिन ये सारी ही चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई ये इसलिए थी क्योंकि कहीं ना कहीं हम याद करें कि हमारा जो स्पोर्ट्स है, जो हमारे खेल होते हैं, वो सिर्फ खेल नहीं होते, वो कहीं ना कहीं बॉडी को फिट रखने का एक बहुत बेहतरीन तरीका भी होते हैं। आप सभी ने देखा होगा कि बचपन में, अब तो थोड़ा सा बदल गया है कि लोग ज़्यादा बाहर निकल कर नहीं खेलते, अपने फ़ोन पर लैपटॉप पर गेम खेलते हैं, लेकिन पहले होता था ना कि हम छुपन छुपाई, बर्फ़ पानी, पकड़ा पकड़ी, ये सारे गेम बहुत खेलते थे। और कहीं ना कहीं गिल्ली डंडा सिर्फ गेम नहीं होते थे बल्कि एक बॉडी की पूरी एक्सरसाइज हो जाती थी। जब आप गिल्ली डंडे में जब हम गिल्ली को मारते थे तो खूब दूर जाती थी, क्रिकेट खेलते थे तो बॉल खूब दूर जाती थी, दौड़ना होता था फिर बॉल लेके आना होता था, तो कहीं ना कहीं वो पूरी बॉडी की एक्सरसाइज होती थी जिसकी वजह से हमें कभी हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं होती थी। तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि सिर्फ खेल जो है वो सिर्फ खेल नहीं है बल्कि बॉडी को फिट रखने का भी एक तरीका होता है, बस हमें समझना चाहिए। सो लिसनर्स, आज है नेशनल स्पोर्ट्स डे, तो इसके बारे में हम आपको और भी बताएंगे और भी बहुत सारी बातें करेंगे क्योंकि ऐसे कुछ फैक्ट्स भी आज हम बताएंगे जो कि खेल से जुड़े हुए हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए और कहीं ना कहीं हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन उससे पहले इतने प्यारे से दिन पर एक सॉन्ग तो बनता है, तो आइए एक प्यारा सा सॉन्ग सुनाती हूँ और मिलते हैं सॉन्ग के उस पार फिर आपसे बातें करने के लिए और आपको बताने के लिए कुछ फैक्ट्स। तब तक के लिए सुने, एंजॉय करें और बने रहें अपने फेवरेट प्रोग्राम ज्ञान असली लाइव में। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। स्टे ट्यून्ड।

0: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
3: लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आपका अपना बेहद पसंदीदा शो जिसका कि नाम है ज्ञान असली लाइव, और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आज नेशनल स्पोर्ट्स डे है और कैसे जो गेम होता है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है और हमारी मेंटल हेल्थ के लिए भी। तो आज हम बताएंगे गेम से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो सबसे पहले बात करते हैं जो कि सबसे ज़रूरी वाला हम कह लें फैक्ट है, स्ट्रेस बस्टर, यानी कि भाई पढ़ाई का, करियर का, असाइनमेंट्स का, सभी का प्रेशर ये पूरी तरह ख़त्म करता है। यानी कि अगर आप दिन में 30 से 40 मिनट भी अगर आप खेल, दिन भर में कोई भी स्पोर्ट्स अगर सिर्फ आधे घंटे के लिए भी आप खेल लेते हैं ना, तो इट मींस कि आपकी बॉडी में खेलने से हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो आपके मूड को एकदम फ्रेश और चेयर अप कर देते हैं। एक रिसर्च बताती है कि जो भी लोग दिन, अगर हम डेली रूटीन में ना भी रखें तो डेली रूटीन में ना हो करके अगर एक वीक में 2 दिन 3 दिन या 4 दिन भी को आधे घंटे के लिए या 15-20 मिनट के लिए भी कोई भी स्पोर्ट्स अगर खेलते हैं, चाहे वो कैरम ही हो, लूडो ही हो, तो इससे उनकी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जिससे कि उनका स्ट्रेस जो होता है वो एकदम पूरी तरीके से रिलीज़ हो जाता है और वे फ्रेश फील करते हैं और उनके स्ट्रेस का जो पावर कह लें वो भी कम हो जाता है, यानी कि वो रिलैक्स रहते हैं, खुश रहते हैं। दूसरा आता है फैक्ट जो कि जुड़ा हुआ है कि अगर आप जिम जाए बिना भी अपनी बॉडी बनाना चाहते हैं और एक्स्ट्रा जो फैट हमारी बॉडी में हो जाता है, हम चाहते हैं ना कि एक्स्ट्रा फैट है, हेल्दी हैं, तो आप चाहते हैं कि आप फिट हो जाएं, तो अगर आप फिट होना चाहते हैं, स्टैमिना चाहते हैं, एनर्जी चाहते हैं और चाहते हैं कि आपको जिम में जाकर बहुत सारा पसीना भी ना बहाना पड़े, तो उसके लिए सबसे अच्छा और इंटरेस्टिंग बहुत ही अच्छा तरीका है कि ठंड में आप बैडमिंटन खेलिए। भाई ठंडक होती है तो देखिए हम बैडमिंटन खेलते हैं ना, कितनी एक अच्छी सी बॉडी में पूरी वार्म बॉडी हो जाती है, अच्छा लगता है हमें। सर्दियों में स्पेशली खेलना भी चाहिए क्योंकि सर्दियों में जब आप बैडमिंटन खेलते हैं तो ये सबसे अच्छी एक्सरसाइज भी होती है और हमारी बॉडी को वार्म रखने में भी मदद करती है। लेकिन अगर हम बात करें गर्मियों की, गर्मियों में हम क्या खेल सकते हैं, तो गर्मियों में आप फुटबॉल खेल सकते हैं। अगर आपको क्रिकेट खेलने का शौक़ है, तो अगर आपके और भी फ्रेंड्स हैं तो आप क्रिकेट खेल सकते हैं या जो भी स्पोर्ट्स आपको पसंद हो वो आप खेल सकते हैं। सिर्फ आधे घंटे स्पोर्ट्स खेलने से बहुत ही ज़्यादा आपकी बॉडी में फिटनेस आती है, स्पेशली उनके लिए जो कि जिसे होता है ना कि BP है या इस तरह की प्रॉब्लम है, तो उन्हें तो ज़रूर खेलना चाहिए क्योंकि कहते हैं ना कि BP ज़्यादातर कब बढ़ती है, जब आपको स्ट्रेस हो जाता है। अगर आप खेलेंगे, बिज़ी रहेंगे, तो इससे बार बार ऐसी चीज़ें नहीं होंगी, ये हमारी बॉडी को पूरी तरह फिट रखता है। दूसरी चीज़ होती है कि खेल कहीं ना कहीं हमें सिखाता है एक टीम स्पिरिट। एक टीम स्पिरिट होती है ना कि जैसे अकेले तो कोई भी चल सकता है लेकिन आपको किसी को साथ लेकर चलना है। जैसे हम क्रिकेट की बात कर लें तो 11 और 12 मेंबर्स की पूरी टीम होती है और जो टीम का कैप्टन होता है कहीं ना कहीं उसे पूरी टीम को लीड करना होता है और पूरी टीम को साथ लेकर चलना होता है, समझना होता है कि किस खिलाड़ी के मन में क्या चल रहा है, किसके मन में कैसी बातें हैं, पूरी तरीके से वो अपनी टीम को लीड करता है। तो खेल हमें सिखाता है कि मैच जो है वो अकेले नहीं जीता जाता, ये सबको साथ मिलकर काम करना पड़ता है और कहीं ना कहीं सबकी मदद से ही ऐसा हो पाता है। इसलिए फ्रेश हैंडल करना और क्विक डिसीजन लेना ये हमें गेम ही सिखाता है, एक तरीके से टीम वर्क सिखाता है कि किस तरीके से अगर 10 लोग अलग अलग, मतलब अलग अलग जगह से आए हैं, अलग अलग चीज़ों को मानते हैं, अलग अलग चीज़ों को मानने से मतलब है कि हो सकता है सबकी सोच अलग अलग हो लेकिन फिर भी हमें उन सभी को लेकर साथ चलना है। तो कहीं ना कहीं एक टीम स्पिरिट की जो भावना होती है वो स्पोर्ट्स हमें सिखाता है। सेकंड आता है कि ज़िंदगी में हर बार आपको जीत ही नहीं मिलती। स्पोर्ट्स हमें ये भी सिखाता है कि हारने के बाद कभी रोना नहीं चाहिए, अपनी कमियों को सुधारो और ये सोचो कि दोबारा कैसे जीतना है, यानी कि दोबारा पूरी तरीके से कोशिश कैसे करनी है। कहते हैं ना, नेवर गिव अप। नेवर गिव अप का जो एक एटीट्यूड होता है वो गेम सिखाता है। गेम में आपने देखा होगा ना कि कई बार हम कहते हैं ना कि अरे यार सचिन तेंदुलकर भी कभी 10 रन बनाकर आउट होते हैं, मास्टर ब्लास्टर कोहली भी कभी कभी अपनी पूरी इनिंग्स खेले बिना ही आउट हो जाते हैं, या हम बात करें अगर हमारे धुरंधर यानी कि MS धोनी की, तो वो भी कभी कभी ऐसा होता है कि जिस तरीके से सबको लगता है अरे आज तो धोनी सेंचुरी बनाएंगे, कभी कभी वो भी बिना सेंचुरी बनाए आउट हो जाते हैं। या कई बार टीम इंडिया जब मैच होता है तो ऐसा ज़रूरी तो नहीं होता है कि हमारी टीम हर मैच जीतती है, पर कहीं ना कहीं हर मैच के बाद उनमें जो भी चीज़ें होती हैं वो उन्हें दोबारा सुधारते हैं और फिर अगले मैच के लिए पूरी जी जान से कोशिश करते हैं। मास्टर ब्लास्टर अगर बात करें हमारे धोनी की यानी कि टीम इंडिया के कैप्टन, तो उन्होंने भी एक बार कहा था अपने एक इंटरव्यू में कि मैं हमेशा अपनी कमियों पर काम करता हूँ और जो भी मुझे लगता है कि मेरे अंदर कमी है मैं उसे अगली मैच से पहले सुधार लेता हूँ और अगली मैच में अपना 100% नहीं 200% देने की पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन कभी गिव अप नहीं करता। तो एक नेवर गिव अप का जो एटीट्यूड होता है वो हमें हमारा स्पोर्ट्स से सिखाता है कि नेवर गिव अप, कभी भी हारना नहीं चाहिए, बस अपनी कमियों को देखें, सुधारें और आगे बढ़ें। और दूसरा ये है कि आपने आजकल देखा होगा ना कि फ़ोन यानी कि रील्स स्क्रॉल करना तो भाई सभी कहीं ना कहीं करते हैं और कहीं ना कहीं हमारी डेली लाइफ का थोड़ा सा एक हिस्सा भी बन चुका है, लेकिन बताता है, एक रिसर्च बताती है कि लगातार फ़ोन देखने से जो ध्यान भटकता है उसे खेल ठीक करता है। ग्राउंड पर आपका फोकस सिर्फ बॉल या गोल पर नहीं होता, इससे आपका फोकस भी बढ़ता है। यानी कि कहने का सेंस ये है कि जो स्पोर्ट्स खेलते हैं, जो भी जो गेम खेलते हैं, उनका फोकस भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उनका फोकस जो होता है वो ग्राउंड पे होता है, उनके बॉल पे होता है, बैट पे होता है। तो ऐसे ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ बॉल और बैट के लिए ही काम आता है या ग्राउंड पर ही काम आता है, उनकी रियल लाइफ में यानी कि पर्सनल लाइफ में भी जो फोकस उनकी आदत पड़ जाती है ना जिस फोकस से रहने की, तो वो उनकी पर्सनल लाइफ में बातों में कामों में भी उन्हें काम आता है। कि ग्राउंड पर प्रैक्टिस करते करते जब उनका फोकस बढ़ जाता है तो वो कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, तो वो उनके फोकस में जल्दी आ जाती है। इसलिए स्पोर्ट्स फोकस भी बढ़ाता है। अगर आप डेली रूटीन से नहीं लेकिन वीक में 1-2 दिन या 3-4 दिन भी कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं तो इससे आपका फोकस भी बढ़ता है। इसीलिए कहते हैं कि यूथ्स को स्पेशली यानी कि पढ़ने वाले बच्चों को या फिर जो ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, उन्हें भी अपना स्ट्रेस रिलीज करने के लिए अगर रोज़ नहीं हो सकता तो वीक में 2 दिन या 3 दिन आप कोई स्पोर्ट्स को आधा घंटा ज़रूर दीजिए। इससे आपका स्ट्रेस भी रिलीज़ होगा, क्योंकि जो बाहर जाते हैं काम करते हैं उन्हें भी ऑफिस का स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस रिलीज होने से हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी और गेम खेलने से हमारा फोकस बढ़ेगा और कहीं ना कहीं हमारी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहती है। सो फिजिकली भी बहुत फ़ायदेमंद होता है गेम खेलना और मेंटली भी। भाई मुझे तो बहुत पसंद है, मैं तो आज भी अगर कभी जाती हूँ बाहर कहीं जाती हूँ, जैसे बाहर जाने का सेंस है कि किसी भी रिलेटिव के और हाथ में बैडमिंटन मुझे मिल जाता है, मेरे पास भी बैडमिंटन है, मैं कभी कभी खेल लेती हूँ, बॉल है, कभी दीदी के बच्चे आते हैं तो उनके साथ खेल लेती हूँ। तो कहीं ना कहीं ज़रूरी है कि थोड़ा सा स्पोर्ट्स को हम अपनी डेली लाइफ में शामिल करने की कोशिश करें। सो आई लिसनर्स, चलते हैं बहुत ही प्यारे से सॉन्ग की तरफ, सुनते हैं, इन्जॉय करते हैं बस यूं गए और यूं आए, और इस प्यारे से सॉन्ग के बाद मैं लेकर हाजिर होती हूँ आज की बॉलीवुड के गलियों का सफ़र। भाई आज है सैटरडे, सैटरडे इट मींस कि हमारा बॉलीवुड वाला डे। आज के दिन हम आपको बताते हैं कि बॉलीवुड में क्या कुछ चल रहा है, बॉलीवुड की गलियों में, यानी कि कौन सी फिल्म हिट है, कौन सी सुपर हिट है, किसने बॉक्स ऑफिस पे कितना बिजनेस किया, और साथ ही साथ बॉलीवुड की कुछ पॉजिटिव न्यूज़ भी कि किस एक्टर को कौन सा अवार्ड मिला है, किसने क्या अच्छा काम किया है। सो आज भी हमारे पास है बहुत कुछ, तो बॉलीवुड की गलियों से घूम कर आए हैं, बहुत कुछ साथ लाए हैं, लेकिन वो सब बताएंगे आपको इस प्यारे से सॉन्ग के उस पार। तो आइए सुनते हैं, इन्जॉय करते हैं, और आप बने रहिए आपके अपने बहुत ही प्यारे वाले शो में जिसका कि नाम है ज्ञानस्थली लाइव, और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। स्टे ट्यून्ड।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
3: बिल्कुल, गोंडा शहर की धड़कन, और गोंडा शहर की धड़कन का दिल धड़काने के लिए वापस आ गया है आपका अपना बहुत ही प्यारा और पसंदीदा वाला शो, जिसका कि नाम है ज्ञान असली लाइव, और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। तो आइए भाई, फटाफट से बिना देर करते हुए चलते हैं बॉलीवुड की गलियों में, कुछ देखते हैं कि हमें क्या मिल जाता है। ओके, तो आज सबसे पहले हमारी बॉलीवुड की गलियों से हमें जो मिला है वो है बहुत ही प्यारी सी एक न्यूज़ कह लें।

अवार्ड भी मिला है। ओके वाह, ये तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। अब आते हैं नेक्स्ट वाली न्यूज़ पर, जो कि है कि भाई हमारे बॉलीवुड के यंग स्टार यानी कि कार्तिक आर्यन, सुपरस्टार कार्तिक आर्यन को उनकी शानदार सक्सेस और यूथ आइकॉन होने के नाते राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने उन्हें राष्ट्रपति भवन में आयोजित एट होम रिसेप्शन में विशेष अतिथि के रूप में बुलाया, उन्हें आमंत्रित किया गया है। और युवाओं के लिए ये काफ़ी प्रेरणादायक खबर भी है क्योंकि कार्तिक आर्यन को ज़्यादातर यूथ आइकॉन माना जाता है और इस तरह राष्ट्रपति भवन में उनका बुलाया जाना ये बहुत बड़ी बात है राष्ट्रपति द्वारा। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाली न्यूज़ की तरफ, जो कि है कि भाई बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस यानी कि तब्बू ने नई दिल्ली में नेशनल अचीवर्स अवार्ड यानी कि एन ए के में उन्होंने मुख्य अतिथि यानी कि चीफ गेस्ट के रूप में शिरकत की। उन्होंने समाज में ब्लड डोनेशन कैंप लगाने वाले और साथ ही साथ में उन्हें जो कि असली हीरोज़ हैं और हमारी समाज के लिए बहुत सारे अच्छे काम करते हैं यानी कि ब्लड कैंप लगाते हैं और बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जिनसे कि हमारे समाज में एक नई दिशा आती है, उन्हें सम्मानित भी किया और समाज के प्रति पॉजिटिविटी भी फैलाई। मतलब उनका कहना था कि आज के दिन हमें उनका सम्मान करना चाहिए जो कि हमेशा समाज के लिए कुछ अच्छी चीज़ें करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाली न्यूज़ की तरफ, जो कि कुछ फिल्मों को लेकर के है। तो आपको बता दें कि अब टाइम आ गया है ये बताने का कि कौन सी हैं वो फिल्में जिन्होंने कि बॉलीवुड पे मचाया है धूम धड़ाका, क्योंकि अभी तक तो हमने आपको ये बताया कि हमारे किन किन एक्टर एक्ट्रेस को अच्छे अच्छे अवार्ड्स मिले हैं और किन्होंने बहुत अच्छा काम किया, जिसमें आपने जाना तब्बू जी के बारे में, कार्तिक आर्यन के बारे में, यामी गौतम और बहुत सारे ऐसे एक्टर और एक्ट्रेस। अब आते हैं कि वो कौन सी मूवीज़ हैं जिन्होंने कि बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रखा है। तो बता दूं सुपरस्टार यश की फिल्म टॉक्सिक ने बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर कमाई की है रिलीज़ के सिर्फ 3 से 4 दिनों में। जी बिल्कुल सही सुना आपने कि रिलीज़ के सिर्फ 3 से 4 दिनों के भीतर इस फिल्म ने कम से कम 165 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस किया है। मतलब आप मान सकते हैं, जिससे कि हम बता दें कि सारे थिएटर्स में ज़बरदस्त रौनक है। और नेक्स्ट जो आता है नाम वो है आवारापन 2। इमरान हाशमी की हालिया रिलीज़ आवारापन 2 को दर्शकों ने बेशुमार प्यार दिया है। यह फिल्म मात्र 11 दिनों में इसने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 140 करोड़ का आंकड़ा पार करके ये बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित भी हुई है। अब आते हैं नेक्स्ट वाली फिल्म पे, क्या जो कि है नई रिलीज़। चलिए आपको बताते हैं नई रिलीज़। तो नई रिलीज़ की अगर हम बात करें तो धड़क 2 के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ है। सिद्धांत चतुर्वेदी और तृप्ति डामरी धड़क 2 जो कि सिनेमाघरों में रिलीज़ होने के बाद अपने अपकमिंग OTT प्रीमियर के लिए सुर्खियों में है। यानी कि ये फिल्म भाई थिएटर्स में तो धूम मचाई चुकी है, लेकिन अब ये धूम मचाने वाली है OTT पे भी। प्रीमियर के लिए सुर्खियां बटोर रही है। सेंसिटिव व ऐसे कुछ इसमें सामाजिक टॉपिक्स भी होने वाले हैं, जो कि फिल्म को सोशल मीडिया और युवाओं का काफ़ी सपोर्ट भी मिल रहा है यंगस्टर्स का, क्योंकि ये फिल्म जो है वो OTT पे आने वाली है इस बार। तो कैसी आने वाली है, क्या होने वाला है, सभी जानने के लिए बहुत बहुत एक्साइटेड हैं। तो अब आते हैं नेक्स्ट वाली न्यूज़ पे, जो कि है कि भाई आज किस फिल्म ने बताएंगे आपको कि किस फिल्म की आज एनिवर्सरी है, यानी कि किस फिल्म ने कितने साल आज ही के दिन पूरे किए हैं और वो आज ही के दिन रिलीज़ भी हुई थी। लेकिन बताने से पहले आइए लिस्टनर्स चलते हैं भाई, एक प्यारा सा सॉन्ग सुन लेते हैं और सॉन्ग के उस पार वापस आते हैं आपसे और भी सारी बातें करने के लिए, क्योंकि अभी तो हमने बॉलीवुड की गलियों में सिर्फ कुछ ही दूर सैर की है, अभी तो बहुत सारा कुछ बाकी है, ऐसी बहुत सारी न्यूज़ बाकी हैं, बहुत सारी मस्ती बाकी है, तो वो सब करेंगे क्योंकि आज है सैटरडे और सैटरडे हमारा जो दिन होता है वो बहुत ही प्यारा सा होता है, मस्ती का दिन। सैटरडे यानी कि मस्ती तो होगी, धमाल भी होगा, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग। मिलती हूँ आपसे सॉन्ग के उस पार और भी बहुत सारी खबरें लेकर के, बहुत सारी बातें लेकर के बताने के लिए आपको कि भाई क्या कुछ है हमारी बॉलीवुड की गलियों में, और तो बताएंगे, थोड़ा सा करें इंतज़ार और रहें बेकरार। तो आइए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग। स्टे ट्यून्ड।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आपका अपना बहुत ही प्यारा वाला शो जिसका नाम है ज्ञान स्थली लाइव, और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। तो आइए बढ़ते हैं, इससे पहले कि आगे बढ़ें और बताएं हम कि आगे हमारे पास क्या है, आइए सीधे चलते हैं चैट बॉक्स में और देखते हैं कि हमारे कौन कौन से लिसनर हैं जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सो आइए सबसे पहले मैं यहाँ देख रही हूँ महेंद्र जी को, जो कि हमें राजस्थान से सुनते हैं, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून महेंद्र जी, कैसे हैं आप और क्या हालचाल हैं आपके, बताएं ज़रूर। तो लिसनर्स आइए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब हमारे पास जो है वो है बहुत ही अच्छी सी एक न्यूज़ कह लें या कह लें कि आज ही के दिन कौन सी मूवी रिलीज़ हुई थी और उसके कितने साल कंप्लीट हुए हैं, अब हम आपको ये बताने वाले हैं। सो आइए बताते हैं सबसे पहले कि भाई गंगा जल तो सभी ने देखी होगी, अजय देवगन और प्रकाश झा की बेहतरीन फिल्म जो की थी पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म गंगाजल, आज ही के दिन रिलीज़ हुई थी, यानी कि 29 अगस्त को 2003 को रिलीज़ हुई थी। आज इस फिल्म ने अपनी रिलीज़ के पूरे 23 साल पूरे कर लिए हैं। इसका आंखें निकाल के गोटियां खेलता हूँ डायलॉग आज भी रील्स पे ट्रेंड करता है। हाँ भाई, ये तो बिल्कुल सही है कि मतलब ऐसे कुछ ऐसे डायलॉग्स होते हैं ना एक्टर और एक्ट्रेस के जो बिल्कुल वायरल हो जाते हैं, तो ये भी मुझे लगता है कि कुछ उन्हीं में से था जो बिल्कुल वायरल हो गया था, और बहुत ज़्यादा आज भी कहीं ना कहीं मीम्स बनते हैं इस पर, बहुत सारी रील्स बनती हैं और बहुत पसंद भी किया जाता है। तो आज ही के दिन रिलीज़ हुई थी और उसने पूरा किए हैं अपने पूरे 23 साल आज के दिन। और जो कि नेक्स्ट मूवी हमारे पास है उसने 18 साल पूरे किए हैं, जो कि है रॉक ऑन, फरहान अख्तर और अर्जुन रामपाल और श्रद्धा कपूर की डेब्यू फिल्म। तो बता दें कि ये फरहान अख्तर और अर्जुन रामपाल की फिल्म थी और श्रद्धा कपूर की डेब्यू फिल्म थी, म्यूज़िकल ड्रामा फिल्म जो की थी रॉक ऑन। महेंद्र जी लिख रहे हैं बहुत अच्छे हैं मैम, आप कैसे हो, मैं भी बहुत अच्छी हूँ महेंद्र जी। सो ये थी फिल्म रॉक ऑन, और आज ही के दिन 29 अगस्त 2008 को रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म के गाने और दोस्ती की कहानी ने यूथ्स के बीच एक अलग ही क्रेज़ पैदा कर दिया। बिल्कुल भाई, रॉक ऑन तो बहुत ही अच्छी थी। और नेक्स्ट जो आती है जिसने की पूरे किए हैं 12 साल, तो वो फिल्म का नाम है राजा नटवरलाल। इमरान हाशमी की ये सस्पेंस फिल्म थी राजा नटवरलाल, आज ही के दिन इसने 29 अगस्त 2014 को ये रिलीज़ हुई थी, और इसके गाने आज भी लोगों में बहुत ही अच्छे प्लेलिस्ट किए जाते हैं और बहुत पसंद किए जाते हैं। इस फिल्म ने भी पूरे किए हैं आज पूरे 12 साल। तो ये थी कुछ ऐसी फिल्म जिनके बारे में हमने आपको बताया कि जिन्होंने आज ही के दिन अपने आज ही के दिन ये रिलीज़ हुई थी और आज ही के दिन इन्होंने अपने कई साल पूरे कर लिए हैं। अब आते हैं नेक्स्ट वाली और हमारी प्यारी सी फिल्म पे, जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं, जो कि है मेट्रो। मेट्रो इन दिनों अनुराग वासु की ये बहुत ही मच अवेटेड और एंथोलॉजी म्यूजिकल फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है, जो आज के दौर में मॉडर्न रिश्तों और प्यार की कहीं ना कहीं एक ऐसी, जैसे कहते हैं ना कि आजकल के जो मॉडर्न रिश्ते हैं और उसमें प्यार की जो एक बहुत ही प्यारी, कहीं ना कहीं एक प्यारी कह लें या कह लें कि बहुत सारी तकलीफ़ों के बीच, बहुत सारी सस्पेंस के बीच और बहुत सारी क्रिटिकल थिंकिंग के बीच ये दिखाया गया है कि रिश्ते आखिर होते कैसे हैं। बेहद ही खूबसूरती से दिखाया गया है। इसमें आदित्य राय कपूर और सारा अली खान मेन लीड में है। तो फिल्म का नाम है मेट्रो इन दिनों। ओके, और इसी के साथ लिख रहे हैं महेंद्र जी, राजा नटवरलाल 2014 कुणाल देशमुख के निर्देशन में बनी एक क्राइम थ्रिलर फिल्म थी, जिसमें इमरान हाशमी ने एक शातिर जालसाज कॉनमैन की भूमिका निभाई थी। बिल्कुल सही कहा आपने महेंद्र जी, ये वही फिल्म है। तो आइए लिसनर्स, अब चलते हैं और आगे आपसे बातें करते हैं, आगे हमारे पास और भी कई सारी चीज़ें हैं। 2014 के में रिलीज़ हुई थी, बिल्कुल सही कहा आपने, और डेट आज ही की थी, यानी कि 29 अगस्त। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं, हमने आपको बताया अभी अभी मेट्रो के बारे में, लेकिन हमारी न्यूज़ जो है भाई वो यहाँ ख़त्म नहीं होती है, हमारे पास अभी और भी चीज़ें हैं आपको बताने के लिए। तो कई बार होता है ना कि फिल्मों की जब भी हम बात करते हैं, जब भी बात करते हैं फिल्म लाइन की, बॉलीवुड की, तो उसमें हमेशा यही कहा जाता है कि फिल्म का एक जो बजट है, ओके हमने पहली फिल्म थिएटर में यही देखी थी। ओके महेंद्र जी, जब गांव छोड़कर गए थे सूरत, ओके, यानी कि सूरत जाने से पहले आपने पहली फिल्म थिएटर में यही देखी थी, ओके। हाँ, ऐसा होता है कि जब भी हमने कोई पहली फिल्म थिएटर में देखी होती है ना, तो वो हमें हमेशा याद रह जाती है। अगर मैं बताऊं तो मैंने कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है ऋतिक रोशन जी की मैंने पहली बार थिएटर में देखी थी, वो पहली ही मूवी थी आई थिंक मेरी जो मैंने थिएटर में देखी थी, कहो ना प्यार है, बहुत ही प्यारी फिल्म थी। सो आइए लिसनर्स, अब चलते हैं, बताते हैं आपको कि बॉलीवुड में जब भी किसी फिल्म की बात होती है, सेट की बात होती है या एक्टर एक्ट्रेस की बात होती है, तो सबसे पहले हमारे मन में जो एक बात आती है वो यही आती है कि फ़िल्म का बजट, यानी कि जितनी बड़ी जितना बड़ा फिल्म का बजट होगा कहीं ना कहीं उतनी ही अच्छी फिल्म, उतना ही अच्छा सेट होगा, उतना ही अच्छा क्रू होगा, उतना ही अच्छा क्रू होगा और उतनी ही अच्छी हमारी कहीं ना कहीं फिल्म बनेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि छोटे बजट में भी कई सारी अच्छी फिल्म बन सकती हैं, जो कि है हनुमान अंश की फिल्म, जो कि बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर रही है, जो कि छोटे बजट की ही फिल्म है। मैं आपको बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ 1.8 और 2 करोड़ के बेहद छोटे बजट में बनी फिल्म भरती प्रधान फिल्म हनुमान अंश ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया। वर्ड ऑफ माउथ, जनता की तारीफ के दम पर इस फिल्म ने अब तक करीब 12 करोड़ रुपए की बम्पर कमाई की है और कहीं ना कहीं बहुत ही छोटे से बजट में ये फिल्म बनी है, पर इसने बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं अभी तक बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है और इस बात को साबित किया है कि कहीं ना कहीं छोटे बजट में बनी हुई फिल्में भी बहुत अच्छी हो सकती हैं, जो कि है हनुमान अंश। तो बहुत ही प्यारी ये फिल्म है। आइए अब चलते हैं लिसनर्स, सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, एंजॉय करते हैं। बस यूं गए और यूं आए, आप सुनते रहिए आपका अपना बहुत ही प्यारा वाला शो जो कि है ज्ञानश्री लाइव, और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। स्टे ट्यून्ड।

0: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
3: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आपका अपना बहुत ही प्यारा वाला शो जिसका नाम है ज्ञान असली लाइव, और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। तो भाई आज के लिए हमारा जो समय है, जो घड़ी है, उसने कह दिया है कि हो गया है टाइम आपसे बाय-बाय करने का, क्योंकि आज जाएंगे फिर ही तो हम कल फिर से आएंगे। बिल्कुल, कल फिर से आएंगे कुछ नया, कुछ खास, कुछ ज़बरदस्त लेकर के। ओ सॉरी, कल नहीं, मंडे को, क्योंकि संडे को होता है हमारा वीक ऑफ यानी कि छुट्टी। तो मिलेंगे मंडे को आपसे बहुत सारी अच्छी अच्छी बातों के साथ। तो बहुत कुछ आपसे शेयर करना है, बहुत कुछ आपको बताने के लिए मिलेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, ज़बरदस्त रहिए और सुनते रहिए ज्ञानस्थ रेडियो 89.6 FM को। और तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए लिसनर्स, मिलती हूँ आपसे आपके अपने बहुत ही प्यारे वाले शो सुन सहेली में। तब तक के लिए बाय बाय।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: सेहत सही लाभ कई, शुरू होने जा रही एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम, सीखेंगे सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार, टीबी हाथी पांव जैसी बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे, बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। अब खत्म हुआ इंतजार, आ गई 1 फरवरी जब सुन पाएंगे आप ये नई कड़ी। सुनना ना भूलिए सेहत सही लाभ कई, सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर।
2: स्वागत है साथियों, मैं आपका अपना आरजे अदनान लेकर हाजिर हूँ एक बिल्कुल नए और जरूरी विषय के साथ। आज सुबह स्टूडियो आते हुए ठंड ने तो भैया हालत खराब कर दी। सोच रहा था कि ये ठंड जितनी सुहावनी लगती है उतनी ही मुश्किलें लेकर भी आती है। तभी याद आया कौन है हमारे गांव की सर्दियों की असली डॉक्टर। अरे भाई, हम सभी की टीकन भाभी। बस तुरंत बुला लिया उन्हें हमारे अपने प्रोग्राम सेहत सही लाभ कई में। तो भाभी, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में।
3: अरे धन्यवाद भैया, और सुनने वाले सभी भाई बहनों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। अरे इस प्रोग्राम से तो कितने लोग अब जागरूक हो रहे हैं। बिल्कुल सही बोले भैया आप, सर्दी जितनी मजेदार दिखती है ना उतनी ही चालाक भी होती है। जरा सी लापरवाही हुई नहीं कि सर्दी, जुकाम, खांसी, हलचल, बुखार सब कुछ एक साथ दस्तक दे जाती है।
2: बिल्कुल भाभी, मैं आज आते वक्त गांव के रास्ते से गुजर रहा था तो देखा कई बच्चे नाक बहाते घूम रहे थे, कोई खांस रहा था, कोई बीमार लग रहा था। लोग क्यों सर्दियों में इतना ज्यादा बीमार पड़ जाते हैं, क्या इसके बारे में कुछ बताइएगा?
3: बिल्कुल, देखिए आरजे भैया, हमारे यहाँ सर्दी कोई आम मौसम नहीं, ये हमारे गांव में कई तरह की बीमारियां लेकर आता है और सबसे ज्यादा असर पड़ता है छोटे बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और कमजोर शरीर वाले लोगों पर। छोटे बच्चों को तो ऐसी सर्दियों में बहुत जल्दी सांस फूलना, सीने में घरघराहट, तेज बुखार, ऐसी दिक्कतें पड़ जाती है। सर्दियों में बीमारी बढ़ने के पीछे कई कारण हैं। एक तो सब लोग ठंड से बचने के लिए एक कमरे में ठूंस कर बैठ जाते हैं, खिड़की दरवाजा बंद। अब खांसने छींकने वाला एक भी हो तो वायरस सब में फैल जाता है। और दूसरा, ठंडी हवा नाक और गले की परत को सुखा देती है जिससे शरीर की सुरक्षा कम हो जाती है। ऊपर से धुआं, चूल्हा, लकड़ी, गोबर का कंडा, ये सब तो परिवारों में आम बात है। धुआं सांस की नली में जाकर और दिक्कत कर देता है।
2: बिल्कुल सच कहा भाभी आपने, कई घरों में तो सुबह सुबह चूल्हे का ऐसा धुआं होता है कि आंखें लाल हो जाए और बच्चे वहीं खेलते रहते हैं। लेकिन क्या सिर्फ धुआं ही इसकी वजह है?
3: नहीं भैया, एक और बड़ी वजह है, ठंड में लोग पानी कम पीते हैं। शरीर में पानी कम होगा तो शरीर कमजोर होगा, फिर कब्ज, सिर दर्द, उल्टी, दस्त, ये सारी बीमारियां बढ़ेंगी। और सर्दियों में लोग फल सब्जियां भी कम खाते हैं। अरे ठंड में कच्चा फल मत खा, सर्दी पकड़ लेगा, ये पुरानी सोच आज भी है, जबकि असलियत उल्टी है। संतरा, आंवला, अमरूद जैसे फल शरीर को रोगों से लड़ने की ताकत देते हैं।
2: अरे वाह भाभी, ये तो बड़ी काम की बात बताई आपने। अब जरा ये भी बताइए कि सर्दियों में गांव में कौन कौन सी बीमारियां सबसे ज्यादा फैलती हैं?
3: आरजे भैया, सर्दियों में जो रोग सबसे पहले पकड़ता है वो है श्वास रोग। सर्दी, जुकाम, खांसी, गले में खराश, बच्चों में तेजी से फैलते हैं ये बीमारियां। और अगर ध्यान न रखा जाए तो ये साधारण जुकाम निमोनिया में बदल जाता है।
2: निमोनिया? भाभी ये तो बहुत खतरनाक बीमारी होती है ना?
3: हाँ, सबसे खतरनाक। छोटे बच्चों में अगर ये लक्षण दिखे, जैसे छाती धस रही हो, सांस तेज चल रही हो, बच्चा दूध ना पी रहा हो, बुखार उतर ना रहा हो, तब मजाक नहीं करना चाहिए। तुरंत PHC या CSC या जिला अस्पताल ले जाना चाहिए। और एक और बड़ी समस्या है दमा और COPD का बढ़ना। गांव की महिलाएं तो घर के अंदर चूल्हे का धुआं झेलती रहती हैं। ठंड में जब धुआं कमरे में भर जाता है तो सांस फूलना, घरघराहट सब बढ़ जाता है।
2: तो भाभी, बहुत लोग सोचते हैं कि दस्त तो गर्मियों में होते हैं, सर्दियों में कैसे? इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगी?
3: अरे वाह, ये तो सोचने की बात है, पर सच्चाई ये है कि हमारे प्रदेश के कई जिले में जनवरी में दस्त चरम पर होते हैं, क्योंकि लोग हाथ कंध होते हैं, पानी कम पीते हैं, ठंड में पानी उबालना छोड़ देते हैं और नतीजा बच्चों में दस्त, उल्टी और डिहाइड्रेशन।
2: तो भाभी, जो जोड़ों का दर्द है तो लगभग हर गांव में सुना जाता है, इसके पीछे क्या वजह है?
3: हाँ हाँ बिल्कुल, सर्दियों में तो जोड़ों का दर्द मानो वर्षा ऋतु में मेंढक की तरह उछल उछल कर सामने आता है। बुजुर्ग लोग, खासकर अर्थराइटिस वाले, कमर दर्द वाले, ये लोग तो बहुत परेशान रहते हैं। सर्दियों में त्वचा की समस्या भी जोर पकड़ती है, सूखी त्वचा, फटी एड़ियां, बच्चों के गालों पर रैशेस, गर्म पानी से बार बार नहाना, तेल या क्रीम ना लगाना, इन सबसे दिक्कत बढ़ती है।
2: तो भाभी, बीमारियां तो समझ में आ गई, लेकिन ग्रामीण इलाकों में सर्दियों के दौरान कौन कौन सी अलग चुनौतियां आती हैं, जरा इसके बारे में बताइए।
3: बहुत सारी आरजे भैया। देखिए, गांव में कई घर छोटे होते हैं जिनमें 6 से 10 लोग एक ही कमरे में सोते हैं, खिड़की बंद, धुआं अंदर और ठंड बाहर, इससे बच्चों में निमोनिया बढ़ जाता है। कई घरों में बच्चों और बुजुर्गों के पास गर्म कपड़े नहीं होते हैं, ऊपर से सर्दियों की धुंध। अब अस्पताल दूर हो, सड़कें सुनसान हो और रात के समय कोई वाहन न मिले तो लोग घर पर ही इलाज टालते रहते हैं और बीमारी बढ़ जाती है। पानी भी कई जगह दूषित होता है। सर्दियों में लोग सोचते हैं कि ठंड है, पानी तो साफ ही होगा, लेकिन सच्चाई इसके उलट है।
2: और भाभी, जागरूकता की कमी भी एक बड़ी वजह है ना?
3: बिल्कुल भैया, कई बार परिवार तेज सांस लेने को ठंड लग गई है, नजर लग गई है या दूध बैठ गया है समझकर देर कर देते हैं, जबकि यही वो बीमारी है जहां देरी का मतलब खतरा है।
2: तो टीकन भाभी, अब जरा ये भी बताइए कि सर्दियों में शरीर को बीमारी से लड़ने की ताकत कैसे मिले? लोग कहते हैं कि भाई ठंड में पेट भारी रहता है, सब्जी भाजी कम खाई जाती है, क्या सच में खान पान से कोई फर्क पड़ता है?
3: हाँ अर्जे भैया, सर्दियों में खान पान ही तो असली ढाल है। अगर खाना सही है तो बीमारी पास भी नहीं आती, और हम गांव वाले तो इतने धनवान हैं कि हमारे पास बाजरा, सरसों, बथुआ, मेथी सब कुछ है, बस उपयोग सही करना चाहिए। देखिए, सर्दियों में गर्मी देने वाले और ताकत बढ़ाने वाले भोजन की बहुत जरूरत होती है, जैसे बाजरा की रोटी, बाजरा की खिचड़ी, मक्का, ज्वार, ये शरीर को लंबे समय तक गर्म रखते हैं। दालें जैसे मूंग, मसूर, चना, उड़द, ये शरीर की मरम्मत करते हैं और संक्रमण से लड़ने में भी मदद करते हैं। सब्जियां भी खूब मिलती है, गाजर, चुकंदर, मूली, मेथी, बथुआ, सरसों का साग, पालक, ये सब विटामिन ए, सी और आयरन से भरे होते हैं। और फल की बात करूं तो अमरूद, नींबू, संतरा और आंवला, ये तो सर्दियों के असली पहरेदार हैं। ये शरीर के प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं।
2: लेकिन भाभी, हमारे गांव में तो बहुत लोग कहते हैं कि संतरा नींबू खाने से सर्दी बढ़ जाती है, क्या ये बात सही है?
3: अरे ये तो सबसे बड़ी गलतफहमी है, संतरा और आंवला खाने से सर्दी नहीं होती, बल्कि सर्दी से लड़ने की ताकत मिलती है। ये फल विटामिन सी से भरपूर होते हैं। समस्या तब होती है जब लोग ठंड में बहुत ठंडा पानी पी लेते हैं और ठंडी चीजें हवा में खड़े होकर खा लेते हैं।
2: और पानी, लोग सर्दियों में पानी बहुत कम पीते हैं, इसको लेकर क्या कहेंगी?
3: बस इसी से तो बीमारी बढ़ती है। ठंड में लोग प्यास महसूस नहीं करते, लेकिन शरीर को पानी उतना ही चाहिए होता है जितना कि गर्मियों में। पानी कम पीने से शरीर में सूखापन यानी डिहाइड्रेशन होता है, इससे सिर दर्द, चक्कर आना, कब्ज और थकान होती है। मैं हमेशा कहती हूँ कि सर्दी में पानी मत भूलो, वरना बीमारी को दावत दे दोगे।
2: भाभी, लोग अक्सर भाप और घरेलू नुस्खे को इलाज मान लेते हैं, क्या ये सही है?
3: देखिए, भाप लेना हल्के सर्दी जुकाम में तो अच्छा है। अदरक और तुलसी की चाय आराम देती है, अजवाइन का पानी फायदे का है, लेकिन अगर बच्चा सांस तेज ले रहा हो, छाती धस रही है, बुखार 2-3 दिन से उतर नहीं रहा या बच्चा दूध नहीं पी रहा, तो भाप नहीं, डॉक्टर चाहिए, देरी जानलेवा हो सकती है।
2: भाभी, सर्दियों में कौन कौन सी गलत फहमियों से गांव में सबसे ज्यादा नुकसान होता है, यानी कौन सी गलत फहमियां ऐसी हैं जो सबसे ज्यादा नुकसान करती हैं?
3: चलिए भैया, आज रेडियो पर ही 5 बड़े मिथकों का पोस्टमार्टम कर लेते हैं। पहला मिथक, ठंडी हवा से सर्दी होती है, जबकि सच ये है कि सर्दी वायरस से होती है। ठंड सिर्फ वायरस को फैलाने में मदद करती है। दूसरा मिथक, अमरूद संतरा खाना मना है, जबकि सच ये है कि ये फल सर्दी जुकाम से बचाते हैं। तीसरा मिथक, सर्दियों में पानी कम पीना चाहिए, जबकि ये सबसे खतरनाक आदत है, निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन बढ़ता है इससे। चौथा मिथक, शराब शरीर को गर्म रखती है, जबकि सबसे खतरनाक बात तो ये है कि ये शरीर का तापमान और तेजी से गिरा देती है। और पांचवा मिथक, घर की दवा भाप काढ़ा सब ठीक कर देगा, जबकि असलियत में ये हल्की बीमारी में तो चलेगा, लेकिन गंभीर सांस की तकलीफ, भाई इसे मजाक मत समझिए, जाकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर या किसी नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर को दिखाइए।
2: भाभी, अब इतना सब तो जानकर लग रहा है कि सर्दियों में बहुत ही संभल कर चलना पड़ेगा, लेकिन परिवार क्या क्या करे जिससे कि बीमारी ना हो, जरा इसके बारे में भी बताइए।
3: आरजी भैया, परिवार की सावधानी ही असली दवाई है। देखिए, सबसे पहले बच्चों और बुजुर्गों को गर्म रखें। कई घरों में बच्चों के पास सिर्फ एक पतला स्वेटर होता है, रात में ठंडी हवा से पूरा शरीर ठंडा हो जाता है। मैं हमेशा कहती हूँ, टोपी, मोजा, मफलर, ये सर्दियों में जीवन रक्षक है। दूसरा ये कि घर का धुआं कम करें, चूल्हा जलाते समय एक खिड़की जरूर खुला रखिए, धुआं बाहर जाए तो फेफड़े बचे। तीसरा ये कि हाथ धोना मत छोड़िए, सर्दियों में दस्त भी बहुत होते हैं हाथ ना धोने से। खाना बनाने से पहले, सौंच जाने के बाद, बच्चों को खिलाने से पहले हाथ जरूर धोएं। चौथा ये कि टीकाकरण जरूर करवाइए, खासकर मीजल्स, निमोनिया, जहां उपलब्ध हो फ्लू टीके बच्चों को बड़े जोखिम से बचाते हैं। और आखिरी ये है कि खतरे के संकेत को पहचानिए, अगर बच्चे में सांस जोर जोर से चले, छाती धसे, दूध ना पिए, लगातार तेज बुखार रहे, तो देरी मत करिए, सीधे PHC या CHC या 108 एम्बुलेंस।
2: तो भाभी, सर्दियों में बीमारी रोकना मुश्किल है या आसान?
3: रोकथाम सबसे आसान है आरजे भैया, बस आदतें बदलनी होंगी। थोड़ा गर्म कपड़ा, थोड़ा साफ सफाई, थोड़ा अच्छा खान पान और बीमारी आधी हो जाएगी।
2: तो टीकन भाभी, आपने अभी तक इतनी बढ़िया जानकारी दी कि मुझे खुद भी महसूस हो रहा है कि हमारी छोटी छोटी लापरवाहियां कैसे बड़ी बन जाती है। लेकिन भाभी, क्या आपके पास कोई असली कहानी है, कोई ऐसा किस्सा जो हमारे श्रोताओं के दिल तक पहुंचे?
3: हाँ अर्जी भैया, और मैं चाहूंगी कि आज पूरा इलाका इसे सुने, ताकि किसी दूसरे परिवार के साथ वो गलती ना हो जो इस परिवार ने की। हमारे पड़ोस के गांव की बात है, एक परिवार था जिनकी 5 साल की बिटिया गुड़िया सर्दियों की एक ठंडी रात को तेज सर्दियां सर्दियों की एक ठंडी रात को तेज सर्दी जुकाम में पड़ गई। शाम तक बस नाक बह रही थी, हल्की खांसी थी। माँ ने सोचा, अरे सर्दी ही तो है, अदरक वाला काढ़ा दे देते हैं। रात को गुड़िया को तेज बुखार हो गया, सांस भी तेजी से चलने लगी। लेकिन परिवार ने सोचा, सुबह दिखा देंगे, अभी तो रात है, धुंध भी है, कहाँ जाएंगे। सुबह 5 बजे तक उसकी छाती धसने लगी, सांस इतनी तेज कि पूरा पेट ऊपर नीचे हो रहा था। जब अस्पताल लाए तो हालत बहुत गंभीर थी, निमोनिया पकड़ चुका था उसे। चिकित्सकों ने बहुत मेहनत की, लेकिन आरजे भैया, कभी कभी कुछ मिनटों की देरी भी जिंदगी भर का दर्द बन जाती है। गुड़िया बच ना सकी। आज भी उस परिवार की माँ रोते हुए कहती है, काश हम रात में ही अस्पताल जाते, काश हम समझ जाते कि सांस की तकलीफ मजाक नहीं होती। आरजे भैया, ये कहानी इसलिए सुनाई कि पूरे गांव को समझ में आ जाए कि सर्दियों में बच्चा सांस तेज ले, खाए पिए नहीं, छाती धसे, तो 1 सेकंड भी मत रुकिए।
2: भाभी, सच कहूं तो ये कहानी सुनकर मन भारी हो गया, लेकिन शायद जरूरी भी है ताकि लोग जागें। अब बताइए कि ऐसे स्थिति में ग्रामीण परिवारों की मदद कौन करता है, कौन कौन हमारी सेहत की इस लड़ाई में साथ है?
3: बहुत लोग आरजे भैया, बहुत लोग हैं। ये लड़ाई अकेले कोई नहीं जीत सकता। सर्दियों में स्वास्थ्य की सुरक्षा पूरे समुदाय की साझेदारी से होता है। सबसे पहले तो सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था सबसे नजदीकी सहारा है। हमारे PHC, CHC, जिला अस्पताल और आयुष्मान आरोग्य मंदिर, यहाँ डॉक्टर, ANM, CHO, नर्स और दवाइयाँ सब 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध रहते हैं। अब सरकार निमोनिया, डायरिया, अस्थमा, TB जैसी बीमारियों के लिए समयबद्ध इलाज देती है। बच्चों का पूरा टीकाकरण यही होता है। और सबसे अच्छी बात, अधिकांश सेवाएं बिल्कुल मुफ्त है। दूसरा ये कि 108 एम्बुलेंस सर्दियों का जीवन रक्षक। अगर बच्चा सांस नहीं ले पा रहा, छाती धस रही हो, तेज बुखार हो या बुजुर्ग की सांस फूल रही हो, तो तुरंत 108 पर कॉल कीजिए। एम्बुलेंस घर से लेके जाती है, ऑक्सीजन देती है और सुरक्षित अस्पताल में पहुंचाती है। कई जाने सिर्फ इसलिए बची क्योंकि परिवार ने समय पर 108 बुला ली। तीसरा ये है कि आशा, ANM और CHO गांव के असली सैनिक हैं। ये लोग घर घर जाकर टीकाकरण, पोषण, सर्दी जुकाम में सलाह, गर्भवती की जांच, नवजात की

0: हाल खतरों के संकेत सब बताते हैं। सर्दियों में उनकी भूमिका और भी बढ़ जाती है। आशा बहने रात में भी परिवार को अस्पताल ले जाने में मदद करती हैं।
1: और कुछ ऐसे कोई साथी जो हमारे गांव वालों की मदद कर सकते हैं, क्या उनके बारे में भी बताएंगी?
0: हाँ हाँ, क्यों परेशान हो रहे हैं, आपका भी नाम ले लेती हूँ। श्रोताओं, हमारा सामुदायिक रेडियो, आरजे भैया आपके जैसे लोग, आपकी आवाज, ये भी बड़ी ताकत है। रेडियो वो जानकारी देता है जो कहीं नहीं पहुंचती। दूर दराज गांव, खेत में काम करती महिलाएं, बुजुर्ग सब रेडियो पर भरोसा करते हैं। सर्दियों में रेडियो टीकाकरण की तारीख, 108 की जानकारी, सर्दी खांसी के खतरे, पोषण सलाह, स्वच्छता सब सही समय पर लोगों तक पहुंचाता है। और सबसे प्राथमिक सहारा और आखिरी परिवार और समुदाय। आरजे भैया, घर वही है जहां बीमारी का पहला वार होता है और पहला बचाव भी परिवार करे। बच्चे को टोपी मोजे पहनाना, गर्भवती महिलाओं को गर्म कपड़े देना, कमजोर बुजुर्गों को धूप में बैठाना, घर में धुआं कम करना, हाथ धोना और गर्म खाना देना, और इन सबसे जरूरी बात कि बीमारी में देरी ना करना।
1: तो भाभी, अब मैं समझ रहा हूँ कि सर्दियाँ सिर्फ ठंड नहीं लाती, स्वास्थ्य की पूरी परीक्षा लाती हैं। लेकिन हमारे सुनने वालों के लिए एकदम सरल भाषा में एक अंतिम संदेश जो आप देना चाहें?
0: प्यारे भाइयों बहनों, सर्दियाँ हर साल आएंगी, लेकिन बीमारी हर साल ना आए, ये आपके हाथ में है। याद रखिए, सर्दी जुकाम को हल्का ना ले, तेज सांस चलना खतरनाक है, दूध ना पीने वाला बच्चा तुरंत अस्पताल ले जाएं, गर्म कपड़े जीवन बचाते हैं, स्वच्छता दस्त और संक्रमण रोकती है, अच्छा भोजन प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, फल फूल रोगों से बचाते हैं। घर की दवा हल्की बीमारी में ठीक है, पर रात भर इंतजार जिंदगी ले सकता है। आरजी भैया, मैं हर परिवार से कहना चाहती हूँ कि जैसे आप अपने खेत की फसल को ठंड से बचाते हैं, वैसे ही अपने बच्चों और बुजुर्गों को भी बचाइए। सही जानकारी और सही समय पर कदम मिलकर देगा बचाओ।
1: वाह भाभी, आज तो आपने पूरा ज्ञान दे दिया। और श्रोताओं, याद रखिए, सर्दी का मौसम जितना खूबसूरत है उतनी ही सावधानी भरा भी। आप सभी सुरक्षित रहे, गर्म रहे, जागरूक रहे। कल फिर मिलेंगे एक नए स्वास्थ्य विषय के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने सामुदायिक रेडियो से जुड़े रहिए। पर जाने से पहले लेंगे सेहत की शपथ। तो अब वक्त आ गया है शपथ लेने का। सभी खड़े हो जाएं और हमारे साथ शपथ लें। हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को
2: प्राथमिकता देंगे,
1: क्योंकि सेहत ही असली धन है।
2: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं
1: और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे
2: ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे।
1: महिलाओं बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
2: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा
1: तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई। गर्भ निरोधक के विकल्प जानने और उनका उपयोग करने से परिवार की आर्थिक स्थिति कैसे बेहतर हो सकती है। जब लड़कियों और महिलाओं को अपने सभी विकल्पों की जानकारी होती है तो वो अपने प्रजनन से जुड़े फैसले खुद ले सकती हैं। इससे उन्हें अपनी शिक्षा और सपनों को पूरा करने का मौका मिलता है। जब कोई दंपति परिवार को देर से शुरू करते हैं तो उनके पास पैसे बचाने का समय होता है, जिससे वो आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। जब माँ अपने बच्चों के बीच पर्याप्त अंतर रखती हैं तो उनका स्वास्थ्य बेहतर रहता है और इलाज पर कम खर्च होता है। इससे परिवार की बचत बढ़ती है और भविष्य सुरक्षित होता है। आपको अपने शरीर और स्वास्थ्य से जुड़े फैसले लेने का पूरा हक है। आज ही अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और सही जानकारी पाएं। फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है जो मच्छरों के काटने से फैलती है और इसका असर सालों तक रह सकता है।
3: पैरों में सूजन, बुखार, थकावट, ये हो सकते हैं फाइलेरिया के लक्षण, लेकिन घबराइए मत, बचाव मुमकिन है।
1: हर साल एक बार खाओ दवाई प्यार से, फाइलेरिया दूर भगाओ, स्वस्थ जीवन अपनाओ। फाइलेरिया की दवा सरकार की तरफ से बिल्कुल मुफ्त दी जाती है। ये दवा सुरक्षित है बच्चे बड़े बूढ़े सभी के लिए।
3: बस याद रखिए, जब आपके गांव या मोहल्ले में स्वास्थ्य कार्यकर्ता आए तो दवा जरूर लें और दूसरों को भी दिलवाएं।
1: फाइलेरिया से डरना नहीं, दवाई से लड़ना है। एक छोटी गोली सेहत में बड़ी जीत। आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं। क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमे एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 33 95 84। अब बारी है आपकी।

बीते साल 2023 में 173,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी न चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।

0: छूटे हुए बच्चों का टीकाकरण पूरा करने के लिए दिसंबर माह को टीकाकरण उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। अपने 5 साल तक के नन्हे मुन्ने बच्चों को 12 खतरनाक बीमारियों से बचाइए और उनके भविष्य को सुरक्षित कीजिए। याद रखिए, 5 साल 7 बार 12 बीमारियों पर वार। यदि छूटे न टीका एक भी बार, टीका लगवाने के लिए आपके आस पड़ोस में ANM बहन जी द्वारा हर बुधवार व शनिवार में आयोजित किए जा रहे टीकाकरण सत्रों में जाए व अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर कॉल करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा जनहित में जारी।
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
2: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
1: यहां होती है BA MA और BCOM की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
2: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
1: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञान असली PG कॉलेज गोंडा।
3: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग 1 चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पहेली है, जिसे सिर्फ मैं समझ पाई वो मेरी सहेली है।
2: तो वो है जिसके होने से मेरे चेहरे पर मुस्कान है। तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरा जहान है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे हम आप मिलते हैं और होती है इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग बातें।
1: बिल्कुल, हम आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, कभी डॉक्टर तो कभी कुक
2: तो कभी योगा इंस्ट्रक्टर भी बन जाते हैं।
1: तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपका अपना शो सुन सहेली सुनने का, जो लेकर आई है आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका, जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं।
2: हेल्थ केयर, हेल्थ इश्यूज, होम रेमेडी, ब्यूटी टिप्स, कुकिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, मेकअप, मूवीज एंड मैनी मोर शोज।
1: और बता दूं कि 1:30 बजे से 3 बजे तक हम करते हैं ढेर सारी नॉलेजेबल बातें,
2: तो सुनना ना भूलें। 89.6 FM, ये है गोंडा शहर के धड़कन।
3: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांसें फूलती हैं? चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
4: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
5: सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
6: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आ गई आपकी आरजे समता और साथ में है आरजे अंशिका। तो आपका पसंदीदा शुरू हो चुका है शो, जिसका नाम है सुन

0: एग्जैक्टली तो चलिए भाई, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि कल का दिन आपका कैसा रहा। कल रक्षाबंधन का त्यौहार था भाई। देखिए, जो लोग ये कहते हैं ना कि काम ही पूजा है, तो हम लोगों ने कल के दिन भी काम किया। कल भी हम लोग आए थे और आपके साथ हम लोगों ने शो किया बैठ करके। एंड हमारे प्यारे दोस्तों, जितनी भी इस बात के लिए कहा जाए कि काम ही पूजा है एंड कर्म ही पूजा है, ये सभी लोग मानते हैं कि कर्म ही पूजा है। लेकिन जो लोग जॉब में होते हैं ना, उनके लिए ये स्लोगन और ये एक लाइन परफेक्टली हो जाती है कि उनके लिए काम ही पूजा है। तो कल आप सब लोगों ने हमारे शो को सुना एंड कुछ प्रॉब्लम हो गई थी चैट बॉक्स में, इसीलिए हम लोग मैसेज नहीं कर पा रहे थे और ना आप लोगों के मैसेजेस भी हम लोग सीन नहीं कर पा रहे थे। बट कल के शो के लिए आप लोगों के फीडबैक हमें आज चाहिए कि आज आप लोगों ने कल के शो के लिए जो भी आपने सुना और उसका फीडबैक हमें ज़रूर से दीजिएगा। चलिए तो आज के शो को शुरू करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे शो की सबसे पहली लाइन जो होती है वो होती है प्यार की लाइन, यानी कि प्यारी सी पोयम जो कि मैं लेके आई हूँ। एंड आज हमारा जो दिन है, सैटरडे के दिन लेके आते हैं प्यार की पोयम, यानी प्यार की कविता।
1: बिल्कुल, प्यार की कविता, प्यार का वादा, प्यार का इंतजार, प्यार का इकरार, सब कुछ प्यार, प्यार और सिर्फ तेरा प्यार। तो आज प्यार है, बहुत सारी बातें भी हैं हमारे पास, और जो कि अभी मैम ने बताया कि पोयम भी है। लेकिन उससे पहले मुझे लगता है आज हम कुछ भूल गए मैम।
0: क्या?
1: अभी तक हमने शुभ दोपहरिया नहीं कहा।
0: हाँ, बोल देते, मुझे याद है। मैंने सोचा था कि जब हम आगे बढ़ जाएंगे तो फिर हम जाते जाते बोलेंगे शुभ दोपहरिया। तो सबसे पहले आज हमें दें आप रास्ता, क्योंकि हम फटाफट चलें और प्यार की पोयम इंतजार कर रही है। एंड उसके बाद हम जाते जाते यानी ब्रेक में जाएंगे तो हम आपको विश करेंगे।
1: ओके, तो आइए चलिए चलते हैं सीधे पोयम को रास्ता दे देते हैं। तो प्यार से आज शुरू हुआ है, तो चलिए कुछ प्यार से ही आता है।
0: जी बिल्कुल।
1: प्यार में दिल बेकरार होता है, प्यार में दिल बेकरार होता है, हर तरफ उन्हीं का इजहार होता है। आंखों में वो, बातों में वो, दिल में वो, करार में वो, इकरार में वो, हमारी हर सांस में सिर्फ वो ही वो। तो आइए इस प्यारे से एहसास के साथ करते हैं प्यार की शुरुआत, कुछ नई नहीं उसी पुरानी अंदाजे बयां के साथ, और आपकी अपनी आरजे समता के साथ, जो कि आज कुछ खास बताएंगी आपको प्यार को लेकर, करेंगी इरशाद इरशाद इरशाद।
0: मुझे तो लगा कि जब कुछ पुरानी, तो जब आपने ये बोला तो मुझे लगा कि वही आपकी पुरानी, बहुत पुरानी आज
1: ऐसा नहीं था। ऐसा नहीं था।
0: तो मुझे लगा कि हाँ, शायद वो उम्र को लेकर के था या फिर किसी और को चीज को लेकर के होगा।
1: मैंने बस उसको लाइन,
0: बट ऐसा नहीं था, वो लाइन थी। चलो तो थैंक यू, शुरू करें।
1: जी,
0: आज हमारी पोयम का जो शीर्षक है वो है प्यार का इंतजार। खामोश निगाहों में एक आस छिपी रहती है, हर धड़कन में मिलने की प्यास छिपी रहती है। गुजर जाते हैं दिन यादों के साए में अक्सर, इस दिल में बस एक चेहरे की तलाश छिपी रहती है। राहों को तकते तकते शाम ढल जाती है, उनकी हर एक बात जहन में मचल जाती है। वक्त ठहर जाता है जब उनका ख्याल आता है, प्यार की एक तड़प हर लम्हे में बदल जाती है। हवा का एक झोंका उनकी आहट सा लगता है, दिल का मचलना भी उनकी चाहत सा लगता है। कहने को तो दूर हैं वो बहुत इस नज़र से, पर उनका हर एहसास रूह की राहत सा लगता है। इंतजार के इस सफर में भी एक गहरा नशा है, इसी बहाने दिल उनसे मिलने को बेताब रहता है। मोहब्बत अधूरी नहीं और मुकम्मल होगी एक दिन, मोहब्बत अधूरी नहीं और मुकम्मल होगी एक दिन, क्योंकि इस दिल में सिर्फ उन्हें ही अपना खुदा कहा है।
1: वाह, बहुत ही प्यारी, बहुत ही शानदार। और मुझे तो सबसे अच्छा लगा पोयम का टाइटल, और जब मैम ने पढ़ा प्यार का इंतजार, बहुत ही प्यारा टाइटल था और बहुत ही प्यारी पोयम भी थी मैम, बहुत अच्छी लगी। थैंक यू सो मच
0: अगेन। और अब चलते हैं, चलिए हम फटाफट आज के शो को शुरू करते हैं। तो शो को शुरू करने से पहले हम फटाफट एक ब्रेक लेंगे और आज गाने ज्यादा बातें कम होंगी। तो आइए एक साथ एक ही फ्रेम में विश कर देते हैं आपको शुभ दोपहरिया।
1: लिसनर्स, चलते हैं, सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, एंजॉय करते हैं। बस यू गए और यू आए। स्टे ट्यून्ड,
2: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही दस्त प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, ORS और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैंपव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज न करें।
1: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283886।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
4: गोंडा शहर की धड़कन।
0: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।

0: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आरजे समता और साथ में है आरजे अंशिका, यानी मैं हूँ आपकी आरजे समता
1: और मैं हूँ आरजे अंशिका।
0: तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज के रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ जो कि ब्रेक में जाने से पहले छूट गया था।
1: तो आज का रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ जो कि है वो ये है कि कभी भी सामने आपकी जो सिचुएशन होती है उसका आंकलन अपने मन के अनुसार नहीं करना चाहिए, बल्कि उस तरीके से करना चाहिए जो वो परिस्थिति कहती है। कई बार क्या होता है कि हम सिचुएशंस को अपने मन से समझ लेते हैं, जो कि हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनसे हो सकता है कि सिचुएशन वैसी जैसी हो आप उसे वैसे ना समझ पाए। जैसे कि एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि कई बार हमारा बर्थडे हो मान लीजिए और हमारी सबसे अच्छी फ्रेंड, मतलब सबसे अच्छी वाली फ्रेंड, उसे आपने बुलाया हो और वो ना आई हो, ठीक है। अब हम सोच रहे हैं, एक इंसान ये भी सोच सकता है उसे मेरी केयर नहीं होगी, दोस्ती का असर कम हो गया ना, क्यों ही आएगी, ठीक है। दूसरा, अगर दूसरा आपका माइंडसेट है तो हम सोचते हैं अरे यार हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट गेस्ट आ गया होगा, बीमार हो गई होगी, कोई इमरजेंसी पड़ गई होगी, वरना वो ऐसी नहीं है, वो तो ज़रूर आती। तो ये दो अलग अलग सिचुएशन हो गई, एक में आपने अपने मन से कोई भी उसका
0: अपने मन से कोई मनगढ़ंत कहानी बना ली, और दूसरा ये कि जो सिचुएशन एक्चुअली थी वो आपको पता ही नहीं चली।
1: बिल्कुल, तो हमेशा सिचुएशन जो एक्चुअल में हो वो समझने की कोशिश करनी चाहिए, न कि अपने मन से चीज़ों को बनाना चाहिए, क्योंकि जब हम चीज़ें अपने मन से बनाते हैं तो फिर कुछ का कुछ ही होता है। और फिर कहते हैं ना जैसे एक वो कि अर्थ का अनर्थ मत करो,
0: का अनर्थ,
1: तो वैसे ही होता है कि चीज़ें खराब हो जाती हैं, और मन में जब एक बार वो चीज़ आ जाती है तो फिर हम कितनी भी कोशिश करें वो बातें घूमती रहती हैं। और सबसे ज़्यादा आपको पता है किसे परेशान करती हैं, जिसके दिमाग में वो बातें चल रही होती हैं। दूसरे को कैसे परेशान करेंगी, क्योंकि उसके मन में तो वो बात है ही नहीं, आपके मन में चल रही है ना, इसलिए परेशान किसको कर रही है।
0: तो ये कहावत नहीं सुनी है क्या कि माचिस की तीली जो होती है वो किसी चीज को जलाने से पहले वो खुद जलती है। ये एक स्लोगन है कि माचिस की तीली कितने भी दिए जला ले, कितना भी कुछ जला ले, लेकिन सबसे पहले उसे खुद को जलाना पड़ता है। मन में आया?
1: समझ में आया। तो इसका मतलब है कि आप खुद को भी ना जला, मतलब खुद को तो बिल्कुल ही ना जलाएं, और चीज़ों को अच्छे और लाइट वे में लेने की कोशिश करें। तो चलिए अब इसी के साथ बढ़ते हैं आज के हमारे मस्ती वाले टॉपिक की।
0: ओटीटी सीरियल्स।
1: यस, तो आज मस्ती होगी और मस्ती में होगा थोड़ा सा डर।
0: डर वो क्यों?
1: वो इसलिए क्योंकि कहते हैं ना डर बहुत ज़रूरी है। अगर आप डरेंगे, मतलब डर वो वाला नहीं, डर पॉजिटिव वाला, कि हम अच्छा जब हम किसी काम को इस डर से करते हैं कि हमसे कोई गलती ना हो जाए तो हमारा वो काम बहुत अच्छे से होता है, और जब हम ये सोच के काम करते हैं कि अरे देखा जाएगा जैसा भी होगा, तो फिर आपका वो काम खराब हो सकता है। इसलिए काम को करना चाहिए तो पॉजिटिव वाले डर के साथ कि हमसे सब कुछ अच्छा अच्छा और अच्छा ही हो। तो भाई आपने सोचा होगा कि डर क्यों बता रही है, तो डर इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे पास आज थ्रिलर वाली आप सभी के लिए कुछ ओटीटी सीरीज हैं, और उसी के साथ कुछ खबर भी है, खबर जो कि बहुत मस्त और ज़बरदस्त है। लेकिन खबर से पहले बताते हैं कि हमारे पास आज ओटीटी सीरीज कौन सी है। तो आज जो सबसे पहली है जो कि Z5 पे आने वाली है, जिसका नाम बड़ा प्यारा है, मुझे तो नाम अच्छा लगा, और कभी कभी हम अपने किसी खास को इस नाम से संबोधित भी करते हैं।
0: क्या? डियर, सोना, बाबू, लव,
1: बंदर।
0: बंदर, बंदर कौन कहता है?
1: हाँ मैम, कभी कभी आपने देखा होगा भाई बहनों में झगड़ा होता है तो अगर भाई कहता है तुम बंदरिया लगती हो, तो बहन कहती है ना चलो अपनी शक्ल देखो शीशे में,
0: बंदर से कम नहीं होता।
1: और कभी कभी होता है किसी से भी झगड़ा होता है तो आप कहते हो।
0: हाँ, किसी को भी कह सकते हैं।
1: हाँ, ऐसा कोई मतलब।
0: जी जी जी,
1: ये तो एक एग्जाम्पल दिया,
0: एग्जाम्पल था।
1: तो इसका नाम है बंदर, जो कि Z5 पे आने वाली है, और ये सीरीज स्पेशल क्यों है ये भी बता देते हैं। तो सबसे पहला कारण है कि बॉबी देओल इसमें हैं, जो कि काफ़ी लंबे टाइम के बाद वापस आ रहे हैं, और ये अनुराग कश्यप द्वारा निर्देशित है, क्योंकि अनुराग कश्यप अच्छी थ्रिलर बनाते हैं, इसलिए ये बहुत खास है, जिसमें कि ये दिखाया जाएगा कि किस तरीके से आपका डर आपके लिए पॉजिटिव होता है।
0: ओके,
1: इसलिए मैंने आते ही बात की थी कि डर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो किस तरह डरते हैं लेकिन डर में काम बहुत अच्छा हो जाता है, वो इसमें दिखाया गया है। सो आप जरूर देखिए और इंजॉय करिए।
0: जी,
1: आते हैं नेक्स्ट वाले पे, जिसका नाम है चुंबक।
0: चुंबक,
1: चुंबक,
0: मैग्नेट,
1: मैग्नेट, जो कि नेटफ्लिक्स पे आने वाली है।
0: ओके,
1: और ये दिखाती है मुंबई की, जैसे कहते हैं ना मुंबई में हमारी झुग्गी झोपड़ियां बहुत होती हैं,
0: छोटी छोटी
1: छोटी छोटी
0: अभी भी हैं, मतलब एक एरिया ऐसा पूरा है जहाँ पर वो झोपड़ियों में और एक बार तो फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे दिखा रहे थे कि पूरी एक वीडियो बनी थी कि पूरी झोपड़ियों का, मतलब काफ़ी दूर तक पूरा, जैसे कहते हैं ना कि एक पूरा छोटा सा सिटी है वहाँ पर, जैसे हम लोग में यहाँ पे एक मोहल्ला होता है, तो वैसे वहाँ एक छोटा सा सिटी बना हुआ है और वो सब जगह पर पूरी झोपड़ियाँ। लेकिन सबसे खास बात ये कि हर झोपड़ी के बाहर एक विंडो एसी, हर एसी के बाहर, हर एक झोपड़ी के बाहर विंडो एसी, मतलब ये एक वहाँ का वो था।
1: जी मैम, तो यही दिखाया गया है इस सीरीज में जिसका की नाम है चुंबक, कि किस तरीके से वहाँ की झुग्गी झोपड़ियों में जो लोग रहते हैं वो कैसे अपनी डेली लाइफ को सर्वाइव करते हैं। और साथ ही साथ में ये बेहद खूबसूरत और इमोशनल ड्रामा भी है। इसमें आप ये भी देखेंगे कि किस तरीके से चीज़ें तो बहुत ज़्यादा शायद से नहीं हो पाती हैं, लेकिन एक जो कह लें कि उनकी ज़िंदगी जीने की जो कला है वो बहुत अलग है। और आता है, अब चलते हैं टीवी शोज की तरफ। तो आज टीवी शोज की दुनिया से मैं बहुत अच्छी सी खबर आप सभी के लिए लाई हूँ।
0: जैसे
1: ये कि भाई सबसे पहले तो ये बताएं कि क्राइम पेट्रोल कौन कौन देखता था या है या अभी भी पसंद करता है।
0: कभी कभी मैं देख लेती थी जब मुझे नींद नहीं आती थी, तो ब्रेक के बाद एक क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है कि इस ब्रेक के बाद देखूं क्या होता है, इस ब्रेक के बाद देखूं क्या होता है। तो पहले मैं कभी कभी देख लेती थी और अब मुझे डर लगता है वो देखने में, क्राइम पेट्रोल।
1: जी मैम,
0: पता है फिर अगर रात में आप देख रहे हैं ना, तो हर एक ब्रेक के बाद एक नया सस्पेंस डाल देते हैं, तो बहुत ज्यादा लेट भी हो जाता है और फिर जब हम सोते हैं ना तो वही पूरे ख्यालात आते हैं पूरे। मतलब मुझे पसंद तो है, बट ऐसी जो थ्रिलिंग वाली जो स्टोरीज होती है ना, वो डरावनी वाली, वो थोड़ा सा मुझे वो लगती है, लेकिन काफी लोगों का बहुत फेवरेट है।
1: तो बता दें कि इस बार इसे लेकर आ रहे हैं नए स्टार, स्टार नहीं कहेंगे उन्हें, हम सुपर स्टार कहेंगे, जो कि भाई वैसे तो वो माने जाते हैं एक्शन जैक्शन वाले, लेकिन फिर भी इस बार वो इसे होस्ट करने वाले हैं, जो कि है मोस्ट फेवरेट सुपरस्टार अजय देवगन जी।
0: ओ माय गॉड, अजय देवगन?
1: यस,
0: वो भी क्राइम पेट्रोल में?
1: यस।
0: ओके,
1: इस बार क्राइम पेट्रोल को अजय देवगन जी होस्ट करने वाले हैं, और वो जैसे आता था ना ब्रेक में कि अब ये होने वाला है, अब
0: ये देखते हैं क्या होता है,
1: तो वो इस बार आपको बताएंगे और आपके साथ ये पूरी जर्नी बताएंगे। और सेकेंड आने वाला है भाई हमारे अमिताभ जी का, तो क्या ही कहना कि
0: केबीसी
1: पहले भी मैंने आपको बताया है, जो कि अपने नए सीजन के साथ केबीसी आने वाला है, और देखते हैं कि इस बार कौन कौन से न्यू क्वेश्चन।
0: लेकिन इस बार खतरों के खिलाड़ी नहीं शुरू हुआ है?
1: हाँ मैम, अभी तो नहीं शुरू हुआ है। देखते हैं,
0: बिग बॉस भी दिसंबर नवंबर में शुरू होता है वो,
1: नवंबर तक शुरू होगा, और देखते हैं इस
0: ये
1: बार
0: दोनों जो प्रोग्राम्स हैं, ये बिग बॉस और खतरों के खिलाड़ी, ये नवंबर में, नवंबर से दिसंबर तक शुरू होता है और लास्ट फेब तक जाता है पूरा।
1: यस मैम, और दोनों ही बहुत मजेदार,
0: बहुत दोनों ही मजेदार,
1: और एक में होते हैं, मतलब मुझे लगता है कि इसके जो पिछला सीजन आया था वो शायद अनिल कपूर जी ने बिग बॉस का होस्ट किया था, या मुझे ठीक से याद
0: नहीं, वो आते हैं सलमान जी एंड रोहित शेट्टी।
1: ओके, हाँ वही मैंने कहा ना, मुझे ठीक से याद नहीं है, तो इस बार देखते हैं कि क्या कुछ होने वाला है। फिलहाल तो ये दो न्यूज़ हैं आप लोगों के लिए, और चलिए डरा बहुत दिया, क्राइम बहुत बता दिया, अब कुछ भाई लव का दिन है तो लव शव की भी बात हो जाए, वरना हमारे लिसनर कहेंगे कि सिर्फ डराने आई थी,
0: सिर्फ
1: थ्रिलर बताने आई थी, क्या फ़ायदा मैम, तो फ़ायदा करा देते हैं ना आपका। फ़ायदा ये है कि बहुत ही प्यारा सा शो शुरू होने वाला है, जिसका कि नाम बड़ा प्यारा है, मुझे बहुत अच्छा लगा, तेरा फितूर।
0: तेरा फितूर मुझ पे चढ़ गया रे,
1: बहुत प्यारा। तो तेरा फितूर नाम है इसका, और इसलिए
0: अंशिका ने दिल से तारीफ नहीं की, लग रहा है डोज अभी तक दिमाग पे है मुझे।
1: नहीं नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है, डोज नहीं है वो, एक्चुअली कल वाला डोज है थोड़ा सा।
0: कल क्या हुआ था फिर? थकावट
1: है, और थोड़ा तबीयत भी इस समय जैसे कि वायरल चल रहा है, वरना तो तारीफ तो आपकी मैं क्या ही कहूँ।
0: जी नेक्स्ट काम पे आते हैं।
1: तो मैं क्या बता रही थी ओ नो, मैं भूल गई मैं क्या बता रही थी।
0: ठीक है, कोई बात नहीं, और बहुत सारे ओटीटी सीरियल्स अभी हमारे पास हैं, लेकिन आज हमने जैसा कि वादा किया है कि बातें कम काम ज्यादा, तो आइए सुना देते हैं एक प्यारा सा गाना, उसके बाद आते हैं फिर से ओटीटी सीरियल्स के कुछ और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताने के लिए, एंड देन बताऊंगी आपको राशिफल एंड आपका फेवरेट सेगमेंट यानी कि रंगोली यानी कि अंताक्षरी। तो आइए बस हम यूं गए यूं आए।

0: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
1: गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
0: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर, हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
1: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
0: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
1: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन,
3: गोंडा शहर की धड़कन।
4: टेन नाइन एट सेवन 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun!

0: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न क्रीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
2: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद RJ समता एंड RJ अंशिका।
3: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आज समता और साथ में है आज अंशिका। तो आइए फटाफट शुरू करते हैं आप भी OTTT सीरियल्स के बारे में, क्योंकि अभी बाकी है बहुत कुछ।
4: बिल्कुल, अभी बाकी है बहुत कुछ आपको बताने को, आपसे बयां करने को, कि आज का जो दिन होता है ना वो होता है मस्त और
3: नोट गिनने का।
4: नोट गिनने का
3: पूछो क्यों?
4: क्यों
3: भाई, कल रक्षाबंधन बीता है तो जिन बहनों ने राखी वाखी बांधी होगी तो आज वो गिफ्ट्स ओपन करने का दिन है, पैसे गिनने का दिन है। क्यों? ऐसा भी तो हो सकता है,
4: ये तो हो सकता है। और बहनों के लिए एक तरीके से ये भी होता है ना कि मतलब खुशी भी होती है।
3: हाँ, और क्या, बहुत खुशी होती है, इंतजार रहता है भाई। देखो, पूरे साल में आप चाहे जितने भी पैसे अपने भाइयों से ले लो, लेकिन ये एक दिन ऐसा होता है कि नजरें टिकी होती है कि क्या गिफ्ट मिलने वाला है, क्या पैसे मिलने वाले हैं। जो सच्चाई है वो सच्चाई मान लेनी चाहिए। और भाई भी काफी हद तक ना कल के दिन बहुत नजरें चुराते हैं, कुछ भाई तो चुराते हैं नजरें कि भाई चलो रक्षाबंधन है, बुलाओ, अगर नहीं आना है तो ठीक है, चलो कोई नहीं, पैसे बचे, ये वो। लेकिन ऐसा नहीं है, मतलब जो बहुत सारे भाई ऐसे भी हैं जो कि बहनों को मानते हैं, बहुत मानते हैं, और मानना भी चाहिए, एक दिन तो यार होता है बहनों को मानने का।
4: बिल्कुल, भाई बहन का प्यार, अटूट बंधन, वो रिश्ता, मतलब चाहे कितनी भी
3: लड़ाइयां क्यों ना हो जाए,
4: बचपन वाली नोकझोंक हो या बड़ों वाली क्यों ना हो, बट वो एक दिन प्यार का होता ही होता है। भाई को भी इंतजार और बहन को भी।
3: बिल्कुल,
4: तो भाई दिन तो बहुत प्यारा होता है
3: जी,
4: और दिन के साथ साथ फीलिंग भी बहुत प्यारी,
3: फीलिंग भी बहुत प्यारी होती है। एग्जैक्टली,
4: तो आप गिने, आपको गिफ्ट्स मिले हो, आप गिफ्ट्स खोलें, आप पैसे गिने, जरूर गिने, क्योंकि वो आपका हक है, आपको मिलना ही चाहिए। तो आइए अब लिसनर्स आगे बढ़ते हैं और चलते बताते हैं कि हमारे पास और क्या है। तो अभी तक हमने आपको डराया और फिर डराने के साथ थोड़ा सा थ्रिलर भी बताया, थोड़ा सा हमने आपको प्यार किया, मतलब एक शो रोमांटिक वाला भी बता दिया। अब आते हैं कुछ इन्फॉर्मेटिव और कुछ अच्छा सा बताने के लिए।
3: जी,
4: तो इन्फॉर्मेटिव ये है कि अब मैं जिस शो के बारे में कह लें या सीरीज कह लें आपको बताने वाली हूँ, उसका नाम है बबीता सिंह रिपोर्टिंग।
3: बबीता सिंह रिपोर्टिंग,
4: यस। और ये 28 अगस्त को, यानी कि आई थिंक कल के दिन रिलीज भी हो गई है। आप इसे Amazon प्राइम पे देख सकते हैं। और साथ ही साथ में ये एक जबरदस्त ऐसी सीरीज है जिसमें कि ये दिखाया गया है कि जैसे कहते नहीं है कि पत्रकारिता जो होती है वो हमारे समाज का चौथा स्तंभ माना जाता है पत्रकारिता को, तो इसमें ये दिखाया गया है कि किस तरीके से जो एक पत्रकार होता है वो किन सारी चीज़ों से जूझता है और कैसे समाज को सही चीज़ों को डिलीवर करता है, दिखाता है, और कहीं ना कहीं एक समाज का आईना पत्रकारिता होती है। और एक इसमें फीमेल को दिखाया गया है कि वो किस तरह काम करती है, तो फीमेल का क्या स्ट्रगल होता है, ये बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है इसमें। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे, तो नेक्स्ट वाला जो है उसका नाम है पार्ट टाइम। पार्ट टाइम भी कल रिलीज हो चुकी है, जो कि ये OTT सीरीज है और यह है कॉमेडी ड्रामा। भाई अभी तक हमने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई लेकिन कुछ भी कॉमेडी से रिलेटेड नहीं बताया था, इसलिए ये कॉमेडी ड्रामा है जिसमें कि यूथ भी पूरी तरीके से जुड़े हुए हैं क्योंकि ये कॉमेडी से रिलेटेड है। वीकेंड पर हल्का फुल्का एक जो मनोरंजन होता है वो सभी को चाहिए होता है कि कुछ तो हो जो कॉमेडी से भी रिलेटेड हो। तो ये सीरीज कॉलेज के उन स्टूडेंट्स पे है जो अपनी पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं
3: जी।
4: और साथ ही साथ में किस तरीके से अपनी लाइफ को, किस तरीके से कह लें कि दोनों चीज को मैनेज करते हैं, मतलब पार्ट टाइम जॉब को भी मैनेज करते हैं और अपनी कॉलेज की पढ़ाई को भी।
3: एक्चुअली आजकल ये ट्रेंड हो गया है अंशिका कि बहुत सारे बच्चे जो आजकल के टीनेजर, जिसको जेन जी बोला जा रहा है आजकल, तो जो हमारी सो कॉल जेन जी है, वो इसीलिए क्योंकि खुद के पैसों से पढ़ना, खुद के पैरों पे खड़े होना एक उनके लिए जुनून सा बन गया है। जल्दी से कमाना, जल्दी से अमीर बन जाना, जल्दी से इस्टेब्लिश हो जाना हर एक बच्चे के अंदर ना, 10th और 12th क्रॉस करने के बाद ही मतलब ये लगने लगता है कि अब हम जॉब करेंगे, हमें पैसे होंगे, हम अपने पेरेंट्स को घर लेके देंगे या फिर बहुत सारी अपनी जो भी लग्जरीज को हम उसको जिएंगे। बहुत सारी मतलब ये चीज़ देखी जा रही है और कहीं ना कहीं ये अच्छा भी है। मतलब मुझे तो बड़ी अच्छी बात लगती है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, सबके मन में ये फीलिंग्स बराबर की चल रही है।
4: बिल्कुल मैम, और कहीं ना कहीं इसी फीलिंग को ये सीरीज दिखाती है।
3: हाँ।
4: मतलब कॉमेडी के हल्के फुल्के अंदाज में ये दिखाया गया है कि बहुत सारी स्ट्रगल भी उसमें होती है। मतलब इतना आसान नहीं है कि आप एक कॉलेज में पढ़ें भी।
3: हाँ।
4: और अपना काम भी करें।
3: बहुत आसान नहीं है भाई, कुछ तो ऐसे भी होते हैं कि आप पूरा दिन आप पढ़ते हैं और फिर क्या कहते हैं कि रात में वो जॉब करते हैं कोई भी, और फिर या तो पूरा दिन वो लोग जॉब कर रहे हैं और रात में पढ़ रहे हैं।
4: जी
3: मैम, ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं।
4: लेकिन इसमें कॉमेडी का तड़का तब लगता है जब ये पूरा चार दोस्तों का एक ग्रुप होता है।
3: ओके।
4: और चारों पार्ट टाइम जॉब करते हैं और अपनी पढ़ाई भी करते हैं। लेकिन एक दिन क्या होता है कि उनके मन में होता है कि चलो कुछ चिल करते हैं, काम तो बहुत कर लिया, पढ़ाई भी बहुत कर ली। लेकिन जब ये चिल करने जाते हैं तो इनकी चिल पार्टी का जो होता है ना, वो देखना सबसे मजेदार होगा। क्योंकि अगर आप ऐसा सोचिए कि आप बहुत अच्छे मूड से चिल करने कहीं गए हों, आपके दोस्त अच्छे से आपके साथ हैं, आप ड्रेसअप हैं, अच्छे से गए हैं, लेकिन पता चलता है हम गए थे मतलब रिलैक्स करने और वहां हमने कुछ ऐसा कर दिया कि पूरा भंडाधार हो गया, तो कैसा लगेगा।
3: बिल्कुल,
4: तो वैसा कुछ है। और फिर जिस तरीके से ये दोस्त निकलते हैं, फिर तो ये हंसते हंसते पेट फूल जाता है। तो आप जरूर देखिएगा और एंजॉय करिएगा कि ये बहुत ही बेहतरीन है।
3: Exactly.
4: बहुत मजा आएगा आपको।
3: जी, तो चलिए यहाँ आपको सुना देते हैं गाना और उसके बाद हम सीधे आएंगे लव राशिफल के साथ में आपका फेवरेट सेक्शन शुरू करने के लिए, जो की होता है गेम सेक्शन। तो बस हम यू गए यू आए।

0: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 72 34 020 202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।

क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन, या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर, तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी।

0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 35 95 84। अब बारी है आपकी।
1: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं NVO की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही दस्त प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, ORS और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैंपव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
4: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद RJ समता एंड RJ अंशिका।
5: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आज समता और साथ में आज अंशिका। तो चलिए फटाफट पहले हम गेम शुरू करते हैं और गेम को आपको वर्ड देते हैं। सबसे पहला वर्ड है क, तो क से फटाफट सॉन्ग्स लेकर के भेजें एंड जल्दी से हम आपको बताएंगे चार राशियों के बारे में, देन पहला गाना जल्दी से बजा देंगे। इसीलिए क से गाना जल्दी से लिख के भेजिए, बिल्कुल डोंट वेस्ट टाइम। फटाफट अब रफ्तार पकड़ ली है आपके गेम शो की,
6: तो आइए इसी के साथ करते हैं राशिफल की शुरुआत। तो सबसे पहले आता है मेष राशि वालों के लिए कि आज का दिन आपके लिए बेहद यादगार रहेगा और साथ ही साथ में पार्टनर के साथ बहुत ही अच्छा समय भी आप बिताने वाले हैं, बेहतरीन समय बिताने वाले हैं। आपको उनकी तरफ से कोई खूबसूरत सा सरप्राइज भी मिल सकता है। सो भाई, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि हमें हमारे पार्टनर की तरफ से कोई एक अच्छा सा सरप्राइज भी मिले
5: जी।
6: सो है बहुत ही अच्छा, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है ये कि सरप्राइज भी मिलने वाला है। तो आइए अब बढ़ते हैं दूसरी राशि की तरफ जो कि है मेष राशि वालों के लिए। तो मेष राशि वालों के लिए क्या है आइए देखते हैं। मेष राशि वालों के लिए है लव लाइफ में शानदार और पॉजिटिव बदलाव आने वाला है और साथ ही साथ आपको कोई अच्छी सी खुशी भी मिलने वाली है और साथ ही साथ में आप अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करने वाले हैं और साथ ही साथ में आज आप उनकी तारीफ भी करेंगे।
5: ओके।
6: और मिथुन राशि वालों के लिए है कि आज ही आप बातचीत अपने पार्टनर से शुरू करने वाले हैं, यानी कि काफ़ी टाइम से आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी लेकिन आज आपकी बात होगी और जो बात होगी वो पॉजिटिव साइड में होगी और जो भी सिंगल हैं उन्हें आज उनकी लाइफ में कोई मिलने वाला है।
5: ओके, ये तो
6: मिथुन राशि वालों के लिए। तो आइए अब बढ़ते हैं कर्क राशि की तरफ। तो कर्क राशि वालों के लिए है कि इमोशनल कनेक्शन आपका आज बहुत मजबूत रहने वाला है, पार्टनर के साथ पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी और रिश्ते में भरोसा और प्यार बढ़ेगा। तो ये थे चार राशियों के लिए। तो आइए अब चलते हैं।
5: अब जल्दी से गाना लगा दो, कोई भी बातचीत नहीं क्योंकि गेम शुरू हो चुका है और गेम की रफ्तार हो चुकी है ज्यादा। सबसे पहला सॉन्ग भेजा है हमें नागेश्वर जी ने, तो फटाफट उनकी पसंद को लगाते हैं एंड देन इस गाने के बाद हम आएंगे फटाफट आपको चैट बॉक्स में देंगे एक वर्ड। तो जल्दी से इसी गाने के दरमियान आपको वर्ड मिल जाएगा एंड वर्ड से आप लोगों को गाना लिख देना है। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से गाने को।

0: ओके लिसनर्स, तो आइए बाकी बची राशियों के बारे में बताते हैं, और तब तक आपको वर्ड दे दे रहे हैं चैट बॉक्स में, जो कि दिया हुआ है,
1: वर्ड दिया हुआ था र, जिससे कि अरविंद जी का सॉन्ग भी हमें मिल गया है
0: जी। तो फटाफट र वर्ड से जल्दी से आप लोग सॉन्ग लेकर के भेजे, और आइए बाकी बची राशि यानी कि सिंह, कन्या, तुला और धनु। तो है सिंह की बारी, आपकी नेचुरल वार्मथ, आपकी नेचुरल जो वार्मथ है और कॉन्फिडेंस आज पार्टनर को आकर्षित करेगा। प्रेम जीवन के लिए दिन काफ़ी खुशनुमा और रोमांटिक होने वाला है। कन्या राशि वालों के लिए है कि आज रिश्ते में थोड़ा सा अधिकार जताने का मन हो सकता है, लेकिन पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें। शाम तक आपको कुछ बेहतरीन और न्यूज़ मिल सकती है। तुला राशि वालों के लिए कि दिल के मामलों में आज सद्भाव और बैलेंस को बना के रखना है, एंड संकोच बिल्कुल ना करें। पार्टनर अपनी बातों को साझा करेगा और इससे आपको लाभ भी मिलने वाला है। तो ये फटाफट सॉन्ग सुनते हैं जो कि लिख भेजा है किसने,
1: अरविंद जी ने
0: जी बिल्कुल। तो धनु, मकर, कुंभ और मीन बताएंगी आपको अंशिका।
1: तो आइए बताते हैं धनुराशि वालों के लिए। धनुराशि वालों के लिए है कि लव लाइफ में पार्टनर के साथ आपका जो फ्यूचर होने वाला है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है, और साथ में पुरानी यादों को भी आप ताज़ा करने वाले हैं
0: जी बिल्कुल।
1: मकर राशि वालों के लिए है कि आज कोई अनजाना आपको मिलने वाला है और बातचीत के जरिए आप उससे अट्रैक्ट भी हो सकते हैं
0: जी,
1: लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखें। कुंभ राशि वालों के लिए,
0: हाँ जल्दी, क्योंकि मैं बहुत, मुझे एक्साइटमेंट होती है सुनने के लिए
1: जी। आज आपको कुछ अनोखे और दिलचस्प कनेक्शन महसूस हो सकते हैं।
0: ओके।
1: शादीशुदा लोगों का लोगों की लाइफ आज ज़्यादा खूबसूरत और संतुष्टिदायक होगी। ओके। और इसी से आज मीन राशि वालों के लिए है कि चंद्रमा में मीन राशि होने से आज आप थोड़ा भावुक महसूस कर सकते हैं
0: जी।
1: पार्टनर की तरफ अपना झुकाव ज़्यादा रखें और अपनी समझ को सबसे पहले रखें।
0: ओके तो चलिए भाई, ये थी राशियां, और अब जितना भी टाइम है हम उसको कंटिन्यू करेंगे गेम में। तो ये फटाफट बिना देर लगाए आइए आपको सुनाते हैं नेक्स्ट वर्ड, आप देखेंगे चैट बॉक्स में।

0: जी बिल्कुल, और ये प्यार नहीं खोना है, लेकिन अब हम दोनों लोग जा रहे हैं, यानी कि कल हमारा रहेगा वीक ऑफ। मिलेंगे आपसे मंडे सेम प्लेस सेम टाइम पर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय
1: बाय दोस्तों।

आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।

0: नमस्कार भाइयों बहनों, बहुत ही कम शब्दों में आपका स्वागत करते हैं आपके अपने वाले कार्यक्रम कॉलर ट्यून गोंडा में। मैं हूं आपकी अपनी आशुति, मौजूद हूं आप सभी के साथ आपके अपने वाले स्टूडियो में, लेकर के आपका फेमस आन, आपका बेहद ही चहीता वाला कार्यक्रम फरमाइशों का सिलसिला, और ऑफकोर्स जारी रहने वाला है आज पूरे एक घंटे विद आशुति। और हम आपको बता दें कि ये है हमारा और आपका कॉलिंग वाला प्रोग्राम, और हमारे पास है कॉल। हेलो।
1: हेलो।
0: ओके, कैसे हैं आप जनाब?
1: मैं नमस्ते।
0: नमस्ते जी, आपका नाम?
1: राकेश वर्मा, दुकाननाथ मंदिर से।
0: राकेश वर्मा जी, आपका स्वागत करते हैं कॉलर ट्यून गोंडा में, और इस वक्त आप हमारे साथ जुड़ गए हैं ऑन एयर। आपको पता ये बात? अरे, इस वक्त आप हमारे साथ जुड़ गए हैं ऑन एयर प्रोग्राम में, यानी कि आपको हमारे सारे लिसनर्स सुन रहे हैं। तो आई थिंक हमारे जो इस कॉलिंग वाला प्रोग्राम होता है कॉलर ट्यून गोंडा, इसमें हम कुछ सवालों की झड़ी लगाते हैं, और मेरा ख्याल है कि आपसे भी कुछ सवाल हो ही जाए।
1: गाना सुना दिया जाए।
0: मतलब आप मेरे सवालों का जवाब नहीं दोगे क्या? ओड़ी बाबा, हम तो बस इतना पूछने वाले थे कि रक्षाबंधन पे कितनी बहनों ने राखी बांधी।
1: हमारा 3 बहन है मैम।
0: ओके, मतलब 3 बहनों की राखी, और उन 3 डिब्बों की मिठाइयों में क्या था?
1: 3 बहनें घर पे हैं, आपसे आज बात कर लिया जाए। आज हेलो फरमाइश वाला है गाना।
0: जी जी है, तो फिलहाल अपना गाना बता दीजिए। अब
1: कल्याण मूवी का मेन गाना।

0: पॉलिसी पे होके मैं सवार चली रहे।
1: ओके, फिलहाल ये आप अपनी बहन को डेडिकेट कर रहे हैं क्या?
0: ना।
1: ओके, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: नमस्ते।
1: और इसे कहते हैं खौफे अंदाज, जो हमारे अंदर कूट कूट के भर दिया गया है। फिलहाल आइए सुन लेते हैं पालकी में होके सवार चली रहे उस साल का बेहद ही लोकप्रिय गीत। ये सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं अगली कॉर पर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

0: भैया पालकी में आप बाद में सवार होइएगा, क्योंकि हमारे एक लिसनर बड़े ही शौक से लड़ाई करना चाहते हैं। हमने खलनायक फिल्म का गाना बजाया था, लेकिन लगता है हमारा जनाब को खलनायक बनने का शौक चढ़ा। फिलहाल आपका नाम? हेलो
1: मैम।
0: हाँ जी, आपको मेरी आवाज आ रही है?
1: जी आ रही है। अरविंद नाम है जी। अरविंद
0: जी हमारे साथ जुड़े हैं। मतलब खलनायक फिल्म से आप थोड़ा ज्यादा इंस्पायर्ड हो गए थे क्या?
1: हाँ जी, यही समझ लीजिए।
0: चलिए तो एक खलनायक फिल्म का जबरदस्त डायलॉग सुना दीजिए, उसके बाद हम लिसनर से डिसाइड करते हैं कि कहाँ लड़ाई करनी है।
1: नहीं मैम, मुझे पहले लड़ाई करनी है, ये बताइए। गाने तो हम सुना देंगे बेसुरी आवाज में।
0: अरे लड़ाई करनी है? कल इतना अच्छा दिन गुजर के गया है, लगता है आपने कल लड़ाई नहीं की थी है।
1: मैम कल हमारे पॉकेट मनी खाली हो गए, तो आज मुझे कहीं से इकट्ठा करना है। बहन लोग लूट लिए हमें।
0: चलिए ये तो बड़ी सुख की बात है कि आपको बहनों ने लूटा है।
1: अरे आज हमने अपनी बहन से 500 रुपए उधार मांगे।
0: वाह, मतलब कल आपको बहनों ने लूटा और आज आप बहन को लूट रहे हैं। वाह, हिसाब बराबर तो हो गया आपका।
1: वो कह रही है नहीं देंगे हम,
0: तो इसलिए आप लड़ाई करने के उस पर उतर आए हैं कि नहीं देंगे तो हम लड़ाई ही कर लेंगे।
1: सोच रहा हूँ कहीं लड़ाई कर लो, शायद थोड़ा बहुत मन हल्का हो जाए मेरा।
0: ऑल राइट, फिलहाल मैं तो लड़ने के मूड में नहीं हूँ, लेकिन अगर कोई लड़ाई झगड़ा वाला गाना है तो आप मुझे बता सकते हो।
1: ठीक है मैं आपको चैट बॉक्स में बताता हूँ।
0: चलिए, और इसी के साथ आपसे एक सवाल ये है मेरा कि अगर बंदर को अदरक का स्वाद नहीं पता है तो क्या बंदरिया को पता है?
1: नहीं मैम, क्योंकि प्रजाति दोनों की सेम है ना।
0: तो फिर मुहावरों में हमेशा से बंदर को ही क्यों ताना मारा गया है?
1: वो इसलिए कि हम वाइस लोग हैं मैम, हम लोगों के ऊपर बहुत दुख होता है और हम लोग अपना दुख कहीं बयां नहीं कर सकते इसलिए।
0: अच्छा जी, अच्छा, तो चलिए आप वो स्टाइल में बोल के दिखाइए कि हमारे यहाँ ऐसा ही होता है।
1: हाँ हमारे यहाँ ऐसा ही होता है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, आप गाना भेजिए, तब तक के लिए हम एंजॉय करते हैं हमारा पालकी का गाना और मिलते हैं इस गाने के उस पार।
1: और गाना मैम सब जो हमारे ग्रुप के जितने भी लोग अभी चैट से हैं उन सबको मेरे तरफ से डेडिकेट रहेगा।
0: ओके ओके, बहुत शुक्रिया,
1: वेलकम।

0: ये गाना तनिक उल्टा हो गया है दोस्तों, क्योंकि कर करके इंतजार लोग अपने भैया के घर चले थे, है कि नहीं। फिलहाल हमारे साथ जुड़े हैं एक और लिसनर, उनका स्वागत कर लेते हैं। हेलो जी।
1: हेलो।
0: हां जी, आपका नाम?
1: रेनु तिवारी मैम।
0: रेनु तिवारी जी, क्या आप सोकर उठी हैं?
1: जाग रहे हैं।
0: ऑल राइट। अच्छा ये बताइए, कल राखी था, कितने भाइयों को राखी बांधी आपने?
1: मैम हमारा भाई जो है ना वो यहाँ नहीं रहे।
0: ओके, तो आपने कल मिस जरूर किया होगा।
1: अपने घर ही रह गए।
0: अरे अरे अरे अरे, चलिए आपकी इस फीलिंग को समझ सकते हैं। और उससे भी बड़ी वाली फीलिंग ये आती है कि भैया कल भाई लोगों को ना बड़ा दुख हो रहा था। कोई कह रहा था हमको टेडी बियर वाली राखी ला कर दो, कोई कह रहा था 500 का नोट चला गया मेरा।
1: मैम मेरा गाना है महबूब मेरे जरा।
0: चलिए आप प्ले कर देते हैं, और इसी के बीच में एक और कॉल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हेलो
2: हेलो,
0: नमस्कार, आप कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: हम जमीन से बात कर रहे हैं।
0: और हम आकाश से बात कर रहे हैं। कैसे हैं आप, जमीन और आकाश साथ साथ?
2: हम तो ओके हैं, आप बताइए।
0: हम भी ओके हैं। क्या नाम है जनाब आपका?
2: नाम है धर्मेंद्र मोहन।
0: अरे वाह, धर्मेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो जरा धर्मेंद्र जी के स्टाइल में एक डायलॉग हो जाए। हाई।
2: और कैसी हैं आप?
0: अरे मैं ठीक हूँ, और मेरी खुशी के कारण एक धर्मेंद्र पाजी का डायलॉग की बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
2: आप भी गजब की डायलॉग बोल लेती हूँ।
0: और मैं चाहती हूँ यही डायलॉग बस एक बार आप बोल दीजिए।
2: मुझे डायलॉग बोलने का शौक ही नहीं है।
0: अरे कोशिश कोशिश जनाब, कोशिश अपनी बहन के लिए छोटी सी कोशिश।
2: अरे कैसे बोल दूँ, मुझे
0: बिल्कुल ऐसे ही की
2: हिचकिचाहट हो रही है।
0: बिल्कुल ऐसे ही बोलना है कि बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
2: आपके कहने पे तो बोल दे रहा हूँ, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। और धर्मेंद्र पाजी ने धर्मेंद्र पाजी का डायलॉग बोला है। चलिए गाना बता दीजिए अब आपका कौन सा है।
2: अगर खुदा रुड़ जाए तो सजदा करूं।
0: ओके, फिलहाल हम खुदा को मनाकर आते हैं, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए।

और ये आप सुन रहे थे रेनु तिवारी जी की फरमाइश, महबूब मेरे तू है तो दुनिया कितनी हंसी है। और इसी के साथ आइए चलते हैं चैट बॉक्स में, क्योंकि वक्त हो चला है आपके चैट बॉक्स के मैसेजेस और पैगामात को लेने का। हमारे साथ बहुत सारे लिसनर्स जुड़ गए हैं। सबसे पहले बारी जो हमारे चैट बॉक्स में आई है वो आई है हमारे जनाब अरविंद जी की। अरविंद जी आपका स्वागत करते हैं। हमारे साथ जुड़ी हैं नाजिया अंसारी जी, आपका भी वेलकम करते हैं कॉल ट्यून गुना में। नागेश्वर धाकड़ हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अरविंद जी ने लिखा है नमस्कार आजी मैम, नमस्कार टू यू। एंड मैम फंसा देती हैं कॉल पर। अजी नहीं, हम फंसाते नहीं हैं, हम बस थोड़ा सा हंसाते हैं, गुनगुनाते हैं और आपका ठहाके लगवाते हैं, है ना। एंड महेंद्र जी, अब मुझे पता है आज आप कॉल नहीं करने वाले हैं, बिकॉज पिछली बार आपने कहा था कि हम कॉल ही नहीं करेंगे आगे से, आए कि नहीं प्लान। इसके बाद आइए चलते हैं अगले मैसेज की तरफ। और नागेश्वर जी लिख रहे हैं कि हाँ बहनों ने लूटा है, भाइयों में कहा गम था, भाइयों में कहा दम था, बहनों ने भी वहीं पर लूटा, घर जाने के लिए किराया कम था। वाह, फिलहाल घर आप क्यों जा रहे हैं, घर तो बहनों को जाना था ना, और उन्होंने लूट कर एकदम सही किया। फिलहाल एक ही जो दिन आता है बहनों का, उसमें भी बहन अगर पीछे से हट जाएं तो बहन बहन नहीं होती। एंड इसके बाद लगातार आप ही के मैसेजेस हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और ठंडी लग रही है क्या आज मैम? जी नहीं, हमको ठंडी नहीं लग रही है, वो क्या है ना, हमारे धर्मेंद्र मोहन जी का सिग्नल हिल गया था तो सोचा हमने अपना भी सिग्नल हिला दे थोड़ा सा। एंड ओके, तो इसके बाद आपके कुछ डायलॉग्स और लगातार कॉल करते रहिए, आप सुन रहे हैं कॉल ट्यून गुना। आइए चलते हैं, इन्जॉय करते हैं सुनील कुशवाहा जी की फरमाइश, जिसके खातिर मैं दुनिया छोड़े जा रहा हूँ। और इन्जॉय करते रहिए, मिलते हैं अगले गाने पर, अगली फरमाइश पर, आपकी अपने कॉल ट्यून गुना में। स्टे ट्यून्ड।

और भैया ये थी फरमाइश हमारे बहुत ही प्यारे लिसनर सुनील कुशवाहा जी की, मैं जिसकी खातिर जा रहा हूँ दुनिया छोड़ के। और मैं ये सोच रही हूँ कल इतने अच्छे त्योहार के बाद इतना सैड सॉन्ग कैसे सुन सकते हैं आप। लगता है कल कुछ ज्यादा ही खर्चा हो गया है जनाब का, क्या ख्याल है आपका? फिलहाल उन्नति मैम हमारा गाना बजा दो, कुछ पागल लोग बेकरार हो रहे हैं। बेकरारी का मजा तो तभी है ना जब थोड़ा सा इंतजार आए, और गाना सुनने का मजा तो तभी है ना जब बेकरारी हद से ज्यादा बढ़ती जाए, क्या ख्याल है आपका? फिलहाल आइए चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। अगला गाना यहाँ वहां से नहीं, सीधे मथुरा से आया है, क्योंकि हमारे साथ जुड़े हैं शारदा प्रसाद प्रजापति, ब्रज रेडियो श्रोता मथुरा से, और उन्होंने फरमाइश की है यस बॉस फिल्म से बस इतना सा ख्वाब है। वैसे ख्वाब भी मेरा इतना सा ही है कि चांद तारे मैं धरती पर तोड़ लाऊं, और पैसा ही पैसा हो, मोती हो, सोना हो, चांदी हो, मैं आगे दुनिया पीछे, मैं आसमान पे दुनिया जमीन पर, और यही इस गाने में कहा भी जा रहा है। फिलहाल एंजॉय करते रहिए और सुनते रहिए आपका अपना रेडियो मेरे साथ, आपका गोंडा वाला एफएम रेडियो ज्ञान 89.6 एफएम। कॉल करते रहिए 6393316429 पर।

0: और इस गाने को सुनते सुनते ही हमारे बीच में एक और श्रोता जुड़ गए हैं, तो आइए उनसे बात कर लेते हैं। हेलो,
1: गुड आफ्टरनून।
0: गुड आफ्टरनून जी, आपका नाम?
1: शालिनी मौर्य।
0: शालिनी मौर्य जी, बहुत ही कम शब्दों में आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे साथ ऑन एयर जुड़ी हुई हैं। उड़ी बाबा, मतलब आपको हमारे लिसनर सुन रहे हैं और आप हमसे ऑन एयर जुड़ गई हैं इस वक्त। इतना रूखा सूखा, अच्छा। इस शालिनी जी, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? मैम बोलिए। मैम तो बोलती ही रहती है, लेकिन आप मुझे डरा क्यों रही हैं?
1: मैम कहाँ डरा रही
0: हैं? अब देखिए, ऐसे बोलेंगी तो बच्चा डर जाएगा ना। चलिए, बस यही हंसी आपकी हमको चाहिए। तो फिलहाल ये बताइए, कल आपकी कितने की कमाई हो गई?
1: मैम कल 7:30।
0: हम तो छापा मारने आ रहे थे। चलिए शालिनी,
1: भाइयों ने गिफ्ट दे दिए।
0: ओ, भाइयों ने गिफ्ट दे दिया, चलिए छापा कैंसल। वैसे हम आ रहे थे, सोच रहे थे आपके घर पे आ जाएं, देखें आपके बैंक बैलेंस में कितना बैंक बैलेंस बढ़ चुका है। चलिए तब भी अच्छा है, मेरा भाई तो मुझसे ही उधार मांग के मुझे ही दे रहा था। फिलहाल ये बताइए, कौन सा गाना है आपका?
1: दिल दिया
0: गल्ला। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत जल्द आपका ये गाना बजाते हैं, तब तक के लिए थोड़ा इंतजार कीजिएगा प्लीज। थैंक यू। हाँ जी, और इसके बाद हम चलेंगे अपने अगली फरमाइश की ओर, जो किसी और की नहीं, हमारी देवी प्रसाद जी की होने वाली है। एंड नाजिया जी कह रही होती, मैम मुझे ऑन एयर लेती फिर देखती मेरा चलवा तो काहे नहीं कर रही हैं आप हमको कॉल। कॉल कीजिए, हम आपको ऑन एयर ना ले तो बताइएगा जनाब, मतलब मोहतरमा।

0: और ये थी फरमाइश हमारे शारदा प्रसाद प्रजापति की। और इसी के बीच हमारे साथ जुड़े हैं कोई और। हेलो
1: मैम, दे दीजिए, हमको कोचिंग जाना है।
0: मोहतरमा, नाम बता दीजिए, फिर हमको क्या देना है ये भी बता दीजिए।
1: सबा सबा सबा।
0: ओ सबा जी, आपके सिस्टर का बर्थडे है, चलिए बर्थडे मनाते हैं। कल राखी मनाई थी और आज हम लेकिन हमें बर्थडे केक नहीं मिला है अभी तक।
1: क्या हुआ?
0: बर्थडे वाला केक
1: आइए आपको खिला दें।
0: एड्रेस बताइए, हम तो आप ही जाएंगे केक खाने के लिए। यहीं कहीं है, बस हम पहुंच रहे हैं यहीं कहीं। लेकिन उससे पहले आइए साथ में विश कर देते हैं आपकी सिस्टर को हैप्पी वाला बर्थडे। जी
1: और
0: तो
1: सुन रही
0: हूं। आप नहीं बोलेंगी फिर?
1: बोलेंगी।
0: अरे तो आप बोलिए भी।
1: क्या बोले?
0: इसको कहते हैं मारे खुशी के भूल जाना कि बोलना का है दोस्तों। चलिए हम ही विश कर देते हैं आयशा जी को मेरी तरफ से और आपकी तरफ से भी ढेर सारी शुभकामनाएं उनके इस खास वाले जन्मदिन पर।
1: थैंक यू मैम।
0: इतनी खुशी, इतनी खुशी, ओए ओए ओए। बहुत शुक्रिया। और ये हमारा बर्थडे स्पेशल गाना है हमारी आयशा जी के लिए उनकी सिस्टर की तरफ से।

और ये थी फरमाइश हमारी देवी प्रसाद जी की। और नागेश्वर जी पूछ रहे हैं, उन्नति मैम बहुत खुश हो रही हूँ, लगता है राखी पर बहुत पैसे मिले हैं। सही कहा आपने, पैसे ही मिले हैं, रुपए तो मिले ही नहीं, वो भी मेरे ही से उधार लेकर के मुझे ही रिटर्न दे दिया गया है कि ये लीजिए उधार, बराबर हुआ आपके साथ। इतनी इसीलिए हम खुश हो रहे हैं। इसको कहते हैं दुखी में खुश होना, वो जो खुशी के आंसू होते हैं इसलिए हम दुख में बहुत खुश हो जाते हैं। फिलहाल आइए ट्यून कर लेते हैं हमारी अमित कुमार जी की फरमाइश नैनो वालों ने। नैनो वालों ने आप इंजॉय करते रहिए बाजीराव मस्तानी फिल्म से, और हम मिलेंगे, नहीं सॉरी बाजीराव मस्तानी नहीं, सॉरी पद्मावत फिल्म से। आई एम सो सॉरी, क्योंकि मेरा दिमाग है आज राखी के उसमें। और आप कॉल करते रहिए 6393316429 पर, सुनते रहिए कॉल ट्यून गुना विद राजू रती।

0: हेलो
1: मैम, मेरा गाना अभी तक प्ले नहीं हुआ।
0: मोहतरमा, अपना नाम बता दीजिए और ऑन एयर आके इतना गुस्सा अच्छी बात नहीं होती।
1: मैम मेरा नाम जानवी है।
0: जी जानवी जी, आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन अब आप ऑन एयर आ ही गई हैं, तो चलिए आपसे कुछ सवाल कर लेते हैं। आपकी फिल्म धड़क के बारे में क्या ख्याल है? हमने सुना था कि आपने अपनी एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था धड़क। जानवी जी, और गले की खिचखिच को दूर करते हुए आई थिंक हम वापस से आ चुके हैं। और मेरा आपसे एक सवाल है जानवी जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो तो। हेलो,
1: आवाज नहीं आ रही मैम।
0: ऑल राइट, आई एम सो सॉरी, आई थिंक सिग्नल प्रॉब्लम है कुछ। फिलहाल के लिए जानवी जी ने अपनी फिल्म के बारे में हमें बताने से मना कर दिया, तो एंजॉय करते रहिए नैनो वालों ने।

इस गाने को सुनने के बाद मेरा चैन रैन नैन मैन पैसे रुपए सब चले गए हैं। फिलहाल आइए चलते हैं हमारे अगले गाने को ट्यून कर लेते हैं। हमारी नाजिया अंसारी जी की फरमाइश राजा बिया फिल्म से, तू जो हंस हंस के सनम मुझसे बात करती है, बस यही बात जमाने को बुरी लगती है। बहुत ही प्यारा गाना है, उदित नारायण की आवाज़, गोविंदा पे फिल्माया गया गाना। इंजॉय करते रहिए, मिलते हैं अगले सॉन्ग पर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

अब भैया किसी को कितना भी बुरा क्यों ना लगे, लेकिन कविता कृष्णमूर्ति की आवाज बेहद ही खूबसूरत है उदित नारायण जी के साथ। और ऑफ कोर्स आप सुन रहे थे समीर के बोल, नदीम श्रवण का संगीत और फरमाइश थी हमारी नाजिया जी की राजा भैया फिल्म से। आइए चलते हैं और इंजॉय करते हैं हमारी अरविंद जी की फरमाइश। और अरविंद जी कहते हैं एक कुवारा इंजॉय करते रहिए। एंड जी हाँ, मेरी ऑफ एयर बात होती है मेरे लिसनर्स के साथ, सो डोंट वरी गाइस। एंड नहीं नागेश्वर जी, आपके साथ ऐसा नहीं होने वाला है, आपको हम डायरेक्ट ऑन एयर लेंगे, जवाब बाद में देंगे, सवाल पहले करेंगे।

अरविंद जी की फरमाइश पर महेंद्र जी लिख रहे हैं ये गाना है कि जो लिरिक्स है मेरे जैसे बंदे ने लिखी होगी, क्या बात है। और हमारे नागेश्वर जी कह रहे हैं किसी की अगर कल शादी है तो बैंड तो आज ही बजाना पड़ेगा ना। फिलहाल ये तो शादी वाला ही बताएगा। फिलहाल आइए चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं। अगला गाना हमारे पास आया है राम नरेश जी की फरमाइश पर, और क्योंकि कल वो हमें बहुत याद कर रहे थे रक्षाबंधन वाले दिन, तो स्पेशली उन्होंने ये गाना अपनी छोटी बहन को डेडिकेट करते हुए वे फरमाइश की है ये खूबसूरत सा नगमा, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। स्टे ट्यून्ड।

ये थी फरमाइश हमारे राम नरेश जी की। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। और अगली फरमाइश हमारी आई है धर्मेंद्र मोहन जी की, जिनसे हमने पसंती का डायलॉग बुलवा लिया था। तो आइए इंजॉय करते हैं आपकी पसंद का ये वाला सॉन्ग, अगर खुदा रूठ जाए। या खुदा नहीं रूठेगा, मैं वादा करती हूँ, लेकिन आप इंजॉय करते रहिए। हम मिलेंगे अगले सॉन्ग पर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

आइए बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश किसी और की नहीं, जानवी जी की आई है, जिनकी फिल्म की बात हम कर रहे थे लेकिन वो बीच में ही छोड़ के चली गई थी, हमारा दिल तोड़ के चली गई थी। फिर आप सुनते रहिए, हम आपका दिल नहीं तोड़ेंगे और आप बजाएंगे बैंड बाजा, क्योंकि देवर की बारात लेकर भाभी चली है कहाँ, अब ये तो आप भाभी बताएंगी। फिलहाल सुनते रहिए, एंजॉय करते रहिए, मिलते हैं अगले गाने पर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

और भाई हमारे नागेश्वर जी कह रहे काश मेरी भी कोई भाभी होती, मेरी शादी में ये सॉन्ग डेडिकेट करती। नागेश्वर जी मैं कह रही हूँ आप शादी करो, सॉन्ग डेडिकेट करने के लिए हमारे पूरे लिसनर की मंडली बैठी हुई है और देखिएगा आपको कैसे कैसे गाने डेडिकेट किए जाते हैं। फिलहाल आइए चलते हैं अगले फरमाइश की तरफ और आप सुनने जा रहे हैं राजू सलमानी जी की फरमाइश हिमालय की गोद फिल्म से। ये

0: और इसी गाने के बीच में हमारे साथ एक और लिसनर जुड़ गई हैं। आइए नाम जान लेते हैं उन मोहतरमा का। हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी, आपका नाम?
1: अन्नपूर्णा
0: जी, क्या बात है, इतना खूबसूरत नाम है आपका, इतना प्यारा नाम है, हमारा दिल खुश हो गया। और आई थिंक आप हमारे साथ पहली बार जुड़ रही हैं कॉलर ट्यून गोंडा में।
1: जी हाँ।
0: तो कैसी हैं आप?
1: अच्छे हैं, आप कुछ, आप कैसी हैं?
0: मैं बढ़िया झकास बिंदार, और आपके आने के बाद हम और खुश हो गए।
1: अरे खुश रहना चाहिए, जिंदगी में खुश रहना जबरदस्ती पड़ता है।
0: पर हमारी मम्मी
1: देने वाले तो बहुत है।
0: बात तो आपकी एकदम सही है, लेकिन हम ज्यादा खुश रहते हैं तो मेरी मम्मी कहती मेरी बिटिया पगला गई है।
1: नहीं, पागल नहीं होते हैं, वो रहना पड़ता है। क्योंकि जो गर्ल्स होती है वो खुश रहेंगी तभी तो उनकी ब्यूटी कायम रहेगी।
0: क्या बात है, इसीलिए मैं सोचूं इतना ग्लो कहां से आ रहा है आजकल।
1: हाँ, संगत का सवसर है ना।
0: जी, फिलहाल के लिए ये बताइए कल राखी कैसी रही आपकी?
1: बहुत अच्छी।
0: और कौन सी मिठाई खिलाई आपने?
1: रसगुल्ला बनाकर अपने हाथ से।
0: अरे वाह, मतलब थोड़ा सा बचा है तो मैं आ जाऊं कहो तो?
1: बिल्कुल आइए, आनंद समोसा के पास मेरा घर है।
0: क्या बात है, मैं वहीं से निकलती हूँ रोज, पहले बताना चाहिए था, मैं अपनी स्कूटी मोड़ लेती।
1: अरे तो आइए ना, निकलती है तो आइए, हम आए हैं अपने मायके में राखी बांधने ना, डुमरिया, मेरा घर डुमरियागंज में।
0: ओके, तो भैया हम आते हैं, तब तक के लिए चलिए आपका रसगुल्ले वाला गाना बजा देते। कौन सा गाना है आपका?
1: नहीं, याराना फिल्म का गाना सुना है, यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा जाना।
0: क्या
1: तेरे जैसा यार कहाँ।
0: जी, पता चल गया मुझे आपका गाना। और किसी को डेडिकेट करना चाहेंगे आप ये सॉन्ग?
1: ये मेरी बेस्ट फ्रेंड स्वीटी के लिए।
0: क्या बात है, स्वीटी जी, मतलब आप दोनों के नाम इतने प्यारे कैसे हैं?
1: हम दोनों प्यारे हैं ना इसलिए।
0: अरे वाह।
1: आप कभी कभी अपनी तारीफ खुद करनी पड़ती है ना।
0: हम तो कहते हैं रोज रोज करो, लोग बुराई ही करते रहते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया,
1: नमस्कार।
0: हाँ जी, तो ये थी हमारी अन्नपूर्णा जी हमारे साथ, और उनके गाने को हम बजाते हैं, लेकिन उससे पहले आप एंजॉय कीजिए राजू सलवानी जी का गाना।

भाई स्वीटी जी को ये गाना डेडिकेटेड था और वक्त के कम रहते हुए इस गाने को बीच में ही रोकना पड़ा, इसके लिए माफी चाहेंगे। फिलहाल आइए चलते हैं, एंजॉय करते हैं हमारी शालिनी मौर्य जी की फरमाइश दिल दिया गल्ला, और इसके बाद हम चलेंगे अपने आखिरी एंड इसके बाद डेडिकेटेड सॉन्ग की तरफ। स्टे ट्यून्ड।

ये थी फरमाइश हमारी शालिनी जी की, और अगली फरमाइश हमारे इम्तियाज अहमद जी की है। तो आइए इंजॉय करते हैं और हम मिलेंगे आपके ये एक चटपटा सा आखिरी डेडिकेटेड सॉन्ग लेकर के, जो स्पेशली हमारे उन लिसनर्स के लिए जिन्होंने आज अपनी फरमाइशें हम तक नहीं भेजी या ये जो इंतजार कर रहे हैं कि हमारा गाना कब प्ले हो भैया।

0: तू तो कह रही थी तू 5'8" है।
1: तू भी तो बोला तू 5'7" है।
2: और ये थी फरमाइश हमारे इम्तियाज जी की। एंड इसी के साथ आपके कुछ मैसेजेस ले लेते हैं। मैसेज में जो आया है हमारे पास वो था महेंद्र जी का, उन्होंने मैम प्रस्तुति लाजवाब थी आज की, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजिया जी लिख रही होती मैम हम चलते हैं, बाय बाय बाय, आप अपना ख्याल रखिएगा। एंड लिखा है नागेश्वर जी ने, मैम आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगा, लोगों की चटपटी बातें सुनकर तो और भी दिल खुश हो गया, आपके सवाल जवाब ने तो हमें भी खुश कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड इसी के साथ ये रहा के लिए डेडिकेटेड सॉन्ग, क्योंकि हम स्टार्टिंग में आते ही उस साल का लोकप्रिय गीत ये सुना रहे थे, तो क्यों ना तमा तमा पे ही आपसे अब आपसे इजाजत चाहेंगे, विदा लेते हैं हम आपसे, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए, आप सुन रहे कॉल ट्यून गोटा विद राज चुनौती, और ये है आपका अपना गोटा का एफएम रेडियो 89.6 एफएम। एंड जाने से पहले ये गाना डेडिकेटेड हमारे सभी लिसनर्स को जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं चैट बॉक्स में, नागेश्वर धाकर जी और उनके साथ बाकी लिसनर्स, एंड वो भी जो हमारे साथ रेडियो गार्डन और फ्रीक्वेंसी से जुड़े हैं लगातार पिछले एक घंटे से।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8919-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
2: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
2: आज ही कॉल करें 9861 9876 9819 1976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
1: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
2: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम गोधूली, जहां ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला। होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गोधूली स्पेशल खेत खलिहान, जहां हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में। और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट ढेर सार मसालेदार बातें, चटपटी चाची लेकर आती हैं। और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधूली में, स्टे ट्यून्ड।
1: आप सुन रहे रेडियो 11.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे अदनान मौजूद है आपके साथ आपके अपने वाले स्टूडियो में। आपका स्पेशल प्रोग्राम शुरू हो गया है गोधूली, और आप सभी को पता है कि इस प्रोग्राम में गोंडा की प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज को हम इनवाइट करते हैं। वो किसी न किसी कार्यक्षेत्र को लेकर के रिप्रेजेंट करते हैं, अलग अलग एरियाज से आते हैं, उनके काम के बारे में जानते हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो आज इसी कड़ी में हमारे बीच में बेहद अहम बातों को लेकर के हाजिर है डॉक्टर अमित सिंह, जो कि डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर हैं एंड फिजिशियन होम्योपैथ हैं। सबसे पहले तो हम वेलकम करते हैं आपका अपने इस शो में जिसका नाम है गोधूली।
2: थैंक यू
1: सो मच। और जैसा कि अभी हमने बताया कि भाई बहुत अहम मुद्दों पे बात होने वाली, दरअसल बात इतनी अहम है कि आपका और हमारा जो दिन ब दिन बदलता लाइफस्टाइल है, उसकी वजह से जो हम डिप्रेशन में आ रहे हैं या टेंशन में होते हैं या हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होती है, उसको लेकर के बहुत सारी बातें आज जानने को मिलेगी। और महज जानेंगे नहीं बल्कि उसके उपचार पर भी हम बातें करने वाले। इसके अलावा योगा के बारे में विस्तार से बातें होने वाली हैं। तो इससे अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज का ये प्रोग्राम कितना ज्यादा स्पेशल होने वाला है। इसीलिए हम पहले ही वॉर्न कर रहे हैं कि कहीं छोड़ के मत जाइएगा, सुनते रहिए। सो आइए चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और उनसे जानते हैं उनके बारे में। सर, सबसे पहले तो चूंकि हम ये जानना चाहेंगे कि आप अपने बारे में बताएं हमारे श्रोताओं को, आपकी पैदाइश कहाँ हुई, आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा और अपने परिवार के बारे में।
2: मैं डॉक्टर अमित सिंह, मेरा जन्म ग्राम बनकटी अर्जुन सिंह, जिला गोंडा में ही हुआ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा केंद्रीय विद्यालय ITI मनकापुर से हुई। मैंने हाई स्कूल वहाँ से पास करने के बाद GIC गोंडा से इंटर किया। उसके बाद फिर तैयारी किया लखनऊ में, फिर पॉट के एग्जाम के थ्रू मेरा सिलेक्शन होम्योपैथी के लिए हुआ। फिर मैंने वहाँ 5.5 साल का कोर्स किए जीवाज यूनिवर्सिटी से किया। उसके बाद मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ मैंने RML यूनिवर्सिटी से किया, और ये मेरी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा रही। मेरे पिताजी असिस्टेंट इंजीनियर ITI मनकापुर में थे, माताजी शुद्ध रूप से गृहिणी थी। हम लोग का गांव से भी काफ़ी लगाव रहा, और इसलिए हम लोग इस कार्य को और अच्छे से जानते हैं, और जो कार्य हमको मिला है जिला प्रोग्राम का प्रबंधक का, वो और अच्छे से कर पाते हैं, जो कि हमको जमीनी स्तर से हम लोग जुड़े रहे हैं, क्या खान पीन रहा है लोगों का, क्या लाइफ स्टाइल में चेंज हो रहे हैं, सभी चीज़ों के बारे में।
1: बेशक। तो अभी तक आपने बताया कि आपकी क्या प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई, और अभी तक की आपने पोस्ट के बारे में बताया, एक क्लिप्स दिया है, ये बहुत अच्छी बात है। सो वापस से एक बार पीछे चलते हैं आपके जीवन में और कुछ जानने की कोशिश करते हैं। आपका एम्बिशन क्या था, क्योंकि अभी तो आप डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर हैं, आपने क्या सोचा था, गवर्नमेंट जॉब में ही आने का था या कुछ और प्लानिंग थी कभी आपकी कि आप कुछ और परस्यू करेंगे?
2: एक्चुअली प्लानिंग तो सच पूछे तो सिविल सर्विसेज की ही थी, लेकिन प्लानिंग चेंज होती रहती है। आदमी बच्चा रहता है तो पायलट बनने की कोशिश करता है, कोई और बनता है, कोई और मिलता है कुछ और बनता है। लेकिन फिर मेडिकल में चले गए, तो मेडिकल में फिर जब जाने के बाद आपने इतना समय दे दिया है 5.5 साल, फिर लगता है कि नहीं, जिस चीज़ के लिए है फिर वो आपने किसी की सीट बेकार कर दी है ना, अगर छोड़ के आप किसी और चीज़ में जाते हैं। फिर इसी विधा में आगे बढ़ गए हम लोग, मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ भी कर लिया, तो अब इसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, क्लिनिक कर रहे थे, अब इसको आगे बढ़ा रहे हैं।
1: ऑलराइट, तो मतलब आप भी पायलट बन चुके हैं जैसे हम भी बने थे कभी।
2: वुमन सभी बच्चे पायलट कर्नल कुछ ना कुछ बनते ही रहते हैं है ना,
1: और मेरे जैसे बच्चे हैं तो हाँ वो फिल्मों में भी जाते हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल, नहीं आप तो स्मार्ट हैं, कहीं भी जा सकते।
1: बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बच्चों की महत्वाकांक्षाएं होती हैं कि वो बचपन में जो कुछ भी देखते हैं और उनको लगता है इसमें बहुत लाइमलाइट है, इसमें बड़ा नाम है या बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है, उस चीज में जाने की वो जरूर ट्राई करते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि पिताजी का आपको साथ मिला। पिताजी का कभी इस बात पे कोई प्रभाव था कि आपको यही करना है, यही परस्यू करना है, क्या था?
2: नहीं, उन्होंने कभी इस तरह का दबाव तो नहीं डाला, जो ठीक लगे वो करो। उनकी इच्छा कुछ ऐसी नहीं थी कि आप स्पेशली यही करें, जो करो वो ठीक से करो, उसी में नाम करो,
1: जो भी करे उस पे 100% दे।
2: 100%
1: ओके,
2: और उसी में आपको सब कुछ आना चाहिए, ये नहीं आधा अधूरा नहीं, आधे मन से नहीं करना है। उनका जोर इसी पे था।
1: ओके, पढ़ाई लिखाई में किस तरह के आप छात्र थे? बड़े एवरेज थे या टॉपर थे या वीक थे, क्या था आपके साथ में?
2: पढ़ाई लिखाई में तो मैं शुरू से ही ठीक था, अच्छे स्टूडेंट्स में हमेशा गिनती रही।
1: ओके,
2: ध्यान भी रहता था उधर पढ़ने पे, बाकी चीजों में भी रहता था, खेलने में भी रहते थे हम लोग।
1: ओके, यानी आपकी जो गिनती होती थी वो एक अच्छे स्टूडेंट्स में कहीं ना कहीं गिनी जाती थी, ये बहुत अच्छी बात है। इसके साथ ही अगर आप अच्छे स्टूडेंट थे तो कुछ ना कुछ आपकी रुचि भी रही होगी, तो किन चीजों में आपकी रुचि बहुत रही है बचपन से?
2: अध्ययन में, लेखन शैली में, वाद विवाद प्रतियोगिताएं होती थी, कुछ कंपटीशन होते थे इन सब पे, और जैसे हम लोग के यहाँ यूथ विंग पार्लियामेंट का एक प्रोग्राम हुआ करता था, उसमें भी हमने कई बार अवार्ड्स जीते हैं, क्लस्टर पे, फिर जोनल लेवल पे गए, नेशनल लेवल तक गए उस पर काम करते हुए। स्काउट गाइड में भी रहा, उसमें प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान, तृतीय सोपान का नहीं लगा मौका, कुछ पढ़ाई की व्यस्तता के कारण, लेकिन द्वितीय सोपान तक उसमें पास किया हमने। ऐसे ही चलता रहा, पढ़ाई के साथ साथ जो भी और एक्टिविटीज थी उसमें कुछ ना कुछ करते रहे। खेलने में बैडमिंटन का शौक था।
1: खेलने में बैडमिंटन का शौक था। ओके, मतलब एक तो आपकी बातों से मुझे ये समझ में आया कि आप उस तरह के छात्र थे कि आपको नई चीजें करने में बड़ा मजा आता था, यानी कोई भी चीज अगर नहीं आपने देखा कि अध्ययन के अलावा भी कुछ है तो उसको जब तक कर ना लें, उसको जान ना लें, मतलब वो एक होता ना जिज्ञासा होती है
2: जी।
1: तो ये बड़ी अच्छी बात है, और एक छात्र जीवन में तो इसका होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। आपने बताया कि आपको कई सारे अवार्ड्स मिले, आप क्लस्टर लेवल पे गए, आप उससे ऊपर भी गए, ये बहुत अच्छी बात है। डिबेट की आपने बात की, अगर हिंदी में बात करें तो उसका लोग बोलते हैं बहस
2: जी,
1: और यूं तो हम मार्केट में बहुत सारी बहस देखते हैं, तो आप कौन सी बहस करते थे?
2: बहस तो कई प्रकार की है, हम लोग सकारात्मक बहस की बात करेंगे ना, जिससे कुछ अर्थ निकले
1: जी।
2: एक आप गए सब्जी लेने, वहां से बहस कर रहे हैं, पैसा छुड़ा रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। सब्जी लेने वाले से अगर इस पे बहस हो जाए आपकी, ये सब्जी अच्छी नहीं है, कहाँ से लाए हो, ऐसे अच्छी आ सकती थी तो अच्छा है, लेकिन आपकी बहस यहाँ से हटाओ, ऐसे करो, दो चार चीज फ्री दे दो, तो वो नकारात्मक हो जाती है। आपको लेना है कि आपको बहस में सकारात्मक चीज खोजनी है, नकारात्मक खोजनी, मिलेगा तो दोनों, च्वाइस आपकी है, आपको लेना क्या है, बहस करनी किस पे,
1: बहस करनी किस पे, मतलब ये डिपेंड करता है। वाह, वेरी नाइस, आपने कहा कि भाई किसी चीज को एक तो नेगेटिव बहस होती है, एक होता है कि वो कंस्ट्रक्टिव होती है, कुछ निकल के आता है, कुछ अच्छी चीजें निकल के आती है। आपको क्या लगता है कि जो पेरेंट्स हैं उनके हिसाब से बच्चों को उनको इस तरह के मौके देने चाहिए, और जो बच्चे डिबेट्स वगैरह जैसी चीजों में रहते हैं उनकी बुद्धि पे इसका क्या असर पड़ता है?
2: देखिए, मैं तो चाहूंगा कि पूरी तरह छूट देनी चाहिए, उनको वॉच करें, गाइडेंस बहुत जरूरी है, लेकिन दबाव ना डालें। अगर कुछ खेलना चाहते हैं या किसी कंपटीशन भाग लेना चाहते हैं, करने दीजिए, आप नहीं करने देंगे तो बंध जाएंगे बच्चे, फिर बौद्धिक विकास नहीं हो सकता उससे। आप जबरदस्ती की किताबें रटवा लें, 10 किताबें रख दें, पढ़ लें, तो आप क्या करेंगे पढ़ के? इस तरह की पढ़ाई आपकी किसी काम नहीं आ सकती। अगर आप फिजिकली फिट नहीं है, मेंटली फिट नहीं है, तो आप कुछ बन सकते हैं, लेकिन आप फिजिकली फिट नहीं, आप कुछ भी बन जाए, आप दिन भर उसी में परेशान रहेंगे, दवाओं में परेशान। मेंटली फिट नहीं है तो आपका मन नहीं लगेगा अपने कार्य में, फिर आप चाहे जो बन जाए, पूर्णतः आपने 100% नहीं दे सकते। आपने भी देखा होगा, जिस दिन आपकी तबीयत खराब हो जाएगी आप नहीं बैठ सकते यहाँ पे।
1: बेशक, मतलब आपके सिंपल सा कहने का मतलब, अगर मैं ऐसा एग्जांपल दूं कि आप घूमने निकले हैं पहाड़ियों में और आपने 3-4 झोले टांग के रखे हैं, लगातार टांग के रखे हैं, तो आपका बार बार जहन जाएगा कंधा दर्द हो रहा है, हाथ में पकड़ा हुआ है इसको रखेगा, मतलब आपको खाली हाथ जाना, तब तो आप एंजॉय कर पाएंगे। और यही लाइफ है शायद, कि आप बैलेंस कर लें, अपना मेंटली तौर पर भी आप फिट रहे और फिजिकली तौर पर भी। वाह क्या बात है, ये तो बहुत खूब आपने कहा। अब मैं आपसे जानना ही चाहूंगा, क्योंकि आपने बहुत सारी एक्टिविटीज में हमेशा भाग लिया है, आपके टाइम पे क्या आप भी आज के जैसे वो अकेले रहने पे विश्वास करते थे क्या, कि मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं है, खेलकूद में मैं अकेले लूंगा, सारा काम मैं अकेले कर लूंगा, क्या था और अभी क्या मानना है आपका इस चीज को लेकर?
2: देखिए, उस वक्त मैं क्या कोई भी अकेले नहीं रहता था, मोबाइल नहीं था सोशल मीडिया नहीं था, है ना, सोशल मीडिया नहीं था, तो लोग निकलते थे हालचाल पूछने के लिए, आपको 4 बार किसी दोस्त के घर जाना पड़ता था, है हो भैया कि नहीं हो।
1: ओके,
2: आप क्या था, आपने मैसेज कर दिया, व्हाट्सएप पे आ गया, कॉल कर लिया, ये सब व्यवस्थाएं नहीं थी, टेलीफोन लगे थे, लिमिटेड लोगों के यहाँ लगे थे, महंगी काल दरें हुआ करती थी। अगर आपको याद होगा कि थोड़ा सा हालचाल पूछने में 10 से 15 रुपए लग जाया करते थे, और जब उस 10-15 रुपए की बहुत वैल्यू हुआ करती थी।
1: बेशक बेशक,
2: तो आपको किसी दोस्त से मिलना होता था तो उसके घर जाना ही पड़ता था, वो भी साइकिल चला के जाना पड़ता था, तो आपकी बॉडी फिट रहती थी, खेलने जाना प्लान करना है तो सब मिलके एक साथ बैठते थे, है ना, क्रिकेट मैच होता था, 2-2 रुपए के चंदे लगते थे बच्चे फिट रहते थे, मेंटली फिट रहते थे,
1: मेंटली फिट रहते थे,
2: तुमने दिया कि नहीं दिया,
1: सामाजिक मूल्यों को जानते थे, मिलते जुलते थे रहते थे, तो कहीं ना कहीं वो एक दूसरे को लेकर के रेस्पेक्ट की जो भावना हम सम्मान की बात करते हैं, एक्सेप्टेंस की बात करते हैं, डायवर्सिटी की जो हम बात करते हैं कि विविधताओं को एक्सेप्ट करने का मादा था। बेशक सही कहा आपने, क्योंकि आपने भी अपना जो बचपन गुजारा है वो कुछ इस तरह ही गुजारा है, लोगों से मिलना जुलना, सोशल रहना, खेलना कूदना पढ़ना सब उन्हीं के साथ में, यानी एक शानदार बचपन आपने बिताया है। और इस वक्त जो हमारे शो को जेंजी यानी आज की जो जनरेशन सुन रही है वो सिर्फ इमेजिन कर रही होगी कि कितना खूबसूरत जिंदगी हुई करती थी इससे पहले, क्या बात है। सो फिलहाल हम बता दें कि अब हमारे एक छोटे से शॉर्ट से म्यूजिकल ब्रेक का वक्त हो गया है। हमारे साथ में आज मौजूद है डॉक्टर अमित सिंह सर, जो कि डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर हैं और फिजिशियन हैं होम्योपैथ के। आने के बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर वो किस चीज के लिए हैं, कौन सा मिशन चला रहे हैं और कौन से मिशन से हम लोगों का क्या फायदा होने वाला है। सो आइए मिलते हैं ब्रेक के उस पार, कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
2: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
2: आज ही कॉल करें 9260 9816 9817 6। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
1: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
2: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
0: ब्रेक के बाद एक बार वापस से स्वागत करते हैं आपका अपने शो जिसका नाम है गोधरी। आप सुन रहे रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन, और आपके अपने होस्ट एंड दोस्त आरजे अदनान आपके साथ में मौजूद है। आज जो चर्चा हो रही है और होने वाली है वो बहुत ही अहम मुद्दों पर हो रही है। सो फिलहाल आइए चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और उनसे वापस से बात करते हैं, क्योंकि आज हमारे साथ में गेस्ट के रूप में मौजूद हैं डॉक्टर अमित सिंह, जो कि डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर हैं और फिजिशियन हैं होम्योपैथ के। सर, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आप हैं डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर आयुष मिशन के, इसके बारे में बताइए कि आखिर ये आयुष मिशन है क्या और आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या ड्यूटीज है।
3: देखिए, मेरा पद जो है वो हिंदी में आप समझिए जिला कार्यक्रम प्रबंधक का, आयुष मिशन। इसमें आयुष का AYUSH करके लेते हैं इसमें हम लोग। ए से आयुर्वेद, वाई से योगा, यू से यूनानी, एस से सिद्धा, एच से होम्योपैथी। इन सभी को एक साथ मिला के एक मंत्रालय बनाया गया आयुष। उसके तहत कुछ मिशन में मतलब है कि कुछ न कुछ नए प्रोग्राम को जोड़े गए, कैसे हम लोग पुरानी पद्धति की जो दवाइयाँ थी उन पर ज़्यादा फोकस करें। मॉडर्न मेडिसिन पर इतना दबाव बढ़ रहा है, भीड़ लगी है, लाइन लगी है, आपको प्रॉपर टाइम में इलाज नहीं मिल पा रहा है, शहरों में भागना पड़ रहा है। तो इनका मेन उद्देश्य ये था कि आप अपने किचन से स्टार्ट कीजिए, आपकी किचन में ही तमाम मेडिसिन रखी हुई हैं, आप जानते नहीं हैं तो इसलिए आप भाग रहे हैं।
0: वो क्या आप उन्हीं की बात तो नहीं कर रहे, दादी नानी के नुस्खे जिन्हें
3: हाँ कह सकते हैं। अच्छा था, मतलब उसमें नीम हकीम खतराए जान की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन है वैसे ही, है ना। सबको पता था कि अदरक और शहद लेने से खांसी ठीक होती है, लेकिन अब विश्वास घट गया तो अब लेंगे ही नहीं, आप तो पहुंच गए किसी सिरप लेने के। ठीक है, सिरप भी लीजिए, जब जरूरत पड़े तब लीजिए, पहली शुरुआत यहीं से कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा। योगा कर लीजिए, भूल गए हम लोग शुद्ध चीज़ों को खाना, भूल गए हैं अब सब लोग, फास्ट फूड खा रहे हैं इसलिए बीमार रह रहे हैं। तो ये एक मिशन ये चलाया गया, भारत सरकार की इच्छा थी तो उसके तहत ये मिशन जो चल रहा है, इसमें यह है कि सभी लोग स्वस्थ हों और नेचुरल तरीके से स्वस्थ हों, आपको साइड इफेक्ट नहीं होने चाहिए, इस पे जोर है बस।
0: ओके, तो अगर मोटे मोटे तौर पे हम समझे तो जो हमारी भारत सरकार है उसका ये विजन और मिशन है कि कहीं ना कहीं लोगों को हेल्दी रखा जाए पारंपरिक तरीकों से, घर से ही वो खुद का ट्रीटमेंट कर पाए। और जो आपने कहा कि मॉडर्न मेडिसिन पे आजकल जो बोझ बढ़ता जा रहा है, लोग उसके तरफ भागते जा रहे हैं, उसकी जरूरत ना हो। और शायद आपने ये भी जो बात कही आपकी बातों से निकल के आ रहा कि कई ऐसी छोटी मोटी दिक्कतें होती जैसे खांसी, बुखार, जुकाम, इनका शायद ट्रीटमेंट खुद ही हम कर सकते हैं घर पे रह करके आराम से, जब तक के लिए हमको ये महसूस ना हो कि अब चीजें हमारे हाथ से निकल रही है और हमको डॉक्टर के यहाँ अब जाना ही पड़ेगा। और आपने बताया कि इसमें आयुर्वेद के अकॉर्डिंग कुछ बहुत सारे इलाज होते हैं, योगा से कर सकते हैं, यूनानी है, सिद्धा है, होम्योपैथ है, इसमें से कुछ नाम से तो हम बहुत अच्छे से चिर परिचित हैं, और हम चाहेंगे कि एक बार आप भी हमको ये आयुष में जो AYUSH है इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताते चले कि आयुर्वेद क्या है, योगा क्या है, यूनानी क्या है, सिद्धा क्या है और होम्योपैथ के बारे में।
3: देखिए, अभी अपने भारत सरकार ने इसको चलाया इस मिशन को, उसके तहत उत्तर प्रदेश सरकार इसको आगे बढ़ा रही है
0: जी।
3: इसमें ए से जो आयुर्वेद का तो आप लोग सब परिचित हैं ही हैं कि हम लोग की जड़ी बूटियां थी आयुर्वेद से है, चाहे तुलसी का पौधा हो या लेमन ग्रास हो या और चीज़ें जो आप लोग जानते हैं, इलायची हुआ, ये सब चीज़ें इनका क्या प्रयोग है, इस तरीके जो जड़ी बूटियों का यूज है ये हो गया आयुर्वेद से, और कुछ ऐसी जिसका आपने नाम भी नहीं सुना होगा। तो आप थोड़ा बहुत तो आयुर्वेद के बारे में सब लोग जानते हैं, पर बहुत गहराई से नहीं जानते हैं, ये भी मानना पड़ेगा। हम सब आयुर्वेदिक डॉक्टर खुद ही बन जाते हैं,
0: बिल्कुल,
3: लेकिन ऐसा है नहीं। अब उसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं योगा के लिए। सबको लगता है कि हमने देखा और टीवी में देखा योगा, अच्छा यूट्यूब में देख लेंगे किस बीमारी पे कौन सा योगा करना है। तो ऐसा नहीं कि आप सारी चीज़ों को खुद जान पाएं। कभी कभी होता है हम लोग उल्टा योगा कर लेते हैं, है ना। इसके लिए क्या एक बढ़िया प्रशिक्षक चाहिए होता है।
0: तो थोड़ा सा आपको रुकना चाहूंगा, ये उल्टा योगा आपके कहने का क्या मतलब है?
3: जैसे हम लोग टीवी में देख रहे हैं, अब हमको ये समझ में आ रहा है कि सांस लेना है कि छोड़ना, वो कह रहे हैं, लेकिन कभी कभी आवाजें ऐसी आती है। अब एक प्रशिक्षक के सामने बैठेंगे तो वो टोक देगा, आपने ये गलत कर दिया, या आप योगा करते करते इधर झुक गए, इधर मत झुकिए। टीवी में तो आपने देख लिया कि हाँ सीधा सीधा बैठना है सब कुछ, पर क्या एक्चुअल में आप सीधे बैठ के कर रहे हैं, उस मुद्रा में कर रहे हैं? ये सामने वही समझिए, जैसे बच्चे को तो किताब दे दीजिए, पढ़ सकता है घर पे, लेकिन आप विद्यालय क्यों भेज रहे हैं? इसलिए कि सही मार्गदर्शन मिले।
0: मार्गदर्शन मिले
3: तो कौन देगा? वो प्रशिक्षक देगा, वो ज्यादा अच्छा देगा। हो सकता है कुछ लोग अपने मन से भी अच्छा कर लें, बहुत अच्छा कर लें, लेकिन पूर्तियां सभी लोग नहीं कर सकते, इसके लिए उनकी जरूरत है। ऐसे ही फिर एक यूनानी है, उनकी पद्धति है, ये भी आयुर्वेद की से मिलती जुलती है, लेकिन यूनान से है, उसके जो खोज थी वो यूनान से थी।
0: ओके,
3: हाँ, इसलिए यूनानी है। और होम्योपैथ जैसे आप जानते हैं जर्मनी से इसकी निकली हुई पद्धति, उसमें भी मदर टिंचर्स बनते हैं, वो भी आयुर्वेद से लिए आते हैं। मतलब हमारा बेसिक तो देखेंगे जो भारत की सबसे पुरानी पद्धति आयुर्वेद है, मूल जननी तो हम उसी को मानते हैं, निकले वहीं से सब कुछ, सिद्धा भी है वो भी नेचुरोपैथ से जुड़ी होती है। तो अब इन सभी चीज को मिला के एक छत के नीचे, भारत सरकार का ये मंशा है कि एक छत के नीचे इन सब की व्यवस्था की जाए, और वहाँ प्रशिक्षित डॉक्टर जो रखे जाए, योग प्रशिक्षक रखे गए हैं, उनसे आप पहुँच कर दवा ढंग से ले सकें। अपने मन से मत ले लीजिए, वो आपके तय करेंगे कि भाई इस बीमारी में आपको क्या लेना है, आप मत तय कीजिए कि हमको यही लेना है, कुछ चूक हो सकती है आप इसलिए।
0: और वो जो एडवाइस आती है कि हमारी चाची तो ये कहती है, हमारी नाना ये बताते थे, हमारे फलाने, क्योंकि आपने ये चीज अभी कोट किया कि खुद से आपको नहीं बनना है डॉक्टर, यानी इसके स्पेशली डॉक्टर्स होते हैं, प्रशिक्षक होते हैं जो कि ट्रेंड होते हैं, स्किल्ड होते हैं, और कहीं ना कहीं शायद यही वजह होती है नेगेटिविटी की कि हम खुद से चीजों को इस्तेमाल करते हैं और कुछ अगर बाई चांस चीजें नहीं सही हो पाती तो हमको लगता है ये वर्क ही नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आती है। तो आपने कहा कि ये जो पांच तरह की पद्धतियां हैं इनको एक छत के नीचे लाने की कोशिश सरकार के जरिए की जा रही है। अच्छा, चाहे आयुर्वेद की बात किया जाए, योगा की बात किया जाए या होम्योपैथ की, एक चीज सब में कॉमन कहा जाता है कि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, क्या ये सच है?
3: देखिए मोटी मोटे रूप से आप कह सकते हैं, पर ऐसा नहीं है पूर्तिया, हम लोग इसको हमेशा 100% नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ योगा आपने गलत कर दिया तो उसमें भी आपको नुकसान होता है, बॉडी स्ट्रेच हो जाएगी, पता चला कि आप गए थे दूसरी बीमारी के लिए, ठीक करने के लिए दूसरी बीमारी लेके चले आए। ऐसे आयुर्वेद में भी कब क्या खाना है, आपने भी सुना होगा दही के साथ ये चीज नहीं खाना चाहिए,
0: कॉम्बिनेशंस जो
3: कॉम्बिनेशंस होते हैं ना,
0: बिल्कुल,
3: तो दूध के साथ मछली नहीं खाना चाहिए, ये सब चीज कॉम्बिनेशन कैसे जाना आपने? नुकसान तो है नहीं, तो फिर तो कभी भी कुछ भी खा लीजिए आप,
0: कुछ भी खा ले, सही बात है,
3: कटहल के साथ दूध नहीं पीना, तो ये ऐसी ऐसी चीजें जो है, तो ये भ्रांतियां तो है नहीं, ये फैक्ट है, तो इसको बताने के लिए कौन होगा? इसीलिए डॉक्टर साहब, इसीलिए आपको सभी चीज की इलाज खुद नहीं करना चाहिए, लोगों से मिलिए।
0: तो आपने ये चीज बताया कि साइड इफेक्ट उस तरह तो नहीं होता है जैसे मॉडर्न दवाओं में हमें अक्सर देखने को मिल जाता है, लेकिन ये है कि इससे फायदा ये है कि अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से करते हैं तब तो आपको साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं होने वाला, लेकिन अगर इसमें आपने थोड़ा सा अपने हिसाब से करने की कोशिश की और आपको वहां पे ज्ञान नहीं है तो शायद आपके लिए थोड़ा सा चीजें फिर उल्टी पड़ सकती है। चलिए, ये बात तो बहुत अच्छी है। अच्छा, अब हम जानना चाहेंगे, आपने कहा क्योंकि आयुष मिशन के तहत ये सेंटर्स यहाँ चलाया जा रहा है गोंडा में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में प्लीज बताइए कि किस तरह के सेंटर्स हैं, कितने सेंटर्स हैं डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त, कितने प्रशिक्षक हैं आपके डिपार्टमेंट की तरफ से, और उन सेंटर्स पे किस तरह से लोगों को योगा कराया जाता है, ट्रेन किया जाता है, लगभग कितने लोग आते हैं और किस तरह से वो लाभ पा रहे हैं इन सारी चीजों से?
3: देखिए, ये सेंटर्स पूरे जिले भर में लगभग सभी ब्लॉक्स में है, और ये वेलनेस सेंटर में योगा प्रशिक्षक रखे जाते हैं, जो डॉक्टर्स वहाँ हैं ऑलरेडी वो दवा लिखते हैं, उसके साथ में आपको बताते हैं कि इसमें ये योग जरूरी है, तो वो योग सिखाने के लिए प्रशिक्षित योगा प्रशिक्षक रखे गए हैं, एक महिला रखी जाती है और एक पुरुष, और उन दो वो दोनों लोग आपकी हेल्प करते हैं कि आपको इस बीमारी में ये करना है, आपको एक दिन सिखाएंगे, दो दिन सिखाएंगे, फिर आप उसके बाद अपने घर पे जाकर कर सकते हैं। अच्छा, अभी लोगों को मालूम भी नहीं है कि वेलनेस सेंटर चलते हैं, अब धीरे धीरे हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी भी है कि हम लोग बताएं कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, इसमें आप कहीं भी जाइए और सीखें और लोगों को जोड़े। हमारा कहने का मतलब है आप पूरे मोहल्ले में भी अपने बताएं कि आप जाइए भैया, इस चीज़ का पैसा मत खर्चिए, सरकार आपके लिए पहले से व्यवस्था करके रखी हुई है, तो बस यही उद्देश्य है इसका।
0: ओके, तो आपने कहा कि फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, तो अगर हम चूंकि सिटी में बैठे हैं इस वक्त, अगर हम सिटी की बात करें तो यहाँ पे कहाँ पे कोई आपका सेंटर चल रहा है?
3: यहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पीछे होम्योपैथिक डिपार्टमेंट, आप वहाँ जाएंगे, वहाँ वेलनेस सेंटर चलता है। वहाँ पे महिला और पुरुष दोनों प्रशिक्षक हैं, आप जब जाएंगे वो लोग आपको इसकी सुविधा देंगे, आपको अच्छे सिखाएंगे, बताएंगे कि आप क्या कैसे करना है, आप सीखिए फिर वहाँ भी जाके कीजिए, उसके बाद अपने घरों पर करते रहिए।
0: अच्छा, तो इसके लिए क्या कोई रिकमेंडेशन की जरूरत पड़ती है कि आपने किसी डॉक्टर ने रिकमेंड किया है तो ही एंट्री होगी वेलनेस सेंटर पे, या कोई भी कभी भी जा सकता है?
3: देखिए, एक समय निर्धारित है, उस समय के बीच में आप जब जाएंगे तो कोई ऐसा एंट्री तो नहीं है। आप जाएंगे अपनी बीमारी बताएंगे, उसमें उस हिसाब से जो योगा के प्रशिक्षक हैं वो आपको एक प्रशिक्षित करेंगे, वहाँ पे बताएंगे कि ऐसे ऐसे करते रहिएगा, तो कोई ऐसी एंट्री नहीं है, कुछ क्लिष्टता नहीं है उसमें कि आप जा रहे हैं तो किसी लिखवाना पड़ेगा आपको, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। भ्रांतियाँ हैं कि ऐसे जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, नहीं बैठे होंगे, नहीं, सब प्रॉपर वे में बैठ रहे हैं, आपको मिलेंगे, आप जाइए और अपना इलाज कराएं।
0: टाइमिंग आप बता सकते हैं क्या लगभग टाइमिंग होती है?
3: टाइमिंग जो ओपीडी की टाइमिंग होती है डॉक्टर्स के, वही टाइमिंग रखी गई कि आपको अलग से परेशान ना होना पड़े।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि ओपीडी के टाइम पे ही आपके ये काम भी हो जाता है, तो एक फीमेल एक मेल आपको योगा इंस्ट्रक्टर वहाँ पे मौजूद मिलेंगे। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात हुई कि आपने बताया कि इस तरह से सेंटर्स चल रहे हैं। और अगर हम ऑल ओवर गोंडा की बात करें तो कहाँ कहाँ इस तरह के सेंटर्स हैं, क्या और भी यहाँ की जो तहसील हैं, ब्लॉक्स हैं, वहाँ भी क्या इस तरह के सेंटर्स हैं?
3: देखिए, एक सेंटर पंडरी कृपाल में है
0: जी,
3: एक गोंडा प्रॉपर में है जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के पीछे मैंने आपको बताया, उसी कैंपस में है हॉस्पिटल के, और उमरी बेगमगंज में है, पकड़ी में है, दूरस्थ इलाकों में भी है, मतलब ऐसे कई सेंटर्स चल रहे हैं और हर जगह योग प्रशिक्षक रखे गए हैं। सरकार की ये नीति है कि गांव के दूरस्थ इलाके में भी आपको अच्छे से अच्छी आयुष की सुविधाएं मिले, जैसे आपको वहां से चल के शहर में ना आना पड़े, 50-50 किलोमीटर दूर तक सेंटर है, तो आपको यहां आने के लिए परेशान ना होना पड़े, तो आपके घर के नज़दीक में जो सेंटर हो आप वहां जाएं और अपने लिए इलाज करें।
0: तो मोस्टली ये सेंटर्स आपको CHCs के पास में या जो हॉस्पिटल से वहीं मिलेंगे, जो सरकारी हॉस्पिटल से?
3: ऐसा ही है।
0: ओके, चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आयुष मिशन के तहत पूरे डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त अगर आपके अकॉर्डिंग हम माने तो सारे ही ब्लॉक्स में और सारी ही तहसीलों में इस तरह के सेंटर्स चलाए जा रहे हैं जिसमें योगा इंस्ट्रक्टर्स होते हैं और लोगों को उनकी बीमारी के अकॉर्डिंग या फिर बेसिक एक्सरसाइजेस जो होते हैं या योगा होते हैं उनको बताया जाता है, उनको हेल्थ के लिए अवेयर किया जाता है। आपको क्या लगता है इसमें किस तरह से, अब चूंकि आप बता रहे हैं इस वक्त और आप DPM भी हैं, लेकिन सुनने वाले इस वक्त आपको बहुत सारे सुन रहे हैं, तो हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है इसको सुनने और समझने के बाद किस तरह से लोगों तक पहुंचाएं? और लोगों तक क्या, मुझे लगता है कि मुझे खुद भी जरूरत है, हर इंसान को जरूरत है, मतलब ये नहीं कि आप जवान हैं, आप बैठे हैं और आपका फिगर ऊपर से लेकर नीचे तक मेंटेन दिख रहा है, तो इट मींस कि आप मेंटेन है। तो क्या लगता है कि योगा कितना ज्यादा जरूरी है, उस तरह के सेंटर्स का लाभ कितना उठाया जाना चाहिए?
3: देखिए, हम तो चाहेंगे 100% उठाया जाए, अब सबको ये तो नहीं कह सकते कि आप बीमार हैं, सामने वाले को तो अच्छा नहीं लगेगा, जैसे कोई किसी का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है तो उसको कह दिया, उसको गुस्सा आता है ना कि हमारा बिगड़ा है, लेकिन योगा सबको करना चाहिए, योग करेंगे निरोग रहेंगे। अब सुबह उठना सबको मालूम है अच्छा है, लेकिन सब लोग तो उठ नहीं पाते हैं, खाना सबको मालूम है कि 12 बजे दिन में खा लीजिए, रात में 8 बजे खा लीजिए, 11 बजे तक भी खाते हैं, कुछ भी खाते रहते हैं, TV नहीं देखना चाहिए 9 बजे, पहले सबको मालूम था, TV कम से कम 10 फीट की दूरी से देखनी चाहिए, सबको मालूम था, अब 10x10 के कमरे ही हो गए हैं, है ना?
0: जी।
3: मोबाइल स्क्रीन आप गुलांक से सटा के देख रहे हैं, तो वो जो चीज़ें पहले हुआ करती थी जिसको हमको आपको जानकारी थी, अब वही भूलते जा रहे हैं, तो इसीलिए इन सब चीज़ को व्यवस्थित, क्योंकि हम लोग मोबाइल से दूर हो नहीं सकते, सोशल मीडिया से दूर हो नहीं सकते, क्योंकि इतना वर्कलोड है लोगों को, 8-8 बजे रात तक लोग कंप्यूटर पर काम करते, तो काम छोड़ा नहीं जा सकता, उसी बीच में कुछ ऐसे रास्ते निकालने पड़ेंगे आपको अपने लिए, शरीर के लिए, नहीं तो कहने को तो हर व्यक्ति स्वस्थ है, जब तक स्वस्थ है तब तक चल रहा है, जब अस्वस्थ होता है तभी उसको लगता है कि ये दिक्कत, इसीलिए आज आप देखिए अमूमन 50% से ज्यादा लोग हाइपरटेंशन के शिकार हो जाते हैं 40 की उम्र में, 40 की उम्र में तो पहले लोग सुनते ही हंसते थे कि 40 की उम्र में हो गए, लेकिन अब ये कॉमन सी बात हो गई। इसीलिए आप योग करें कि कम से कम जो बीमारी, जिस पहले सुनते थे कि बुढ़ापे के रोग हुआ करते थे, ब्लॉकेज, हार्ट ब्लॉकेज होते थे, अब आप देखते हैं कि 35 साल के व्यक्ति को हो गया, आजकल तो अपने पेपर्स में पढ़े होंगे कि 18 साल के लड़के को हो गया, उसकी डेथ हो गई बेचारे, तो ये घटनाएं क्यों हो रही है? खान पीन आपका बिगड़ गया और फिजिकल एक्टिविटी आपकी खत्म हो गई, आप मशीन से काम करने लगे, खुद भी मशीन बन गए, तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, इसके लिए या तो लोग पसीना बहाते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, थोड़ा सा अपने लिए समय निकालेंगे, शरीर स्वस्थ रहेगा, इसीलिए हम लोग चाहेंगे कि आप लोग भी जागरूक करें और 100% लोग इसमें काम।
0: बेशक। और आए दिन चूंकि हम सुनते हैं कि भाई योगा डे पे यानी वर्ल्ड योगा डे जब होता है तो उसकी टैगलाइन हमेशा चेंज की जाती रही है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है। क्यों की जाती रही है? क्या योगा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्या सिर्फ सरकार ही नहीं, सिर्फ भारत लेवल पे नहीं बल्कि पूरे वैश्विक लेवल पे योगा को महत्व दिया जा रहा है? क्यों दिया जा रहा है? ये सारी बातें हम आने के बाद भी जानेंगे। और साथ ही साथ मेंटल वेलबींग यानी मानसिक स्वास्थ्य पे हमको चर्चा करना है। हम सभी में इन चीजों की बहुत ज्यादा इस वक्त जरूरत है। करेंगे चर्चा लेकिन इस म्यूजिकल ब्रेक के उस पार, सो कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन।

0: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
1: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट। आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर। रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
2: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।
3: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840-33958।

0: ब्रेक के बाद एक बार वापस से स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का आपके अपने शो गोधुली में। आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। जाने से पहले बड़ा अहम सवाल हमने पूछा था। हमारे साथ में आज एक्सपर्ट के तौर पे मौजूद हैं डॉक्टर अमित सिंह, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर एंड फिजिशियन होम्योपैथ। क्योंकि जाने से पहले हमने ये कहा था कि हर बार जब भी हम देखते हैं इंटरनेशनल योगा डे पड़ता है या योगा से स्पेसिफिक कोई भी इवेंट किया जाता है तो उसकी टैगलाइन दी जाती है, लेकिन हम स्पेशली अगर बात करें इंटरनेशनल योगा डे पे तो क्या वजह है कि कभी आध्यात्मिक रूप से उसको जोड़ के बताया जाता है, कभी सामाजिक रूप से, इतने अलग अलग पहलुओं से योगा को जोड़ा जाता है, क्या महत्व है योगा को, वो भी इंटरनेशनली सेलिब्रेट अब किया जाने लगा है?
1: देखिए, योगा को छोटे में आंकना तो गलत होगा, बहुत विस्तृत रूप से इसके बहुत ब्रॉड रूप से इसको जानना है। और इसके लिए ये है कि अब आप मौलिक रूप से अपने आप को स्वस्थ यत करना चाहते हैं तो मानसिक रूप से, है ना, शारीरिक रूप से, बौद्धिक रूप से, सभी प्रकार के विकास की ज़रूरत होती है। इसीलिए इसको हर दूर दूर तक गांव में से लेके और शहर में सबका रहन सहन अलग अलग होता है, एक जैसा आप नहीं मान सकते पूरी तरीके से। तो सबको व्यवस्थाएं देना और सबके लिए अलग अलग, क्या सबके लिए ज़रूरत है, सबकी ज़रूरतें भी अलग अलग हैं, तो सबको अलग अलग कैसे पैमाने पर खरा उतरा जाए और कैसे उतारा जाए, इसलिए हर बार कुछ ना कुछ नया भी करते रहते हैं और विस्तृत होने के नाते तो हम लोग थोड़ा सा इसमें कुछ नया चीज़ जोड़ते भी रहते हैं और अच्छे से आपको समझाया जा सके। मान लीजिए इस बार ये हुआ कि ऐसी चीजें, इस बीमारी कभी क्या होता नहीं, जैसे कोविड में आपने बहुत सी चीजों की नई चीज जानी होगी, कुछ नए आसन आपको सिखाए गए होंगे, कुछ आपने नई जड़ी बूटियों के बारे में जाना होगा जिसका आपने नाम भी नहीं सुना था।
0: बिल्कुल
1: ऐसा नहीं था, उसका नाम था नहीं, तो बहुत व्यस्त, हमको जानकारी नहीं था। ऐसे ही योगा का है, हमको जानते ही नहीं है लेकिन बहुत वृहद है।
0: बेशक, ये तो आपने सही कहा कि बहुत ही वृहद है और कहीं ना कहीं जिंदगी के हर पहलू से जुड़ा है, इसीलिए शायद बार बार टैगलाइन भी हर तरह से इसको चेंज किया जाता रहा है। डॉक्टर साहब, अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि कहीं ना कहीं हमने योगा की बात की है तो योगा से हम जाना चाहेंगे कि अक्सर लोग बोलते हैं कि भाई हम इतना काम कर रहे हैं, हम फिजिकल, हमारा बहुत सारा काम है, हमारा इवन काम ही MR का है, मैं जा के जगह जगह दवाओं के बारे में रिप्रेजेंट करता हूँ, या मेरा काम फील्ड का है, या मेरा काम बहुत उठाने रखने का है, बहुत हम ऑलरेडी घर में बहुत सारी चीजें उठाते रखते हैं, चाहे महिलाओं की बात कर ले चाहे पुरुषों की, तो उनका मानना होता है फिर हम योगा क्यों करें, फिर योगा अलग से क्यों करना है, इसके बारे में प्लीज आप बताएं।
1: देखिए, जो काम आज हो रहे हैं ये काम पहले भी होते थे, लेकिन पहले क्या होता था, खाना बनाने के लिए मशीनरी नहीं थी, तब तो मानते थे हम लोग, आटा भी चक्की से पिस के आता था, दूसरे तरीके से महिलाएं खुद पीस डालती थी, मसाले पीसते थे, अब आपने मिक्सी खरीद ली, काम खत्म। काम तो आज भी आप मसाला पीसने कर रहे हैं, कह तो रहे हैं, लेकिन क्या आप सिलबट्टे पे कर रहे हैं, हाथ मूवमेंट में आ रहा है, नहीं आ रहा। अब तो आटा गूंथने की भी आपने देखा होगा मशीनें आ गई, इंडक्शन खरीद लिया, पहले लकड़ियाँ काट के लाते थे, फिर उसको रखते थे, सेट करते थे, फिर जलाते थे, मतलब फिजिकल, हमारा कहने का मतलब फिजिकल वर्क ज़्यादा था। पानी निकालने के 10 बाल्टी की जरूरत है परिवार में, तो 10 बार 20-20 हैंडल चला रहे तो 200 हैंडल पानी चला रहे हैं। क्या ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा है, बटन दबाया पानी ऑन हो गया। कहने के लिए तो आप दिन भर बिजी हैं, कपड़े भी धुल रहे हैं, कुछ कपड़े धुले कहेंगे हाँ धुला गया कपड़ा, लेकिन अब मशीन में धुले ना, पहले बाल्टी से धुलते थे, मेहनत होती थी, थक जाते थे, पस्त हो जाते थे, पसीना निकलता सोते थे, अब ये सब नहीं हो रहा है। तो फिजिकल वर्क अगर घटा है लेकिन खान पीन तो आपका घटा नहीं, वो तो और खराब हुआ। पिज्जा वर्कर का आपने नाम भी नहीं सुना था, पाश्चात्य संस्कृत में हम लोग जोड़ते चले गए, थोड़ी खान पीन की भी स्थिति खराब हो गई। इसीलिए अब योगा बहुत जरूरी है आपको फिजिकल बैलेंस करने के लिए, मेंटल बैलेंस करने के लिए, तो इस चीज के लिए योगा आपको करना ही पड़ेगा। सबको लगता है फिट है, कौन तय करेगा फिट है? आपके बॉडी के मानक ही तो तय करेंगे। अगर आपको हाइपरटेंशन हो गया 40 की उम्र में तो आप फिट नहीं है, डायबिटिक हो गए तो आप फिट नहीं है। तो आपको, आप ऐसा तो नहीं कि आपके जीवन अब जीने की इच्छा नहीं है, तो फिट रखने के लिए आपको फिर पुरानी पद्धति में जाएंगे, कुछ नई चीजें करेंगे, तो इसलिए एक योगा एक ऐसी चीज है जो पहले से हमारे यहाँ थी, प्रचार प्रसार की कुछ कमी, अब अच्छे से हो रहा है, अच्छे अच्छे प्रशिक्षक हैं, बढ़िया प्रशिक्षक हैं, पढ़े लिखे हैं, आप उनसे मिलेंगे सीखेंगे तो आपका शरीर दोबारा स्वस्थ हो सकते हैं, बढ़िया से हो सकते हैं, दवाइयाँ छूट सकती हैं, जरूरी नहीं कि सारी दवाइयाँ चलती रहें, छूट भी सकती
0: हैं। और सब हम स्वस्थ भारत की बात करते हैं, स्वस्थ समाज की बात करते हैं, लेकिन अगर हमारा स्वस्थ खान पान, जैसा कि अभी आपने कहा कि जीवन शैली सही नहीं है, तो हम किस तरह स्वस्थ हो पाएंगे? जापान के बारे में जब बात आती है तो फिर कहा जाता है कि वो लोग बहुत फिट होते हैं, सबसे ज्यादा एज भी वहां के लोगों की रिकॉर्ड की जाती है, और जहां तक मुझे पता है कई जगह ऐसे वहां पे एक रेडियो स्टेशन है जिसपे सुबह 20 मिनट और शाम में 20 मिनट निकाल करके बूढ़े बच्चे से लेके हर कोई उसको वहां पे योग

0: कराया जाता है, एक्सरसाइज बेसिक्स एक्सरसाइज जो होती है वो कराया जाता है, और कहा जाता है कि ये सबके लिए मैंडेटरी, यानी आप कोई भी काम कर रहे हैं उस वक्त आप उसको थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए पॉज करें और 20 मिनट का टाइम निकालें और उसको करें। तो कहीं ना कहीं वो एक पूरे समाज को स्वस्थ करने के साथ वो एक्शन भी दिखता है। क्या लगता है आपको कि हमको इन चीजों में किस तरह के कदम उठाने चाहिए? जिस तरह से आप देखते हैं कि अभी 20-25 साल का भी कोई बंदा है, उसका भी पेट बाहर ही चला आ रहा है। दुकानदार हम लोग जिनसे जाते हैं सामान खरीदते हैं, मतलब आपको उनके चेहरे से पहले उनकी तोंद नजर आ जाती है। तो मतलब ये प्रॉब्लम्स है कहीं ना कहीं कि ये हेल्थ को लेकर के। तो हमें क्या अभी करने की जरूरत है? आपने योगा बताया, अब आप कह रहे हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट भी है, आपके शहर में भी है, यानी आप जहां पे हैं आपके नियर बाय में वो सेंटर्स है। तो अब हमें क्या उन सेंटर्स का किस तरह से लाभ उठाना चाहिए, किस तरह से एक स्वस्थ समाज का निर्माण हम कर सकते हैं?
1: देखिए, व्यवस्थाएं तो सरकार की तरफ से पूर्णतया ही है, लेकिन यदि जागरूकता नहीं है, आपको जानकारी नहीं है, बगल में चल रहा है तो आप कैसे जान पाएंगे? उसको ऐसे लीजिए, लोगों पहले अपने अवसाद का नाम कभी नहीं सुना रहा होगा, लेकिन अब इधर डिप्रेशन के मरीज बहुत हो गए हैं, महत्वाकांक्षाएं बढ़ी हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, हाय तौबा लगी रहती है। तो आप ये मत सोचिए कि आपका ऑफिस का काम 8 बजे तक खत्म हुआ तो फिर आप क्या योगा करेंगे, आपको क्या जरूरत है, आप तो थक गए, आप चूर हैं, आपका हो गया योगा, हो गई फिटनेस, ऐसा नहीं है। मानसिक संतुलन बनाना भी बहुत जरूरी है। तो आपको शुद्ध चीज़ें, क्यों कहते हैं कि हरी साग सब्जियाँ खूब खाने चाहिए, ताजे फल लेने चाहिए, इसीलिए कहते हैं ना कि आपके मेंटल लेवल को भी ठीक करता है। तो आप जब योगा करेंगे तो पड़ोसी को भी बता पाएंगे, अगर आप अनफिट हैं और फिट हो गए आ गए तो पड़ोसी भी पूछेगा भैया कैसे हो गए हो फिट, क्या किया, तभी तो आप बता पाएंगे हम फिट हुए हैं तो आप भी चले जाइए, अभी ऐसा ऐसा कीजिए, आप ले जाएंगे, एक से एक करते हुए 11 बन जाएंगे, तो ऐसे ऐसे संख्या बढ़ेगी, लोग फिट होंगे, तो एक भार जो कम होगा, जो आपका स्वास्थ्य के प्रति जो खर्चे हैं आपके, वो भी आज बहुत बड़ा खर्चा हो गया है। बल्कि मैं आपको बताऊं, आंकड़ों के हिसाब से सैलरी का 1/4 मिनिमम लोग स्वास्थ्य के पीछे खर्च कर देते हैं। उसमें मैं फल सब्जियों की बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें दवाओं की
0: बात कर रहे हैं आप।
1: तो ऐसे खर्चों से बचना है, अगर हम नहीं कह रहे पूर्णतया बचा जा सकता है, मैक्सिमम रूप से तो बच सकते हैं आप, तो अगर हम लोग कोशिश करके 5% पे ले आए उस खर्चे को, तो पैसा आप किसी और चीज में हो सकते हैं, मेंटल सेटिस्फेक्शन होगा, अच्छा लगेगा, समाज से सोशली आप जुड़े रहेंगे, अभी तो कट हो रहा है ना धीरे धीरे करके, बस इसीलिए होगा, जरूरी नहीं, नितांत जरूरी है।
0: आपने अभी एक टर्म इस्तेमाल किया कि मेंटल लेवल पे भी चीजें सही होती है, महत्वाकांक्षा बताया, किस तरह की लोगों को महत्वाकांक्षाएं रहती है, क्यों थोड़ा सा स्ट्रेस में आजकल लोग नजर आते हैं?
1: देखिए, सबके ऊपर कंपटीशन का दबाव, प्रमोशन का दबाव, और हो जाए अगर आप मीडिया से जुड़े हैं, फेसबुक से जुड़े हैं, तो लाइक्स बढ़ जाएं,
0: लाइक्स
1: चेक कर रहे हैं, रात रात में चेक कर रहे हैं, गॉगल्स लगा के देख रहे हैं, पूरा अपने लाइफ को अपने बिल्कुल एक सीमित कर लिया है, कमरे के अंदर बंद कर लिया, खुली हवा में आप जाते नहीं, क्रिकेट मैच खेलते नहीं, कुछ करते नहीं, क्रिकेट भी आजकल मैं देख रहा हूँ लोग मोबाइल भी खेलते हैं, अब उससे कितनी एक्सरसाइज हो रही है तो आप जानिए, है ना, तो एक्सरसाइज तो हो नहीं सकती है, पसीने तो आपके निकल नहीं सकते,
0: बेशक
1: मेंटली परेशान हो सकते हैं,
0: बिल्कुल,
1: इसीलिए आपको निकलना भी पड़ेगा, खुली हवा में लेना पड़ेगा, खुली हवा, लाख रुपए की दवा, ये सब बातें जो होती थी तो उसके पीछे एक तर्क था, अब ये दिक्कतें बढ़ रही हैं इसीलिए क्योंकि हम नेचर से दूर हो गए हैं, अब नेचर से पास जुड़ने के लिए ही ये मुहिम चलाई जा रही है, इसलिए जब आप जुड़ेंगे तो मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे, और वही स्वस्थ होना ज्यादा जरूरी है।
0: आपने कहा मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। योगा में ऐसा क्या होता है कि फिजिकल एक्सरसाइज के साथ हम मेंटल लेवल पे भी खुद को स्वस्थ महसूस कर पाते हैं, क्या चीजें ऐसी होती हैं?
1: देखिए, उसमें कुछ ध्यान की मुद्राएं भी आपको बताई जाती हैं, फिर जब ध्यान की मुद्रा आप करते हैं तो बड़ा मेंटली सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा, रिलैक्स होगी पूरी बॉडी, हमेशा जो दौड़ भाग की होती है ना एक स्थिति, तो अब जैसे आप जिम चले जाएं तो फिजिकल एक्टिविटी तो आपकी बहुत बढ़ जाएगी, लेकिन मेंटल आपको वहां पीस नहीं मिल सकता, उसके लिए आपको योग करना ही पड़ेगा, प्राणायाम उसका एक बहुत बड़ा अभिन्न अंग है। तो ये चीजें जब जुड़ती है तो मेंटल आदमी मेंटल रूप से बिल्कुल वो सेटिस्फेक्शन उसको मिलता है, अलग से लगता है। आप किसी दिन बैठ के अगर आधे घंटे ध्यान करें एक बंद कमरे में, या खुली हवा में चले जाएं किसी पेड़ के नीचे हल्की सी धूप में बैठ के करें, तो आपको अलग सा लगेगा कि हाँ कुछ नई ऊर्जा मिली है, अपनी ही ऊर्जा बढ़ेगी, जबकि आपने कुछ अलग से कुछ किया नहीं है, थोड़ा सा समय दिया है। अब लोग समय नहीं दे पा रहे हैं, अपने लिए नहीं दे पा रहे हैं।
0: तो आपको क्या लगता है, मतलब मुझे ये नहीं समझ में आता एक बात कि डिग्रियां बढ़ती जा रही है, प्रोफेशनल कोर्सेज आते जा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम खुद को मॉडर्न बताने लग गए हैं और जानते भी हैं कि ये प्रॉब्लम है और ये सोल्यूशन है, उसके बावजूद क्यों लोग नहीं उठा पा रहे कदम, ये थोड़ा सा आपसे हम जानना चाहेंगे। आखिर क्या माइंडसेट बन गया है कि हम पढ़े लिखे भी हैं, हम समझदार भी हैं, और आप बता रहे हैं कि देखिए इतनी सारी सुविधाएं संसाधन उपलब्ध भी कराया जा रहा है आपके अपने शहर में, लेकिन उसके बावजूद भी हम जान के भी चीजों को नहीं कर पा रहे, क्या वजह है इसके पीछे?
1: देखिए इसकी एक चीज मैं आपको बताऊं, एक होता है साक्षर, एक होता है शिक्षित। जो आपने कहा डिग्रियां बढ़ रही हैं, लोग ज्यादा साक्षरता दर बढ़ रही है, शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं। दोनों में अंतर यह है कि आप उसके बेसिक चीज को समझें, क्या चीज हमारे लिए जरूरत है। आप तो जानते हैं कि फल खाना बहुत अच्छा है, एक एप्पल खाओ डॉक्टर के पास कभी ना जाओ, ये नारा बड़ा पढ़ा होगा आपने
0: जी,
1: पर क्या ये फॉलो हो पा रहा है, कैसा कर पा रहे हैं? हर रात में 8 बजे सो जाएंगे तो नींद अच्छी आएगी, 7 घंटे सोएंगे तो मन फ्रेश रहेगा। सिविल सर्विस वालों कहा जाता है कि आप 14 घंटा पढ़ें, 4 घंटा घूमें, इतने देर सोएं, क्या हो पा रहा है? क्योंकि आप कंपटीशन की दौड़ में हैं, आप बार बार सोशल मीडिया देख रहे हैं, आप न्यूज़ देख रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, क्योंकि आपकी एक्टिविटी घट गई है। तो आपको कुछ ना कुछ तो नया करना पड़ेगा। तो जिस चीज़ को हम नया कह रहे हैं वो पुरानी ही चीज़ें हैं अपनी, उनको वापस लाना है। अब सिर्फ नया से आप पाश्चात वाला संस्कृत वाली बातें आ रही हैं कि आप गाड़ी ले रहे हैं, तो आपकी फिजिकल एक्टिविटी जो साइकिलिंग से थी वो भी खत्म हो गई। तो हम तो ये नहीं कह रहे कि आपको दूर जाना है तो आप साइकिल चला के जाएंगे, लेकिन अपने स्वास्थ्य के लिए या तो साइकिल चला के स्वस्थ हो जाएं, और या तो फिर योगा करके, या तो कुछ और स्विमिंग करके, कुछ ना कुछ तो आपको अपने लिए एक मानक तय करना पड़ेगा कि हमारे पास जो आपको पसंद हो। बाकी तो जब कोई बीमारी होती है तो उसके लिए एक प्रशिक्षक है, वो आपको बताएंगे कि ये वाला योग, ये वाली मुद्रा आपके लिए ज्यादा अच्छी है। इसीलिए जरूरत है कि प्रशिक्षित लोगों से सीखा जाए, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाइए।
0: तो आपने कहा कि एक जो चीज बढ़ाने की बात की उससे मुझे गांधी जी का वो थॉट याद आ गया कि ये कहा गया कि अब तक जो करते आए हो अगर वही करोगे तो वही मिलेगा जो अब तक मिलता आया है। तो ये बात मुझे बड़ी क्लिक की है कि हाँ, कुछ तो आपको बढ़ाना पड़ेगा। अब आपको तय करना है कि आप शिक्षित हैं या सिर्फ डिग्री है, ये हमको खुद तय करना होगा। दूसरी बात मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपने कहा कि एक अच्छा योगा इंस्ट्रक्टर यानी प्रशिक्षित जो हो, तो ये कैसे हम जाने कि कोई एक योगा इंस्ट्रक्टर हमको बेहतर मिले? क्योंकि जैसा कि आपने पहले ही क्लियर कर दिया था कि अगर आप इसको सही ढंग से नहीं करेंगे तो ये चीज आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है, जैसे बाकी चीजें होती हैं। तो हम कैसे एक अच्छा योगा इंस्ट्रक्टर तलाश करें, क्या उसके मानक होते हैं, कैसे हम पता करें?
1: देखिए, जो सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से जो भी प्रशिक्षित लोग हैं, तो निश्चित तौर पे उन्होंने एक डिग्री ली है, उस पर काम किया है, उनको पूरा ट्रेंड रूप से स्किल्ड है, पूरी तरीके से स्किल्ड है। जब आप किसी मोहल्ले में जाएंगे या ऐसे ही किसी सीख रहे हैं, हो सकता है वो भी अच्छा सिखाते हो, लेकिन जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे जो सरकारी विभाग के तहत जो लिए जाते हैं उनका एक मानक तय है कि आपको ये डिग्रियां होनी चाहिए, इसके तहत तभी आप फॉर्म भर सकते हैं और तभी आपका सिलेक्शन होगा वो मानक पे खड़े उतरने पे। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहें कि जब मानक पे खड़े उतरे हैं तभी लिए गए हैं, इसलिए आप बेफिक्र होकर वहां पे जाएं। जैसे आप स्कूल में पढ़ने के लिए बच्चों को भेजते हैं तो आप ये पता कर लेते हैं इनका एफिलिएशन है कि नहीं है, वहां पे सही टीचर हैं कि नहीं है। या आप अच्छा जब आप सीखने भी जाते हैं तो आपको एक हफ्ते में पता चल जाता है कि ये कैसे हैं। तो अपने वो तो इसके लिए तो आपको वहां जाना ही पड़ेगा, और सबसे अच्छा है कि सरकारी सेंटर्स पे जाएं जहां प्रशिक्षित लोग ही हैं।
0: तो आपने ये बताया चूंकि सरकार का अपने मानक है, उस मानक के अकॉर्डिंग सिलेक्शन होता है जो भी योगा इंस्ट्रक्टर होते हैं, यानी पूरी तरह से ये इंश्योर किया जाता है कि वो प्रशिक्षित हो, स्किल्ड हो, सीखा हो, प्रैक्टिकल किया हो, उसके बाद लिया जाता है। तो ये एक सीधा और आसान तरीका है कि भाई आप आयुष मिशन के तहत जो हेल्थ सेंटर, वेलनेस सेंटर जिसकी आप बात कर रहे हैं, वहां जाके सीख सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि वहां पे आप सीख सकते हैं एक बेसिक जो भी आप योगा जाना चाहते हैं, एंड इसके बाद ये चीजें तो आप घर पे भी खुद से कर सकते हैं। आपको क्या लगता है? अच्छा, इसको अगर बढ़ावा देना है तो मान लीजिए अभी जो हमारे श्रोता इस वक्त आपको सुन रहे हैं, वो अपने लेवल पे कैसे इस चीज को बढ़ा सकते हैं, अपने साथ साथ अपनों का भी जैसे कह सकते हैं ना भला करने के लिए?
1: देखिए, पहले तो आप खुद जाने स्टार्ट करें। जब आप सीख के आएंगे आपको अच्छा फील होगा, आपको लगेगा कि बॉडी सुधार आ रहा है, परिवार भी जागरूक होगा, कहेगा अच्छी चीज कुछ करके आए हैं। फिर जो परिवार के और लोग बीमार हैं उनको लेके जाइए, धीरे धीरे बात ये मोहल्ले तक जाएगी, मोहल्ले के बीमार लोग जैसे होता है ना, सब लोग मिलते हैं, कहते हैं क्या दिक्कत है, क्या परेशानी, कैसे ठीक हुए, अच्छा डॉक्टर बताइए, अच्छा ये बताइए, क्या खाया जाता है इसमें, कैसे लोग जान जाते हैं कि चीनी नहीं खाना है शुगर में, किसी ने बचपन में तो पढ़ा नहीं था, मोहल्ले में ही बताया, उनको हुआ तो उन्होंने नहीं खाया, रसगुल्ला नहीं खाना है, आपने छोड़ दिया, वैसे ही छोड़ दिया। ऐसे ही जब आप सीख के आएंगे, अच्छे से करेंगे, फिट होने लगेंगे, तो पड़ोसी को भी लेके जाएंगे, भैया आप भी बीमार है, आप भी चलिए, मानवता यही तो है, या आप ठीक हुए दूसरे को ठीक करें, लेकिन आप ही अस्वस्थ हैं तो दूसरे को क्या सलाह दे पाएंगे। इसलिए एक लोग जाएंगे तो धीरे धीरे कतार बनेगी वो।
0: बेशक, यानी जो भी लोग हमको सुन रहे हैं तो अपने नियर बाय सेंटर्स को जो है वो विजिट करें, अब जाएं सीखें और खुद पहले उसका लाभ लें, खुद महसूस करें, फिर जब खुद वो सेटिस्फाइड हो जाए तो वो चीजें स्प्रेड करें लोगों को, लोगों तक उस बात को पहुंचाएं। बेशक, ये बिल्कुल सही है। और एक चीज जो हम और आपसे जानना चाहेंगे लास्ट में कि क्या सावधानियों की जरूरत होती है जब हम योगा कर रहे होते हैं, क्योंकि योगा से फायदा तो होता है लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है, कहाँ पे हम गलतियां कर जाते हैं योगा को करने या सीखने के दौरान।
1: देखिए मोटी मोटा तो मैं आपको ये बता पाऊंगा कि जैसे एक तो आप सुनते होंगे कि बिल्कुल खाली पेट करना चाहिए
0: जी,
1: सुबह और शाम का दो समय जो लिया जाता है इसलिए लिया जाता है कि सुबह वो ना आदमी का पेट खाली हो जाता है फ्रेश होने के बाद, और शाम को भी इसलिए 6 बजे के लगभग लोग उसका है योगा करने के लिए, क्योंकि दोपहर में आप 1:30 से 2 बजे तक खाना खा लेते हैं 5-4 घंटे बाद में खाली पेट होता है। तो ये बातें जब आप इस तरीके से करते हैं, फॉलो करते हुए, तो आपको कुछ लाभ मिलता है। मान लीजिए आपको जानकारी नहीं है, आपने योगा तो सीख लिया, यूट्यूब पे देख लिया, खाना खाया, भूल गए आप मुद्राएं शुरू कर दी, तो आपको दिक्कत आ सकती है। इसी काम को बेहतर तरीके से किस आसन में, अच्छा किसको क्या बीमारी है, उसको किस योगा की जरूरत है, इसको कौन बताएगा, इसीलिए इंस्ट्रक्टर की जरूरत होती है। वो उपलब्ध हैं, अच्छे हैं, स्किल्ड, इसलिए वहां जाइए। लेकिन ऐसी छोटी छोटी चीजों की सावधानियां रखनी पड़ती
0: है। जैसे कि सही कहा आपने कि कोई चीज जब बेहतर होता है तो लोग डिस्कस करते हैं कि हमने ये खाया था तुम भी खाओ, लेकिन यहाँ तो ये कि भाई इंस्ट्रक्टर आपको आपकी बीमारी और आपके हेल्थ के अकॉर्डिंग चीजें बताने वाले, इसीलिए तो वो ट्रेंड है ना, ट्रेनर है। ऑफकोर्स चूंकि हमने बहुत सारी बातें आपसे की, पहले तो हमने आपके जीवन के बारे में जाना, आपके छात्र जीवन के बारे में, आपकी अचीवमेंट के बारे में, एंड इसके बाद हमने चूंकि जाना कि डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर के पद पे आपका कार्य क्या है, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सारी बातें बताई आपने, आयुष के बारे में उसको पूरा एक्सप्लेन किया, मिशन के बारे में बताया किस तरह से चलाया जा रहा है। तो लास्ट में चूंकि ये सारी बातें हुई हैं और हमारे बहुत काम की है, जाने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप प्लीज अपना कोई लाइफ मंत्रा बताएं जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं, तो उनको जरूर उनको इंस्पिरेशन मिले आपके लाइफ मंत्रा से। आपका कौन सा ऐसा मंत्रा है लाइफ का सबसे बड़ा?
1: देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि जब मैं इस विषय पे बोलने के लिए आया हूँ, सबसे पहले खाने का टाइमिंग सुधार लें, सब लोग कोशिश करें
0: जी
1: कि दोपहर का खाना 12-1 बजे तक हो जाए, रात का खाना 7:30 से 8:30 के बीच में हो जाए, और कम से कम आधे घंटे का फिजिकल वर्क नेचुरल रूप से जरूर होना चाहिए। नेचुरल रूप से मेरा कहने का मतलब है कि बाहर निकल के जाएं, घर के बाहर टहलें, कुछ नहीं कर सकते तो टहल सकते हैं, टहलें, मान लीजिए किसी कारण से नहीं टहल सकते हैं तो हल्की धूप जो सुबह की हो तो उसमें बैठें, जो प्राणायाम जानते हैं वो करें, तो ये करना पड़ेगा। अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो आपका मन किसी चीज़ में नहीं लगेगा, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हों, आपके अगल बगल हो रही हों, आपका मन उदास रहेगा, मन आपका अपनी बीमारी में ही लगेगा, कोई आपसे बात करेगा आपका लगेगा नहीं, इसलिए आप अपने आप को समय दें। आप दुनिया को तो समय दे रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने आप को समय नहीं दे रहे हैं, अपने आप को पहचानिए और अपने आप के लिए क्या जरूरी है उसके लिए काम जरूर करें।
0: बहुत बड़ी बात आपने कह दी कि भाई आपको लग भी रहा है क्योंकि आपके पास कोई मिलने आता नहीं, आपको लगता कोई समय नहीं दे रहा है, एंड ऑफकोर्स आप खुद भी समय दे रहे होते हैं लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू दे रहे होते हैं और अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों को दे रहे होते हैं। और ये आपने बिल्कुल सही कहा कि अभी हमने अपने को ही वक्त देना बंद कर, शायद सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि कई कई दिन हो जाता है और लोग आसमान की तरफ निगाहें उठा के नहीं देखते हैं कि आज आसमान कैसा दिख रहा है, आज हवाएं कितनी ज्यादा ठंड है, आज पेड़ किस तरह लहलहा रहे हैं, कितना खूबसूरत लग रहा है। मतलब हमको ये चीजें देखनी होगी जो कभी हम लोग देखा करते थे, जो कभी देख करके हमारे मन में चीजें जहन में बदल जाया करती थी। बहुत ही शानदार आपसे बातचीत के अंश रहे, और अब चूंकि जाने का बिल्कुल वक्त आ गया है, जाने से पहले एक ये लास्ट आखिरी क्वेश्चन जो हम आपसे करना चाहेंगे। इस वक्त आप बैठे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम के स्टूडियो में, जो कि देवी पाटन मंडल और गोंडा का पहला एफएम है। जिस तरह से अभी ये टॉक शो हो रहा है, आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में ये गोंडा वासियों को या इसके जो श्रोतागण है जो सुनते हैं इसको, उनके लिए कितनी वैल्यू एड कर रहा होगा उनकी लाइफ में?
1: देखिए पहले तो इस प्रोग्राम के लिए मैं आपको बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि आप लोगों ने इतना अच्छा प्रोग्राम किया और एक अच्छा सेटअप बनाया है गोंडा जैसे, इसको लोग पहले पिछड़े जिला मानते थे, लेकिन आप इसको अग्रणी ले जाने में आप लोग का भी बहुत बड़ा योगदान है। छोटी छोटी बातों को हम लोग कैसे गांव तक पहुंचाएं, आपकी बातों को लोग दूर दूर तक सुनते हैं, इंजॉय करते हैं, तो किसी चीज़ को अच्छे से पहुंचाने का कला जो FM के थ्रू से हो जाएगा वो ऐसे नहीं पहुंच सकती। अपनी बातों को रखने का एक सही प्लेटफॉर्म जो आप लोग देते हैं और सभी लोग को देते हैं, जो और भी विभाग हैं या सरकारी योजनाएं चल रही हैं या क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, उनकी अच्छी अच्छी चीज़ें भी गांव के दूर दूर दराज तक पहुंचती है। जो आप एक पोस्टमैन का वाला भी काम आप लोग को कहा जाए तो आप लोग कर रहे हैं, अच्छा है, तो आप कहिए और अच्छा चले। और आपके श्रोताओं को मैं दोबारा शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि वो लोग भी आपके और आप व्यूअर्स को बढ़ाएं, श्रोताओं को बढ़ाएं, क्योंकि इसमें आप लोग कुछ ना कुछ सकारात्मक बातें करते हैं तो ये अच्छी चीज़ है।
0: जी बेशक, बहुत अच्छे ढंग से आपने सारी बातों को कवर किया। और जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, हमारे साथ में आज मौजूद हैं डॉक्टर अमित सिंह, जो कि डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर हैं और फिजिशियन हैं होम्योपैथ के। आपसे हमने बात की और आपने हमारे सारे प्रश्नों का बहुत ही सहजता व सरलता के साथ उत्तर दिया। आपने अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ तक आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो अपने श्रोताओं से हम ये कहेंगे कि भाई आप भी सुनते रहिए, अभी ट्यून करे रहिए अपना रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM, और कल फिर मुलाकात होगी अगले बार इसी शो में किसी नए मेहमान के साथ, कुछ नई बातों के साथ, कुछ और जानेंगे। और जिंदगी में कुछ ना कुछ अपने वैल्यूज हम हर रोज ऐड करते रहेंगे इसी FM के साथ में मिलकर के। मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।
2: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
3: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
2: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
3: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल 72 34 020 202।
2: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
4: आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने RJ अदनान के साथ। नई सुबह नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे। जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने RJ अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।
5: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
6: अरे भाग्यवान, अरे ईश्वर ने तुम्हें खूबसूरती और बेवकूफी एक साथ क्यों दे दी भाई?
7: खूबसूरती इसलिए कि तुम शादी का पैगाम दो और बेवकूफी इसलिए कि तुम्हारे पैगाम को मैं मंजूर कर लूं।
8: अरे सुना
9: क्या?
8: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
9: वाओ,
8: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको

0: देखिए तो कैसी हमारी परवाज हो गई, हमारी आवाज से मिली आपकी आवाज, दुनिया की आवाज हो गई। जी हाँ, हम हैं आपके गोंडा मैसेज मसाला में, जो कि है कार्यक्रम कविताओं का, जो कार्यक्रम आपकी संवेदनाओं का, जो कार्यक्रम मस्ती का, जो कार्यक्रम चाय की मिठास का, जो है कार्यक्रम आपकी जिंदगी की नए उमंगों का, नए आयाम का, नए आसमान का, जो कार्यक्रम है धुनों का और संगीत का, जो कार्यक्रम है देश की धड़कन का, तो ऐसी धड़कन जो गोंडा शहर की धड़कन भी है। तो आइए शुरू करते हैं गोंडा मैसेज मसाला, आपका फेवरेट शो आपकी फेवरेट आरजे प्रीना के साथ।
1: जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गोंडा सुनेगा अपना FM।
2: के हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ, नई सुबह नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे, जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात, आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।
3: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260981976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: अरे सुना
3: क्या,
2: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
3: वाओ,
2: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583546।
1: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
3: मतलब
1: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
4: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

हर साल लाखों लोग जलजनित बीमारियों से बीमार पड़ते हैं। क्या आप महफूज हैं? जलजनित बीमारियां यानी पानी से होने वाली बीमारियां, जिन्हें वाटर बोन डिजीज कहते हैं। ये बीमारियां वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूषित पानी के संपर्क में आने से या पीने से होती हैं। कुछ जलजनित बीमारियां हैं कॉलेरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, डायप्थीरिया, डायरिया आदि। इन रोगों से बचने के लिए अच्छी आदतें अपनाएं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण करवाएं। दूषित भोजन और पानी से बचें। कुछ भी खाने या पीने से पहले अपने हाथ जरूर धोएं। छत पर रखी टंकी को नियमित रूप से साफ करते रहें। पानी को गर्म करके पिएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।

नहीं देवनी एंड वेलकम इन योर शो गोंडा मैसेज मसाला, वो भी सैटरडे नाइट स्पेशल वाला शो में जिसमें होते हैं आपके आरजी सिंपल नॉट सो सिंपल और आपके डॉक्टर लव, जिनके पास होता है हर मरीज का दवा और हर समस्या का समाधान। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा, मिलते हैं इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद में। तब तक आप सभी अपने सभी उलझनों को, जितनी भी उलझने हैं याद कर लीजिए, और उसमें से जो द बेस्ट वाला है जिसका समाधान आपको लगता है कि डॉक्टर लव बहुत आराम से देंगे, वो समस्या ढूंढ

सवाल एक छोटा सा था जिसके पीछे ये पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली। भुलाऊं किस तरह वो दोनों आंखें किताबों की तरह जो याद कर ली।

सिर्फ दिल टूटा है, सांस नहीं, धड़कनों में रवानी अभी बाकी है। प्यार का किस्सा खत्म हो गया तो क्या, जिंदगी की कहानी अभी बाकी है।

किसी ने बहुत खूब कहा है कि हमारी तरक्कियों से बीमार है ये झूठे लोग, हमारी तरक्कियों से बीमार है ये झूठे लोग, आपके और हमारे रिश्तेदार है ये झूठे लोग, तुम्हारे घरों की खबरें सुर्खियां बना देंगे ये, तुम्हारे घरों की खबरें सुर्खियां बना देंगे ये, एक चलते फिरते अखबार हैं ये झूठे लोग, सलाम दुआ अदब सब निभाएंगे सामने। गौर फरमाइएगा, सलाम दुआ अदब सब निभाएंगे सामने, मगर अकेले में तो मक्कार हैं ये झूठे लोग, इनकी महफिल में सोच समझ कर बैठना तुम।

0: ही आ चुकी है, वो तो वीकेंड का मिजाज बना ही चुकी है और गोंडा के रेडियो फ्रीक्वेंसी पर मिठास घोलने के लिए ऑन एयर आ चुके हैं हमारे आपके अपने डॉक्टर लव। जी हाँ, वो डॉक्टर लव जिनके पास दिल के हर दर्द और हर मर्ज की पक्की दवा है। चाहे दिल में कोई उलझन हो, किसी खास को मैसेज भेजना हो या फिर इस सैटरडे नाइट को थोड़ा सा रोमांटिक और मसालेदार बनाना हो, तो डॉक्टर लव की ऑन एयर क्लिनिक खुल चुकी है। तो बस अपने रेडियो की ट्यूनिंग सेट कर लीजिए, दिल के मैसेज तैयार रखिए और जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज की रात चलेंगे आपके पसंदीदा नगमे और होगी दिल की ढेर सारी बात। Stay tuned everyone. Now, very very good evening and welcome in your show, Dr. Love. So, Dr. Love के आने का आगाज तो करना बनता है ना मित्रों? Now, let's आगाज।
1: ये वही मैं हूँ और ये वही तुम हो। आज मेरे पास बिल्डिंग है, property है, bank balance है, बंगला है, गाड़ी है। क्या तुम्हारे पास?
2: आज मेरे पास Dr. Love है, जिनके पास रिश्तों की हर प्रॉब्लम का सलूशन है। डॉक्टर लव, द मैटर ऑफ हार्ट इज हिज आर्ट।
1: ये वही मैं हूँ और ये वही तुम हो। आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी। क्या तुम्हारे पास?
2: आज मेरे पास डॉक्टर लव है, जिनके पास रिश्तों की हर प्रॉब्लम का सलूशन है। डॉक्टर लव, द मैटर ऑफ हार्ट इज हिज आर्ट।

0: वेलकम बैक इन योर शो गुंडा मैसेज मसाला विद योर जस्ट सिंपल हु इज नॉट सो सिंपल एंड योर डॉक्टर लव हु हैज एवरीथिंग हु हैज एवरी सॉल्यूशन एंड ही इज अमेजिंग सो नमस्कार डॉक्टर लव
1: जी नमस्कार
0: तो कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे वेलकम करना चाहेंगे अपने लिसनर्स का क्योंकि अरविंद फ्रॉम मनकापुर नागेश्वर धाकर और मनीष शर्मा सुरेश कुमार जी चौक से निब्बल जी रानी बाजार सोनार गली गोंडा से मुमताज अंसारी जी गोंडा से सबके सब जुड़ चुके हैं हमारे साथ में
1: बहुत शानदार बात है कि जुड़ चुके हैं और उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग एकदम शानदार जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे ये ऐसी शिक्षा की जाती है ऐसी अपेक्षा की जाती है तो भाई अब आप लोगों को बताना है कि आप लोग कैसे हैं हम तो एकदम शानदार हैं जी हाँ और हमारी जो कंपाउंडर साहिबा है वो लगता है बहुत खुश दिख रही हैं और बहुत पैसा इन्होंने कल कमाया है ऐसा इनके चेहरे को देखकर लग रहा है मतलब ऐसा लगता है जैसे कल पैसों की बारिश हो गई हो
0: पैसा कमाया नहीं एक्चुअली हम लोग को इन्वेस्टमेंट भी तो करनी पड़ती है ना तो मैंने जितना इन्वेस्टमेंट किया था उसके आधे का आधा भी पैसा नहीं कमाया मैंने
1: मतलब क्या आपने सोने की मिठाई खरीदी थी
0: नहीं
1: हाँ?
0: मैंने अच्छी मिठाई खरीदी थी हाँ? जैसे जिसको जो मिठाई पसंद है एक भाई को मेरे मोतीचूर का लड्डू बहुत पसंद है हाँ? तो उसके लिए देशी घी का मोतीचूर लड्डू
1: हाँ?
0: एक भाई को काजू कतली पसंद है
1: हाँ?
0: उसके लिए काजू कतली
1: हाँ?
0: फिर उसके बाद में वो जो राजभोग आता है
1: हाँ?
0: स्पंज वाला
1: हाँ?
0: वो एक भाई को पसंद है
1: हाँ?
0: उसके लिए वो और फिर और जो घर में लोग आएंगे उनके लिए अलग से मिठाई तो आपको पता है मैंने कितने पैसे खर्च किए
1: कितने रुपए खर्च किए मतलब पैसे खर्च किए मतलब रुपए नहीं खर्च किए
0: अब वो ऑनर नहीं बता सकते
1: नहीं कितने
0: लेकिन जेब खाली हो गई मेरी
1: जेब खाली
0: और उस हिसाब से जेब भरा नहीं
1: उस हिसाब से जेब भरा नहीं है ऐसा हो नहीं सकता है अच्छा ये तो नहीं हुआ कि वो दिल के अरमान नजदहा में बह गए
0: दिल के वैसे नहीं आपको पता है कि आपकी आरजू सिंपल नॉट सो सिंपल बहुत सादगी भरी लड़की है एक्चुअली मुझे क्या है ना कि बस रेशमी धागों का रक्षाबंधन बांधो और एक दूसरे के दिल की बातों को समझो इससे बड़ा गिफ्ट कुछ नहीं हो सकता
1: नहीं तो आपके साथ तो ऐसा नहीं हुआ हमारे एक मित्र कल बहुत दुखी थे
0: हाँ
1: आत्महत्या

0: करने जा रहे थे।
1: क्यों?
0: बड़ी मुश्किल से रोका है।
1: काहे को?
0: उन्होंने कहा कि जिसको हम अपनी जान मानते थे,
1: हाँ?
0: कल उसने मुझे भाईजान मांग के राखी बांध दी।
1: ओ, ये तो पहले कंफ्यूजन क्लियर कर।
0: कंफ्यूजन क्या, वो मतलब वो पहुंच गए कि आज हम आपको राखी बांधेंगे। अब क्या होता है, मतलब वो बेचारे इतने दुखी कि किसी तरीके से हमने उनका दर्द संभाला है, वो दर्द हम ही जान पा रहे हैं। मतलब बहुत सारे लोगों की उम्मीदें कल टूट गई होंगी, तो जो सोचिए, मतलब जिसको आप जान।
1: पता है क्या, मैं आपको तब एक स्टोरी बताती हूँ।
0: हाँ।
1: मेरा छोटा भाई, आज तक उसने कभी भी गिफ्ट विफ्ट की बात नहीं की, पैसे वैसे दे देना एंड ऑल। बस अभी अब किसी से कहा, मेरी कजिन रहती है घर पे, तो उससे कहा कि हाँ देख लो उसको, तो देख लो जो लेना हो ले ले, पसंद कर ले। तो कपड़े दिखाए, कपड़ा मैं कहाँ लेने वाली, मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए। फिर उसके बाद मैं कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर उसके बाद में चप्पल, वो सैंडल्स दिखाने जाने लगे। फिर मुझे आई बहुत तेज गुस्सा, उस टाइम तो मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने कहा मुझे गिफ्ट विफ्ट नहीं चाहिए, पागल हो क्या तुम, छोटे भाई हो मेरे, मैं गिफ्ट लूंगी। फिर उसके बाद में बात ये हुई, उस टाइम मैंने कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। कल रक्षाबंधन खत्म हुआ ना, कल ही की रात में मैंने उससे बोला, सुनो ये बताओ कि तुम मुझे रक्षाबंधन पर गिफ्ट चप्पल दे रहे थे।
0: तब उसने कहा कि पहले तो कपड़ा दे रहे थे, आपको कपड़ा पसंद ही नहीं आया, तो अगले इंस्टॉल लाओ चप्पल ही दे देते हैं।
1: तो कपड़ा और चप्पल कभी जिंदगी में गिफ्ट नहीं दिया, और गिफ्ट दोगे तो कपड़ा और चप्पल दोगे। उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि उसका बर्थडे जिस दिन आएगा, उस दिन मैं उसको चप्पल गिफ्ट करूंगी, फिर उसको रियलाइज होगा। और मैंने उससे और भी बोल दिया कि वैसे तो तुम मेरे छोटे भाई हो, मुझे तुमसे गिफ्ट चाहिए नहीं, लेकिन अब चाहिए। तुम मुझे जो चप्पल दे रहे थे ना, अब मुझे गोल्ड रिंग ला के दे के दोगे तुम।
0: अच्छा,
1: अब देखा, अब इसी चक्कर में बस मेरी दुखती रख पे कोई हाथ ना रखे, नहीं तो मैं तमाशा क्रिएट कर देती हूँ।
0: देखा श्रोता हूँ, आपने अभी तक ये कह रही थी कि हम घाटे में थे, अब इस जमाने में
1: नहीं
0: मिला नहीं, लेकिन आपको मिल जाएगा ना। सोचिए इस जमाने में, मतलब इस समय सोना खरीदने वाला और सोना पाने वाला अरबपति ही हो सकता है। हाँ ये देखिए, मतलब आपको पेंडुलम भी मिला हुआ है सोने वाला।
1: ये तो मेरे बर्थडे पे मेरी मम्मा ने,
0: मम्मा ने, मतलब सोने से ऊपर से लेकर नीचे तक चांदी से लदी हुई है आप। चांदी की पायल, ये जो तेरे पायलों की छन छन है, और कान में झुमका, नाक में नथुनी, मतलब अभी सोने और चांदी से लगती हुई महिला बताई, इतनी लालची बहने होने लगी। रक्षा
1: बंधन, ईगो, स्वाभिमान पे बात आ गई।
0: स्वाभिमान
1: तो भाई, छोटा भाई है, चप्पल भाई,
0: भाई भाई भाई पहले उसने कपड़ा दिया था भाई, आपने
1: नहीं, नहीं तो कपड़ा क्यों देना, कपड़ा तो मेरी मम्मी रोज मुझे लाके देती रहती है।
0: अच्छा,
1: बस बात ये है ना कि तुम परफ्यूम दे देते, परफ्यूम मुझे बहुत पसंद है, उसको हाँ, पता है।
0: दो चार चुड़ैल आपको और पकड़ हाँ, लेती रास्ते में। हाँ,
1: अच्छा तो परफ्यूम दे देते, ऐसी ऐसी चीजें दो ना, वॉच दे देते।
0: हाँ, वॉच दे
1: देते। अब तुम चप्पल दे रहे हो।
0: तो पहले उसने कपड़ा दिया था, बाद में सैंडल देना भी गिफ्ट है। अब क्या बोलते हैं, सैंडल्स मामूली होती है, नीता अंबानी।
1: अच्छा गिफ्ट होता है, यही तो मैंने कहा।
0: नीता अंबानी की जो सैंडल है वो 1.5 करोड़ की है।
1: नहीं था सैंडल दे रहा था, अरे शूज दे देता, प्यूमा का, एडिडास का, इन सब का शूज दे देता, तब भी समझ में आता। सैंडल उसको पता है, मतलब
0: क्या मतलब, क्या मतलब उसको क्या पता कि तुम ब्रांडेड पहनती हो।
1: उसको पता है कि मैं पहनती।
0: अच्छा ये बता,
1: क्योंकि वो तो मुझसे भी ज्यादा ब्रांडेड।
0: नहीं वो तो पहनता है ना, लेकिन आपको जानता होगा शायद आप ना।
1: वो सोचिए, वो मेरा छोटा भाई है, उसको इतना नहीं पता, मतलब वो इतना, मतलब उसके इतने शौक है।
0: हाँ।
1: तो मैं तो उससे बड़ी हूँ, आखिर वही खून है ना सर, वही
0: खून है। हाँ।
1: तो मेरे को कितने शौक होंगे।
0: सही बात है,
1: तो मेरे को चप्पल गिफ्ट करेगा।
0: खैर
1: बात हटाते हैं,
0: लेकिन अब तो गोल्ड रिंग मिल गई, तो चेहरे पे मुस्कान देखे।
1: आज दिन भर में 4 बार गई हूँ, सुनो वो लेके देना है तुम्हें रिंग। कोई बात नहीं, तुम पैसे दे दो, तुम जाओ मत, मैं लेके चली आऊंगी। बार बार कहने पे बोला हाँ ठीक है, 2-4 दिन रुक जाओ बस खुश।
0: अच्छा मतलब मिल जाएगा।
1: जी हाँ,
0: मतलब इसीलिए, मतलब और जानती हैं एक बात जो है वो लिखी हुई है शास्त्रों में,
1: क्या
0: कि प्रत्येक कंपाउंडर को जितना वो रक्षा बंधन के दिन पाए,
1: हाँ,
0: उसका 25% अपने डॉक्टर को गिफ्ट करना चाहिए।
1: अरे जाओ,
0: नहीं तो उसकी नर्स वाली कला खत्म हो जाती है।
1: एक बात बताऊं मैं बहुत क्लियर और बहुत सिंपल हूँ डॉक्टर।
0: हाँ, सर हाँ, आप खुद ही कहते हैं यू आर नॉट सो सिंपल, अब करियो सिंपल।
1: नहीं हाँ, अपने बातों के प्रति हाँ, तो मैं बहुत क्लियर हूँ डॉक्टर लव। मैं कहना चाहूंगी कि मैं पर्सनल लाइफ को और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखती
0: हूँ। अलग हम भी करें, अलग ही रखिए। हम कहाँ करें कि पूरा दे
1: तो ये रक्षाबंधन तो मेरा पर्सनल लाइफ का हो
0: गया। तो हम भी तो आप हम भी तो आपके घर ही के हैं, समझ
1: रहे हो। हिसाब से तो मुझे भी सैलरी नहीं चाहिए। आपके पास जितने कस्टमर आते हैं उस पे मुझे कमीशन चाहिए।
0: तो ठीक है, ले लो आज से यही तय रहा, हर रक्षाबंधन इस रक्षाबंधन पे आप शुरुआत कीजिए।
1: कल से आप बड़े आप है ना सर।
0: नहीं, लेडीज फर्स्ट ना।
1: नो सर, आई एम नॉट फेमिनिस्ट
0: ना। नहीं नहीं, फेमिनिस्ट होने की बात नहीं, ये कहते हैं कि लेडीज फर्स्ट होनी चाहिए।
1: अच्छा, वैसे डॉक्टर लव आप हर मरीज की दवा भी करते हैं, सब कुछ है, सब कुछ बढ़िया से, हर एक समाधान आप बता देते हैं। मुझे एक चीज बताइए कि आपको शेर और शायरी भी आती है?
0: शेर और शायरी, शेर और शायरी, हम शेर हमको देखते ही दम तोड़ देता है।
1: हाँ, और फिर आपको फूट फूट के शायरी आने लगती है।
0: नहीं, हमको शेर जो है, एक बार हम जंगल में चले गए शेर का शिकार करने
1: जी,
0: बंदूक घर पे भूल गए।
1: ओ भाई।
0: हाँ भाई, अब क्या होता, और कोई दूसरा व्यक्ति होता तो घबरा जाता।
1: हाँ।
0: हमने क्या किया, जेब से जो है वो राइफल का लाइसेंस निकाला, शेर को दिखाया, और देखते ही शेर बेहोश हो गया।
1: वाह।
0: हाँ, तो अगर हम जो है वो बंदूक लेकर नहीं भी चलते हैं तो बंदूक का लाइसेंस लेकर चलते हैं।
1: अच्छा जी।
0: हाँ जी,
1: ये बढ़िया है,
0: ये बढ़िया
1: है। लाइसेंस अबे देख लो, ले लो।
0: हाँ।
1: अब जान जाओ कि हमरे लगे हैं, हम चलाए
0: पाए बस चलाए, बिल्कुल
1: लेना देना
0: बिल्कुल
1: है।
0: हम चला पाते हैं, निशाना बहुत अचूक है। और
1: वैसे वैसे डॉक्टर लोग, मुझे शेर और शायरी बहुत पसंद।
0: अच्छा,
1: है।
0: अच्छा,
1: तो क्या आप सुनना चाहेंगे?
0: हाँ, इस राग का कहा जाता है
1: इरशाद।
0: हाँ, अब हमको ज्यादा कम आता है उर्दू का।
1: आपको तो वैसे, आप जो पढ़ लिख के ये MBBS की डिग्री ली है, आपको तो उसमें भी बहुत कम आता है।
0: भाई तो बहुत कम आता है, अब क्या बताएं।
1: हाँ, तो अर्ज किया है कि घाव गहरा था बहुत।
0: तो डिटाल लगाए, मतलब घाव गहरा बहुत था तो मतलब कैसे घाव है?
1: थोड़ा सा गौर फरमा।
0: हाँ, पहले गौर फरमा ले। हाँ, ये गौर कैसे फरमाया जाता है? पहले
1: आंखें बंद कर लिया और मैं जो बोल रही हूँ बस खाली उन्हीं शब्दों को सुनिए और उसकी गहराई को समझ रहे
0: हैं। घाव गहरा था लेकिन डिटाल लगा।
1: घाव गहरा था बहुत,
0: वाह,
1: पर दिखता न था।
0: दिखता न था। हाँ,
1: दिल भी बहुत दुखता था पर कोई समझता ना था।
0: समझता ना था। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, वाह वाह वाह वाह, क्या बात। हाँ,
1: फिर से कहना चाहूंगी कि घाव गहरा था बहुत पर दिखता ना था।
0: हाँ,
1: दिल भी बहुत दुखता था पर कोई समझता ना था।
0: ना था।
1: बाद में सब कहते तो हैं कि हमसे कह सकते थे।
0: क्या? हाँ, बाद में कहते थे। हाँ, क्या बात है।
1: बाद में सब कहते तो हैं कि हमसे कह सकते थे पर जब जब कहना चाहा कोई सुनता न था।
0: वाह वाह, क्या क्या क्या, एकदम शेरनी मार दी आपने, मतलब क्या बात है।
1: सो इसी के साथ में स्वागत है नागेश्वर ठाकर का हमारे अपने क्लिनिक पे, हमारे डॉक्टर लव के क्लिनिक पे। तो डॉक्टर लव, कुछ ऐसे ही शेर और शायरी आप फरमाना चाहेंगे?
0: बिल्कुल, हम इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहते हैं। हमारे पास शेरनी ये सब आपका काम है, कंपाउंडर साहब।
1: अच्छा, तो फिर चलते हैं छोटे से म्यूजिकल ब्रेक पे, लेकिन उसके पहले कुछ कहना चाहूंगी मैं। उसके पहले हमारे एक लिस्नर का कहना है, सर जी शायद बंदूक आप दीपावली वाली उठा लाए बाजार से। अरे नहीं, वो भी नहीं है यार, क्या ही बताऊं, इनके पास 315 है, जो गैंग्स ऑफ वासेपुर में हमने देखा था ना, वो 315
0: बहुत जबरदस्त,
1: ऐसा जबरदस्त जिसका मैं आपको बताती हूँ, 315 लोग मतलब बनाते हैं ना अपने हाथों से, तो वो ऐसा होता है गोली, आप मारना चाहोगे सामने, वो सामने से जाके टकरा के कहीं ना कहीं मिट्टी में आके आपको ही लग जाएगी। मेरे सामने का ये पर्सनल एक्सपीरियंस है।
0: हाँ।
1: तो इन सब चीजों पे बिल्कुल भी वक्त जाया ना करें सोचने समझने के लिए, ये गंदी चीजें हैं, दूर रहना चाहिए।
0: हाँ, दूर रहना चाहिए,
1: है ना।
0: हाँ,
1: मैं अच्छी हूँ, मेरे पास है।
0: हाँ, आपके पास
1: मेरी बातों को सुनना
0: चाहिए। सुनना चाहिए,
1: मेरी बातों को सुनना ही नहीं, समझना भी चाहिए।
0: समझना भी चाहिए
1: और फिर मेरी बातों पे हंसना भी चाहिए।
0: हंसना भी चाहिए
1: है ना? तो चलेंगे छोटे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ, लेकिन उसके पहले मैं कहना चाहूंगी डॉक्टर लव आपसे।
0: जी, हमसे कहिए।
1: ये तेरा लहजा जो मीठा हो रहा है, ये तेरा लहजा जो मीठा हो रहा है, अब मुझे तुझसे भी खतरा
0: हो रहा है। क्या बात है।
1: पास मेरे कोई कश्ती भी नहीं और पानी धीरे धीरे गहरा
0: हो रहा है। अरे वाह वाह, क्या बात है।
1: इसलिए भी चुप थे हम दोनों शबे वस्ल,
0: शबे वस्ल,
1: इसलिए भी चुप थे हम दोनों शबे वस्ल, जानते थे हम कि धोखा हो रहा है।
0: धोखा हो रहा है, क्या क्या बात है।
1: सोचा था मैंने है औरों से अलग तू, सोचा था मैंने है औरों से अलग तू, जो भी सोचा था सब उल्टा
0: हो रहा है।
1: चलिए चलते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ, और म्यूजिकल ब्रेक के बाद में एक बार फिर से मिलेंगे आपके अपने हमारे अपने वो नंबर मसाला प्रोग्राम में सैटरडे नाइट स्पेशल वाले डॉक्टर लव के साथ में। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा।

0: ये वही मैं हूँ और ये वही तुम हो। आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी क्या तुम्हारे पास, क्या तुम्हारे पास, क्या तुम्हारे पास, क्या तुम्हारे पास?
1: आज मेरे पास डॉक्टर लव है, जिनके पास रिश्तों की हर प्रॉब्लम का सलूशन है। डॉक्टर लव, द मैटर ऑफ हार्ट इज हिज आर्ट।
0: ये वही मैं हूँ और ये वही तुम हो। आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी क्या तुम्हारे पास, क्या तुम्हारे पास, क्या तुम्हारे पास, क्या तुम्हारे पास?
1: आज मेरे पास डॉक्टर लव है, जिनके पास रिश्तों की हर प्रॉब्लम का सलूशन है। डॉक्टर लव, द मैटर ऑफ हार्ट इज हिज आर्ट।

0: welcome back in your show Gonda Message Masala with your RJ Simple and with your Dr. Lover. आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा शहर की दर पर. So Dr. Love, हमारे एक लिसनर हैं, इनका कहना है कि सर जी आज किसी ने कहा था जो लड़की है ज्यादा हंसती है वो खूबसूरत होती है, चेहरा गोरा गोरा होता है. मतलब बताइए, मुझे तो नहीं समझ में आया,
1: जरा एक बार फिर से समझिए.
0: सर जी आज किसी ने कहा था कि जो लड़की है ज्यादा हंसती है.
1: जो लड़की है
0: हाँ ज्यादा हंसती है, ये नहीं समझ
1: मतलब में आपको बोला उसने.
0: अच्छा
1: हाँ?
0: वो खूबसूरत होती है,
1: ये तो 100% आपको ही बोला होगा.
0: चेहरा गोरा गोरा होता,
1: एकदम आपको ही बोला.
0: अच्छा ठीक है, कोई
1: मतलब कोई बात नहीं, मतलब आप तारीफ किए भाई, तारीफ
0: वही वो थोड़ा सा स्क्रूड हिला है ना मेरा डॉक्टर लव, तो थोड़ा सा इधर उधर बाय मिस्टेक कुछ हो जाता है,
1: डिफॉल्ट सेटिंग गड़बड़ है.
0: हाँ सेटिंग गड़बड़ है, बस इस सेटिंग को सही करने वाला कोई मिल जाए.
1: हाँ वही तो हम कितने सारे पेशेंट की निगाह आपके ऊपर रहती है, लेकिन
0: आप है कि भाव ही नहीं देते.
1: हाँ, बताइए मतलब
0: वो क्या है ना, हमारा मिजाज कुछ ऐसा है कि बेकार की आदत नहीं मुझे, इतने प्यार की आदत नहीं मुझे. मैं अपने हिस्से की रोशनी भी बांट देती हूँ.
1: क्या बात है,
0: उधार की आदत नहीं मुझे.
1: तो कोई उधार की आदत नहीं, मतलब आपको रोशनी मिली है तो भी बांट दी गई है.
0: मैं अपने जख्म छुपा कर ही मुस्कुराती हूँ.
1: क्या बात है, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है.
0: मैं अपने जख्म छुपा कर ही मुस्कुराती हूँ, खुले बाजार की आदत नहीं मुझे.
1: आदत नहीं मुझे, क्या बात है, ये बात है.
0: जो दिल में है वही चेहरे पे रखती हूँ.
1: मतलब दोहरा चेहरा नहीं है एकदम, क्या बात है, वाह, ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं.
0: जो दिल में है वो चेहरे पे नहीं रखती हूँ, जो दिल में है वही चेहरे पे रखती हूँ. अलग किरदार की आदत नहीं,
1: आदत
0: है
1: नहीं मुझे. क्या बात है, मतलब माशाल्लाह, क्या क्या शेर मारा आपने.
0: ऐसा लगता है ना कि जैसे मेरे लिए ही बनाया.
1: हाँ बिल्कुल, आप ही के लिए बनाया.
0: आप तो जानते हैं.
1: बिल्कुल जानते हैं. हमारी कंपाउंडर साहिबा से बढ़िया कौन जानेगा.
0: सो वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो जुगल किशोर वर्मा जी. एमपी से आपका स्वागत है. इम्तियाज अहमद गोंडा से आपका स्वागत है. लीवर किडनी दिल सब चीज से जुड़ी हुई जितनी भी बीमारियां हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी ट्रॉमास हैं, हर एक का सॉल्यूशन यहां आ चुका है. डॉक्टर लव आ चुके हैं. तो नाउ आप तुरंत कॉल करिए, फोन उठाइए 6393316429 मींस 6393316429 पर कॉल करिए, और कॉल करने के बाद में अपनी समस्या बताइए, समाधान हमारे डॉक्टर लव बताएंगे. आप चाहें तो हमारे चैट बॉक्स में भी अपनी समस्याएं भेज सकते हैं.
1: हाँ भेज सकते हैं समस्याएं, और समस्याएं गंभीर होनी चाहिए.
0: अच्छा डॉक्टर लव
1: जी,
0: मुझे ऐसा लगता है कि शादी एक लौती जगह है, शादी एक लौती चीज है जहाँ बिना वारंट के ताउम्र इंसान गिरफ्तार हो जाता है.
1: एकदम सही बात है.
0: और उसे तो भाई कोई जमानत देने वाला भी नहीं होता है.
1: ये बात बहुत बड़ी बात, इसीलिए जो है वो आप मत कीजिएगा.
0: हाँ बिल्कुल नहीं करूंगी, बिल्कुल नहीं करूंगी. आपको पता है अभी तक तो मैं बस कहती थी नहीं करूंगी, मेरे पापा ही एग्री थे मेरी बातों से. अब तो मेरे जो बड़े भाई हैं, एक जो लाइक बेस्ट फ्रेंड टाइप के हैं, वो भी बोल दिए हैं कि हाँ
1: किसी
0: चीज है, हाँ, अच्छी चीज नहीं है, हाँ, बहुत जिम्मेदारियां हैं.
1: काहे किसी लड़के की जिंदगी को तबाह
0: करना है, अपनी जिंदगी आबाद करके अपनी जिंदगी में बर्बाद हो, आबाद हो, कुछ भी हो, लेकिन आगाज तो होगा
1: एकदम शानदार होगा. अपनी जिंदगी अपने मन से जीनी चाहिए.
0: ऑब्वियसली अब मैं ना मतलब लाइक शादी कर ली तो ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करना पड़ेगा. कोई भी कितना प्यार कर ले, मैं भी कितना भी प्यार कर लूं, लेकिन थोड़े बहुत चेंजेस आने जरूरी हो जाते हैं जिंदगी.
1: देखिए
0: ऑटोमेटिक
1: नहीं, देखिए शुरुआत में जब जो है वो शादी होती है तो बेडरूम देखिए, इत्र लगा हुआ है, परफ्यूम है, गुब्बारे सजे हुए हैं, मतलब सोचिए, मतलब इसके 5 साल के बाद का दृश्य देखिए.
0: बीच में एक दो
1: पैंपल्स, बीच में शाम को गद्दा खाली,
0: जॉनसन्स
1: बेबी आयल, डाबर का हिमालय तेल, हिमालय का मालिश वाला तेल, नापकिन पाउडर, खैंहस निप्पल, हाँ सोचिए, और फिर वो सरलेक वाला दूध, फिर वो खाना, और इसके 5 साल बाद की जिंदगी और देखिए, झंडू बाम,
0: अरे
1: आयोडेक्स,
0: नूरामेन,
1: फिर बाबा रामदेव का अनुलोम विलोम प्राणायाम, मतलब जिंदगी
0: कपाल,
1: यहाँ सोचिए पेट, इसलिए हम कहते हैं व्यायाम नहीं करना चाहिए।
0: क्यों?
1: कभी भी किसी भी इंसान को जॉगिंग, सुबह उठकर दौड़ना, तेज चलना, व्यायाम, ये सब नहीं करना चाहिए।
0: क्यों नहीं करना चाहिए? वो हेल्दी रहेगा?
1: नहीं, आप जानते हैं कि जैसे एक चीज आपने सुनी होगी कि भगवान ने हमको गिनी हुई सांसें दी हैं, ना उससे ज्यादा ले सकते हैं, ना उससे कम ले सकते हैं, ठीक। अब अगर आप जॉगिंग कर रहे हैं, तेज तेज दौड़ रहे हैं, तो जल्दी जल्दी सांस लेंगे, जल्दी जल्दी छोड़ेंगे, तो आपकी जल्दी जल्दी सांस ले, जल्दी जल्दी छोड़ा, इसका मतलब क्या हुआ? भगवान ने सांस दी, ली सांस दी, ली, अब वो काउंटिंग हो रही है। अच्छा, अब सोचिए दूसरी ओर आप कर रहे हैं, जब आप वर्कआउट करते हैं तो ज़्यादा सांस तो लेते हैं, हाँ लेते हैं, अब उसकी उपाय क्या है? एकदम अजगर की तरह कस घर में लेटे रहो, बैठे रहो, धीरे धीरे सांस लेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे, आपकी उम्र लंबी होगी। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता
0: राम।
1: तब भगवान ने पैदा किया हुआ है तो वो खाना तो देगा ही, इसलिए मॉर्निंग वॉक करना, एक्सरसाइज करना,
0: सुबह दौड़ना, इनके हिसाब से तो ये होना चाहिए कि हमको बिस्तर पे पड़े रहना है, उठ के बैठना भी नहीं, लेटे लेटे ही पूरी सब्जी भी खा लेनी है
1: एकदम,
0: और छिछी पॉटी की व्यवस्था करनी हो तो वो आते नहीं है कि हाँ बिस्तर पे ऐसे रख लो, पीछे से हो गया फिर लेके जाके,
1: यही असली जिंदगी यही है। हाँ मतलब मेहनत करेंगे क्या होगा, मतलब 1000 साल तक अजगर जीता है, 100 साल तक अजगर जीता है,
0: नहीं जीना,
1: हाँ 20 साल भी घोड़ा 20 साल तक जीता है, हाँपते हाँपते हाँपते हाँपते, ये कोई जिंदगी है? लंबी जिंदगी जीनी हो तो मॉर्निंग वॉक, एक्सरसाइज, ये सब भूल जाइए, मत कीजिए।
0: जिंदगी लंबी नहीं बाबू मुशाय, बड़ी होनी चाहिए।
1: वो बड़ी भी रहेगी, बड़ी भी रहेगी, मतलब बहुत बड़ी रहेगी,
0: बहुत बड़ी रहेगी,
1: इतनी बड़ी उनकी पूछ थी हनुमान जी की जब उन्होंने लंका
0: दिया। फिलहाल हमारे पास में हमारे एक कस्टमर का मैसेज आया, इनका कहना है, डॉक्टर लव सर जी, आदिवासी लोगों की शादी में पहले बारातियों को क्यों पीटा जाता है? पीटा जाता है बारातियों को? वाह भाई, क्यों पीटा जाता है?
1: इसलिए पीटा जाता है क्योंकि वो बताते हैं कि बेटा तुम्हारे जो सुख के दिन थे वो अब पूरे हो गए।
0: अच्छा।
1: और अब पिटने के दिन शुरू होने वाले हैं, तो वहाँ पूर्वाभ्यास करा दिया जाता है।
0: तो बाराती को क्यों दूल्हे को पीटो ना
1: भाई, दूल्हे को लेकर कौन आया है?

0: तो मेन गलती किसकी है? जो आगे रहेगा वही तो माल खाएगा।
1: हाँ? मैं तो कभी ना जाऊँ, मैं तो ऐसे अपने गेट के सामने लिख दूँ, इस घर से कोई भी बारात नहीं जाएगा, बारात जाना इस घर में वर्जित है।
0: हाँ। हाँ। लेकिन आप आदिवासी नहीं है ना, आपके यहाँ थोड़े पीटा जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। मतलब आपने उस सीन को अपने लिए सोच लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है ऐसा।
1: हाँ, मैं ऐसे सीन सोच लेती हूँ अपने लिए। मैं सोचती हूँ कि ऐसे टाइम पे मेरा भी जन्म हुआ होता, जब राजा महाराजा थे, युद्ध हो रहे थे, मैं भी युद्ध में कहीं किसी सेना में होती, मैं तो क्या पता सेनापति होती। हो भाई,
0: सेनापति नहीं होता, सेना पत्नी होती है।
1: अब व्हाटएवर कुछ भी होती भाई, राजकुमारी की कुछ होती, क्या पता इतने मतलब ऐसे कर्म किस्मत थे, अगर इतने अच्छे घर में आई हूँ तो क्या पता राजकुमारी होती, मैं मजा ही आ जाता है
0: जी। बिल्कुल।
1: हमारे पास में एक हमारे किसका कस्टमर का कॉल आ चुका है, देखते हैं कौन है। नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: जी हरकापुर से गुलाब दत्त दुबे जी, आपका स्वागत है आपके अपने गुंडा मैसेज मसाला में, आपके अपने डॉक्टर लव के साथ।
2: और मनु सर से बात कराइए।
1: हाँ हाँ जी बिल्कुल, बोल रहे हैं आप। बोल
0: जी जी। नमस्कार।
2: नमस्कार। आप भी डॉक्टर? हम भी डॉक्टर भी है।
0: अच्छा, आप डॉक्टर हैं?
2: जी।
0: तो हम महा डॉक्टर हैं,
2: आपसे ऊपर हूँ। जो हमारे पास दवा होगी वो आपके पास नहीं होगी।
0: अच्छा, जो आपके पास दवा है वो हमारे पास नहीं है।
2: नहीं।
0: बताइए कौन सी दवा है
2: हमारे पास। आपने अभी क्या बोला?
0: क्या
2: ये कि बराती दूल्हे राजे को वो पीटते हैं, बराती वाले को क्यों पीटे?
0: हाँ?
2: लेकिन लाता कौन है?
0: लाता तो दूल्हा है।
2: दूल्हा है।
0: हाँ?
2: तो दूल्हा भी बाद में उसका न्यौछावर होता है।
0: दूल्हे को भी पीटा जाता है?
2: उसको भी पीटा जाता है।
0: देखिए, आइए, आपका व्यक्तिगत अनुभव है, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, हम आदिवासी नहीं है।
2: नहीं नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है, हर इंसान को पीटा जाता है।
1: अच्छा, अरे इनकी 32 बार शादी हुई है, इनको 3200 शादी में नहीं पीटा गया।
2: हाँ। तो 35 में मैं हूँ। 35 में मैं हूँ।
0: 35 में आप है, मतलब आपकी उम्र इसमें 35 साल है।
2: जी।
0: हाँ, तो 35 साल की उम्र।
3: हेलो
0: जी।
3: नमस्ते सर।
0: जी नमस्कार।
3: 35 नहीं, 62 है। मैं सविता दुबे बात कर रही हूँ
0: जी। अरे अच्छा, सविता जी बात कर रहे हैं जी।
1: सविता
0: नमस्कार।
1: जी नमस्ते, क्या हाल चाल है?
3: हाल चाल तो सुन ही रहे कि क्यों पीटा जा रहा है, तो ऐसे ऐसे इंसान को क्या किया जाए। सरकारी में बिजी हूँ। हाँ। सरकारी में हूँ और बेसरकारी 3500 भी रखती है, बता रहा है मुझे।
0: अच्छा।
3: हाँ।
0: मतलब एक इनके पास एक पत्नी है जो निजी पत्नी है, वो आप ही हैं
3: जी,
0: और
3: जी,
0: बाकी
3: 35 रखे हैं।
0: बाकी 35 रखे हैं?
1: सच में रखे हैं क्या?
0: सोचिए, जब आपके साथ इनका ये हाल है तो बाकी सबके साथ क्या हाल होगा।
3: आप भी सोच लीजिए
0: उनको, आप
3: कि मैं किस तरह से संभाल रही हूँ इनको।
0: आप उनको उनके हाल पे छोड़ दीजिए।
3: अच्छा।
0: उनके लिए उनकी पत्नियां ही काफी हैं।
3: वो तो है ही। हाँ। बाहर से, घर से, हर तरफ से।
0: हमने सुना कि कल 3500 ने इनको राखी बांध दी कल।
3: अच्छा, आपने?
0: नहीं नहीं, जो आपके पतिदेव हैं, इनकी 3500 पत्नियों को, इनकी 3500 पत्नियों ने कल इनको राखी बांधी है। और क्या औकात, तुम किसी कर्म लायक नहीं हो, इससे अच्छा है तुमको भाई बना लें। अब वो 3500 हमारे पास रोती हुई पहुंची क्लिनिक पर, हमने कहा क्या हुआ, उन्होंने बताया कि ऐसा हुआ। हमने कहा कोई बात नहीं, अब हमारे हर फ्लैट में एक एक पत्नी की जगह दो दो पत्नी रहेंगी, तो 3500 को हम ले आए हैं, अब इनके पास खाली आप बची हैं। जी
2: हेलो।
0: जी, जो जो आपने अपनी 3500 पत्नियों ने जो आपको कल राखी बांधी, वो मेरे क्लिनिक पर आई और मैंने उनको ठीक कर दिया।
1: तो फिलहाल अभी हमारे पास में आ रहा है दूसरे कस्टमर का कॉल, और बहुत देर से आ रहा है। अगर हमने इनको होल्ड पे रखा तो क्या पता इमरजेंसी सिचुएशन हो, फिर क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। डॉक्टर लव, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कॉल डिस्कनेक्ट भी हो चुका। तो सविता दुबे जी से और उनके हस्बैंड से हमने बात किया और उनकी समस्या का समाधान शायद हो चुका है। फिलहाल चलते हैं हमारे अगले कॉलर की तरफ, लेकिन कॉल डिस्कनेक्ट हो चुका है, फिर से कॉल आएगा। तब तक डॉक्टर लव बताइए क्या करना है। मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से अजय मिश्रा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है और इम्तियाज अहमद का कहना है कि सर जी दहेज लेना देना वाजिब है क्या?
0: देखिए हम आपको बताएं, दहेज लेना वाजिब है, दहेज देना वाजिब नहीं है।
1: फिलहाल एक कॉल आ चुकी है हमारे पास में हमारे कस्टमर की। हेलो नमस्कार, आपका नाम जी? हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है।
4: वार्निंग, फोन इज नॉट कनेक्टेड।

0: सो कॉल ये भी डिस्कनेक्ट हो चुका है, तो फिर देखते हैं शायद एक कॉल और आए दोबारा। तो फिलहाल आप, हम लोग यहाँ थे दहेज की तरफ। हाँ, तो दहेज का बताइए क्या करना है।
1: दहेज लेना वाजिब है, देना गुनाह है।
0: लेना वाजिब है, देना गुनाह है। क्यों लेना देना, ये क्या
1: मतलब? दहेज आपको मिल रहा है तो अच्छी बात है, देना पड़ रहा है किसी ने। चाय पीना अच्छी बात है या बुरी बात है?
0: चाय तो पीना अच्छी बात।
1: हाँ, तुमने कहा अगर पीना पड़े तो अच्छी बात है, पिलाना पड़े तो बुरी बात है।
0: नहीं, मैं तो पीने पिलाने दोनों में तैयार हूँ।
1: अच्छा, तो इसी बात पे पिला दीजिए हमको।
0: हाँ, जाओ। हाँ। ठीक है, मंगाती हूँ चाय और। So, दोस्तों अभी हम लोग आपके इस हर एक समस्या का समाधान करने के बाद में हम लोग चलेंगे, अभी जाएंगे और चाय पियेंगे और बहुत ही मजे करेंगे। देखा,
1: एक सिवनेरी चाह आया है। आपने चाय पी की नहीं? वो गुड़ की चाय?
0: नहीं,
1: नहीं भी।
0: गुड़ की चाय मुंबई में बहुत फेमस है, मेरा भाई पीता है गुड़ की चाय।
1: हाँ, यहाँ और यहाँ फातिमा स्कूल से आगे बढ़ेंगी तो गुड़ की चाय, और वो गुड़ जो है वो नासिक से आता है, 900 रुपए किलो।
0: ओ भाई,
1: हाँ, क्या गजब की चाय बनती है। कभी
0: पी कर चलिए, फिर आप ही किसी दिन लाके।
1: हाँ, नहीं वो यहाँ तक लाते लाते सर आ जाएगी।
0: मैं
1: हाँ, चलिए सब साथ में चलिए, सबको पिला देते हैं।
0: बिल्कुल,
1: मतलब आप
0: आज,
1: हमको
0: आज मुझसे इम्प्रेस हो रहे हैं।
1: मतलब आप, हम आपको लेकर चलेंगे, अब तो लेकर चलेंगे।
0: धर्मेश त्रिपाठी जी, इनका कहना है सर कैसे हैं आप? सर एकदम बढ़िया हैं, आपका कॉल आया था, डिस्कनेक्ट हो गया। धर्मेश जी, आप चाहें तो आप फिर से कॉल कर सकते हैं, आपके डॉक्टर लव आपकी बातें जरूर सुनेंगे।
1: जी बिल्कुल सुनेंगे,
0: जी बिल्कुल सुनेंगे। बोल तो इसे रहे कि नहीं सुनेंगे, सुनना तो पड़ेगा ना।
1: नहीं, बिल्कुल सुनना पड़ेगा भाई।
0: और कुछ बताइए डॉक्टर लव, नया ताजा?
1: नया ताजा भिंडी है।
0: भिंडी मुझे नहीं पसंद है, भिंडी दो प्याजा पसंद है मुझे।
1: अब तो ऐसा करें जैसे कि मटन दो प्याजा बोल रही हैं।
0: नहीं नहीं, मैं वेजिटेरियन हूँ। इम्तियाज अहमद का कहना है कि आजकल चीनी का रेट क्यों बढ़ा दिया है?
1: क्योंकि चीनी जो थी वो पेट्रोल में मिला दी गई है।
0: बताओ।
1: हाँ बताओ
0: बताओ
1: बताओ।
0: खाने को ना मिले, बस इंसान को सुख सुविधाएं मिला,
1: सुख सुविधाएं मिला करे। और चीनी का रेट इसलिए बढ़ा दिया गया है ताकि लोग इतना मीठा बोलने लगे थे, तो कम चीनी खाएंगे तो कम मीठा बोलेंगे।
0: तब तो मैं और ही जहर बोलूंगी और कड़वा बोलूंगी। फिलहाल कॉल आ चुकी है। हेलो, नमस्कार, आपका नाम?
2: हेलो,
0: आपकी आवाज आ रही है, बस थोड़ा तेज बोलिए। नमस्ते धर्मेश त्रिपाठी जी, कैसे हैं आप?
2: हमारा बढ़िया है मैम, अपना बताइए।
0: जी हम तो एकदम बढ़िया हैं, और आपकी आवाज सुन के तो और बढ़िया हो गए।
2: चलिए अच्छी बात है, और सब ठीक है आप?
0: हाँ हाँ, एकदम बढ़िया। चलिए डॉक्टर लव के पास में चलते हैं, आपकी समस्या का समाधान लेते हैं। लेकिन बस एक चीज कहना चाहूंगी कि थोड़ा ऊंचा बोलिएगा।
2: जी मैम, जी जी
0: दे दिया
1: जी।
2: नमस्ते सर।
1: जी नमस्कार
2: सर, हमें ये बताइए
1: जी
2: कि सच्चा प्यार क्या होता है?
1: देखिए, प्यार जो कभी झूठा होता ही नहीं है तो सच्चा कैसे हो सकता है?
2: नहीं तो किसे सच्चा माने, पत्नी के प्रेम को सच्चा प्यार माने या प्रेमिका के प्रेम को सच्चा प्यार माने, किसे हम सकते हैं?
1: हमको लगता है कि माता के प्यार को सच्चा प्यार मानना चाहिए।
2: जी जी जी, बहुत सही बात कही आपने, क्योंकि उसमें निस्वार्थ होता है सर, कोई स्वार्थ नहीं होता।
1: जी मतलब मुझको ये लगता है कि
2: जी,
1: बड़ी ऊंची इमारत बुलंदी कब किस देर के हिस्से में रहती है, बड़ी ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है।
2: जी और
1: मुझे जमाने की मुश्किलों से डर नहीं लगता, मैं जब तक घर न पहुंचूं माँ मेरी सजदे में रहती है।
2: तो वाह वाह, क्या शायरी है सर आपकी।
1: तो जो है माँ जो है, जब मैं घर पर जाता हूँ तो पत्नी पूछती है वो चीनी लाए या नहीं, या कभी देर हो गई घर पहुँचने में तो कहाँ रह गए थे। लेकिन मम्मी सबसे पहला प्रश्न ये पूछती हैं कि बेटा कुछ खाए थे कि नहीं खाए थे।
2: जी सर जी।
1: तो मुझे लगता है कि दुनिया में

सो फाइनली आपके सपनों की रानी आ चुकी है. अब क्या कहना है आप मुझे चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं. हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा. बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ. अगली फरमाइश हमारे पास में मालवे नगर से राजेश सिंह जी की, और उनको सुनना है किशोर कुमार की आवाज में हेरा फेरी का गाना. सो एंजॉय करते हैं ये वाला नगमा हमारे ओल्ड इज गोल्ड राजेश सिंह जी की फरमाइश पर. स्टे ट्यून्ड एवरीवन.

नगमा हमारे मालवीय नगर से राजेश सिंह जी की फरमाइश पर बढ़ते हमारी आज के अगले फरमाइशी गीत की तरफ। लेकिन उसके पहले मैं बताना चाहूंगी कि इस फरमाइशी गीत के उस तरफ हम लोग चलेंगे हमारी आकाशवाणी की न्यूज की दुनिया में, जहां हम रूबरू होते हैं देश दुनिया की खबरों से। सो देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के बाद में हम लोग फिर से वापस आएंगे हमारे अपने आप के अपने फरमाइशी प्रोग्राम में, जहां गीत तो बजते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस और बस आपके नाम से, वो भी आपके अपने आरजे सिंपल नॉट से सिंपल के साथ में। और जिन लोगों ने पेट पूजा नहीं की है फटाफट से जाके पेट पूजा कर लीजिए।

पेट पूजा करने के बाद में फिर से वापस आइए हमारे अपने आप के अपने फरमाइशी प्रोग्राम में। स्टे ट्यून्ड एवरीवन। नाउ लेट्स रॉक द बेवफाई वाला गाना।

0: तबकंद पहुँचे। नेपाल में बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 669 हुई। 287 भारतीय नागरिकों सहित 2000 से अधिक लोग अब भी लापता। नेपाल ने भारत के राहत प्रयासों की सराहना की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अमेरिका के शिकागो बिजनेस राउंड टेबल सम्मेलन में भारत के विशाल बाजार आकार और दीर्घकालिक निवेश क्षमता को रेखांकित किया। इस वर्ष जुलाई तक 115 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को प्रति बूंद अधिक फसल लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत लाया गया। यूक्रेन के बुचा जिले पर रूस के ड्रोन हमले में 37 लोग मारे गए और ओडिशा में सोमवार तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। बिहार, पश्चिम बंगाल के गांगे क्षेत्र, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में भी तेज बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की उज्बेकिस्तान की यात्रा पर आज शाम राजधानी ताशकंद पहुंचे। राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव ने उनका स्वागत किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी के स्वागत के लिए ताशकंद शहर में विशेष प्रबंध किए गए हैं।
1: पूरा ताशकंद शहर भारतीय झंडों और होर्डिंग से सजा हुआ है। हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चौथी यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव सदियों पुराने आपसी संबंधों को और मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। दोनों नेता राष्ट्रपति भवन में व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और जन संबंधों के क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे। वे विकसित भारत 2047 और उज्बेकिस्तान 2030 के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
0: उज्बेकिस्तान में भारत की राजदूत स्मिता पंत ने आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष साक्षात्कार में कहा कि उज्बेकिस्तान में प्राकृतिक संसाधनों का समृद्ध भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की ताशकंद यात्रा के दौरान निवेश और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर भी चर्चा की संभावना है।
2: रिलेशनशिप ऑलरेडी बहुत अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में है। 2011 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोर्ज हुई थी, उसके बाद 2015 में प्रधानमंत्री जी का पहला दौरा हुआ था। 2026 तक बहुत सारे एरियाज में हम लोग फॉरवर्ड मूवमेंट कर चुके हैं, चाहे आप ट्रेड की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, डेवलपमेंट कोऑपरेशन की बात करें, डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें। ट्रेड में ही करीबन 300% इंक्रीज हुई है 2015 से।
0: उज्बेकिस्तान के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जापारोव के निमंत्रण पर बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। नेपाल में आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या 669 हो गई है और 2000 से अधिक लोग लापता है। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बंद सड़कों को साफ करने का काम भी तेजी से चल रहा है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल में अब तक 88 भारतीय नागरिकों को बचाया जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 287 भारतीय नागरिक लापता हैं। उन्होंने कहा कि 128 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। रसुवा स्थित एक जल विद्युत परियोजना से 4 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। आज 120 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल में दाखिल हुए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: नेपाल में बुधवार को आई भीषण बाढ़ की त्रासदी के बाद से वहां फंसे भारतीय नागरिकों को खोजने और बचाने के लिए भारत ने अपने प्रयास तेज कर दिए हैं। भारत की 6 फोरेंसिक विशेषज्ञ टीम मृत लोगों के शवों की पहचान करने के लिए डीएनए सैंपल की जांच में मदद करेंगी। इसके अलावा सुरंग में बचाव कार्य की जांच करने वाली एक विशेष तकनीकी टीम कल काठमांडू पहुंची, जिसने प्रभावित क्षेत्र में सुरंग से लोगों को बचाने के काम में सहायता शुरू कर दी है। वहीं विदेश मंत्रालय ने बचाव, राहत और लापता भारतीय नागरिकों की जानकारी जुटाने के लिए 24 घंटे चलने वाला कंट्रोल रूम बनाया है। काठमांडू और बीजिंग में स्थित भारतीय दूतावासों ने भी 24 घंटे की हेल्पलाइन शुरू की है, ताकि बाढ़ से प्रभावित भारतीय नागरिकों की मदद की जा सके। इसके अलावा भारत ने नेपाल में चल रहे बचाव और राहत कार्यों में मदद के लिए 57 टन से अधिक आपातकालीन राहत सामग्री भेजी है। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: नेपाल सरकार ने संकट की इस घड़ी में भारत की तत्काल मदद की सराहना की है। नेपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को असाधारण रूप से उदार बताया है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने भी भारत की सहायता के लिए आभार व्यक्त किया। वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले ने कहा कि बाढ़ के बाद भारत से राहत सामग्री भेजी गई है और भारत ने पुनर्निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने का संकेत दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत नेपाल को लगातार सहायता भेज रहा है।
4: नेपाल में जो क्राइसिस पैदा हुई है उससे केवल नेपाल ही चिंतित नहीं है, भारत भी चिंतित है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा है कि जितनी भी सहायता की आवश्यकता होगी या जो भी सहायता आवश्यक होगी वह सब भारत उपलब्ध कराने के लिए तैयार है।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक कंपनियों को अपनी आपूर्ति श्रृंखला और पूंजी आवंटन का फिर आकलन करना चाहिए, क्योंकि भारत न केवल विशाल बाजार उपलब्ध कराता है बल्कि दीर्घकालीन निवेश और संचालन मंच का भी आधार है। अमेरिका के शिकागो में प्रमुख निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ एक उच्च स्तरीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत में निवेश का तात्पर्य व्यापक बाजार, सतत आर्थिक विकास, कौशल युक्त प्रतिभा, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और एक दशक के सुधार से है। उन्होंने कहा कि देश का अगला आर्थिक विकास AI, इंजीनियरिंग, एनालिटिक्स, उत्पाद विकास, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स में निहित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए @AIRNewsHindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि इस वर्ष जुलाई तक प्रति बूंद अधिक फसल योजना के अंतर्गत 115 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को लघु सिंचाई प्रणाली में लाया गया है।
6: योजना का उद्देश्य खेत स्तर पर पानी के प्रयोग में दक्षता लाना और उसमें सुधार करना है। ये योजना जनवरी 2006 में केंद्र सरकार ने लघु सिंचाई के लिए शुरू की थी। वर्ष 2015-16 से 2021-22 तक इसका आधिकारिक नाम प्रति बूंद अधिक फसल किया गया और इसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के प्रमुख घटक के रूप में लागू किया गया। जना के अंतर्गत केंद्र सरकार 5 हेक्टेयर तक लाभार्थी को लघु सिंचाई प्रणाली लगाने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। छोटे और सीमांत किसानों को 55% और अन्य किसानों को 45% तक वित्तीय सहायता मिलती है। केंद्र सरकार ने पिछले 3 सालों में 8,123 करोड़ रुपए से अधिक की राशि इस योजना में जारी की है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत न केवल एक प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है बल्कि अपनी सभ्यतागत विरासत, संस्कृति और क्षमताओं में दृढ़ विश्वास रखने वाला राष्ट्र भी है। लखनऊ में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि आज जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। उन्होंने कहा कि भारत में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुआ है।
4: पिछले 12 वर्षों में शिक्षा की क्वालिटी, एसेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी बढ़ी है। भारत का रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पहले के कंपैरिजन में 2 गुना हो गया है। 34 ईयर्स में पहली बार हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई है। शिक्षा के क्षेत्र में हुए बदलावों और अच्छी पॉलिसीज का ये परिणाम है कि आज देश के नौजवान स्टार्टअप खड़े कर रहे हैं, यूनिकॉर्न कंपनियां बना रहे हैं। 2015 में हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 81वें स्थान पर, हमने अब 38वें स्थान पर अपनी पहुंच हासिल कर ली है।
0: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज बेंगलुरु में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। उपराष्ट्रपति ने उन्हें एक ऐसा राजनेता बताया जो विकेंद्रीकरण, त्रिस्तरीय शासन, सुदृढ़ संघवाद और लोकायुक्त की मजबूती के लिए खड़ा रहा। उन्होंने कहा कि रामकृष्ण हेगड़े का कार्यालय विश्वास का प्रतीक था। भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस पार्टी पर दलित समुदाय को राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। भाजपा के प्रवक्ता डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान ने नई दिल्ली में कहा कि कांग्रेस का दलित समुदाय को अपमानित करने का इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि इसके विपरीत नरेंद्र मोदी सरकार ने BR अम्बेडकर की विरासत का सम्मान किया और उनसे जुड़े स्थलों को तीर्थ स्थल का दर्जा दिया है। पार्टी के एक अन्य प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर राजनीतिक लाभ के लिए हिंदुओं को बांटने का आरोप लगाया। उन्होंने अनुच्छेद 370 का उल्लेख किया और कहा कि इसके प्रावधान जम्मू कश्मीर में वाल्मीकि समुदाय के साथ भेदभाव करते थे। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दलित समुदाय के खिलाफ भेदभाव का मुद्दा उठाया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं।
5: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: ये आकाशवाणी है। यूक्रेन की राजधानी कीव के पास बुचा जिले में आज हुए एक भीषण रूसी ड्रोन हमले में 37 लोगों की मौत हो गई। हमले में 50 आवासीय इमारतें क्षतिग्रस्त हुई और कई घर और एक रेस्तरां भी भीषण आग की चपेट में आ गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि बुजुर्गों और विकलांगों के लिए बने एक देखभाल केंद्र और आवासीय इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर भारतीय हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय हॉकी की श्रेष्ठतम प्रतिभा के रूप में मेजर ध्यानचंद आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करते हैं। श्री मांडविया ने लोगों से स्वस्थ और फिट रहने के लिए हर सप्ताह कम से कम एक घंटा खेल के मैदान में बिताने का आह्वान किया।
7: आज नेशनल स्पोर्ट्स डे के अवसर पर सारे देश में फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए एक घंटे खेल के मैदान में कार्यक्रम दिया है। मुझे खुशी है, मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, नया भारत का निर्माण हो रहा है।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार खेल और खिलाड़ियों के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
8: देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार निवेश कर रही है, जिसका असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दिखाई दे रहा है। ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और अन्य बड़ी खेल प्रतियोगिताओं में भारत का बेहतर प्रदर्शन दिखाता है कि देश खेलों के क्षेत्र में लगातार मजबूत हो रहा है। केंद्रीय बजट 2026-27 में खेल मंत्रालय के लिए 4400 करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया गया है। भारत ने रियो 2016 में 2 पदक, टोक्यो 2020 में 7 पदक और पेरिस 2024 में 6 पदक जीते थे। वहीं पैरा ओलंपिक खेलों में भी भारत के प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। पदकों की संख्या रियो 2016 में 4 से बढ़कर पेरिस 2024 में 29 हो गई है। इसके अलावा एशियाई खेलों में भी भारत का प्रदर्शन लगातार बेहतर हुआ है। देश ने 2014 के एशियाई खेलों में 57 पदक जीते थे, वहीं 2023 में भारत ने रिकॉर्ड 107 पदक जीतकर इतिहास रचा। सकलेन अख्तर के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आज संयुक्त CSIR UGC नेट परीक्षा के सभी 5 विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अपने पहचान पत्रों का उपयोग करके लॉगिन कर अपने विषय से संबंधित अंतिम उत्तर कुंजी देख सकते हैं। पंजाब सरकार ने 27 अगस्त को महाहड़ताल के अंतर्गत सामूहिक आकस्मिक अवकाश पर जाने वाले लाखों कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। सरकार ने सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागों के प्रमुखों को अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने वाले सभी कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं। मौसम विभाग ने ओडिशा में अगले 2 दिनों के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गंगा के तटवर्ती क्षेत्र में कल मूसलाधार बारिश की चेतावनी है। इसके अलावा बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और विदर्भ में भी कल तेज बरसात की आशंका है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटवर्ती क्षेत्र और ओडिशा में बिजली चमकने तथा आंधी तूफान के आसार जताए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत और उज्बेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए 2 दिन के दौरे पर ताशकंद पहुंचे। नेपाल में बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 669 हुई। 287 भारतीय नागरिकों सहित 2000 से अधिक लोग अब भी लापता। नेपाल ने भारत के राहत प्रयासों की सराहना की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अमेरिका के शिकागो बिजनेस राउंड टेबल सम्मेलन में भारत के विशाल बाजार आकार और दीर्घकालिक निवेश क्षमता को रेखांकित किया। इस वर्ष जुलाई तक 115 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को प्रति बूंद अधिक फसल लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत लाया गया। और ओडिशा में सोमवार तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट, बिहार, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में भी तेज बारिश की संभावना। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

एक बार फिर से स्वागत और इस्तकबाल है आप सभी का आपके अपने शो फरमाइशी में, आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। जी हाँ दोस्तों, अभी हमने एंजॉय किया बहुत ही खूबसूरत सा नगमा मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से अजय मिश्रा की फरमाइश पर। बढ़ेंगे हमारे आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ, लेकिन उसके पहले कुछ कहना चाहूंगी। इरशाद इरशाद तो करिए ना। कहना है कि चेहरे की हंसी दिखावट सी हो रही है, असल जिंदगी भी बनावट सी हो रही है। अनबन बढ़ती जा रही है रिश्तों में भी, अब अपनों से भी बगावत सी हो रही है। पहले ऐसा नहीं था जैसा हूं आजकल, मेरी कहानी कोई कहावत सी हो रही है। दूरी बढ़ती जा रही है मंजिल से मेरी, दूरी बढ़ती जा रही है मंजिल से मेरी। चलते चलते भी थकावट सी हो रही है, शब्द कम पड़ रहे हैं मेरी बातों में भी, खामोशी की जैसे मिलावट सी हो रही है। और मशवरे की आदत ना रही लोगों को, और मशवरे की आदत ना रही लोगों को, अब गुजारिश भी शिकायत सी हो रही है। सो अब एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है धर्मेंद्र मोहन की आवाज विकास गोंडा से, और उनको सुनना है गाना दिल तू ही बता। सो एंजॉय करते हैं ये वाला नगमा इसी फरमाइशी गीत के उस पार। फिर से मिलते हैं, स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

जाता है, बस डिपेंड तो समझने वाले के ऊपर करता है ना कि वो किस तरह समझता है। और वैसे भी हर एक सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं मेरे मित्र। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है महेंद्र दीपेन की राजस्थान से। उनको सुनना है गाना तेरी बिंदिया उड़ा के ले गई मेरी निंदिया। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा महेंद्र की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड।

0: नगमा उड़ा के ले गई मेरी निंदिया। हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ दोस्तों। क्या अब वक्त हो चला है हमारी अगली फरमाइशी गीत का? आप ही लोग बताइए। अरे मत बताइए मत बताइए, मुझे पता है वक्त हो चला है। सो चलिए चलते हमारे आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ। लेकिन उसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। अरविंद मनकापुर से, सविता दुबे जी गोंडा से और अंबर गोयल, आपका भी तहे हुए दिल से स्वागत है। सो एंजॉय करते हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों अरविंद की मनकापुर से, और अरविंद की फरमाइशी गीत के बाद में हम लोग एंजॉय करेंगे निब्बर जी की फरमाइश, जो की है रानी बाजार सोनार गली गोंडा से। और इन दोनों के फरमाइशी गीतों के साथ में अभी आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल लेना चाहती है अलविदा। सो दोस्तों बस यही तक कहना चाहूंगी कि हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, गुनगुनाते रहना, अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, खुश रहना और सुनते रहना रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन आपके अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सो गाइज हैव अ वेरी वेरी वेरी ग्रेट नाइट। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली एज वेल। समवन स्पेशल का ध्यान रखना बिल्कुल मत भूलना। आजू बाजू वालों पर, वालियों पर ध्यान देना कतई नहीं भूलने का है। और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल को बहुत सारा मिस करना है, क्योंकि मैं कल नहीं आऊंगी। कल है संडे, संडे मींस फंडे, फंडे मींस हॉलीडे। मिलते हैं परसों, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। बहुत सारा प्यार आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की तरफ से आप सभी के लिए। आप सबकी तरफ से बेइंतहा बेतहाशा प्यार आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के लिए। लव यू ऑल, स्टे ट्यून, मिलते हैं कल परसों। टेक केयर।
1: उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह

ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: नफरत की हमारे शहर में लग न जाए आग, नफरत की हमारे शहर में मैं मोहब्बत हूँ, मेरी आंखों को बहने दीजिए। मैं हूँ आप सभी का दोस्त मनु, और रोज लेकर आता हूँ आप सभी के लिए आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम बहारे गजल। हर शाम 9:15 से 10:30 पर हम होते हैं आपके साथ। किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। मैं नहीं कहता मेरे सब्र का फल कहता है, ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। आइए अब वक्त हो चला है, आपको ले चलते हैं बहारों की दुनिया में। सुनिए बहारे गजल अपने दोस्त मनु के साथ। आइए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी गजल के साथ।
1: अरे सुना
2: क्या,
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा 500 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ,
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583546।
3: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
4: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
3: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
4: आज ही कॉल करें 9260 9761 9861 9786। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड गोंडा।
3: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
4: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही दस्त प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, ORS और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैनव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
3: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
4: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
3: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
4: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
3: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
4: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
3: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन, या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से TV, रेडियो और सोशल मीडिया पर, तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा TV एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840335984। अब बारी है आपकी।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9816 9216 9819 1976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
3: मतलब
2: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
4: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8919-1416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

0: जी हाँ जी हाँ जी हाँ, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, शुभ संध्या शुभ संध्या शुभ संध्या। आप सुन रहे हैं और रेडियो गन स्लेट 9.6 एफएम, यह है गोंडा शहर की धड़कन। और अब कार्यक्रम चल रहा है बहारे गजल, और आज के शनिवार के प्यारे से सेगमेंट में आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है। गजलें हमारी, गीत आपके। तो जी गजलें हम सुनाएंगे, फिलहाल एक गजल हमने बहुत प्यारी सी आपको सुना दी, और अब गीत आपके होने का क्रमांक आ चुका है। तो जी अब तैयार हो जाइए, हमारे साथ रवि गुना जी से हैं, और अब देखते हैं हमारे साथ, जी हाँ कोई आ चुके हैं और गीत के लिए हम हो चुके हैं तैयार। आहा, सौ चांद भी निकलेंगे तो क्या बात बनेगी, अब आप आ गए हैं तो ये रात बनेगी। अनूप मिश्रा जी, शुभ संध्या। हेलो,
1: नमस्कार।
0: अरे दादा, चरण स्पर्श,
1: खुश रहिए सर, कैसे हैं?
0: बस आपका आशीर्वाद है।
1: अरे आप लोगों की दुआएं भी हमारे साथ,
0: वो हमेशा रहेंगी, उसमें कमी 1% नहीं होने देंगे। तो
1: हमारा भी आशीर्वाद हमेशा रहेगा।
0: जी जी जी दादा, तो क्या सुनने वाले हैं आज हम आपसे?
1: अब आपको मैं रफी कुछ गाना ही सुनाऊंगा।
0: हाँ, और आप अपने साथ साथ उनको भी तैयार कर लीजिए जो आपके बिना अधूरी हैं, क्योंकि उनको
1: नहीं, नहीं, वो आज नहीं गाना गाएंगे।
0: अच्छा, वो आज गाना नहीं गाएंगे,
1: वो आज श्रोता बन के सबको सुनेंगे।
0: अच्छा, मतलब इसके पीछे कोई खास वजह है?
1: नहीं, दरअसल घर में थोड़ा चल रहा है काम, डेंटिंग पेंटिंग का।
0: अच्छा, मतलब कोई शुभ कार्य होने वाला है क्या?
1: अरे तो शुभ कार्य होगा तो आप कहाँ रहेंगे, आप तो साथ ही रहेंगे।
0: जी जी, हम तो एकदम साथ रहेंगे। ये हमने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि आप सरप्राइज दें पहले से। हम
1: ऐसा कुछ है ही नहीं
0: जी,
1: एक्चुअली क्या है ना कि थोड़ा सा टाइम था तो हमने कहा कि डेंटिंग पेंटिंग करा दिया जाए घर का।
0: बिल्कुल अच्छी बात है, और आपकी आवाज से ये ज्ञान स्थली 89.6 एफएम की डेंटिंग पेंटिंग भी हो जाती है।
1: आप इतना मत बढ़ाई
0: लीजिए भाई, अब सूरज को सूरज कहना, अगर बढ़ाई करना है तो हम बढ़ाई ही कहेंगे उसको।
1: मैं सूरज नहीं हूँ, छोटा सा शायद दिया भी नहीं हूँ।
0: हाँ, लेकिन अपने हिस्से का प्रकाश कर रहे हैं।
1: नहीं नहीं, जुगनू हो सकता हूँ कि थोड़ा थोड़ा कर।
0: हाँ हाँ, वही कुछ भी हो लेकिन करेंगे।
1: तो मैं आपको रफी साहब का गाना, ये रेशमी जुल्फे।
0: आए हाय हाय हाय, कोई याद आ गया क्या आज आपको?
1: अरे यार तो बहुत कुछ याद।
0: ठीक है, हाँ वो गाना सुन के हमको लगा कि आपका माजी आपको पुकार रहा है।
1: नहीं नहीं, एकदम एकदम आप बिल्कुल सही हैं
0: जी।
1: तो अगर आप कहें तो मैं शुरू करूं?
0: जी जी, निसंदेह शुरू करें, प्रारंभ करें।

ये जो आंखें शर्म से झुक जाएंगी सारी बातें यही बस रुक

इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। जुल्फें मगरूर इतनी हो जाएंगी, दिल को तड़पाएंगे, जी को तरसाएंगे। जुल्फें मगरूर इतनी

देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, सारे इनके शिकायत करते हैं, फिर भी इनसे मोहब्बत करते हैं।

0: धन्यवाद सर।
1: आज मैं कहूंगा सीधा सटीक संपूर्ण अद्भुत अतुलनीय अविश्वसनीय।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर।
1: क्या आप मतलब एक शब्द इधर उधर नहीं, इतनी प्यारी सी गजल, इतनी प्यारा से इतना प्यारा नगमा, और उसी धुन में उसी पिच पर, और एक भी शब्द का हेर फेर नहीं।
0: चलिए धन्यवाद।
1: मतलब लगता है आपने बहुत प्यारी तैयारी की थी।
0: नहीं तैयारी कहाँ, मैं तो अभी तो आ रहा हूँ क्लोजिंग करा के पार्टी का।
1: अच्छा ये बात है।
0: लास्ट हम लोग का लास्ट क्लोजिंग चलता है ना सर।
1: जी जी अच्छा ये बात है। तो मतलब लेकिन फिर भी लगा कि इस गीत को तैयार किया गया है काफी शिद्दत।
0: नहीं तैयारी पुरानी थी, आज दिमाग में आ गया कि यही गाना गाना है बस।
1: और अनूप मिश्रा जी लिख चुके हैं, भाई बहुत खूब मामा जी, वेरी गुड, बोले तो झक्कास गाया है आपने।
0: नहीं मैं अनूप जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा कि उनको उन्होंने बोला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: हाँ भाई अनूप जी स्वयं भी बहुत अच्छा गाते हैं, और देखिए जब
0: कोई दो चुका हूँ
1: कलाकार की अगर तारीफ करता है तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सच होता है।
0: नहीं नहीं देखिए जो आप गाए दिल को छू जाए, आपके अपने दिल को,
1: जी जी,
0: तो शायद वो दूसरे को जरूर अच्छा लगेगा।
1: बिल्कुल अच्छा लगेगा निसंदेह।
0: अनूप जी बहुत अच्छे, अनूप जी बहुत सुर से गाते हैं, अच्छा गाते हैं,
1: बहुत अच्छा गाते हैं। और आज तो आपने शुरुआत करके बोहनी अच्छी कर दी हमारी।
0: अच्छा मैंने शुरुआत किया, हमको तो लगा कि शायद दो तीन लोग का हो चुका होगा।
1: नहीं नहीं गजलें हमारी, गीत आपके तो पहले एक गजल सुनाएंगे उसके बाद तो गीत सुनेंगे।
0: अच्छा ये था
1: जी।
0: चलिए कोई बात नहीं, शुरुआत होती है एक से। अभी आपके पास बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं, मैं सुनना चाहूंगा।
1: जी जी
0: ओके सर, शुभ रात्रि।
1: अच्छा चलो स्पर्श
0: होते रहिए सर।
1: जी हाँ भाई हमारे साथ अब दीपक जी भी जुड़ चुके हैं हथियागढ़ से, बहुत दिनों के बाद आपको देख रहा हूँ। शुभ संध्या जमुनुसर जी, आपको भी शुभ संध्या जी। वास्तव में जरा भाई कल तो रक्षाबंधन का त्यौहार रहा, तो जरा बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में आइए, कैसी रही आपकी राखी, कैसे रक्षाबंधन मनाया आपने। और अब तो त्योहारों की श्रृंखला ही चल पड़ी है, इधर छठी माता की पूजा, फिर इसके बाद अपने आप में संपूर्ण अवतार यानी जन्माष्टमी, उसके पश्चात त्योहारों का सिलसिला है चलने वाला है। और इस त्योहारों के सिलसिले को हम जोड़े रखेंगे आपके साथ, क्योंकि हम और आप ये दो इकाई मिलकर एक परिवार बनाते हैं। एक हमारे श्रोता होते हैं और एक यहाँ पर बैठा हुआ व्यक्ति जो आपसे जुड़ा हुआ होता है हृदय से। तो मिश्रा ऑप्टिकल जी भी गोंडा से हमारे साथ है, गुड इवनिंग सर जी, बताइए कैसा रहा आपका रक्षाबंधन का त्यौहार। अनूप जी आप भी जरा बताइए भाई हमको त्यौहार कैसा रहा। अगर आप गीतों के माध्यम से बताएं, गज़लों के माध्यम से बताएं, तो ये और भी अच्छी बात होगी। आज का दिन हमारे लिए बहुत खास हो जाएगा कि हमने अपने अपने अनुभव साझा किए, अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। और सविता दुबे जी भी मेरे साथ हैं, जी हाँ प्रणाम करते हैं आपको। और महेंद्र दीपेन जी को भी मैं देख पा रहा हूँ भाई, रवि जी भी मेरे साथ उपस्थित हैं, धर्मेंद्र मोहन जी आवास विकास के साथ हैं मेरे साथ, जी हाँ बहुत प्यारे प्यारे श्रोता जुड़े हैं। जी हाँ तो एक गजल आपने सुनी और एक गजल के बाद एक प्यारा सा गीत सुना आपने, और अब आइए फिर सुनाते हैं आपको एक प्यारी सी गजल, और फिर सुनेंगे आपसे एक प्यारा सा गीत। सुनते रहिए रेडियो 89.6 एफएम, यह है गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूं मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। लेकिन उसके पहले मेरे पास फोन आ चुका है, जरा देख लें कौन हमारे पास। हेलो
2: हाँ नमस्कार।
1: अरे क्या बात है, रोमांटिक कुमार के बाद दर्द कुमार, सीधे एंट्री।
2: और कैसे हैं
1: जी, आपका आशीर्वाद और आपका रक्षाबंधन का त्योहार कैसा रहा?
2: ठीक रहा भैया,
1: बहुत बढ़िया, और इसी प्रकार से खुशियां आपके जीवन में आती रहे। तो आज दर्द कुमार रहेंगे या दर्द कुमार रोमांटिक कुमार हो जाएंगे?
2: अब दर्द है तो दर्द,
1: हाँ
2: ये कुमार ही मिला है तो कुछ तो असर रहेगा ही,
1: कुछ तो असर रहेगा ही।
2: अरे गुरु दत्त ने कहा ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है।
1: सही बात है
2: ना।
1: जी।
2: और वही गुरुदत्त जब दुनिया पा जाते हैं तो इस तरफ क्या कहते हैं, इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ, इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ, गैर तो गैर थी

0: अब एक तरफ कहते हैं कि देखो ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, वाह भाई गुरु दत्त और गुरु क्या गम, और जब दुनिया मिल गई तो कोई भी हमारा ना हुआ क्या। कहते हैं बताओ कोई ना हुआ है कुछ लोग ऐसे दुनिया में
1: सही कहते हैं।

आसमां कितने सितारे हैं तेरी महफिल में, अपनी तकदीर का कोई भी सितारा न हुआ, अपनी तकदीर

दुनिया में जी लेते हैं, एक हम के हंसे भी तो गुजारा।

इस बड़ी दुनिया में एक मोहब्बत के सिवा और न कुछ मांगा था, एक मोहब्बत के सिवा और न कुछ मांगा था। क्या करे ये भी जमाने को गवारा न हुआ क्या।

0: क्या बात है भाई, क्या क्या नगमा चुना और क्या दर्द है। अनूप जी लिखते हैं, सुरेश जी गोंडा के रफ़ी साहब, बहुत प्यारा दर्द में डूबा हुआ नगमा, दिल जीत लिया आपने हमेशा की तरह। क्या बात है भाई, अनूप जी ने आपको बहुत बहुत कॉम्प्लीमेंट दिया।
1: अनूप भाई को मेरा नमस्कार भैया, ठीक है।
0: आप उनको आशीर्वाद दिया कीजिए, आप उनको नमस्कार मत किया कीजिए, हमको भी आशीर्वाद दिया कीजिए भाई।
1: इजाजत हो तो एक मुकेश की एक आवाज है अगर।
0: अरे क्या बात है, मिश्रा आप टिकल जी भी करते हैं, क्या बात है सर जी। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हेलो,
1: हाँ
0: जी
1: सुना दे।
0: हाँ बिल्कुल सुना दीजिए।
1: वो तेरे प्यार का गम एक बहाना था सनम, अपनी किस्मत थी कुछ ऐसी के दिल टूट गया। वो तेरे प्यार का गम एक बहाना था सनम, अपनी किस्मत थी कुछ ऐसी।

0: मैं तो वो हूँ जिसे हर हाल में बस रोना था, मुस्कुराता भी अगर तो छलक जाती नजर, अपनी किस्मत थी को कैसी के दिल टूट गया, वरना क्या बात है तू को इस दंगल तो नहीं, वरना क्या बात है तू को इस दंगल तो नहीं, तेरे सीने में भी दिल है कोई पत्थर तो नहीं, तू निधाए है सितम तो यही समझेंगे हम, अपनी किस्मत थी कुछ ऐसी के दिल टूट गया, वो तेरे प्यार का गम एक बहाना था सनम, अपनी किस्मत थी कुछ ऐसी के दिल टूट गया। थैंक यू सर।
1: क्या बात है भाई सुरेश कुमार जी, रफी में भी दर्द और मुकेश में भी दर्द।
0: क्या बात है,
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: भाई।
1: और भाई आज तो श्रीमती सविता शास्त्री जी चरण स्पर्श पहले आपको लिखा है कि सुरेश जी ने बहुत अच्छा गाया।
0: थैंक यू मेरे भैया, थैंक यू मेरे दादा।
1: हाँ मतलब आप
0: भगवान को भेटे
1: बहुत प्यारा, बहुत प्यारा।
0: ठीक है, चल नमस्कार
1: जी, प्रणाम। ये भाई हमारे गोंडा के दर्द कुमार जी हैं जी। हाँ, धर्मेंद्र मोहन जी जुड़ चुके हैं। मनुष्य जी नमस्ते, बेस्ट ऑफ लक। सर जी आप में याद करें हम ना, ये हो नहीं सकता, दिल जुदा हो नहीं सकता। अरे कौन कौन है जो दिल जुदा कर सकता है। और जी मिश्रा ऑप्टिकल ने लिखा भाई मस्त है सर जी। और जी आज तो हम चाहेंगे भाई धर्मेंद्र मोहन जी भी कुछ हमको सुनाएं। अभी तो अनूप मिश्रा जी का आना बाकी है भाई। और तो चलिए एक से एक बढ़कर वर्सटाइल सिंगर हमारे पास हैं, बहुमुखी प्रतिभा के धनी। जी हाँ, तो अब दो गीत हो चुके हैं, अब आपको सुना देते हैं एक प्यारी सी गज़ल और मिलते हैं इस संगीत में अंतराल के उस पार। सुनते रहिए और रेडियो का नेस्टली 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन। और मैं हूँ मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। फिलहाल ये प्यारी सी गजल आप सभी के लिए।
2: टूटा टूटा एक

0: तो चौराहे पर खड़ा कबीरा आवाज लगा रहा है, और जी हाँ इसी के साथ किसी का फोन भी आ चुका है, और देखते हैं भाई कौन आ चुका है, मेरे साथ कौन जुड़ चुका है। हमने कहा था इस गजल के बाद आपसे मिलते हैं, और देखते हैं कौन हमारे साथ। हेलो
1: हेलो, नमस्कार सर।
0: ओहो, नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं?
1: बहुत अच्छे सर, आप बताइए कैसे हैं?
0: बस आशीर्वाद आपका।
1: चलिए, स्वस्थ है?
0: एकदम एकदम एकदम एकदम।
1: सर रक्षाबंधन कैसा रहा?
0: रक्षाबंधन बहुत शानदार रहा। आपसे प्रार्थना है कि जो थोड़ा सा जेब हल्की हो गई है, आप मिलिए तो कभी भारी कर दीजिएगा।
1: पर हम कैसे देंगे? क्योंकि पद तो हमारा मिलने वाला है ना।
0: पद तो आपका मिलने वाला है, लेकिन मतलब आप आज रक्षाबंधन के दिन आपका दिन था,
1: और
0: उसके पश्चात अगर बड़े भाइयों को आवश्यकता पड़ जाए तो छोटी बहनें दे सकती हैं।
1: चलिए सर, इसका भी मान रखेंगे, और कभी ऐसा हुआ तो जरूर।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: वैसे वो क्या सिचुएशन होगी जब हम आपको दे सकते हैं? क्योंकि रक्षाबंधन ही मुझे एक ऐसा त्योहार लगता है जहाँ सच में मजा आता है पैसे लेने में।
0: हाँ ये बात तो आपने सही कही
1: जी सर,
0: तो मतलब अगर आप आई होती तो आपको हम जरूर देते।
1: हाँ। अच्छा तो हाँ? मतलब मैंने मिस कर दिया? हाँ?
0: मिस कर दिया, क्या बताए, आप मिस है और आपने मिस ही कर दिया।
1: कोई बात नहीं सर, ऑनलाइन का जमाना है।
0: नहीं कोई बात नहीं, तो ऑनलाइन रक्षाबंधन थोड़े बांध देंगे आप, वो तो ऑफलाइन ही बांधना पड़ेगा।
1: जी जी सर, जरूर कोशिश करेंगे अगर कभी मौका मिला। नहीं आ पाए ना सर, मामा के यहाँ चले गए थे मम्मी के साथ में।
0: जी जी, नहीं हमारी बड़ी इच्छा थी कि इस बार हम बंधवाए, लेकिन
1: नेक्स्ट टाइम जरूर कोशिश करेंगे।
0: फिलहाल आपकी महफिल में आपका स्वागत है, इस्तकबाल।
1: जी जी धन्यवाद सर।
0: तो
1: एक सॉन्ग है जो मैं सुनाना चाहूंगी।
0: जी
1: जी, इजाजत है?
0: जी जी, अरे प्रार्थना।
1: जी बहुत प्यारा सर है, थोड़ा सा इमोशनल कर देने वाला है।
0: ठीक ठीक, हम सुन रहे हैं।
1: जी, जी।

0: टुक टुक निहारे जो परदेसी चिट्ठिया परदेसी चिट्ठिया परदेसी चिट्ठिया। थैंक यू सर।
1: क्या बात है भाई, वास्तव में आपने भाव विभोर कर दिया, बहुत ही प्यारा सा गीत।
0: जी सर, इसका एक और स्टैंजा था
1: जी,
0: लेकिन मैंने नहीं गाया क्योंकि जब मैं ये गाती हूँ या मैं सुनती हूँ तो मेरी कहीं ना कहीं सर आंखें नम हो जाती हैं।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं, वास्तव में भाव बहुत ही मर्मस्पर्शी, बहुत ही भाव विभोर कर देने वाला।
0: तो मैंने सोचा आज मैं आपको यही सुनाती हूँ।
1: बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा
0: जी सर।
1: बहुत
0: धन्यवाद सर।
1: धन्यवाद,
0: नमस्कार सर
1: जी, प्रणाम। यहाँ से हमारे साथ नाजिया अंसारी जी हैं। भाई गुड इवनिंग, शुभ संध्या, कैसी हैं आप, आदाब करते हैं आपको। और धर्मेंद्र ने कहा कि और पूर्णिमा जी नमस्ते, और कहा जा रहा कि भाई आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है जी, बहुत प्यारी आवाज़ है। और अब घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि आपसे अनुमति लेने का वक्त आ चुका है। तो शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा और प्रयत्न कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी और के होंठों पर आ सके प्यारी सी मुस्कान। आसमान वाले ने चाहा तो कल 1 बजे दोपहर में आपसे मुलाकात होगी, आप ही के कार्यक्रम ओपन माइक अपना टैलेंट अपना एफएम में। अगर आपके पास थोड़ा सा वक्त हमारे लिए है तो आइए, हम आपका तहे दिल से स्वागत करेंगे, इस्तकबाल करेंगे। बहुत खूब पूर्णिमा जी, मनोज मिश्रा जी ने लिखा। और अब चलते हैं जी आपसे अनुमति लेने के लिए, आइए ओपन माइक कर रहा है आपकी प्रतीक्षा, तब तक सुनते रहिए रेडियो गणेश 89.6 FM, ये है गुना शहर की धड़कन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।

नमस्कार श्रोतागण, मैं हूं आपकी अपनी लेट नाइट आरजे और आप सुन रहे हैं 89.6 एफएम ज्ञानस्थली रेडियो का अपना पसंदीदा कार्यक्रम लेट नाइट हॉरर शो। रात जितनी गहरी होती है, कहानियां भी उतनी सच्ची लगने लगती है। कुछ कहानियां डराती नहीं, बस धीरे धीरे आपके भीतर उतर जाती हैं। आज की कहानी भी ऐसी ही है। कश्मीर, जहाँ लोग कहते हैं कि हर चिनार का पेड़, हर झील, हर पहाड़ अपने भीतर किसी न किसी की याद संभाले बैठा है। लेकिन अगर किसी की याद वहीं रह जाए और इंसान लौट आए तो क्या होता है? आज की कहानी है चिनार गवाह है। आइए सफर शुरू करते हैं। पहाड़ी पर एक टैक्सी चल रही है। थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी हो रही है जो शीशे से टकरा रही है, और दूर कहीं कोई नदी बहने की आवाज आ रही है। ड्राइवर लगभग मध्यम आयु का है और अचानक ही बहुत सहज आवाज में कहता है, साहब बस 10 मिनट और आपका गांव आ जाएगा। आरव करीब 38 वर्ष का शांत लेकिन भीतर से थका हुआ इंसान है। वो कुछ नहीं बोलता। ड्राइवर ने फिर पूछा, पहली बार आ रहे हैं इधर? आरव ने कहा, नहीं, बहुत साल पहले आया था। अच्छा, तो साहब आप इस रास्ते को तो पहचानते होंगे? आरव ने कहा, रास्ते शायद बदल जाती है पर यादें नहीं। कुछ क्षण मौन रहता है, फिर ड्राइवर धीरे से कहता है, सही कहा आपने, यहाँ लोग कहते हैं पहाड़ सब याद रखता है। टैक्सी एक छोटे से गांव में रुकती है। इंजन बंद होता है। दूर से बच्चों की आवाजें आती है, कहीं लकड़ी काटने की धीमी ठक ठक आवाज भी आ रही है। हवा में घंटियों की बहुत हल्की हल्की झंकार सुनाई देती है। ड्राइवर ने कहा, लीजिए साहब आपका दरांग आ गया। आरव धीरे धीरे उतरता है, सूटकेस जमीन पे रखता है और कुछ पल वहीं खड़ा रहता है। 15 साल एक इंसान को बदलने के लिए बहुत होते हैं, लेकिन कुछ जगह समय से समझौता नहीं करती। सामने वही पहाड़, वही नदी और गांव के किनारे खड़ा एक विशाल चिनार का पेड़। आरव की नजर उसी पर ठहर जाती है। उसकी सांस एक पल को जैसे रुक जाती है। हवा अचानक तेज हो जाती है और चिनार के सूखे पत्ते गिरने लगते हैं। आरव धीरे धीरे चिनार से ही बात करने लगता है। नदी के उस पार चिनार के पेड़, तुम अब भी यहीं हो? तभी पीछे से किसी के कदम की आवाज आती है। एक 70 वर्ष के बुजुर्ग अत्यंत स्नेहिल आवाज में कहते हैं, आरव। आरव चौंकता है, अरे यूसुफ चाचा। यूसुफ चाचा हंसते हुए कहते हैं, पहचाना तो सही, मुझे लगा था अब शहर में रहते हो तो हम गांव वालों को कहाँ पहचानोगे। आरव ने बोला, यूसुफ चाचा आप तो बिल्कुल नहीं बदले। यूसुफ ने कहा, अरे उम्र बदल देती है बेटा, मगर कुछ इंतजार कभी नहीं बदलते। दोनों धीरे धीरे कच्ची पगडंडी पर चलने लगते हैं। यूसुफ ने पूछा, शहर में कैसे हो? आरव ने कहा, मत पूछिए चाचा, काम बस काम। और दिल? आरव धीरे से कहता है, दिल तो चाचा यहीं कहीं छूट गया था। यूसुफ चाचा उसकी ओर देखते हैं लेकिन कुछ नहीं कहते। कभी कभी सबसे बड़े सवाल चुप्पी पूछती है। यूसुफ ने कहा, घर खुलवा दिया है, साफ भी करवा दिया, कोई दिक्कत हो तो बता देना। आरव ने बोला, धन्यवाद चाचा। कमरे में हल्की सी नमी थी,
पुरानी लकड़ी, पुरानी किताबें और खिड़की से दिखता नदी के उस पार वही चिनार। आरफ मुस्कुराने की कोशिश करता है लेकिन मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंचती। कमरे में बिल्कुल अकेलापन है। मेज पे रखा एक बैग है जिसको आरफ खोलने की कोशिश करता है और तभी उसमें से एक पुरानी डायरी नीचे गिरती है। आरव उसे उठाता है। कुछ पल बस उसे देखता रहता है जैसे उसे खोलने से कोई पुराना दरवाजा भी खुल जाए। डायरी के पहले पन्ने पर सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, अगर कभी लौटो तो चिनार के पास नदी के उस पार जरूर जाना। नीचे कोई नाम नहीं था लेकिन आरव का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसने तुरंत डायरी बंद कर लिया। अचानक बाहर की हवा और तेज हो जाती है और खिड़की अपने आप धड़ाम से बंद हो जाती है। आरव चौंक कर खिड़की की ओर देखता है। बाहर चिनार के नीचे उसे एक आकृति खड़ी दिखाई देती है, सफेद फिरन पहने, स्थिर, बिल्कुल बिना हिले। आरव एक कदम आगे बढ़ता है, धीमे से पूछता है, कौन? अगले ही पल हवा फिर से चलती है, पत्तों का एक घना गुबार उठता है और जब साफ होता है वहाँ कोई नहीं था। आरव की सांसें तेज हो जाती है। क्या उसने सचमुच किसी को देखा था या 15 साल पुरानी कोई याद आज पहली बार उसका इंतजार पूरा कर रही थी? श्रोतागण, जल्दी मिलते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

प्यारे श्रोतागण, एक बार फिर आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं 89.6 FM ज्ञानस्थली रेडियो का अपना प्रोग्राम लेट नाइट हॉरर शो। श्रोतागण, कभी कभी डर उस चीज से नहीं लगता जो हमारे सामने खड़ी होती है, डर उस चीज से लगता है जो हमारे भीतर बरसों से चुपचाप खड़ी रहती है। आइए लौटते हैं आरव की उस रात में जिसने अभी अभी उसकी पुरानी यादों का दरवाजा खटखटाया है। रात गहरी हो चुकी है, घड़ी में टिक टिक टिक टिक की आवाज आ रही है, बाहर हवा लगातार बह रही है। आरव कई मिनट तक खिड़की के पास खड़ा रहता है। वो बार बार उसी जगह को देखता है जहाँ कुछ क्षण पहले उसने सफेद फिरन में किसी लड़की को देखा था। अब वहाँ सिर्फ चिनार था और उसके नीचे गिरे हुए पत्तों की मोटी परत दूर से दिखाई दे रही थी। तभी मोबाइल की घंटी बजी। आरव ने कहा, हेलो। निशा ने उस तरफ से पूछा, पहुंच गए? आरव ने सामान्य बनने की कोशिश करते हुए कहा, हाँ निशा, अभी कुछ देर पहले ही पहुंचा हूँ। निशा ने कहा, कैसा लग रहा है इतने साल बाद? उसी गांव में वापस आना आसान तो नहीं होगा? आरव कहता है, कुछ जगह बिल्कुल नहीं बदलती और शायद यही सबसे मुश्किल बात है। निशा फिर पूछती है, आरव, क्या तुमको यकीन

तुम्हें यहाँ आना चाहिए था। आरव कहता है, निशा अगर इस बार भी नहीं आता तो शायद कभी नहीं आ पाता और जिंदगी भर तड़पता रहता, जिंदगी भर पछताता रहता। कुछ पल दोनों चुप रहे, जैसे दोनों एक ही नाम लेने से बच रहे हों। निशा ने फिर धीरे से कहा, आरव अगर कुछ भी अजीब लगे तो प्लीज वापस लौट आना, सिर्फ एक अधूरी बात के लिए, पूरी जिंदगी के लिए रुक मत जाना। आरव बहुत धीरे से जवाब देता है, कुछ बातें पूरी जिंदगी रोक देती है निशा। कॉल समाप्त होता है, कमरे में फिर वही सन्नाटा। आरव ने फोन बंद कर दिया, उसकी नजर फिर उसी डायरी पर चली गई। इस बार उसने डायरी खोला, पहले कई पन्ने बिल्कुल खाली थे और फिर एक तारीख लिखी थी, 18 अक्टूबर। बस साल नहीं लिखा था, उसके नीचे कुछ पंक्तियां थी, आज फिर हम चिनार के पास बैठे। उसने कहा, अगर कभी मैं तुमसे पहले चली गई तो मुझे ढूंढते मत आना, मैं यहीं रह जाऊंगी। आरव ने पन्ना बंद कर दिया, उसके हाथ कांप रहे थे। बाहर सूखे पत्ते पर किसी के कदम पड़ने की आवाज आने लगी। आरव ने सांस रोक लिया, कदम धीरे धीरे खिड़की के पास नीचे आकर रुक जाते हैं। फिर बहुत धीमी आवाज, जैसे खिड़की के बाहर कोई खड़ा होकर सिर्फ एक शब्द कह रहा है, आरव आरव आरव। आरव झटके से खिड़की खोल देता है, बाहर कोई नहीं था, सिर्फ चिनार के पत्ते जो हवा में गोल गोल घूम रहे थे। अचानक उसकी नजर नीचे गई, नीचे गीली मिट्टी पर जूते के निशान थे, एक जोड़ी जो सीधे खिड़की तक आए थे, लेकिन वापस जाने के कोई निशान नहीं थे। आरव कुछ देर उन निशानों को देखता रहा, फिर धीरे धीरे बाहर आया। रात हो चुकी थी, दूर कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी। वो चिनार की ओर बढ़ने लगा, हर कदम के साथ हवा और ठंडी हो रही थी। नदी के पास पहुँच करके वो रुक गया, वहीं जहाँ वो कभी घंटों बैठा रहता था, वो चिनार का पेड़ आज भी नदी के उस पार उसको बुला रहा था। उसी समय पीछे से किसी ने पुकारा, साहब। आरव मुड़ा, एक लगभग 12-13 साल का लड़का हाथ में लांटेन लिए खड़ा था। लड़के ने पूछा, आप पुराने वाले घर में ठहरे हैं ना? आरव ने कहा, हाँ, क्यों? लड़का बोला, दादाजी ने कहा है रात को इस नदी के पास ज्यादा देर मत रुकिएगा। आरव ने मुस्कुरा के पूछा, क्यों, यहाँ क्या है? लड़का कुछ क्षण उसे देखता रहा, फिर बोला, यहाँ कुछ नहीं है, मगर जो लोग कुछ देर तक खड़े रहते हैं उन्हें लगता है कि कोई उन्हें याद कर रहा है। ये कह के लड़का मुड़ा और अंधेरे में धीरे धीरे चला गया। आरव वहीं खड़ा उस विशाल चिनार को देखने लगा। हवा अब बिल्कुल थम चुकी थी, इतनी ज्यादा शांति कि अपनी धड़कनें भी सुनाई दे। और तभी उसने देखा कि पेड़ के तने पर बहुत पुरानी धुंधली सी नक्काशी थी। शायद वो दो नाम जो उन्होंने उस पे लिखे थे वो अब भी थे, लेकिन दूर से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। आरव के होंठ कांपने लगे, उसने उस नाम को छूना चाहा, लेकिन उसी क्षण किसी ने बहुत धीरे से कहा, आरव इतनी देर लगा दी लौटने में। अचानक हवा फिर से तेज हो जाती है, चिनार के सैकड़ों पत्ते एक साथ उड़ते हैं और फिर पूरा
अंधेरा। प्यारे दोस्तों, जल्दी मिलते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
1: प्यारे श्रोतागण, स्वागत है आपका। आप सुन रहे हैं 89.6 FM ज्ञान स्थली रेडियो पे अपना प्रोग्राम लेट नाइट हॉरर शो, और मैं हूँ आपकी लेट नाइट आरजे। प्यारे दोस्तों, कुछ रास्ते हमें मंजिल तक नहीं ले जाते, वे हमें हमारे अपने सच तक ले जाते हैं। आज आरब भी ऐसे ही एक रास्ते पे है, जहाँ लौटना शायद वापस आना नहीं, बल्कि अपने आप से मिलना है। धीरे धीरे सुबह हो रही है, आकाश अभी पूरी तरह खुला नहीं था। पहाड़ की चोटियों पर धुंध ऐसे ठहरी थी मानो रात अभी जाने को तैयार नहीं है। आरव धीरे धीरे चिनार के उस पार जाने वाले पुराने रास्ते पर चल रहा था। उसके पीछे यूसुफ चाचा बहुत दूर तक आए, फिर वहीं रुक गए। उन्होंने कहा, आरव, अगर वहाँ कुछ मिले तो उससे सवाल मत पूछना, बस सुनना। कभी कभी जवाब बोलने वाले के पास नहीं, सुनने वाले के पास होते हैं। आरव ने हल्के से सर झुकाया और आगे बढ़ गया। हर कदम जैसे 15 साल पीछे लौट रहा था। उसे याद आया, मीरा इसी पुल पर हमेशा रुक जाती थी। उसकी याद करके वो धीरे से हंसा। मीरा कहती थी, आरव, अगर ये पुल टूट गया तो? आरव कहता था, तो मैं पहले गिरूंगा मीरा, तुमको कुछ नहीं होने दूंगा। मीरा हंसते हुए कहती थी, झूठे, तुम्हें तो ऊंचाई से डर लगता है। आरव पुल के बीचों बीच रुक गया। उसने रेलिंग को छुआ, उसी जगह जहां कभी मीरा ने चाकू की नोक से 2 अक्षर उकेरे थे, आ और माँ। समय ने उन्हें लगभग मिटा दिया था, लेकिन उंगलियां अब भी उसे पहचान रही थी। पुल पार करते ही जंगल खुल गया, बीच में एक छोटा सा घास का मैदान, और उसके केंद्र में था एक विशाल चिनार का पेड़। उम्र शायद 100 साल से भी ज्यादा होगी, लेकिन आज पहली बार आरव को लगा जैसे ये पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं, एक गवाह है। इतनी खामोशी कि नदी की हर लहर अलग अलग सुनाई दे रही थी। आरव धीरे से पेड़ के पास पहुंचा, उसने अपने हाथ तने पर रखा। लकड़ी बर्फ जैसी ठंडी थी, लेकिन उस ठंडक के भीतर एक अजीब सी धड़कन महसूस हुई, बहुत हल्की, मानो पेड़ सांस ले रहा हो। वो घुटनों के बल बैठ गया, आंखें बंद कर ली। आरव ने टूटती हुई आवाज में कहा, मीरा, अगर तुम कहीं भी हो तो आज पहली बार मैं सच बोलने आया हूँ। आरव ने कहा, सबको लगता है मैं शहर इसलिए चला गया था क्योंकि मुझे नौकरी मिल गई थी, और इसीलिए मैं कभी वापस नहीं आया, लेकिन सच और कुछ था। मैं डर गया था, तुम शादी करना चाहती थी और मैं जिम्मेदारी से भाग रहा था। मैंने कहा, बस 1 साल फिर लौट आऊंगा, पर साल बीतते चले गए और मैं काम में उलझता चला गया। मैंने फिर एक भी खत नहीं लिखा, एक भी फोन नहीं किया, क्योंकि हर दिन मुझे लगता था अगर मैं लौटूंगा तो तुम्हारी आंखों में अपने लिए सिर्फ नफरत देखूंगा। आरव की आवाज भरा गई, और फिर मीरा एक दिन वो दर्द भरी खबर आई कि तुम नहीं रही। उस दिन से मैंने हर रात अपने आप को यही सजा दी कि अगर मैं वहाँ गया होता तो शायद तुम जिंदा होती। आरव ने सिर झुका लिया, उसके आंसू गीली मिट्टी पर गिर रहे थे। तभी बहुत हल्की सी पायल की आवाज आई। आरव की सांसें रुक गई, उसने सिर उठाया। सामने कुछ नहीं था, लेकिन पेड़ की दूसरी ओर बहुत दूर सफेद फेरन का एक कोना हवा में लहराकर ओझल हो गया। आरव बिना सोचे उस ओर दौड़ा। वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ घास पे रखी एक छोटी सी लकड़ी की डिबिया। बिल्कुल पुरानी थी, उसके किनारे घिसे हुए थे। वो झुककर उसको उठाता है, धीरे धीरे खोलता है। अंदर एक सूखा नीला जंगली फूल रखा था। उसके नीचे मुड़ा हुआ एक कागज, इतना पुराना कि छूते ही टूटने लगे। आरव कांपते हाथों से उसे खोलता है। पहचानते ही उसकी सांसें अटक जाती है। वो मीरा की लिखावट थी, लेकिन ये डायरी का पन्ना नहीं था। ये वो खत था जो शायद कभी उसने भेजा ही नहीं। आरव ने धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। मीरा ने लिखा था, आरव अगर ये खत कभी तुम्हें मिले तो इसका मतलब तुम लौट आए। मैंने तुमसे कभी शिकायत नहीं की। शिकायत इंतजार से बहुत छोटी होती है। मैंने तो सिर्फ तुम्हारा इंतजार किया। लोग कहते हैं तुम मुझे छोड़ के चले गए, लेकिन मैं जानती हूँ तुम मुझे नहीं छोड़ सकते। तुम खुद से भागे हो। आरव की आंख से लगातार आंसू बह रहे थे, उसके हाथ कांप रहे थे। पत्र की आखिरी पंक्ति तक पहुँचते ही पहले उसकी सांसें तेज हो गई, क्योंकि एक एहसास हो चुका था कि 15 वर्षों से वो जिस सच से डर रहा था वो अब उसके सामने आने वाला है। श्रोतागण जल्दी मिलेंगे इस कहानी के क्लाइमेक्स में, मगर एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
1: वेलकम बैक प्यारे श्रोतागण। आरव पत्र की आखिरी पंक्तियां पढ़ने लगा। आरव, अगर तुम ये पत्र पढ़ रहे हो तो एक बात अपने दिल से हमेशा के लिए निकाल देना। मैं उस दिन तुम्हारा इंतजार नहीं कर रही थी, मैं तो तुम्हें विदा कर चुकी थी। मैं जानती थी तुम चले गए हो। मैं रोज नदी के किनारे इसलिए आती थी क्योंकि मुझे अकेले बैठकर रोना होता था। कभी कभी जिसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उसी को मुस्कुरा के विदा करना बहुत मुश्किल होता है। आरव के हाथ कांपते, उसने जल्दी जल्दी अगली पंक्तियां पढ़नी शुरू करी। मेरे साथ जो हुआ आरव, वो हादसा था, न तुम्हारी गलती न मेरी गलती, बस उस दिन पहाड़ ने मुझे रोक लिया। आरव की आंखें बंद हो गई। 15 वर्षों से जिस एक वाक को सुनने के लिए उसका मन तड़प रहा था, वो आज एक पुराने कागज से निकलकर उसके सामने खड़ा था। मीरा आगे लिखती है, आरव, अगर तुम कभी लौटो तो मेरे लिए मत रोना, अपने लिए जीना और एक काम जरूर करना, उस चिनार के नीचे अपने अपराध बोध को छोड़ देना। मैं नहीं, वो पेड़ तुमको सबसे ज्यादा सताता रहेगा। पत्र समाप्त हो गया। आरव बहुत देर तक उसी जगह बैठा रहा, फिर धीरे धीरे उसने पत्र को मोड़ा, सीने से लगाया और पहली बार फूट फूट के रो पड़ा। वो रोना सिर्फ मीरा के लिए नहीं था, उन 15 वर्षों के लिए भी था जो उसने पल पल अपने को सजा देते हुए बिताए थे। आरव ने कहा, मीरा, मैंने सिर्फ तुम्हें नहीं खोया था, मैंने तो अपने आप को खोल दिया था। आरव ने धीरे धीरे सर उठाया। पेड़ के सामने कुछ क्षणों के लिए धूप और धुंध के बीच उसे एक आकृति फिर से दिखाई दी। सफेद फिरन, खुले बाल, चेहरे पर वैसे ही शांत मुस्कान जिसे वो 15 साल से भूल नहीं पाया था। उस आकृति ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ बहुत हल्के से सिर हिलाया, जैसे किसी ने किसी को आखिरकार माफ कर दिया हो। आरव ने एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन उसी क्षण बादलों के पीछे से सूरज की पहली किरण निकली। प्रकाश चिनार की शाखाओं से होकर गुजरा और वो आकृति धीरे धीरे रोशनी में खुल गई। आरव मुस्कुराया। परसों बाद उसकी मुस्कुराहट में दर्द नहीं था। वो लौटने लगा। कुछ दूर चलने के बाद उसने पीछे से मीरा की वही खिलखिलाने की आवाज सुनाई दी। वो रुक गया, लेकिन इस बार उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस धीरे से कहा, अलविदा नहीं मीरा, धन्यवाद। जब वो पुल पार करके वापस आया, यूसुफ चाचा वहीं बैठे थे। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, सिर्फ आरव की आंखों में देखा। वहाँ बरसों बाद शांति थी। यूसुफ ने मुस्कुरा के पूछा, मिल आए? आरव ने कुछ पल लगाए, फिर कहा, चाचा, मीरा से भी मिलाया और खुद से भी। यूसुफ की आंखें भीग गई और उन्होंने धीरे से कहा, तभी तो आज पहली बार इतने सालों के बाद इस पेड़ की हवा हल्की लग रही है। दोनों के कदम गांव की ओर बढ़ने लगे। कुछ दूर चलने के बाद आरव अचानक रुक गया। उसने पूछा, चाचा, वो पत्र आपने वहाँ रखा था? यूसुफ चाचा ने हैरानी से पूछा, कौन सा पत्र? जो लकड़ी की डिब्बिया में था, मीरा का। यूसुफ चाचा का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, बेटा, उसमें उसकी कोई चिट्ठी मुझे कभी मिली ही नहीं। हमने तो बहुत ढूंढा, आरव कुछ नहीं बोल पाया। उसने जेब में हाथ डाला पत्र निकालने के लिए, लेकिन जेब खाली था। वो घबरा कर दूसरी तरफ जेब टटोलने लगा। फिर उसने बैग देखा, कुछ नहीं, पत्र गायब था। दोनों बिना कुछ कहे धीरे धीरे मुड़े। दूर का वही विशाल पेड़ सुबह की धूप में एकदम शांत खड़ा था। उसकी सबसे निचली शाखा पे एक सूखा हुआ नीला जंगली फूल हवा में झूल रहा था और एक स्त्री की हंसने की आवाज आ रही थी। प्यारे श्रोताकर्ण, कश्मीर में दरांग जैसा कोई गांव है या नहीं मैं नहीं जानती, लेकिन हर इंसान के भीतर एक चिनार जरूर होता है। एक ऐसी जगह जहां वो अपने अधूरे शब्द, अपनी भूलें, अपने अपराध बोध सालों तक छिपा कर रखता है। कभी अगर हिम्मत हो तो उससे जरूर मिलिएगा। हो सकता वो आपको आपकी आत्मा से मिला दे और तभी शायद आप अपने आप को माफ कर सके। और फिर इस कहानी का एक प्रश्न आज तक अनुत्तरित है। जिस पत्र को आरव ने पढ़ा, जिसने उसकी जिंदगी बदल दी, अगर वो सचमुच था तो वापस कहाँ गया? और अगर वो नहीं था तो आरव ने क्या पढ़ा? मैं हूँ आपकी लेट नाइट आरजे। आप सुन रहे हैं 89.6 FM पर लेट नाइट हॉरर शो। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, और अगर कभी किसी पुराने चिनार, बरगद या पीपल के पेड़ के पास हवा अचानक थम जाए तो एक पल के लिए चुप रहिएगा। कभी कभी खामोशी भी बहुत सारी कहानियाँ सुना देती है। शुभ रात्रि।

0: है दिलों का इजहार, सुरों के मोती, लफ्जों की माला, भूले बिसरे नगमों का ये है शिवाला। नमस्कार दोस्तों, आपके दिलों की धड़कन, आपके अतीत की महक और सुरों की सौगात लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी आरजे अनोखी इस खास सो भूले बिसरे गीत में, जहाँ लाएंगे हम वो नगमे जिन्हें सुनते ही आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं संगीत की उस दुनिया का, जहाँ हर धुन एक दास्तां कहती है। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये शो है भूले बिसरे गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन।
1: ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन।
2: कुछ चीजें भारत की हो या फिर बाहर की, यानी कि एशियाई हो, अमेरिका में हो या फिर लंदन में हो, लेकिन अगर मेड इन इंडिया की बात हो तो वो अपने आप में एक अपनी पहचान बनाते हैं। मेड इन इंडिया का मतलब है कि हमारे भारत में ही जन्मी और पढ़ी हुई और उसके बाद में वहीं पर रमी हुई। आपने शायद सुना होगा मेड इन इंडिया। मेड इन इंडिया का मतलब होता है कि भारत की ही बहुत सारी ऐसी पहचान को अपने मुकाम पर पहुंचाना। मेड इन इंडिया यानी कि मुझे तो कुछ याद आ रहा है भाई मेड इन इंडिया से। शायद आपने ये वर्ड अपने आप ने कई बार सुना होगा, कई बार गानों के रूप में सुना होगा, कई बार आप लोगों ने ऐसे ही गुनगुनाता हुआ सुना होगा। यस ऑफ कोर्स, मैं जिसकी बात कर रही हूँ वो है मेड इन इंडिया हमारी अलीशा चेन्नई का, क्योंकि अलीशा चेन्नई का ये गाना मेड इन इंडिया आज भी हम सभी के जहन में इस तरीके से है जैसे मानो कोई खूबसूरत याद, हम कभी भी उसे निकालना नहीं चाहते हैं। रात के सफर में आज हम लेकर के आए हैं अलीशा चेन्नई। जी हाँ, मैं हूँ आपकी आरजे ख्वाहिश और आज लेकर के आई हूँ रात के सफर में अलीशा चेन्नई के बारे में। आपने खूबसूरत सा नाम कई बार सुना होगा, कई गाने भी सुने होंगे उनके, लेकिन आज मेड इन चाइना मेड इन इंडिया कैसे बनी हम आपको बताने वाले हैं। अलीशा चेन्नई का जन्म 18 मार्च 1965 को अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। वे एक इंडियन पॉप एंड इंडियन प्लेबैक सिंगर हैं, जिन्हें 90 के दशक में क्वीन ऑफ इंडी टॉप के नाम से जाना गया। इंडी टॉप इसलिए बोला क्योंकि उस समय इंडिया में नंबर वन टॉप कर रही थी हमारी अलीशा चेन्नई। धीरे धीरे उन्हें बहुत सारे नाम मिलते गए। धीरे धीरे कहें कि उन्होंने अपना पैर इस तरीके से जमा लिया सिर्फ पॉप म्यूजिक में कि उनके जैसा कोई फिर और दिखाई नहीं। इसीलिए समय बढ़ता गया, उनका करियर आगे बढ़ता गया। एल्बम पे एल्बम जब रिलीज होने लगे तो बहुत सारे गानों की भरमार कोशिशों और उनकी उम्मीदों पर खरे उतरने के बाद में उन्हें एक एल्बम से नवाजा गया जिसका नाम था जादू। जादू से वाकई उनके जीवन में एक जादू सा आ गया और उन्हें एक प्यारा सा नाम फिर से दिया गया जो कि था इंडी पॉप, यानी हमारे इंडिया, हमारे भारत में ऐसा इंडियन पॉप गाने वाली फीमेल प्लेबैक सिंगर कोई और हो ही नहीं सकती थी, जिसका नाम आज हम बड़े सम्मान से लेते हैं अलीशा चेन्नई। तो आइए सुनते हैं उसके एक बहुत ही खूबसूरत से पॉप म्यूजिक में जाकर के इस गाने को। मैं आज पॉप म्यूजिक को इसलिए आपके सामने लेकर के आई हूँ क्योंकि हम कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे गाने हैं हम सुनते हैं, लेकिन कभी कभी मन करता है कि कुछ ऐसे गानों को सुने जिसको सुनने पर हम सिर्फ सुने नहीं हमारे पैर भी थिरके। तो आज हम सुनेंगे भी और अपने पैरों को भी थिरकाएंगे अलीशा चेन्नई के साथ। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से एक गाने को।

अलीशा चनाए उनका सबसे चर्चित जो एल्बम था वो था मेड इन इंडिया। 1995 था जिसमें इंडी टॉप के क्षेत्र में ये जो एल्बम थी मेड इन इंडिया वो क्रांति ही ला दी थी। उन्होंने 2005 में फिल्म बंटी और बबली के गीत कजरारे के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता। अब आप कहेंगे ये गाना कुछ सुना सुनाया सा लगता है। बिल्कुल, कजरारे को गाया था अलीशा चनाए ने, जो आज भी हर शादी में हर एक फंक्शन में जरूर से गाया जाता है। कजरारे गाना वैसे तो सिंपल लैंग्वेज में भी गाया जा सकता था, लेकिन उसको पॉप म्यूजिक में कन्वर्ट करने की जो कला थी वो सिर्फ और सिर्फ अलीशा चनाए की ही खूबसूरत सी आवाज में थी। तो उन्होंने इस प्यारे से गाने को जब गाया तो अलीशा चनाए भी अपने आप में एक अद्भुत सी, जिसे कहते हैं ना कि वो कोशिशों के बाद में जब निखर के कोई चीज आती है, तो उन्हें लगा अरे ये गाना मैं ही गा सकती हूँ। बिल्कुल, संगीत शैली और प्रभाव के लिए ये मुख्य रूप से हिंदी पॉप और बॉलीवुड के पॉप घरेलू शैली का मिश्रण भी कहा जाता है। हिंदी पॉप इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कजरारे सिंपल सी लैंग्वेज में गाना था, लेकिन उन्होंने बॉलीवुड के पॉप घरेलू शैली को अपनाया और इस प्यारे से मिश्रण को तैयार किया। 1990 के दशक में पॉप म्यूजिक में उन्होंने जो ब्रेक दिया वह भारतीय संगीत उद्योग में एक मायने में एक नया चैप्टर था, जो कि आज तक अगर अलीशा चनाए को किसी भी म्यूजिक कॉन्टेक्स्ट में बुलाया जाता है या फिर लाइव में बुलाया जाता है तो भी वो सबसे पहला गाना मेड इन इंडिया यानी कि मेड इन इंडिया वाला ही गाना सभी को सुनाती है। वे बॉलीवुड में तो करती, लेकिन बड़ी फिल्मों के लिए भी उन्होंने अपने गीतों में आवाज दी। बहुत सारे गाने उन्होंने गाए, जैसे बंजी और बबली के बारे में अभी मैंने आपको बताया कि कजरारे गाना सिंपल लैंग्वेज में भी गाया जा सकता था, लेकिन अलीशा ने अपनी आवाज को एक अलग तरीके से उसमें पॉप म्यूजिक को मिक्सचर कर दे करके इसकी आवाज को नए गीतों में तराशा। तो आइए सुनते हैं एक बहुत ही प्यारे से गाने को जो कि अलीशा का एक दूसरी एल्बम से है।

अलीशा ने अपने करियर की शुरुआत 1980 के दशक में की थी। उनका पहला एल्बम जादू जो कि 1985 में था। 90 के दशक में उनका एल्बम मेड इन इंडिया जो कि सुपर हिट नहीं सुपर से सुपर हिट रहा, देश भर में प्रसिद्ध कर दिया गया। इस एल्बम का टाइटल जो रहा वो मेड इन इंडिया भारत में पॉप संगीत को प्रतीक बन गया। प्रतीक इसलिए कह सकते हैं क्योंकि उनके पहले मेड इन इंडिया कभी नहीं कहीं कोई टैग नहीं था, लेकिन उनकी इस एल्बम के बाद में हर जगह पर मेड इन इंडिया का टैग भी बनने लगा। अलीशा ने कई सुपरहिट गाने दिए जैसे कजरारे, तिनका तिनका, ओ बेबी और बहुत सारे गाने जो कि मूवीज में अगर हम देखें उनका सफर जब शुरू हुआ तो बंटी एंड बबली, करम, दिल है कि मानता नहीं, खुददार और विजय पथ। तो जैसे गाने रुक रुक जो तब्बू की आवाज में अगर कोई गाना गा सकता था तो वो

दिल को मोह लेने वाली अलीशा बहुत ही प्यारी सी आवाज में उनके गाने को हम आज भी बेहतर रूप से सुनते हैं। तिनका तिनका, जो कि करम मूवी 2005 में सुपरहिट से भी सुपरहिट हुई थी। अलीशा की सुरीली आवाज और सॉफ्ट टोन वाला ये खूबसूरत गीत आपके लिए।

अलीशा चेन्नई का वैसे तो नाम अलीशा चेन्नई ही है, लेकिन उनका पूरा और असली नाम सुजाता चेन्नई था। सुजाता चेन्नई वो उनका व्यक्तिगत नाम यानी कि उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ, पर उन्हें स्टेज नाम दिया गया अलीशा चेन्नई। कई शोज के बाद में

उनकी पर्सनालिटी को जो सूट करने लगा वो अलीशा, और उनके चाहने वालों ने, उनकी फैन फॉलोइंग ने उन्हें ये नाम दिया, जो कि आज हम सभी इसी के नाम से उन्हें जानते हैं, जो कि है अलीशा चिनार। उनका जन्म 18 मार्च 1965 में अहमदाबाद गुजरात में तो हुआ ही, साथ ही साथ राष्ट्रीयता उनकी भारतीय ही है। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई में पूरी की थी। उनके पिता का नाम मदन चिनाय था, जो क्लासिकल म्यूजिक से जुड़े हुए थे। वो कहते हैं ना कि जैसे बड़े होते हैं वैसे ही बच्चों में एक न एक खूबी आ ही जाती है। पिता जो क्लासिकल म्यूजिक से इतने ज्यादा जुड़े हुए थे, उनकी प्रारंभिक शिक्षा उनके घर से ही शुरू हुई। उनकी शिक्षा अगर देखी जाए जो कि संगीत से जुड़ी हुई थी, वो उनके पिताजी के द्वारा ही, यानी कि मदन चिनाय से मिली। मदन चिनाय ने भी कई बार उन्हें आगे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। बाहर शोज करने के साथ साथ वो उनके साथ हमेशा से साथ में रहते थे। बेटी को आगे पढ़ाने की ललक, उन्हें आसमान तक पहुंचाने की जो एक उम्मीद, और कहते हैं ना कि जो एक उत्साह होता है, वो उनमें भरपूर था। बस तब क्या था, एक पिता का साया और एक पिता का साथ, दोनों मिल जाए तो बात ही कुछ और होती है। इसी तरीके से अलीशा चिनाय का सफर संगीत में शुरू हुआ। अलीशा ने 1980 के दशक की शुरुआत में बहुत सारे ऐसे गाना गा करके शुरू की गई थी। उनके करियर की शुरुआत संगीतकार पप्पी लहरी के साथ उन्होंने बॉलीवुड में सबसे पहला मौका, जो कि उन्हें जादू की एल्बम से मिला था, उसके बाद में एक से एक उनकी एल्बम को रिलीज करते हुए देखा गया। तो आइए एक बहुत ही प्यारा सा गाना, जो कि विजयपत की मूवी से है, 1994 में आई हुई विजयपत मूवी का, रुक रुक रुक अरे बाबा रुक, आइए सुनते हैं इस प्यारे से गाने को।

फिल्म फेयर अवार्ड्स की अगर बात करें तो 2005 में कजरारे गीत के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका को के रूप में उन्हें दिया गया, जिन्हें क्वीन ऑफ इंडी पॉप की उपाधि भी दी गई, क्योंकि उन्होंने भारतीय पॉप को मुख्य धारा में लाने की बड़ी भूमिका निभाई थी। और साथ ही साथ में कजरारे जो कि सिंपल से गाने को भी उन्होंने अपनी शैली में गा करके आज भी सभी को मुग्ध करने वाली ये गाना हम सभी के जहन में है, इसीलिए उन्हें सम्मान और पुरस्कार की हकदार तो वो बनती ही है। अलीशा का संगीत भारतीय और पारसी पॉप धुनों का एक मिक्सचर भी है। उनके गीतों में मॉडर्न बीट्स, डिस्को रिदम और कैची मेलोडी होती है, जो हम सभी को एक तरह से मनमुग्ध कर देती है। उनकी आवाज नाजुक, स्टाइलिश और यूथफुल मानी जाती है। यूथफुल इसीलिए क्योंकि आज के नौजवान भी या पहले में भी सभी लोग उनकी आवाज को बेहद पसंद करते थे। अलीशा जब ज्यादा एक्टिव नहीं रहती थी तब भी उनके शोज उनके लिए इतने ज्यादा मायने रखते थे। कभी कभी एक्टिवेट शो में भी वो दिखाई देती थी। वे सोशल मीडिया पर मौजूद तो हैं, इंस्टाग्राम पर अपने पुराने और नए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की तैयारी भी करती हैं, और साथ ही साथ में कई ऐसी चीजों को लेकर के उन्होंने बात भी करी। लेकिन कहा जाता है कि हर एक पर्सनालिटी के पीछे कुछ न कुछ ऐसी बातें होती हैं जहां पर कंट्रोवर्सीज तो होती है। वो कहते हैं ना, जिनके पीछे उपलब्धियां होती हैं, जिनके नाम होते हैं, उनके साथ में कंट्रोवर्सीज तो बहुत सारी होती हैं। सब बताएंगे लेकिन एक प्यारे से खूबसूरत सॉन्ग के बाद।

कहते हैं ना कि जब कोई उपलब्धि हो जाती है तो उसको छूने के लिए कई बार ऐसे होता है कि हम पहुंच तो जाते हैं लेकिन पीछे पीछे कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारा साया और साथ नहीं छोड़ती हैं। बस ऐसी ही कुछ कंट्रोवर्सीज भी अलीशा चनाय के साथ थी, लेकिन कहते हैं कि जो सरल और जिनकी वाणी बहुत ही मधुर होती है वे भी अपनी बात से लोगों को मनवाने के लिए अपनी बात को मनवाई लेते हैं। वैसे ही लाख कंट्रोवर्सीज क्यों ना हो, लेकिन अलीशा ने अपनी प्यारी सी आवाज को लेकर के कई ऐसे मामलों को, कई ऐसे मुद्दों को पीछे छोड़ा और साथ ही साथ ऐसे कई संगीतकारों के साथ भी बैठ कर के जिनके साथ उनका कभी विवाद भी हुआ होगा पर उनके पीठ पीछे कभी कुछ नहीं बोलना। साथ ही साथ जब उनके साथ में बैठ कर के वो रिकॉर्डिंग करती थी, उनके जाने के बाद भी जिनसे उनका विवाद हुआ होता था वे भी उनकी तारीफ किया करते थे, कारण उनका सरल और प्यारा सा नेचर, उनकी प्यारी सी आवाज। तो ये होता है जो कि उपलब्धियों को छूने के बाद भी किसी के अंदर कोई घमंड बिल्कुल ना आए। और साथ ही साथ अब मैं आप सुनाऊंगी एक प्यारा सा गाना जो कि डॉन मूवी का है, 2006 में आज की रात, जो कि अलीशा चनाय की आवाज में। आइए सुनते हैं।

तो आज के सफर में अलीशा चनाई के इस प्यारे से बहुत से संगीत के सफर को हमने आपके साथ में शेयर किया, जिसमें म्यूजिकल स्टाइल के साथ में कंटेंट स्टाइल, और जैसा कि आप सभी को पता है कि अवार्ड्स, रिकॉर्डिंग्स, हर एक के बारे में हमने आपको बताया। कहते हैं कि प्लेबैक सिंगर का जो करियर होता है वो सिर्फ यूं ही कह देना आसान नहीं होता है। कई ऐसी चीजों के साथ में उन्हें सफर करना पड़ता है जो कि उनकी समझ से कभी कभी परे हो जाती हैं। लेकिन उनका जो भी करियर रहा, राइज इन हिंदी टॉप में यानी कि राइज इन इंडी पॉप से बनने का सफर उनके लिए बहुत ही प्यारा रहा। मैं मिलूंगी अब एक नए सफर में यानी कि फिर से एक नए सिंगर्स के साथ में। तब तक के लिए आपकी अपनी आज ख्वाहिश को दें इजाजत। शुभ रात्रि।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स ही फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
0: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं। त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा, जहां लेडीज के लिए मिलती है लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन। और जेंट्स के लिए, जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह। तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
2: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री

0: अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं,
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260981 9761 9816। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283886।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
3: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
1: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतराला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
3: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
4: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838288386।
3: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
4: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
5: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
6: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
5: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
6: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
5: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी?
6: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 8881009400।
4: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: दिल पे चले कटारी।
1: है मीठी छुरी ये जालिम नजर तुम्हारी,
0: तू झोंके चले तो दिल पे चले कटारी।
1: है मीठी छुरी।

0: जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
0: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल नियर न्यू सब्जी मंडी उतरालो रोड गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

बिके जवानी बिके बुढ़ापा सब बिकता है घर हो पाता। लूट चुके हो दुनिया सारी।

0: अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं,
1: तो सिटीमेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9861 9816। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: अरे सुना
3: क्या,
2: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
3: वाओ,
2: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर नगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583546।
4: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
3: मतलब
4: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
5: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891446 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

हर साल लाखों लोग जल जनित बीमारियों से बीमार पड़ते हैं। क्या आप महफूज हैं? जल जनित बीमारियाँ यानी पानी से होने वाली बीमारियाँ जिन्हें वाटर बोन डिजीज कहते हैं। ये बीमारियाँ वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूषित पानी के संपर्क में आने से या पीने से होती हैं। कुछ जल जनित बीमारियाँ हैं कॉलेरा, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस, डायप्थीरिया, डायरिया आदि। इन रोगों से बचने के लिए अच्छी आदतें अपनाएं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण करवाएं। दूषित भोजन और पानी से बचें। कुछ भी खाने या पीने से पहले अपने हाथ जरूर धोएं। छत पर रखी टंकी को नियमित रूप से साफ करते रहें। पानी को गर्म करके पिएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।